0: कहा जाए, आदिशक्ति हैं। सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में, और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नजर वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधू की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे, तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गो पपीतकम कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णु वादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रुत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थतः शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिव दत्त विभूषण प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
1: गर्ग मुनि ने,
0: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती है। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई, हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी, विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती, पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है, जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं, कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती, और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता, जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है, वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में है, वो है पार्वती, वो है काली, वो है दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे। स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं, और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए, यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूर गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मेना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए, जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है, और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
1: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी, कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
0: जी,
1: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणि ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में, कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
0: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि वर वधु भी खा लेते हैं, प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
1: इसीलिए लीला जी, आप याद करिए कि अभी भी, अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं, बस वही लगभग वही हो जाते हैं। हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
0: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
1: क्योंकि एक
0: देवताओं का अनुग्रह बरसता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
1: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
0: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
1: हुआ,
0: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
1: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
0: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है। और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थी, नगर की वधुएँ थी, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधू ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुशोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधू की पूजा करे या वधू वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं कभी कभी। तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा ये तीनों मिल जाएं तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताहा सकला महोत्सवम, के अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं, इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से है,
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर

0: कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती हैं हर किसी को, हर माँ बाप को, पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान,
1: दान कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मीना आकर के खड़ी हो गई, पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट स्वपुरोहित तम वरम वरियामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्यादि कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय? क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकर तदा सुमुखो विमुख सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवं विध सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणेश तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हट के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि। जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन वाच्ये महेश विषय अतिव असी तुम बहिर्मुख त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा है। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
3: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मन शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
3: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि की कोई कहीं कथा हो रही है तो लोग पूछेंगे कि क्या वहाँ से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे पहुँचे चले जाते हैं
1: बिन बुलाए मेहमान।
3: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है के पी स्क्वायर एल एच बी पी अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
3: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
3: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
3: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है। प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की। तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
4: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इनबिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा। हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
5: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर कर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
4: जी।
5: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है।

0: और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को, तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है, तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोत्स्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करे, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों। तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ ये है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एक रस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि है अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता

0: करता है तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमे, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जाओ. चिल्ड्रन आर डूइंग दैट.
0: आई थिंक इट्स हैपनिंग एवरी डे.
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. डेफिनेटली.
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस. एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दे. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है. क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए, अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग. अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों? क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं, तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ
0: जाएगी.
1: वेरी इम्पोर्टेंट. आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखे और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग involved in that. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहां भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. यू नो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इम्पोर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस, हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज. क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट.
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट, यू नो, पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
0: इट लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है जब वो नीचे फ्लो कर रहा है? एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या?
0: जीवन.
1: किसको?
0: जीवनदायिनी, मनुष्य को देना.
1: एब्सोल्युटली. सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बींग. उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बींग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग
0: बींग.
1: दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे. इट्स ओके, देर आर ऑब्स्टिकल्स. आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रीचर्स, दैट्स ऑल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ? बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है
0: उन्हें nourish.
1: और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है.

0: receiving and giving without expecting at the end of the day मुझे कैसा लगेगा? Do I have to think is satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
1: stress management क्या होती है? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही।
0: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी। स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली। आई हैव टू गो टू वर्क।
1: वर्क इज अ स्ट्रेस। इतनी बार ये कहा जाता है कि माय वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया। द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ इज माय वर्क।
0: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबॉडी आई मीट। अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलता है। स्टॉप, माय रोल इज ओनली टू
1: वंडरफुल। यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए। वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
0: you know, flow,
1: I am nourishing.
0: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे और वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
1: You know, at times we stay.
0: रुका हुआ पानी? रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
1: कई बार अपने साथ लोगों को, कईयों को ले चलते हैं. They can be part of your flow.
0: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को nourish करें. ये बहुत important है और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारे जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
1: हमसे होके मिलता
0: है। I feel beautiful.
1: And you know that river is healthy river. When it is nourishing and it's not dying, it's flowing.
0: Healing हो जाएगी उससे, कितनी healing. और थोड़ी देर के बाद silence में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि I think something is telling me this is wrong. लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है। मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना, तो मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
1: बात करना बंद कर देते हैं।
0: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे। That's good for me, then I should follow that. So be quiet, let go, let be, accept everything, pass on to everyone as they come and listen inside. Simple things. सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल नहीं, बहुत डिफिकल्ट, तो वे सिंपल।
1: हाँ, और हर बार की तरह
0: स्टार्ट डूइंग दैट।
1: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी।

0: मिस्टर शिवानी, ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: मिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगारा है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए। मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं, तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज़ है। But what we didn't realize is that every time we are inflicting so much of pain on ourselves, तो गुस्सा बार बार करना या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है। दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माई
0: इरिटेशन,
1: या इज माई फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है। और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ। और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू करते हैं,
0: watch it and see it।
1: तो what happens कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहां से हटा देते हैं और वहां से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है। अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
0: फ्यूल करते रहते हैं ना,
1: फ्यूल।
0: वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी।
1: हम खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है। अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते हैं, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी। सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, इट बिल्ड्स अप मोर एंड मोर एंड इट कैन स्टे विद मी टिल अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो उससे डिटैच हो जाएंगे एंड देन कम बैक टू माई स्टेज, द सेंटर, कि मैं कौन। ओम शांति ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग। तो अवेयरनेस, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उससे डिटैच हो जाए और देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज। तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था। तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
0: गुस्से के दौरान
1: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है।
0: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज़ अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है. और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता या मुझे तो गुस्सा नहीं आता. नो, आई एम वेरी पीसफुल पर्सन. बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस. सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज फाइव स्टेप्स, I think gradually we should be able.
1: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते. अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा. लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है. लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, इट कैन गो. और वो पूरी तरह से जाएगा क्योंकि अवेयरनेस जाएगी. यू नो, अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो. एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से. जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर यू टू चेंज.
0: यस, यू नो, वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस, जस्ट अ यू नो थॉट पे. सो अगेन द थॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ. इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता यह है कि हम इतने गिल्ट और रैंक, मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया.
1: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है, एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए औरों से और गुस्सा करते हैं. यू नो, मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने. यू नो, सो इट इज जस्ट बिकम वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
0: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पर कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की. यू नो, कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है. तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है, वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
1: पीस इज अ वर्ड विच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड. यू नो, वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर. तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है. लेकिन उसको हम तब रियलाइज़ नहीं कर पाते. हम रियलाइज़ किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है. यू नो, एंड एट दैट टाइम वी से आई वॉन्ट पीस. पीस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ द बींग. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे. अंदर एक साइलेंस होगा. एक है साइलेंस, एक है नॉइज. यू नो, तो पीस डजंट मीन कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइज है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो, थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है, बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है. वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
0: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
1: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं, एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक, तो ये क्षण शांति। और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है नहीं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर। तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना। पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
0: आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है,
1: आप अपने परिपेक्ष में अपने दृष्टिकोण से आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
0: उसके लिए,
1: एब्सोल्युटली
0: है ना। लेकिन मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ, क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिवन हो गया?
1: नहीं, गिवन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक है। मैंने ये भी पहले तो, अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को।
0: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कह सकते
1: ओम शांति।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, ढेर सारी बातों के साथ मैं यानी कि आरजे साक्षी आ जाती हूँ आपके पास लेके अपना ये प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी करती हूँ बातें। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज है संडे का दिन और संडे वाले दिन मैं आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ खास प्रोग्राम। और देखिए संडे का दिन है, रिचार्ज मॉर्निंग लेकर के आती हूँ और ढेर सारी जानकारी भी लेकर के आपके पास आ जाती हूँ। अब देखिए ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, लोगों से डिजिटली ज्यादा जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर पल पल की अपडेट देना, घंटों लैपटॉप के सामने बैठे रहना, या छुट्टी वाले दिन अपनी कोई मनपसंद मूवी देखना, सीरीज देखना, ये हम सभी को पसंद है। कभी कभी होता है कि वीकेंड्स पर रात में सैटरडे, देखिए हम क्या करते हैं, पूरी पूरी रात वेब सीरीज देखते हैं और अपना टाइम यूं निकाल देते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आदत है डिजिटली इस तरह से जुड़ना, ये कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रही है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है हमारी मेंटल हेल्थ पर आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती है कि हर टाइम हम डिजिटली एक्टिव हैं। अब इसके पीछे क्या कुछ देखिए प्रॉब्लम छुपी हो सकती है, आज इसे ये बारे में बात होने वाली है। चलिए फिलहाल आप कहीं मत जाइए, डिजिटल बर्नआउट के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, डिजिटल बर्नआउट जो है वो जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनका बिल्कुल सुकून छीन रहा है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे आज आपको हैक्स बताने वाली हूँ जो आपको रिचार्ज कर देंगे। चलिए बात करेंगे इस पर, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। आज है संडे का दिन और मैं आपके लिए खास जानकारी लेकर के आ गई हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिजिटल बर्नआउट की। कई सारे लोगों का सवाल यही रहता है कि डिजिटल बर्नआउट है क्या। तो देखिए, इसका मतलब होता है किसी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहना, इसका मतलब बर्नआउट का मतलब होता है। और ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने काम में देखिए, अगर मतलब बहुत ज्यादा लगा हुआ है और वो डिजिटल देखिए का यूज जो है वो कर रहा है, यानी कि डिजिटल मीडियम का यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से यानी कि सीधा कनेक्शन जो है उससे हो रहा है और वो लगातार काम जो है होता चला जा रहा है, तो यही है डिजिटल बर्नआउट का कनेक्शन। स्क्रीन टाइम से ये होता है। और अब सवाल ये आता है कि कैसे पता चलता है कि एक व्यक्ति डिजिटल बर्नआउट का शिकार हो चुका है, इसकी पहचान, इसके लक्षण क्या क्या है, ये सारी जानकारी आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। कई बार होता है हम पूरा पूरा दिन डिजिटल मीडियम का यूज करते हैं, आप ना चाहते हुए भी डिजिटल, देखिए आप कुछ भी हो सकता है, चाहे आप स्क्रीन टाइम आपका मोबाइल फोन में है, आप स्क्रीन के सामने अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप घर पर रील स्क्रोल कर रहे हैं, या फिर आप कुछ इम्पोर्टेंट ही क्यों ना काम कर रहे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो है कि आप डिजिटली जुड़े हुए हैं, वही है डिजिटल बर्नआउट, लगातार काम को करते रहना। और डिजिटल बर्नआउट को एक दो नहीं बल्कि कई सारे संकेतों से इसका पता लगाया जा सकता है कि कहीं कोई व्यक्ति इसका शिकार तो नहीं है। तो चलिए इसी के बारे में बात करूंगी आपसे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। आज है संडे का दिन और डिजिटल बर्नआउट के कुछ लक्षण की बात करें, संकेतों की बात करें, जैसे कि काम में दिलचस्पी खत्म हो जाना, डिप्रेशन, नींद ना आना, शरीर और मन की थकावट होना, एंजाइटी होना, सीने में दर्द की शिकायत आना और इमोशनल जो है वो सेंसिटिबल, बहुत ज़्यादा जो है वो इनसेंसिबल हो जाना, आपको इमोशनल चीज़ें फील नहीं हो रही है, और आंखों का ड्राई होना, सिर और गर्दन या कंधों में दर्द होना, फोकस में कमी होना, चिड़चिड़ापन, ये सारे डिजिटल बर्नआउट के संकेत हैं। अब में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि हम तो लग रहा है डिजिटल बर्नआउट के हम शिकार हैं। बिल्कुल आप हो सकते हैं, 90% लोग हो सकते हैं जो कि अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, उस पर घर आके काम कर रहे हैं, डिजिटली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। 90% हो सकता है लोग जो काम कर रहे हैं वो डिजिटल बर्नआउट का शिकार है, क्योंकि आजकल रेस कुछ इस तरीके की है कि भाग दौड़ी के चक्कर में, यानी कि अपने आप को प्रूव करने में या फिर देखिए आगे बढ़ने में हम अपने आप को झोंक देते हैं, सारा काम पूरा दिन पूरी रात करते रहते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस, डिजिटल बर्नआउट के हम शिकार हो जाते हैं। डिजिटल बर्नआउट से बाहर निकलना और फिर से

बॉडी और मन को आपको फुर्ती पाने के लिए कुछ खास रूटीन की जरूरत जरूर पड़ेगी। और इस रूटीन को देखिए आप कैसे फॉलो कर सकते हैं और इस रूटीन में क्या क्या है, चलिए वो सारी बातें भी बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। डिजिटल बर्न आउट की मैं बात कर रही हूं। देखिए, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा जो है आपको कम करना होगा अगर आप इसका शिकार नहीं होना चाहते या फिर बचना चाहते हैं। अब भी टाइम है, आप इससे बच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन टाइम बहुत कम करना है, खासकर छुट्टी वाले दिन जैसे संडे का दिन है, आपको डिजिटल मीडियम पे कम उपलब्ध रहना है, आपको बचना है, अवेलेबल नहीं रहना है। और साथ ही बाकी दिनों में हर थोड़े थोड़े देर में आपको एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना है स्क्रीन से। इसी के साथ 20-20-20 का रूल जो है ये फॉलो करना है। इसका मतलब होता है 20 मिनट्स में 20 सेकंड्स के लिए आपको ब्रेक लेना है और 20 फीट की दूरी आपको रखनी है। और जो आपका डेस्क है या जहां पर आप काम कर रहे हैं या अपना मोबाइल फोन है, उससे 20 फीट की आप दूरी तय कर लीजिए। पूरी तरह से स्क्रीन टाइम खत्म नहीं आप कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पूरे हफ्ते में एक बार स्क्रीन से दूरी बनाने के लिए आपको अपना मन तैयार करना है, तय कर लेना है कि आपको बिल्कुल मोबाइल फोन का इस्तेमाल या लैपटॉप अपने पीसी का इस्तेमाल नहीं करना है। इनफैक्ट देखिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से डिजिटल बर्नआउट से बाहर आया जा सकता है। तो इसके लिए डेली रूटीन में आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शामिल करनी है। रोजाना एक्सरसाइज करने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ठीक रखा जा सकता है। और इसीलिए डेली 15 से 20 मिनट की वॉक भी किसी जादू जैसा काम ही कर सकती है आपके लिए सही रहेगी। तो आपको जो है थोड़ा ध्यान देना है और बर्नआउट से आपको बचना है, यानी कि डिजिटल बर्नआउट से आपको बचना है, खुद पर ध्यान देना है, खुश रहना है, मुस्कुराना है। और साथ ही देखिए, डिजिटली आपको अवेलेबल थोड़ा कम रहना है। हफ्ते में एक दिन ऐसा तय कर लिए जहां पर आप बिल्कुल अपना मोबाइल फोन या डिजिटली आप बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहेंगे, आपको ऑफलाइन हो जाना है ताकि आप सुकून से थोड़ा सा वक्त अपने साथ बिता सकें, अपने फैमिली वालों के साथ बिता सकें, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ आप अपना टाइम निकाल सकें। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान और ज्यादा देना है। चलिए, इसी के साथ अब लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, और भी होंगी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. और इसी के साथ आज संडे का दिन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ढेर सारी जानकारी. और अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारे इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है. ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप अपना एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल फोन ले लीजिए, उसके प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना. जिसके बाद ऐप को डाउनलोड करने के बाद पॉडकास्ट सेक्शन में जाके ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस, बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट एवरग्रीन सॉन्ग्स और अपने फेवरेट आरजे को आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी. तो बस देरी किस बात की, बस डाउनलोड कीजिए ऐप और बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं. और सिर्फ ये जानकारी इंटरनेट ऐप से नहीं बल्कि हमारे सोशल मीडिया से भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी लाइव अपडेट्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी जानकारी रील्स आप देख सकेंगे और उस रील्स में बहुत सारी जानकारी, कुछ फन एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर. तो फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक जिसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. फील गुड फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए मैं ना आपके लिए खास सेगमेंट जो है देखिए खास प्रोग्राम लेकर के आ गई हूं जिसका नाम है रिचार्ज मॉर्निंग। और इसमें ढेर सारी बातें करती हूं। आज है संडे का दिन और देखिए अगर आप हमारे साथ और ज़्यादा करीब से जुड़ना चाहते हैं, फरीदाबाद से बाहर जा रहे हैं और आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हमारे साथ, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है और इसके लिए आपको अपना एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल फ़ोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, जिसके बाद बहुत ही सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस, बहुत कमाल की जानकारी और आप प्राप्त कर सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी, और साथ ही बेहतरीन खूबसूरत गाने भी आप सुन सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, इंटरनेट ऐप जो है वो डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल फ़ोन से प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाके, और उसके बाद जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो बस आपको ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक विद नेम ऑफ रेडियो मानव रचना, और इसके बाद ढेर सारी जानकारी, लाइव अपडेट्स आपको मिल सकती है वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी रहकर। तो इंटरनेट ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचता हूँ 7.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ आपके लिए खास देखिए जानकारी लेकर के आ जाती हूँ। आज है संडे का दिन और एक मेरे पास जो है संदेश आया, मैसेज आया है, और ये संदेश में मैसेज में जानना चाहती हैं हमारी जो फ्रेंड है, हमारी जो देखिए जो लिसनर है जिनका नाम है मोनिका जी। मोनिका जी काफ़ी लंबे अरसे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रोज़ाना गुड मॉर्निंग विशेस उनके हमेशा रहते हैं, और जैसी मैं स्टूडियो में आती हूँ सबसे पहले विश देख के बड़ी मेरे चेहरे पर तो बड़ी खूबसूरत सी मुस्कान आ जाती है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ मोनिका जी का सवाल क्या है। इन्होंने लिखा है कि काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, जिम जाने का टाइम नहीं मिलता है, ऐसा क्या करूँ कि एक्सरसाइज जो है उसके लिए टाइम निकाल सकूँ। तो देखिए बिजी लाइफस्टाइल में देखिए होता यह है कि इसकी वजह से ना अक्सर हमारे पास जिम जाने का टाइम नहीं बचता है, लेकिन फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आप जो है वो कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया ये तरीका है जो कम समय में ज़्यादा रिजल्ट देता है, और बिगनर्स इसे जो है वो वर्कआउट को घर पर भी आप किसे कर सकते हैं, और किसी बहुत ज़्यादा देखिए भारी भरकम इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप इसे घर पर कर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है इसे करने के लिए, यानी कि HIIT आपके हार्ट रेट को तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है और कैलरी तेज़ी से बर्न होती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 7.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। इसी के साथ देखिए, बहुत ही जरूरी है ये जान लेना कि घर पर आप कौन सी एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं, HIIT एक्सरसाइज। तो उसके लिए जंपिंग जैक, क्योंकि ये सबसे आसान और फुल बॉडी वार्म अप मूव है। ये आपके हाथ पैर

और कोर को कंधों को भी एक्टिव करता है और साथ ही इससे हार्ट रेट तुरंत बढ़ता है और शरीर जो है वो एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाता है और इसे धीमे रफ्तार से आपको शुरू करना है और धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है वो बढ़ा देनी है। इसके साथ देखिए हाई नीज आप कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें जो है वो एक जगह पर खड़े होकर घुटनों को तेजी से आप ऊपर की ओर उठा सकते हैं और ये कार्डियो का बेहतरीन रूप है और पेट की चर्बी भी कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। इससे कैलोरीज जो है ये बर्न तेजी से होती है और पैरों को भी ताकत मिलती है, जो स्ट्रेंथ है पैरों में वो बढ़ती है। इसके साथ शुरुआती लोगों के लिए देखिए स्क्वाट एक बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है, ये आपकी थाइस को, आपके देखिए ग्लूट्स को और साथ ही कोर को मजबूत बनाती है। इसे नियमित अगर आप इसे रेगुलरली स्क्वाट्स करते हैं मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है और साथ ही बॉडी को टोन करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए इसी के साथ अभी एक छोटा सा ब्रेक में लेती हूँ जिसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ देखिए मैं बात कर रही हूँ HIIT एक्सरसाइज की और क्या ज़रूरी है। देखिए आप जो है वो बट के कर्स कर सकते हैं, ये हाई नीज का उल्टा वर्जन है जिसमें एड़ियों को पीछे की ओर तेजी से हिप्स की तरफ आपको ले जाना है और ये हैमस्ट्रिंग को एक्टिव करती है और कार्डियो आपको बढ़ाती है। ये शुरुआती लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है और फैट बर्न तेजी से करती है। इसी के साथ साथ प्लैंक कर सकते हैं, यानी कि HIIT में कोर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लैंक इसमें जो है बेहतर रहेगा, तो प्लैंक एब्स, बैक, कंधे और पूरी कोर को मजबूत बनाता है और इससे बॉडी का जो स्टेमिना है वो भी बढ़ता है और बैलेंस भी बेहतर होता है। शुरुआत में 20 से 30 सेकंड्स आप होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना टाइम जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि 20 सेकंड्स तो आपको होल्ड करना ही करना है और उसके बाद धीरे धीरे आपको टाइम जो है वो बढ़ाते जाना है। इसी के साथ बात करें यहाँ पर, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लो इम्पैक्ट बर्पीज करें और बर्पीज जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्कआउट है बॉडी का। शुरुआत में लोगों के लिए इसका लो इम्पैक्ट वर्जन बेहतर है क्योंकि इसमें जंप की जगह जो है वो स्टेप बैक किया जाता है और ये फुल बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है और साथ ही पूरी बॉडी में टोन करता है पूरी बॉडी को। तो अगर आपको कुछ वीडियोस देखनी है तो आप YouTube पे देख सकते हैं, जिसके बाद आपको ये रियलाइज होगा, पता चलेगा कि क्या गलती आप कर रहे हैं। रोजाना अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या चीज़ आप नहीं कर रहे हैं जिससे आपको इस तरीके का जो बॉडी पॉस्चर है वो मिले, जो बॉडी टोन अप है वो उस तरह से मिले। चलिए इसी के साथ एक और बात आपको बता दूं, माउंटेन क्लाइंबर्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज बॉडी को स्ट्रेंथ और कार्डियो दोनों एक साथ देती है और पेट की चर्बी कम करने में और कोर मजबूत बनाने में काफ़ी मदद करती है। हार्ट रेट बढ़ाने के लिए ये परफेक्ट है। शुरुआती में लोग धीमे धीमे इसको जो है वो ड्राइव करें और जो स्पीड है उसको बाद में आप बढ़ाएं तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो देखिए ये सारी एक्सरसाइज जो हैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं HIIT एक्सरसाइजेज। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो घर में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज कीजिए जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रह सके, स्पेशली हाथ, पैर, कंधे, कोर मसल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका एक्टिव रहना। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे सा ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।
1: तोहफा तो मुझे देना चाहिए था।
2: तुमसे तोहफा मैंने ले लिया है।
1: जी मुझसे?
2: तुमसे, तुम्हारी टीचर।
1: जोकर, इसका क्या करूं?
2: इसे अपने पास रखो, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए तुम्ही को लौटा रहा हूं।
1: जी मेरे लिए?
2: देखो एक दिन राजू बड़ा होगा, लेकिन जोकर राजू ऐसा ही रहेगा, भोला मासूम। इसे जिसके हवाले करना सोच समझ कर करना। दुनिया में जोकर के साथ जो करता है

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज हमने ढेर सारी बातें जो है वो तो करी हैं, और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का। वक्त कहता है कि साक्षी इजाजत लेनी होगी, जाना होगा घर। और साथ ही देखिए मैं तो अब चली, और कल होगी आपसे मुलाकात, होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन से दूर रहिए। कोशिश कीजिए कि जितना कम टेंशन लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना कम सोचेंगे, जितना कम ओवरथिंक करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए अपना जो है वो आपको ध्यान रखना होगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और साथ ही बस हमारे साथ यानी कि रेडियो मानव रचना के साथ आपको इसी तरह से जुड़े रहना है। इंटरनेट ऐप भी आपको डाउनलोड कर लेनी है अपने मोबाइल फ़ोन पे। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, कल होगी मुलाकात, होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: योर सिटी योर रेडियो, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम।
1: वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आप लोग इस टाइम जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजना 107.8 के साथ, फील गुड फील लाइव। ये शो हमारा हर बार की तरह मैं बोलूंगा बहुत स्पेशल होने वाला है। रीज़न बीइंग, यहाँ पर आप एजुकेट होते हैं, आपको पता लगता है एग्जैक्टली हम जो बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहे हैं, कौन सी वो कंपनीज हैं, क्या क्या कर रही हैं कंपनीज, अलग अलग डोमेन, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो हम शुरुआत करते हैं अपने फॉर्मेट को ऐसे कि हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, देन वी गोना टॉक अबाउट द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर्स, हाउ इट स्टार्टेड, यूएसपी, और जो इनसाइट हमारे पास अवेलेबल है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको बताएंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, मैं इतने कहूँगा कि मैं आ चुका हूँ, आप लोग जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजना 107.8 के साथ, फील गुड फील लाइफ।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%, जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ भी करते हैं, एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक, मैं आरजी सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजेक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। सो UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज़ हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज़ हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील हाई।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूँ सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूज़र्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहाँ पर अगर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गाँव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज़ बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूँ कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुँचा दिया और वहाँ के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गाँव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहाँ के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है और टेक्स से भी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफ़ी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीज़न डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफ़ी कुछ बदला हमारी ज़िंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर ये हो रहा था आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, हर चीज़ को आप एक डाउटफुल नज़र से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफ़ी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहाँ पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहाँ पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योर टैग। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइंजी, IDFI, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग AI एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजेक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या, दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। उसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफी एडवांस हो गए हैं जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का वो इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव जो है वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव है, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

0: Dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum dirda tanum dirda tanum.
1: Welcome back. मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी है और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी। ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पर आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर 2 एंड टीयर 3 जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

मैं हूं आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोज कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो हैं वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड देन उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।

0: बिना किसी देरी के शो को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट टुडेज कंपनी. सो द नेम ऑफ दिस कंपनी इज फ्रियो, FREO. इमेजिन करिए आप एक ऐसे बैंक को जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, जहां पर लंबी लाइन नहीं लगती, जहां पर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क नहीं होता, सिंपली आपके स्मार्टफोन में रहता है, जब आप चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं. वेल एग्जैक्टली दैट इज द कंपनी, दैट इज द आइडिया बिहाइंड फ्रियो. फ्रियो एक इंडियन फिनटेक कंपनी है जो अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब करती है, वी आर क्रेडिट लेड नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म. यहां पर आपको डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ऑफर की जाती है. ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन. डिजिटल सेविंग्स का आपको सॉल्यूशन यहां पर मिलता है, पर्सनल क्रेडिट लाइन यहां पर आपको मिलता है, क्रेडिट कार्ड्स आपको मिलते हैं, क्रेडिट स्कोर ट्रैकिंग आपको मिलता है, क्रेडिट ऑन यूपीआई भी आपको मिलता है, एंड इसके अलावा और इनके प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मनी लैंड करने में हेल्प करते हैं. सो यहां पर एक जो मिशन ये लेकर के चल रहे हैं वो ये है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ईजी बनाना, फास्ट बनाना, ज्यादा एक्सेसिबल बनाना, और इंडिया का जो डिजिटल पॉपुलेशन जिसमें ग्रोथ हो रही है उसमें अपना योगदान देना. Now, how exactly it started? So the story of Frio actually started with another fintech product called MoneyTap. देखिए 2015-16 में इंडिया ने बहुत रैपिड एक ग्रोथ देखी, रैपिडली हम लोग चेंज हुए क्योंकि स्मार्टफोन अफोर्डेबल हो गए थे, इंटरनेट हमारे फोन में आ चुका था, डिजिटल पेमेंट जो है वो ग्रो कर रही थी, बट देर वॉज अ गैप कि पर्सनल लोन अभी भी स्लो था, स्ट्रेसफुल था. तो बहुत सारे जो एग्जैक्टली यंग प्रोफेशनल थे उस टाइम पे, उन्हें ट्रेडिशनल मेथड समझ नहीं आते थे कि बैंक जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अप्रूवल का वेट करो, उसके बाद लोन अमाउंट जो है वो फिक्स करो. तो यहाँ पर फाउंडर्स को समझ में आया कि अगर किसी ने 2 लाख रुपए का लोन लेना है, ठीक है, एंड उसके लिए उसको इतना पेपर वर्क नहीं करना है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर किसी को 20,000 रुपए का लोन लेना है, ठीक है, तो मानकर चलो यार कितना अमाउंट है, बट उसके लिए 1 लाख रुपए क्यों ले वो, क्यों कोई मिनिमम लिमिट हो, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, ठीक है. उसके बाद फिर इन्होंने क्रेडिट लाइन के लिए एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया. मनी अवेलेबल थी वेन एवर नीडेड, ठीक है, जहां पर कस्टमर्स उसको यूज कर सकते थे जब भी उन्हें जरूरत थी. उस प्लेटफॉर्म का नाम था MoneyTap. इसको बनाने के बाद डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उसको बना दिया, टीम ने अपने विजन को एक्सपेंड किया. दे रियलाइज कि पीपल डोंट जस्ट नीड लोन्स, दे नीड एन एंटायर डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जहां पर 2021 में MoneyTap को इन्होंने इवॉल्व करके फ्रियो बना दिया. सो बेसिकली फ्रियो स्टार्ट हुई तो नहीं बोलूंगा, बट ट्रांसफॉर्म हुई थी MoneyTap इनटू फ्रियो इन 2021. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट, दैट इज द स्टोरी बिहाइंड इट. नाउ लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव.
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए. डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छुपकूद करेगा तो मर जाएगा. क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है. ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं.

धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंजीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरत यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं। मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं। चाहिए

वेलकम बैक, आई आर्जे सागर, शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। एंड आई एम जस्ट होपिंग आपको मजा आ रहा है। यहाँ तक जितनी केस स्टडी आपको बताई है, जितनी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया है, कंपनी के बारे में आपको बताया है, आपको समझ भी आई है और आपको अच्छा भी लग रहा है। बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। पहला नाम कुणाल वर्मा। कुणाल वर्मा इज द को फाउंडर एंड CEO ऑफ फ्रियो। बिफोर बिल्डिंग फ्रियो उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस था टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट बिल्डिंग में, कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेस में। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या जो कॉम्प्लिकेटेड कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके लोगों को दे सकते हैं ताकि उनके लिए यूज करना आसान हो। हिज बिगेस्ट बिलीफ इज टेक्नोलॉजी शुड नॉट जस्ट डिजिटाइज बैंकिंग, इट शुड रीडिजाइन द एक्सपीरियंस। एंड एग्जैक्टली वही ये कंपनी कर रही है। दूसरा नाम आता है अनुज कैकर। अनुज कैकर जो हैं वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एलुमनाई हैं। इनके करियर की अगर बात करें, बिफोर एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने बिजनेस में, मार्केटिंग

में स्केलिंग करने में कस्टमर प्रोडक्ट्स को, उसमें अपना जो है एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है। आईएसबी में भी इनको रिकॉग्नाइज किया गया था एज एन आईएसबी यंग लीडर फॉर लीडरशिप कंट्रीब्यूशन। मतलब कॉलेज टाइम से ही लीडरशिप क्वालिटी थी और इनके कॉलेज ने ही उसको आइडेंटिफाई किया, इनको रिकॉग्नाइज किया, इनको रिवॉर्ड भी मिला था उसको लेकर के। सो इनका फोकस फ्रियो में रहा है कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस ग्रोथ एंड मेकिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट सिंपलर। तीसरा नाम आता है बाला पार्थसारथी। बाला जो हैं वो एकदम आप कह सकते हैं टेक की दुनिया से आते हैं, स्टार्टअप एक्सपीरियंस से आते हैं। सो बिफोर फ्रियो ही वाज ऑलरेडी डूइंग रियली वेल, ही वाज ऑलरेडी नोन इन इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड कंट्रीब्यूटेड एक्सपर्टीज जो इनकी थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, टेक प्लेटफॉर्म्स में, डिजिटल बिजनेसेस को स्केल कैसे करना है। तो यहां पर ये तीन लोग मिले तब जाकर के कंपनी स्टार्ट हुई। सो कुणाल लेकर के आए प्रोडक्ट एंड बिजनेस विजन, अनुज लेकर के आए कंज्यूमर स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ, एंड बाला लेकर के आए टेक एक्सपर्टीज। तो तीन अलग अलग डोमेन्स के लोग आकर के मिलते हैं एक जगह पर सेम विजन के साथ, तब जाकर के कहीं कोई कंपनी ऐसा कुछ कर पाती है, बिकॉज यू कांट डू एवरीथिंग एट वंस। सो यू नीड अ प्रॉपर टीम, यू नीड पीपल जो आपकी तरह सोचते हो, आपकी तरह देखते हो। That's how it started. Okay, got music break. Us ke baad show ko aage badhayenge. Stay tuned, feel good, feel live.

वंस अगेन वेलकम बैक। अगर कोई फीडबैक है तो 8010781078 पर जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स टेक द शो अहेड। सो व्हाट एग्जैक्टली वाज द प्रॉब्लम दैट फ्रियो वाज ट्राइंग टू सॉल्व एट दैट टाइम? तो मैंने बताया कि फाउंडर्स को यहाँ पर एक मेजर गैप नजर में आया कि ट्रेडिशनल बैंकिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। अभी भी बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगी सेम प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड है वो बहुत। और जो यंग इंडियंस हैं उनके पास भैया अब फोन आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, स्पीड की आदत लग चुकी है, तो उन्हें चाहिए स्पीड एंड कन्वीनियंस। दूसरा है क्रेडिट एक्सेस जो है बहुत लिमिटेड था। बहुत सारे ऐसे भी वर्किंग इंडियंस थे जिनके पास एक्सेस ही नहीं था, फ्लेक्सिबल लोन्स का ऑप्शन ही नहीं था मार्केट में। 2 लाख रुपए लो, 1 लाख रुपए लो, अगर किसी को 20,000 रुपए या 15,000 की जरूरत है, सॉरी कोई ऑप्शन नहीं है। एंड तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत स्कैटर्ड थे। ठीक है, एक ऐप आपको बैंकिंग बता रही है, दूसरी ऐप आपको लोन के बारे में बात कर रही है, तीसरी ऐप आपको कार्ड के बारे में बता रही है। इन्होंने क्या किया, सिंपल उसको कंपाइल करके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के आए। तो यहाँ पर बिजनेस मॉडल भी एग्जैक्टली इसी एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करता है। पहला है इनका लैंडिंग पार्टनरशिप, ये जो है काफ़ी सारे रेगुलेटेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ काम करते हैं ताकि लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड कर पाएं, जो बैंक्स हैं प्रॉपर रेगुलेटेड। उसके बाद सेकंड आता है डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कस्टमर जो हैं वो फ्रियो ऐप इकोसिस्टम को यूज़ करते हैं फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड तीसरा आता है टेक प्लस डाटा, कंपनी जो है डिजिटल प्रोसेस जो है वो यूज़ करती है टू इम्प्रूव रिस्क असेसमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड फास्टर अप्रूवल्स, ताकि किसी को वेट ना करना पड़े। अगर वेट नहीं करना पड़ेगा, स्मूथ हो जाएगा सर, तो बाय डिफॉल्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। साथ साथ ये रिस्क भी यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं अपने टेक की मदद से कि सामने वाला इंसान जिसको हम लोन दे रहे हैं कि क्या उसको रीपे कर पाएगा या नहीं। हालांकि ट्रेडिशनली ये जो चीज़ थी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसमें बहुत सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, ऑफलाइन लोग जाते थे घरों में जा के वेरीफाई करते थे, तब जाकर के लोन्स कहीं अप्रूव हुआ करते थे। बट यहाँ पर इस कंपनी ने इस एक प्रॉब्लम को भी फिक्स किया। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए हैं। लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। एंड वी गोना टॉक अबाउट यूएसपीज। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और आप लोग जुड़े हुए रेडियो मधुबन 107.8 के साथ। फ्रियो हमारी आज की कंपनी है, उसकी यूएसपीज की बात करेंगे। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, पहला है क्रेडिट फर्स्ट नियो बैंक अप्रोच। बहुत सारी जो फिनटेक एप्लीकेशन या कंपनीज आपको नजर आती हैं, वो पेमेंट से स्टार्ट होती हैं, बट इस कंपनी ने क्रेडिट से अपना स्टार्ट किया। इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो किसी को, मनी का एक्सेस दे रहे हो आप लोगों को। ये बहुत कुछ डिफरेंशिएट करता है, कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताता है। दूसरा आता है फ्लेक्सिबल क्रेडिट। सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग कस्टमर्स इनटू ट्रेडिशनल लोन्स, तो यहां पर इन्होंने कस्टमर को एक्सेस दिया, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट जो आपको चाहिए वो आप ले लीजिए, और जब आप पे कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपनी यूजेज के हिसाब से, आप उसको पे कर दीजिएगा। देन डिजिटल एक्सपीरियंस, यहां पर गोल था बैंकिंग शुड फील लाइक यूजिंग अ मॉडर्न ऐप, नॉट डीलिंग विद पेपर वर्क एंड यू नो गोइंग थ्रू दोज क्यूज एंड लाइंस एंड फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स दे आर जस्ट वेटिंग। नेक्स्ट आता है यहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर दे दिए, सेविंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट इकोसिस्टम, तो सब कुछ एक जगह पर मिल गया। तो ये मैंने पहले भी बोला था कि यंगस्टर्स को चाहिए स्पीड एंड कन्वीनियंस, दोनों चीजें इन्होंने मिला करके दे दी। और याद रखिएगा, कस्टमर्स अब उस जमाने में जी रहे हैं जहां पर अब क्विक कॉमर्स आ चुका है, 10 मिनट 15 मिनट में आपके घर पे सब कुछ पहुंच रहा है, और लोग उसको मतलब बैक टू बैक यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो मंगवा रहे हैं। ये दिखाता है हमारे एटीट्यूड को, अगर उसकी आदत लग गई है। फॉर एग्जांपल, अगर वो ग्रॉसरी के लिए वेट नहीं कर रहा है, वो 10 मिनट में आ रही है, बाकी चीज़ों के लिए वेट नहीं कर रहा है, वो 10 मिनट में आ रही है, तो वो लोन के लिए एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन वेट नहीं करना चाहेगा, करना पड़ेगा अगर ऑप्शन नहीं है तो। बट अगर कोई इंसान आता है और आगे बोलता है कि आपको 2 दिन में लोन अप्रूव हो जाएगा, तो वो उसकी तरफ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि स्पीड की आदत हमें लग चुकी है। कस्टमर शिफ्ट हो रहा है, कस्टमर चेंज हो रहा है, हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी एज वेल, कि हम बहुत इवॉल्व हो रहे हैं अच्छे से, बहुत डिजिटल वर्ल्ड में हमने जो कदम रखा है, बहुत तेजी से हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है किसी स्टार्टअप के लिए। सो या दैट इज, फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द की ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ फ्रियो। पहला है राइजिंग ऑफ यू नो इंटरनेट, राइज ऑफ डिजिटल इंडिया। करोड़ों लोग हैं भैया जो UPI के साथ कंफर्टेबल हो गए, स्मार्टफोन्स के साथ कंफर्टेबल हो गए, डिजिटल KYC होने लगी। तो सिंपल सा फिनोमिना है, ऑलरेडी जहाँ पर लोग हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग हैं, जहाँ पर करोड़ों लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको वहाँ पर जाकर के अपनी दुकान लगानी है, और ऐसी दुकान लगानी है जिनकी उसको ज़रूरत है, कस्टमर बेस को। सिंपल। सेकंड आता है यंग वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया के पास करोड़ों लोग हैं जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको फ्लेक्सिबल टूल्स चाहिए, स्पीड चाहिए, एक्सेसिबिलिटी चाहिए। ये कंपनी को समझ में आ गया एंड दे स्टार्टेड इट। तीसरा आता है अल्टरनेटिव क्रेडिट मॉडल्स। जो ट्रेडिशनल क्रेडिट इवैल्यूएशन होता था, वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स को रिजेक्ट कर दिया जाता था, बट टेक की मदद से फिनटेक कंपनीज यूजर्स को डिफरेंटली समझते हैं, किसी एक ब्रैकेट में नहीं डालते हैं। एंड उसके बाद उनका पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, मतलब बड़े बड़े बैंक्स के साथ पार्टनरशिप है जिनकी मदद से ये क्रेडिट दे पाते हैं। सो दीज आर द की ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ फ्रियो, राइज ऑफ डिजिटल इंडिया, यंग वर्किंग पॉपुलेशन, ऑल्टरनेटिव क्रेडिट मॉडल्स एंड पार्टनरशिप्स। सही टाइम पर सही चीज इन्होंने स्टार्ट कर दी। सो कभी बैंकिंग का मतलब होता था भैया एक बिल्डिंग, एक काउंटर, एक लंबी सी लाइन, लेकिन नए भारत में बैंकिंग का एक्सपीरियंस बन रहा है। लोगों को एक्सपीरियंस बेस्ड बैंकिंग पसंद है अब। और फ्रियो की कहानी में बताती है कि स्टार्टअप सिर्फ नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, वो पुरानी प्रॉब्लम्स को नए नजरिए से देखते हैं। तीन फाउंडर्स ने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर दुनिया डिजिटल हो रही है तो बैंकिंग अभी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है बॉस? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, फ्रियो। अब आज की केस स्टडी आपको कैसी लगी मुझे बताइए 8010781078 पर। फिलहाल वक्त है शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का, फिर मुलाकात होगी। उम्मीद कर रहा हूँ केस स्टडी पसंद आई होगी। कोई फीडबैक है तो 8010781078 ये हमारा नंबर है, बताइए। नाउ दिस इज द टाइम टू साइन ऑफ। नाउ योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ।
1: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और टाइम हो गया है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और हर हफ्ते की तरह आज भी हम बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ के बारे में। लेकिन हेल्थ किस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ। ऑफिस की पार्टी हो या फिर घर का कोई फंक्शन, सबसे ज्यादा अगर चर्चा होती है ना, तो ये इस चीज की होती है कि भाई खाने पीने का तो ठीक है, लेकिन अलग से क्या अरेंजमेंट है। जी हाँ, अलग से अरेंजमेंट, जो आपने शादियों में कभी देखा होगा कि गाड़ी की डिक्की खोलकर भी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो कई बार डीजे पर भी ग्लास लेकर डांस कर रहे होते हैं। कई बार ऑफिस में जब आफ्टर ऑफिस पार्टी होती है तो वहां पर भी कुछ जाम चल ही रहे होते हैं। बट ऐसे ये जो सारी आदतें हैं, क्या ये सिर्फ महज आदतें कहलाई जाती हैं या फिर ये अब लत बन चुकी है, यानी एडिक्शन बन चुकी है? और इस एडिक्शन से कैसे बचना होता है? क्या ये कभी कभी सोशल गैदरिंग्स में थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेना एक नॉर्मल चीज है, या फिर ये धीरे धीरे बड़ा एडिक्शन बन के आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या इसका इफेक्ट सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर होता है या फिर मेंटल हेल्थ पर भी कहीं ना कहीं इसका कुछ असर होता है? ऐसे कुछ सवाल, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि शर्मा, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर सुरभि, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
3: थैंक यू वेरी मच।
2: सो डॉक्टर सुरभि, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये एडिक्शन बेसिकली क्या होता है, और खासतौर पर से अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर हमने सुना है लोगों को बोलते हुए कि ये आदत नहीं है, मैं तो कभी कभी ले लेता हूँ।
3: सो ये लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, एडिक्शन है या ओकेजनल यूज़ है। ओकेजनल यूज़ मतलब सच में ओकेजनल, कभी वंस इन अ वाइल, महीने दो महीने में एक बार, थोड़ा सा अमाउंट जो कि फंक्शनिंग में कोई अफेक्ट नहीं करता, नेक्स्ट डे को बर्बाद नहीं करता।
2: यानी अगर आप रात को पी रहे हैं तो इतना लें कि आप अपने होश में रहें, लड़खड़ाएं नहीं, अपने घर वालों के साथ या आसपास लोगों के साथ कुछ ऐसी बहकी बहकी बातें ना करें जिससे कि उन्हें बहुत अजीब सा फील ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अगर रात को ड्रिंक कर रहे हैं और अगले दिन आप नॉर्मल हैं, आपका बिहेवियर एकदम ठीक है और आप समय पर उठकर अपने सारे काम सही तरीके से करें, तो ये एडिक्शन नहीं है। लेकिन डॉक्टर सुरभि, सोशल ड्रिंकिंग और एडिक्शन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस माने हम? क्योंकि एडिक्शन जो होता है वो जनरली लोग ये कहते हैं डेली जो लोग कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, लेकिन सोशल गैदरिंग्स में अगर सोशल गैदरिंग ज़्यादा हो रही हैं, हफ्ते में दो हो रही हैं, और फिर उसमें अगर कुछ लिया जा रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है, तो क्या वो एडिक्शन में आ जाता है?
3: सो एडिक्शन कहने के लिए प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले टॉलरेंस डेवलप हो जाना, जो पहले नशा एक पैग में हो जाता था, अब उसको अटेन करने के लिए दो या तीन पैग या ज़्यादा लेने पड़ना। उसके बाद आता है विड्रॉल, कभी कभी लेते हैं तो उनको विड्रॉल नहीं आता। विड्रॉल क्या होता है कि जब बॉडी से अल्कोहल नेक्स्ट डे खत्म हुई है, तब हाथों में कंपन होना, वॉमिटिंग जैसा मन करना, सर दर्द होना, तबीयत बिगड़ी हुई लगना, ये सब विड्रॉल्स के लक्षण होते हैं। ये माइल्ड विड्रॉल्स हैं, सीवियर विड्रॉल्स में कई बार तो लोगों को सीजर भी आ जाता है।
2: अच्छा, मतलब अगर आपने रात को ड्रिंक किया और अगले दिन आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब विड्रॉल हो रहा है, और वो आपकी बॉडी समझ नहीं पा रही है, और या आपके साथ वो सब कुछ अजीब अजीब इसलिए हो रहा है कि आपने कल रात को ज्यादा ले ली थी, इस वजह से। तो ये बहुत कॉमन सी चीजें होती हैं जो हमने अक्सर देखा है कि लोगों को रात को ड्रिंक करने के बाद सुबह उसके कुछ इफेक्ट्स रह जाते हैं। सो वो ये इफेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिजिकल हेल्थ तो खराब करती है अल्कोहल, मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन कैसे ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज मेंटल हेल्थ के बारे में भी। और हमारे साथ डॉक्टर सुरभि शर्मा हैं, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। अगर आपके कुछ सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत सी बातें चल रही हैं आप ही की हेल्थ के बारे में, और हेल्थ में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन के बारे में बात करनी जरूरी है, जहां पर एल्कोहल एडिक्शन एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया भर में है। क्योंकि अल्कोहल एक ऐसा पेय पदार्थ है जो आपकी बॉडी आपके दिमाग दोनों को ख़राब करने में पूरी ताकत रखता है, अगर सही तरीके से ना लिया जाए या फिर सही मात्रा में ना लिया जाए। बहुत ज़्यादा एडिक्शन होने पर हमने अक्सर लोगों को देखा है कि घर के घर पूरे तबाह हो जाते हैं, लोग गलत कदम उठा लेते हैं, बहुत सारे लोग नशे में आकर कभी कुछ ऐसा कर लेते हैं जिनसे उनकी जान को खतरा हो जाता है, चाहे वो ड्राइविंग हो या फिर सुसाइड, ऐसे बहुत से मामले हमने देखे भी हैं। लेकिन ये एडिक्शन आखिर एडिक्शन बनता है तो किस समय पर हमें ये समझना चाहिए कि एडिक्शन बन रहा है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये जानना जरूरी है। डॉक्टर सुरभि शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर सुरभि, अर्ली साइंस की बात मैं जानना चाहती हूँ। अब एक व्यक्ति ने अपनी 18-19 साल की उम्र में पीना शुरू किया अल्कोहल कंजम्पशन, और शुरुआत में उसने बियर पी, उसके बाद धीरे धीरे विस्की की तरफ आया जो कि थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाई जाती है। अब जब ये चीज़ें आप शुरू कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आजकल तो वैसे भी स्टेटस सिंबल कहलाया जाता है कि आपने ड्रिंक की है तो आप उस एक पर्टिकुलर लेवल के लोग हैं, आप एक पार्टी में, या कई लोग कहते हैं कि बिजनेस के लिए करना ज़रूरी है या सर्कल के लिए करना ज़रूरी है, कई लोग कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत है इसलिए पीना ज़रूरी है। सो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शुरुआत के दौर में जब आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार पीते हैं, तो धीरे धीरे इसके एडिक्शन के साइंस क्या होते हैं, क्या हफ्ते 15 दिन एक महीने में एक बार पीने से ये एडिक्शन की तरफ बढ़ सकता है?
1: बिल्कुल बढ़ सकता है। लोग हफ्ते या महीने में एक बार पीना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी बढ़ता जाता है, महीने से एक हफ्ता, हफ्ते में फिर 2 बार 3 बार 4 बार, ये ऐसे बढ़ता जाता है। प्लस द अमाउंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एक पैक से 2 पैक, 2 पैक से 1 पाइंट, 1 पाइंट से 1 बॉटल, वो कब बदल जाता है पता भी नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि मेरा कैपेसिटी बढ़ गया है, बट वो एक्चुअली टॉलरेंस डेवलप हो रहा होता है। टॉलरेंस मतलब जो नशा या जो इफेक्ट माइंड को एक पैक 30 ml 60 ml में आता था, अब वो 180 ml में भी नहीं आता है, एंड पीपल कीप क्रेविंग फॉर दैट। वो उस स्टार्टिंग वाले इफेक्ट को अटेन करना चाहते हैं, दैट लीड्स टू टॉलरेंस। उसके बाद अगले दिन या अल्कोहल बॉडी से निकलते ही विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, लाइक हेडेक, ट्रेमर, नोशिया, वॉमिटिंग, सीजर आ जाना, या फिर कई बार सीवियर चीज़ में बहुत ज़्यादा अजीब बातें सुनाई देने लगना, कुछ कुछ दिखाई देने लगना, ऐसा महसूस होना कि मैं पागल हो रहा हूँ। एंड एक्चुअली पीपल कीप हाइडिंग इट, दे डोंट टेल इट बिकॉज दे फील कि अरे अब लोग मुझे कुछ कहेंगे। बहुत जगह लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने काम, अपना अकेडमिक्स को छोड़ के अल्कोहल की एक प्रायोरिटी बना लेते हैं कि बाकी काम इंतज़ार कर सकता है लेकिन अल्कोहल लेना ज़रूरी है। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं, ऐसा बिहेवियर पैटर्न आ रहा है, तो फिर ये डिपेंडेंस के साइंस हैं।
0: बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, वो जनरली कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ख़ासतौर पर से यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये वाइन लेना शाम के वक्त या डिनर के साथ बहुत कॉमन है, विच इज़ क्वाइट कॉमन इन यूरोप। और उसको देखकर इंडिया में भी ये कल्चर धीरे धीरे शुरू हो गया, और अब जो वाइन का कंजम्पशन है वो बहुत एलीट क्लास में रहने के साथ साथ मिडिल क्लास में भी पहुंच रहा है, लोग लेते हैं वाइन। तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये वाइन भी क्या इसी कैटेगरी में आती है, ये भी एडिक्शन की कैटेगरी में आ जाती है?
1: चाहे वाइन हो, चाहे बियर हो, चाहे विस्की हो, रम हो, वॉडका हो, ये सब सेम कैटेगरीज हैं। द अमाउंट, द परसेंट ऑफ अल्कोहल कंटेंट में वेरी, बट ये सब अल्कोहल हैं।
0: और अगर आप डेली इसको ले रहे हैं या फिर कभी कभी भी ले रहे हैं, तो ये एडिक्शन की तरफ बढ़ सकता है। डेली तो एडिक्शन होता ही है, लेकिन कभी कभी भी ले रहे हैं तो इसका जो एक कहते हैं ना कि एक चार्म होता है, या फिर इसका जो एक क्रेज़ होता है, वो धीरे धीरे आपको एडिक्शन की तरफ ले आता है। क्योंकि जो चीज़ आपको हाई देती है वो आपको अच्छी लगती है, और आप उसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होते हैं और उसकी आदत बन जाती है। अब ये आदत कैसे छुड़वानी है ये भी जानना ज़रूरी है, और इसका मेंटली क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ख़ासतौर पर से यंग जनरेशन पे, ये हम जानना चाहेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। यंग जनरेशन की बात करेंगे, बच्चे बहुत लेते हैं आजकल।

0: प्रसन्न
1: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातें चल रही हैं अल्कोहल एडिक्शन के बारे में, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं सभी के साथ जुड़ा होता है। या तो आपके घर में कोई एडिक्ट होगा या फिर आपने किसी को देखा होगा, और बहुत सारे केसेस में तो बहुत सारी दवाइयां भी लोग लेते हैं। बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र यानी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खुले हुए हैं हमारे देश में और पूरी दुनिया में भी, लेकिन ये एक एडिक्शन ऐसा है जो बहुत जानलेवा साबित हो रहा है। इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी खास मेहमान हैं डॉक्टर सुरभि शर्मा, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर सुरभि, यंगस्टर्स के बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश जो है वो युवाओं का देश कहलाया जाता है, लेकिन युवा जो है वो अब थोड़े बदल गए हैं, जेन जी कहलाए जा रहे हैं। तो जनरेशन जी के बारे में अगर हम बात करते तो यहाँ पर एल्कोहल लेना बहुत कॉमन होता जा रहा है। बच्चे जो हैं, आप व्लॉग्स देखें या फिर आप रील्स देखें, आप वीडियोस देखें या वेब सीरीज देखें, इट्स क्वाइट कॉमन कि बच्चे जो हैं वो 17-18 साल की एज में ही ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत वही बियर से होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है और बाकी चीज़ों की तरफ भी चली जाती है। तो बच्चे यंगस्टर्स इतना एल्कोहल कंजम्पशन क्यों करें, सिर्फ फैशन स्टेटमेंट या कुछ और?
2: बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैशन स्टेटमेंट यस, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस हाँ, कॉलेज में आते ही दे थिंक कि हमारा पेरेंटल रिस्ट्रिक्शन कम हो गया एंड दे वांट टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, दैट बिकम्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। वो फ्री फील करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम अल्कोहल लेंगे तो हम कूल साबित होंगे या हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कई बच्चों को होता है कि नॉर्मल स्टेट में अपनी बात एक्सप्रेस करने में बहुत हेजिटेशन होती है, बट अल्कोहल पीने के बाद वो सोचते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब मैं बेझिझक कुछ भी कह सकता हूँ, कर सकता हूँ, दे फील गुड अबाउट इट। दैट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि वो बार बार अल्कोहल यूज़ करते हैं। बाकी कुछ लोग नहीं भी करना चाहते थे, उनके अपने फ्रेंड्स होते हैं, वो सब कर रहे होते हैं, और अगर वो पर्टिकुलर बच्चा ना करे तो उनको लेफ्ट आउट फील होता है, तो टू फील बिलोंग टू द ग्रुप People consume alcohol.
1: Absolutely. और ये बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, स्पेशली मीडिया में या बिजनेस जब आप करते हैं कि नहीं नहीं हमें कॉन्वर्सेशंस के लिए चाहिए होता है, हमें बैठकर बात करनी है, डील्स करनी है और उसके लिए चाहिए होता है। मीडिया में अक्सर लोग कहते हैं कि इट्स क्वाइट कॉमन, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो ये हमने बहुत लोगों को देखा है। अब बहाना कोई भी हो पर आदत तो गलत है, और इस आदत के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्या अल्कोहल के एडिक्शन को और बढ़ा सकता है?
2: ये दोनों तरफ चलता है, डिप्रेशन एंग्जाइटी अल्कोहल की तरफ आकर्षित करता है हाँ। लेकिन अगर ये सब ना भी हो, अल्कोहल खुद ब खुद नॉर्मली स्टार्ट किया हो, अल्कोहल पीने के कारण भी एंग्जाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस हो जाता है एंड बढ़ जाता है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो शुरुआत करी थी उन्होंने कि उनकी एंग्जाइटी उनकी घबराहट कम हो जाती है अल्कोहल पीने से, बट उसके बाद ऐसा हुआ कि अल्कोहल पिए बिना उनका दिन ही नहीं कटता, इतनी ज़्यादा घबराहट बढ़ चुकी होती है उनकी। तो वो ट्रीटमेंट शुरू किया था उन्हें अल्कोहल लेने से और फिर वो अल्कोहल के आदी ही हो गए। तो ये बोथ वेज चलता है,
1: मतलब आप अगर डिप्रेशन में हैं तो अल्कोहल लेंगे और अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो और डिप्रेशन में चले जाएंगे।
2: राइट,
1: ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ अल्कोहल से दूरी बनाइए। आपको अट्रैक्ट ज़रूर करेगी, क्योंकि कुछ बुरी चीज़ों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। डॉक्टर, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मेडिकेशन पर होते हैं और उसके साथ साथ वो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है?
2: बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है कुछ केसेस में। आइडियली अल्कोहल एंड मेडिसिंस को साथ में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है बिटवीन अल्कोहल एंड मेडिसिन, चाहे वो कोई बुखार की दवाई हो या फिर कोई एंटीबायोटिक, तो मिक्स तो नहीं करना चाहिए।
1: मिक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बॉडी में एक अलग ही रिएक्शन होता है जो जानलेवा साबित हो सकता है। और भी बहुत से सवाल हैं जो अल्कोहल के एडिक्शन के बारे में है, कि आखिर इसको छुड़वाने के लिए क्या कुछ थेरेपीज़ या फिर क्या काउंसलिंग सेशंस होते हैं, ये जानेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके इस पॉडकास्ट को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। बस डाउनलोड कीजिए रेडियो मानव रचना ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको डॉक्टर सुरभि के साथ हुई ये सारी बातचीत मिल जाएगी। वक्त है अभी एक छोटे से

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा के साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। एल्कोहल एडिक्शन से जुड़ी हुई जानकारी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये स्टैट्यूटरी वार्निंग सबने देखी है, लेकिन फिर भी शराब एक ऐसा पेय पदार्थ है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाने वाला बन जाता है। कभी कभी ज्यादा, कभी कभी थोड़ा सा कम रह जाता है। यानी जितना आप अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए दूध कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लगभग आसपास ही कहीं ना कहीं अल्कोहल का भी कंजम्पशन हो रहा है। मौका चाहे गम का हो या खुशी का हो, इंसान कहीं ना कहीं इससे जुड़ ही जाता है। यानी पीने का सिर्फ बहाना चाहिए, लेकिन ये बहाना आपकी हेल्थ को कितना खराब कर रहा है इसके बारे में शायद आपने इत्मीनान से नहीं सोचा होगा। अगर सोचा है तो फिर सोच कर अनदेखा करने वाली ये आदत बहुत खतरनाक हो सकती है। हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सुरभि शर्मा, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्कोहल एडिक्शन वाकई एडिक्शन है या फिर ये कि डिजीज बन चुका है। डॉक्टर सुरभि, क्या कहना चाहेंगे, अल्कोहल ये सिर्फ एडिक्शन है या फिर वाकई एक बीमारी बन चुकी है, क्योंकि इससे बहुत से घर तबाह होते देखे हमने।
1: जिस मोमेंट पे एडिक्शन बन गया है, ये बीमारी ही है। एडिक्शन इज इक्वल टू बीमारी, और ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि विल पावर से छूट जाएगी, मेरे को आदत नहीं है, मैं तो जब चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ, बट ये मिथ है। इलाज लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट के बिना खुद से छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर रहा है, ब्रेन डैमेज, लिवर, किडनी डैमेज, मांसपेशियों का डैमेज, न्यूरॉन्स का डैमेज, उसके अलावा मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन साइकोटिक सिम्टम्स, नींद की दिक्कत, ये सब अल्कोहल करता है। अब किसके पास जाएं? अल्कोहल छुड़ाने के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। अल्कोहल के कारण अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो गई है कि लिवर खराब हो गया है या किडनी का दिक्कत आ गई है, तो फिर फिजिशियन के पास जाना है, रिस्पेक्टिव डॉक्टर के पास जाना है। बट इवेंचुअली लिवर, किडनी, मांसपेशियों का ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी अगर आप अल्कोहल नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर ये विशेष साइकिल बन जाएगा। अल्कोहल छोड़ने पर ही फुल ट्रीटमेंट होता है।
0: यानी छोड़ना ही पड़ेगा। अब मैं इसमें आपसे जानना चाहती हूँ कि थेरेपीज क्या होती हैं, एज अ साइकियाट्रिस्ट आप क्या सजेस्ट करती हैं, पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा क्या होता है, और अगर कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, उसको ठीक होने में कितना समय लगेगा, यानी विड्रॉल सिम्टम्स जो होंगे वो क्या होंगे, और कितना समय ले जाता है ये सब कुछ?
1: सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप तो एक्सेप्टेंस होता है। जब इंसान ये मानने लग जाए कि हाँ, अल्कोहल पीना, दारू पीना एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मुझे ठीक करना है, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टू रिकवरी। उसके बाद बहुत सारी थेरेपीज, बोथ दवाई एंड काउंसलिंग होते हैं, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, या फिर बहुत सारी दवाइयाँ जो अल्कोहल का क्रेविंग कम करने के लिए या विड्रॉल्स को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, लंबा मतलब फ्यू मंथ्स और अ ईयर, बट दैट डिपेंड्स इंसान पर कि वो कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस सीवियरिटी ऑफ इलनेस से जूझ रहा है, उन सब चीज़ों पर ड्यूरेशन डिपेंड करता है।
0: यानी एक ट्रीटमेंट जो है वो 6 महीने तक आसपास या फिर सालों तक चल सकता है। इसमें डॉक्टर सुरभि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फैमिली का कितना बड़ा रोल होता है? कई बार पेशेंट खुद छोड़ना चाहता है, पर फैमिली शायद उसकी तरफ कह सकते हैं इमोशनली इतना अटैच नहीं होता कि उसे लगता है कि किसके लिए छोड़ूं। लेकिन दूसरी तरफ कई बार ये होता है कि फैमिली चाहती है कि वो ना ड्रिंक करे और वो ड्रिंक कर रहा होता है। सो फैमिली का रोल क्या आता है इसमें?
1: एक्चुअली फैमिली का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बोथ वेज, नशा बढ़ाने में भी या नशा छुड़ाने में भी। कई बार होता है इनेबलिंग बिहेवियर कि वो इंसान का अल्कोहल यूज़ को मिनिमाइज करते जाते हैं। अरे दारू नहीं पिएगा तो बीमार पड़ जाएगा, ये ले पैसे ले ले तो दारू पी ले ठीक हो जाएगा, या नहीं नहीं मैम, ये तो सिर्फ नींद की दिक्कत के लिए ही दारू पीता है, इसको बीमारी नहीं है, ऐसे मिनिमाइज करे जाते हैं। या फिर बहुत सारे फैमिलीज क्रिटिकल कॉमेंट्स कि इसके बस के तो कुछ नहीं है, ये तो जानबूझ के करता है या इसकी आदत ही बिगड़ी हुई है, ऐसे क्रिटिकल कमेंट्स करते हैं। बोथ आर हार्मफुल फॉर द पेशेंट। एक वार्म सपोर्टिव एनवायरनमेंट फैमिली की तरफ से बहुत ज़रूरी होता है अल्कोहल छुड़ाने के लिए।
0: अब अल्कोहल के बारे में तो डॉक्टर बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या अल्कोहल कंजम्पशन फिजिकली तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, मेंटली इसके क्या सिम्टम्स हम देखते हैं लोगों में कि मेंटल इफेक्ट क्या हुआ है, वो कहीं एक होता है ना कि व्यक्ति का बिहेवियर तुरंत चेंज हो जाता है, कई लोग जो हैं वो कुछ सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, तो बेसिक क्या सिम्टम्स होते हैं कि आपको अब साइकेट्रिस्ट के पास जाना है?
1: डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, उसके अलावा अगर अल्कोहल थोड़ा सा भी कंज्यूम करने के बाद लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, मे बी अब्यूजिव और एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, दैट इज़ वन साइन कि अल्कोहल सूट नहीं कर रहा है, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। या अल्कोहल छोड़ने पर अगर घबराहट होना, बेचैनी होना, विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, दौरे आने लग गए हैं, सीजर्स, या फिर पहचानना बंद कर देना लोगों को, बहुत कन्फ्यूज फील होना, जो कि हम डिलीरियम बोलते हैं, डिलीरियम ट्रेमेंस, ऐसे वाले सिम्टम्स हैं, तो बहुत ज़रूरी है भर्ती होकर इलाज कराना। इसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम्स, स्लीप प्रॉब्लम्स एंड साइकोटिक सिम्टम्स। साइकोटिक सिम्टम्स मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं वो सस्पिशियस होने लगते हैं ओवर द टाइम, मे बी अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, अपने स्पाउस के टुवर्ड्स, फैमिली या रिलेटिव्स के, मे बी पीपल वांट टू हार्म मी, और किसी भी टाइप का सस्पिशन हो सकता है। अगर ऐसे वाले लक्षण हैं तो अल्कोहल तो बंद करना ही है, साथ में इस बीमारी का भी इलाज लेना है।
0: क्या रिकवरी पॉसिबल है?
1: तो ज़्यादातर केसेस में रिकवरी हो जाता है, द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन द पेशेंट का बीमारी, उसका सीवियरिटी और उसका कितना सपोर्ट सिस्टम है, बट हाँ, लोग इससे बाहर आ जा सकते हैं, इसके बिना अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी पाते हैं।
0: कोई ऐसा एक सिम्टम जिसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, फैमिली को भी और पेशेंट को खुद भी?
1: अगर किसी को अल्कोहल छोड़ने पर सीजर्स या दौरा आ जाता है, या फिर डिलीरियम, पहचानना ना लोगों को, जगह को, टाइम के लिए कन्फ्यूजन होना, अजीब चीज़ें नज़र आना या सुनाई देना, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसके लिए भर्ती होकर इलाज लेना बहुत ज़रूरी, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो गई है, वेट लॉस, भूख ना लगना, नींद बिल्कुल ना आना, अगर ऐसे वाले लक्षण हैं तो भी ये डेफिनेट साइन है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। बहुत ज़्यादा क्रेविंग कि अल्कोहल के बिना दो दिन भी ना रह पाना, अपना काम छोड़ के भी अल्कोहल को पहले पीना, अगर ऐसा हो रहा है तो भी ये साइन है कि अब ट्रीटमेंट का समय आ गया है।
0: जी बिल्कुल, यानी ट्रीटमेंट का समय आ गया है, और अगर आपको भी ऐसा कोई व्यक्ति नज़र आ रहा है तो उसकी काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्कोहल यानी शराब वाकई जानलेवा भी है और आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रही है, और फिज़िकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे बात करना भी बहुत

आपके शरीर को फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। फिलहाल बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं प्रोग्राम ऑल इज वेल में, आज बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नई और खास इन्फॉर्मेशन के साथ अगले हफ्ते हमारी एक नई हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। फील गुड, फील लाइफ। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय रंगमंच और अभिनय जगत की एक बेहद सम्मानित हस्ती, जिनका नाम है रामजी बाली। रामजी बाली सर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से अभिनय में डिप्लोमा प्राप्त किया और आज वहीं एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने अपने थिएटर ग्रुप थिएटर वाला के माध्यम से अनेक नाटकों का निर्देशन किया है, कई चर्चित नाटक भी लिखे हैं और भारतीय शास्त्रीय रंगमंच को एक नई पहचान देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको वर्ष 2011 में संगीत नाटक एकेडमी द्वारा यंग प्लेराइट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रेनाउंड थिएटर डायरेक्टर, प्लेराइट एंड टीचर, ही इज आल्सो अ टैलेंटेड एक्टर हु हैज अपीयर्ड इन फिल्म्स, वेब सीरीज एंड टेलीविजन प्रोजेक्ट्स सच एज दिल्ली क्राइम, कमांडो, साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 एंड रिसेंटली द केरला स्टोरी 2 where he portrayed the role of Neha's father. थिएटर के प्रति इनकी लगन, स्टूडेंट्स को दिया गया इनका मार्गदर्शन और कला के प्रति इनका समर्पण इनके एक कंप्लीट थिएटर पर्सनालिटी को बनाता है। आज हम इनके सफर, इनके अनुभवों और थिएटर से लेकर सिनेमा तक की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, प्लीज ज्वाइन मी इन गिविंग अ वेरी वार्म वेलकम टू एक्टर, प्ले राइट, डायरेक्टर, थिएटर मेंटर एंड NSD प्रोफेसर श्री रामजी बाली जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
1: शुक्रिया बहुत बहुत।
0: तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई।
1: मेरे सफर की शुरुआत जहाँ तक मैं समझता हूँ रामलीला से हुई है। जब हम छोटे थे बचपन में, हमारे आसपास काफ़ी रामलीलाएं होती थी
0: जी।
1: तो बहुत छोटे थे तो देखने जाते थे, थोड़े से बड़े हुए थोड़ी सी समझ डेवलप हुई तो फिर उसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं समझता हूँ कि मेरे रंगमंच की शुरुआत वहीं से हुई
0: जी। मतलब आपका बचपन से ही रुझान एक्टिंग की तरफ ही था।
1: एक्टिंग की तरफ रुझान था बचपन से ही, और सिनेमा देखते थे तो उससे ही प्रभावित थे, क्योंकि यहाँ का कोई फोक थिएटर तो हमने देखा नहीं था तो, और फोक थिएटर के नाम पे हमारे आसपास अगर कुछ हो रहा था तो वो रामलीला थी
0: जी। जी जी। तो कुछ ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था कि कोई मतलब एक्टिंग में हो या कोई ऐसी चीज में हो जिसके प्रति आपका थोड़ा और इंटरेस्ट आया और आपको लगा कि नहीं, मुझे तो इसी में ही जाना है, या ये खुद एक मन से आया, एक बच्चे का ये था भाव?
1: मुझे लगता है कि ये बच्चे के मन का भाव ही था
0: जी,
1: जो आगे आया। और मेरे फैमिली में कोई ऐसे किसी की ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी कि किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से कोई जुड़ा हुआ हो
0: जी।
1: और मैं बहुत सिनेमा से बहुत मैं कहूँ प्रभावित था, बहुत इंस्पायर था। तो उन दिनों ये राजेश खन्ना और इन लोगों की फिल्में, आराधना और ये टीवी पे आती थी और या चित्रहार आते थे, तो उसी से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे लगा
0: जी। तो सर, जैसे NSD तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा, और क्या यह आपका कुछ बचपन का ही सपना था कि आपने NSD जाना है, या धीरे धीरे बड़े होते गए तो पता चला इन सब चीजों के बारे में?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को कुछ ऐसा मालूम नहीं था कि एक्टिंग की भी कोई ट्रेनिंग होती है। बचपन में तो रामलीला करते रहे और एक्टिंग का मन में, जैसे जैसे रामलीला की, बड़ी बड़े लोगों के साथ काम किया तो लगा कि इसमें बहुत मजा सा आता है, कुछ ये अलग चीज है
0: जी।
1: अच्छा, मैं गा नहीं सकता था, मुझे डांस नहीं आता था, तो लगता ये मैं कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस का अंदर कहीं रहा होगा। और मैं स्कूल में बहुत एक्टिव था, स्कूल्स में छोटी छोटी स्किट्स होती थी
0: जी।
1: तो एक दो दोस्त थे उनके साथ मिलकर हम करते थे, तो वो कहीं रहा। और बाद में आते आते जब हम 10th 12th तक पहुंचे तो किसी एक दोस्त ने, जो मेरे थोड़े बड़े थे, सीनियर थे, कॉलेज और दिल्ली जाते थे पढ़ने, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें एक्टिंग का शौक है तो फिर तो ट्रेनिंग लो। और उन्होंने फिल्मी कलियां और इस तरह की, जब हम कॉमिक्स किराए पे लेते थे, वो जमाना था, तो उस वक्त वो फिल्मी कलियां में कुछ एक्टर्स के इंटरव्यूज आते थे कि कोई FTI से पास आउट है
0: जी।
1: कोई NSD से पास आउट है, फिर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता चला, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं NSD करूंगा, क्योंकि कुछ सोर्स ही नहीं था, कुछ कनेक्शन ही नहीं था, ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था। हाँ, लेकिन उनको पढ़ते थे तो अच्छा लगता था, अच्छा इसकी भी लोग ट्रेनिंग करके जाते हैं
0: जी।
1: तो धीरे धीरे रास्ते खुलते चले गए, तो ऐसा हो गया पॉसिबल।
0: वो एक लाइन पकड़ ली फिर आपने?
1: हाँ वो पकड़ी गई, वो ऐसे कि मेरे एक दोस्त थे, पता चला कि एनएसडी तो हम सोच ही नहीं पाते कि इतने नसीरुद्दीन शाह इनके नाम
0: बहुत
1: सुनते
0: बड़े
1: थे।
0: बड़े एक्टर,
1: हाँ राज बब्बर ये लोग निकले हैं, तो हम कहाँ सोचते थे कि फरीदाबाद के, तब इतना कनेक्टिविटी भी नहीं थी दिल्ली से कि कहाँ कौन जाएगा एक्टिंग कोर्स करेगा। बड़ी मुश्किल से एक दिन मेरे को किसी ने उसका एड्रेस ला के दिया एनएसडी का, मेरे एक दोस्त ने
0: जी।
1: तो मैं 12th में था, तो मैं जैसे तैसे दिल्ली पहुंचा और वहां जाके पता चला कि यहाँ तो ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन मिलता है।
0: अच्छा।
1: तो मैं बड़ा उदास हुआ और नाराज भी हुआ कि अरे ग्रेजुएशन करेंगे तो इतनी एज हो जाएगी, फिर हीरो कब बनेंगे, तो मतलब जो भाव होता है एक छोटे,
0: मतलब वो 3 साल ग्रेजुएशन में निकल
1: जाएंगे, फिर वो हाँ करेंगे, अच्छा फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
0: और तब तक मूड बदल जाए, ये
1: मूड बदल जाए या घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी हमारी कि मतलब कि हम कहीं भी जब आँख खुलेगी तभी कोई कोर्स कर लेंगे टाइप, सर्वाइवल वाली जिंदगी थी कि कैसे सर्वाइवल चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात थी
0: जी। तो अब जैसे आप एनएसडी में एक प्रोफेसर हैं, तो आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आप टीचर और आर्टिस्ट इन दोनों रोल्स को किस तरीके से बैलेंस करते हैं?
1: मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अब, क्योंकि मुझे एनएसडी पास किए ही 20-25 साल हो गए हैं और मैं 2001 में एनएसडी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया एक्टिंग का, और ऐसा संयोग रहा कि 2001 से निकलने के बाद से मुझे अपना थिएटर ग्रुप, थिएटर वर्कशॉप ऑल ओवर इंडिया में हम करते रहे घूम घूम के, तो वो एक तरह की टीचिंग ही होती है
0: जी।
1: जब हम किसी वर्कशॉप को कंडक्ट करते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, उनके साथ थिएटर की बेसिक्स को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एक प्रोडक्शन तैयार करते हैं, तो वो टीचिंग का ऐसा अनकॉन्शियसली कहना चाहिए कि वो आ गई, नेचर में आ गई
0: जी।
1: और फिर मुझे बाद में अभी 2018 से लेके मैं 5 साल में को बनारस का डायरेक्टर बनने का भी मौका मिला एनएसडी का, तो वहाँ फिर वो सब एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब देखना था और एकेडमिक्स भी देखना था, तो वो टीचिंग वो फिर अनोइंगली आ गई, तो ऐसा कुछ मुझे अलग से नहीं करना पड़ता। और एनएसडी की टीचिंग बहुत डिफरेंट है, एनएसडी की वो स्टीरियोटाइप टीचिंग नहीं है, इसीलिए वो एक यूनिक इंस्टीट्यूट है। वहाँ हम 2+2=4 नहीं पढ़ाते,
0: अच्छा
1: वहाँ 2+2=5 भी हो जाता है और 3 भी हो जाता है।
0: तो जैसे आपने बोला टीचिंग स्टाइल बहुत डिफरेंस है, क्या डिफरेंट होता है?
1: डिफरेंट ये कि वो हमारा जो कोर्स है वो मशहूरी इसलिए क्योंकि वो परफॉर्मिंग आर्ट का है और वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फील्ड है, तो ज्यादातर हमारा 80% तो प्रैक्टिस होती है
0: जी।
1: और हम सब लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, है ना, 20% थ्योरी है, बाकी जो है सब परफॉर्मेंस करना है, करके सीखना है, क्या गलती हो रही है, अलग अलग एक्टिंग के मेथड्स हैं, है ना, अलग अलग फोक फॉर्म्स हैं
0: जी।
1: तो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हैं जो अलग अलग रीजन से आती हैं, तो वो तो करने से होगा
0: जी।
1: वो कोई ब्लैकबोर्ड पे लिखने से वाली हमारे वहाँ की टीचिंग का फलसफा वहाँ है ही नहीं
0: जी। तो जैसे आपने बताया बनारस में भी आपको डायरेक्टर रहने का मौका मिला 5 साल का, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका?
1: वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था बिकॉज वहाँ कुछ नहीं था शुरू में जब हम गए
0: जी।
1: और दूसरी बात मैं यहाँ अंडरलाइन करना चाहूंगा कि वो नाट्य शास्त्र पे बेस्ड एक्टिंग इंस्टीट्यूट है,
0: अच्छा
1: एनएसडी का है, लेकिन हम पूरी जो हमारा शिक्षा पद्धति है वो पूरी हमारी एंशियंट जो 4,000-5,000 साल पुराना जो हमारे पास एक मेथड है
0: जी।
1: उस पे बेस्ड वो ट्रेनिंग प्रोसेस को लेके तैयार करना था, तो और इत्तेफाकन मैंने वहाँ जाने से पहले कई संस्कृत प्लेस किए थे और ईश्वर की कृपा से मेरा वहाँ एज ए डायरेक्टर सिलेक्शन हो गया, तो मुझे एक बहुत आज़ादी मिली उस सेंटर को डेवलप करने में
0: जी।
1: और बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ मिलके काम करने में कि कैसे उसको शेपअप कैसे करें, क्योंकि नाट्यशास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है। नाट्यशास्त्र ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम सब समझ गए हैं और उस पर अभी भी उसकी बहुत लेयर्स हैं
0: जी।
1: तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव था और उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी, मैं उसको अपना एक अच्छा गोल्डन टाइम मानता हूँ अपने 5 साल जो मैंने वहाँ निदेशक के तौर पर काम किया।
0: तो फिर जब आप वहां से यहाँ आए दिल्ली दोबारा, तो कुछ मिस नहीं किया वहां का आपने?
1: ऑब्वियसली जब आप एक नया सेंटर या नई चीज बनाते हैं वो एक आपके बेबी की तरह होता है, जब वो जीरो से शुरू करते हैं, आज वहाँ कई अच्छी चीजें हैं, एक स्टूडियो बनाया, मतलब एक शेपअप हुआ, उसके बाद हमारे अंदर एक थिएटर वालों को आदत रहती है कि एक वर्कशॉप खत्म अब आगे बढ़ना है
2: जी।
1: तो हम अब फंसते नहीं है, इसलिए उतना ज्यादा मिस नहीं होता। हाँ, वो शहर भी गजब है,
2: शहर जैसे बहुत अच्छा है ना बनारस, बिल्कुल।
1: और बाबा विश्वनाथ वहाँ बैठे हैं तो वो तो हमेशा लगता ही है, लेकिन हमेशा थिएटर कहता है कि आगे बढ़ो
2: जी।
1: और फिर मेरी फैमिली भी इधर थी, और यहाँ भी एक ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे यहाँ एक जॉब था, मैंने अप्लाई किया, हो गया
2: जी।
1: तो वापस बैक टू पवेलियन अपने शहर आ गए
2: जी। तो राम जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे थिएटर की बातें जान के। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है हमारे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से राम जी सर के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थिएटर के बहुत ही जाने माने मिस्टर राम जी बाली जी। तो सर, अभी जैसे आपने बताया NSD के बारे में, हमें थिएटर के बारे में, अब थोड़ा थिएटर रिलेटेड ही मैं आपसे और चीजें पूछना चाहूंगी कि थिएटर ने आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया है?
1: थिएटर ने जिंदगी का सबक ये सिखाया है कि हमेशा मध्यम मार्ग पे चलो, एक्सट्रीम किसी भी विषय पे नहीं होना है, चाहे लाइफ में है, चाहे आर्ट में है, किसी भी चीज को लेके। हमेशा थिएटर आपको आपकी जो एजेस होते हैं ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको सुकर्व करता है, ताकि आपको, क्योंकि लिटरेचर है उसमें, उसका सबसे बेस। तो मैं तो मानता हूँ कि किसी, मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि एक 4 पेज की कहानी पढ़ के आप किसी के जीवन की पूरी हिस्ट्री समझ जाते हो, उसका इमोशन समझ जाते हो। ये कितना सस्ता सौदा है। नहीं तो हम अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे तब हमें एक सबक मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: हम किसी की जीवन जिंदगी के 4 पन्ने पढ़ते हैं 10-15 मिनट में, और हमें कितना सबक
0: समझ भी आ।
1: तो थिएटर में तो लिटरेचर तो उसका बेस है, तो लिटरेचर हमें, हमारी समझ को विस्तृत करता है, काम डाउन करता है, और काफी कुछ सिखाया थिएटर ने
0: जी। और जैसे सर, आज के डिजिटल युग में थिएटर की रेलेवेंस को आप कैसे देखते हैं?
1: मुझे लगता है कि थिएटर की रेलेवेंस इससे और बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि आप देख लीजिए, थिएटर कोई आज का नहीं है। थिएटर शायद जिस वक्त इंसान ने खाना खा लिया होगा, उसी वक्त उसको कुछ करने की सूझी होगी। जिस वक्त रोटी का सवाल खत्म हो गया होगा, वहीं से थिएटर शुरू हो गया होगा। चाहे कम्युनिटी में, एक ट्राइबल एरिया में, चाहे भाषा नहीं रही होगी, लेकिन जब उन्होंने शिकार मार के खाया होगा, फैमिली के साथ रात को बैठे होंगे आग जला के, तो शायद दिन की क्या घटना हुई होगी, शायद किसी ने एक्ट करके दिखाया होगा, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, वहीं से थिएटर शुरू हुआ
0: जी।
1: जो इतना पुराना, जिसकी जड़ें हैं। और आप देख लीजिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी के लेवल पे देख लीजिए, सिनेमा तो अभी का है, 500 साल भी नहीं हुआ अभी।
0: अच्छा।
1: अभी देख लीजिए, ये तो हजारों साल, अनंत, मतलब जैसे बोलते हैं ना, सनातन है
0: जी।
1: रंगमंच सनातन है, जहां मनुष्य है, जहां दो लोग, एक कर रहा है, एक देख रहा है, रंगमंच हो रहा है
0: जी,
1: है ना। और आप देख लीजिए, उसकी टेक्नोलॉजी बदलती चली गई
0: जी।
1: मीडिया की, पहले बड़े बड़े वो रिकॉर्ड आते थे, आज हम कैसे गाना सुन रहे हैं
0: जी।
1: फिर वीडियो कैसेट्स आते थे,
0: फिर सीडीज आ गई,
1: वो आई, फ्लॉपी आई, फिर क्या क्या आया, आज वो लिंक में ही है फिल्म, है ना। ये सब का बहुत छोटा स्पैम है, 10 साल में, 5 साल में चेंज हो जाता है
0: जी।
1: लेकिन रंगमंच एक जीवित व्यक्ति करता है, और एक जीवित व्यक्ति उसके सामने बैठ के देखता है, दोनों सांस ले रहे होते हैं उस वक्त। तो इसकी ये जो ग्रेटनेस है, वो कोई मीडियम नहीं ले सकता
0: जी।
1: तो जब तक इसका ये जीवंतता वाली बात है, कोई भी मीडिया, कोई भी AI इसको वो नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट,
0: हाँ जी,
1: छपाई खाने में तो आप जो भी हमारी कुर्ती है, शर्ट पहना है, हजारों बन रहे हैं, जैसे ही उस पर कोई कारीगर अपने हाथ से आपका नाम लिख देता है, कस्टमाइज हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: उसकी वैल्यू
0: और उसकी उसका दाम भी बढ़ जाता है,
1: उसकी ब्रांडिंग अलग है। तो जस्ट लाइक दैट, रंगमंच, जितना ये टेक्नोलॉजी आएगी, रंगमंच की महत्ता उतनी ज्यादा बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने समझाई है, यहाँ पे क्लियर की है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे प्ले होता है और ये नुक्कड़ नाटक, इनमें क्या फर्क रहता है?
1: नुक्कड़ नाटक भी एक नाटक है,
0: हाँ जी,
1: लेकिन वो नुक्कड़ पे होता है, इसलिए नुक्कड़ नाटक है। उसकी कुछ सीमाएं हैं, और सीमाओं के साथ साथ उसकी कुछ स्वतंत्रता भी है, और उसकी कुछ पाबंदियां हैं, क्योंकि वहां पे आपका बुलाया हुआ दर्शक नहीं है उस तरह का। नहीं तो आप एक ऑडिटोरियम बुक करते हैं, आप इनवाइट करते हैं या एड निकालते हैं, लोग आते हैं, स्वतः आते हैं, मन से आते हैं, मन बना के आते हैं कि मैं नाटक देखने आज मंडी हाउस जाऊंगा या जाऊंगी, गाड़ी चला के जाते हैं, बस पकड़ के आते हैं, या फरीदाबाद में भी किसी, हम जब सभागार में करते थे, आप प्लान करते हो कि आज शाम को मुझे नाटक देखने जाना है। नुक्कड़ नाटक में वैसा नहीं है। नुक्कड़ नाटक, आप सड़क पे जा रहे हो, चाट पकौड़ी खा रहे हो, अचानक कोई डम डम डम बजने लगता है, तो क्या हो रहा है, शोर होता है, वो यहीं कॉर्नर में साइड पे 4 लड़के या लड़कियां कुछ डफली बजा के कुछ एक जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं
0: जी।
1: तो उनका क्या, वो उसी वक्त वो स्पेस क्रिएट करते हैं, उसी वक्त वो मंच क्रिएट करते हैं, वहां मंच नहीं होता है, उसी वक्त वो दर्शक को रोकने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त वो कोई एक इशू लेते हैं। उनका क्या है, उस रंगमंच में जो बेसिक हम फर्क है, वो इशू बेस्ड रंगमंच है, और उसमें स्लोगन है
0: जी।
1: उसमें आर्ट भी है, लेकिन आर्ट की मात्रा थोड़ी कम है उसमें, मैसेजिंग ज्यादा है बजाय इमोशन के
0: जी।
1: मेरा मतलब ये नहीं कि जो वो कर रहे हैं वो इमोशनल सीन नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन मोर और लेस अगर हम बात करें तो वो एक तरह का नारा है, वो कुछ बात कहना चाहते हैं ग्रुप, वो आता है 10 मिनट में हो हल्ला करता है, अपना कोरियोग्राफी करता है, अपने डायलॉग बोलता है, चला जाता है, वही फिर मार्केट फिर चालू हो जाती है बेसिकली बेसिकली। लेकिन ये जो फील्ड जो प्रोसिनियम रंगमंच की हम बात करें, उसमें आर्ट है, एस्थेटिक है, म्यूजिक कहाँ थोड़ा कम आएगा, कहाँ ज़्यादा आएगा, यहाँ एक पर्दा लहराना चाहिए, यहाँ से लाइट थोड़ी सी ऐसी आएगी, तो ये एक कलेक्टिव वर्क है आर्ट का, आर्ट फॉर्म का एक गुलदस्ता है कहना चाहिए, जिसमें लिटरेचर भी है, मंच भी है, मेकअप भी है, कॉस्ट्यूम भी है, लाइटिंग भी है, लाइव म्यूजिक भी है, डायलॉग भी है, इमोशन भी है, है ना, एक एनवायरनमेंट है। ये बेसिक फर्क है मुझे जहाँ तक मेरी समझ।
0: नहीं नहीं बिल्कुल सही आपने बताया। तो नुक्कड़ नाटक हमने जैसे अभी कुछ सालों पहले मतलब देखने शुरू किए हैं, इससे पहले तो या होते थे या आप ज्यादा लोगों के बीच में?
1: नहीं ऐसा नहीं है, नाट्य शास्त्र में भी वीथी नाटक की बात होती है, वीथी अच्छा। का वीथी का मतलब गली होता है।
0: अच्छा
1: तो वीथी नाट्य की बात है, तो इट मींस कि तब भी होते होंगे। उसका प्रारूप क्या रहता होगा ये मुझे नहीं मालूम
0: जी,
1: क्योंकि हमारे नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन है, लेकिन जब नाट्य शास्त्र की ही प्रैक्टिस बीच में मुगल काल और ये सब मतलब जो बहुत पहले खत्म हो गया, अब ये दोबारा रिवाइव हो रहा है इंडियन क्लासिकल थिएटर, तो हम नहीं कह सकते कि पहले कितना हुआ, लेकिन हाँ ये इधर आज का जो नुक्कड़ नाटक है उसकी अगर हम बात करें तो वो ये इमरजेंसी वगैरह के बाद जब सरकार बदली, जब चीज़ें आईं, तो ये लेफ्टिस्ट लोगों ने ज़्यादा इसको अपनाया, प्रमोट किया, और इसका इतिहास है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है
0: जी। तो सर थिएटर और फिल्म में एक्टिंग करने का सबसे बड़ा अंतर क्या है? जैसे आपने बहुत सी फिल्में भी की हैं हमने देखा, और अभी रिसेंटली केरला स्टोरीज 2 में आपका बहुत अच्छा रोल है उसमें, सो क्या अंतर रहता है दोनों चीज़ों में?
1: देखिए मुझे कई लोग इसमें बहुत बड़े बड़े थ्योरीज गढ़ते हैं, बताते हैं, मुझे आज तक कुछ अंतर नहीं लगा। मुझे लगता है एक्टिंग एक्टिंग है
0: जी।
1: रंग अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, ये मंच पे भी एक सीन हो सकता है कि एक आप इंटरव्यू कर रही हैं मेरा, है ना, आप सवाल पूछ रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, इसी को अगर कैमरा लगा दें जैसे पॉडकास्ट है फॉर एग्जांपल, क्या फर्क आ जाएगा बताइए? आप कोई अजीब से एक्सप्रेशन बना के थोड़ी बात करेंगे, आप ऐसे ही बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर हाँ, उसमें क्योंकि लेंस चेंज हो जाता है तो उसका एक्सप्रेशन, और वो बहुत बड़े पर्दे पर दिखता है। अभी आपका जितना जितना जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही दिखेगा, और दूर से देखेंगे तो छोटा दिखेगा, मंच पे जो आगे बैठा होगा उसके क्षेत्र बड़ा दिखेगा, लेकिन सिनेमा में क्या सबको एक साथ दिखता है? वो लेंस की करामात है, वो एक टेक्निकलिटी है, उससे एक्टर का कोई लेना देना नहीं है। एक्टर को हाँ ये ध्यान रखना है कि अब आपका क्लोज लगा है तो मुझे ज्यादा, मैं हाथ हिला हिला के बात कर रहा हूँ तो वो फ्रेम में है ही नहीं, वो इतनी सी बात है, वो डायरेक्टर बोल देगा भाई हम आपका ना अभी आईज का ले रहे हैं
0: जी,
1: तो आप बस ये वाले डायलॉग पर आपका एक रिएक्शन ले रहे हैं, तो आप मंच पे भी आप वही रिएक्शन देते हैं लेकिन उसमें शायद आपका हाथ भी चलता है। तो मुझे छोटी सी टेक्निक हल्का सा फर्क है, मुझे ऐसा कोई ड्रास्टिक फर्क नहीं लगता,
0: वो भी सिर्फ कैमरे को फेस करने वाली
1: एक चीज और है कि जो सिनेमा का एक्टर है वो रंगमंच नहीं कर सकता, उसको दिक्कत आएगी।
0: अच्छा
1: कर सकता मतलब कर लेगा कोई भी, लेकिन वो उतना शायद अच्छा अभिनेता साबित ना हो मंच पे, लेकिन जो मंच का अभिनेता है जब वो सिनेमा करता है तो बहुत बेहतर अभिनेता साबित होता है।
0: अच्छा ऐसा क्यों कि सिनेमा वाला नहीं कर पाएगा?
1: नहीं उसको दिक्कत आएगी, मैं नहीं कह रहा कर नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है ना वो कॉन्टिन्यूटी में इमोशन को कैरी नहीं कर रहा है, हम 2 घंटे का प्ले कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं।
0: हाँ वो सीन में कट करके
1: डायलॉग के बाद कट हो रहा है उसका बार बार, उसके सामने एक्टर नहीं है, उसके सामने कैमरा है
0: जी,
1: उसको एक्टर की आदत ही नहीं है, कम आदत है, समझ लो हमारे पास तो एक्टर ही एक्टर है, हम मंच पे जब घुसे तो सामने एक्टर, दाएं एक्टर, बाएं एक्टर, हमारा कैमरा तो दर्शक है,
0: बिल्कुल लाइव ऑडियंस जो देख रही है,
1: नहीं हमें वहीं से देख रहा है ना, तो इसमें क्या है कि अभी यहाँ भी कैमरा लगा देंगे, आपके कान के पास लगा देंगे, आपके कंधे के पीछे लगा देंगे,
0: हाँ जी,
1: तो वहां पे दर्शक मूव कर रहे हैं एक तरह से 360 डिग्री में
0: जी,
1: और रंगमंच पे एक्टर मूव कर रहा है तो उसको कट्स की आदत है, इमोशन के कट्स की आदत है, हम एक फ्लो में करते हैं तो हमें उसकी गहराई, उसकी डेप्थ, उसका इमोशन का जो क्या कहते हैं उसका जो नमक आना चाहिए वो उसकी थोड़ा सा एहसास ज्यादा है
0: जी।
1: मुझे ऐसा लगता है, और ये साबित हुआ है, ये हॉलीवुड तक के एक्टर्स में साबित हुआ है।
0: अच्छा
1: जितने हॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं सब थिएटर करते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, हमारे यहाँ के कम करते हैं लेकिन वहाँ के तो करते ही, वो एक सीजन फिक्स करते हैं, हम 3 महीने नहीं करेंगे सिनेमा, अच्छा। 3 महीने हम जाएंगे अपने ग्रुप में, थिएटर करेंगे, 20-50 शो करेंगे, वापस सिनेमा में आएंगे।
0: ये बहुत ही अच्छा एक फर्क आपने समझाया अभी। तो आपने जैसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेस भी दिए हैं, खुद से मतलब डायरेक्ट भी किए हैं, तो आपके दिल के सबसे करीब कौन सा प्ले है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो जो मैंने प्ले डायरेक्ट किए हैं उनमें अगर हम बात करें तो मेरे बहुत करीब है अभिज्ञान शकुंतल कालिदास का। मुझे बनारस में रहते हुए संस्कृत नाटक करने का मौका मिला और मैंने कालिदास के 3 नाटक किए, कई बार किए हैं अब तो। तो मैं जब भी अभिज्ञान करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने अगर मैं लिखे हुए प्लेस की बात करूँ तो मेरे मैंने लगभग अब तक 9-10 प्ले लिखे हैं और उसमें मेरा सबसे प्रिय प्ले एक है, एक रोमांटिक कॉमेडी है मैंने लिखी है, कोई बात चले।
0: अच्छा।
1: उसको मैंने 2010 में लिखा था, तो उसके कई शोज हम कर चुके, उसमें यशपाल शर्मा भी जो हमारे हरियाणा के बहुत बड़े एक्टर हैं सिनेमा में, गंगा जल में जो मेन विलेन थे
0: जी,
1: वो भी उसमें एक्ट कर चुके हैं प्ले में, और वो प्ले करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत फन है उसमें।
0: तो जैसे आपने प्ले की बात बताई तो ये आपका कैसे रहता है कि आपको अलग अलग शहर में आप जाके करते हैं, इसका क्या चीज रहती है?
1: जब कोई प्रोडक्शन तैयार होता है तो अगर हम दिल्ली में जैसे ओपन किया तो जो थिएटर वर्ल्ड के लोग हैं उनको पता रहता है कि अच्छा एक नया प्ले आया है, वो थिएटर फेस्टिवल होते हैं कई शहरों में लोग करते हैं तो इनवाइट करते हैं। गवर्नमेंट्स के भी अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स होती हैं उनकी, उनके वो लोग भी फेस्टिवल्स करते हैं, तो जो थिएटर वर्ल्ड के एक अलग संसार है वो जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं कि इसका क्या प्रोडक्शन चल रहा है, फिर उसको इनवाइट करते हैं।
0: और प्ले का ड्यूरेशन क्या रहता है, मतलब कुछ घंटों का या कुछ दिनों का भी रहता है?
1: नहीं नहीं, दिनों का नहीं रहता है। क्या रहता है कि यूजुअली पहले 2.5-2.5 घंटे के, 3-3 घंटे के प्लेस होते थे जब हमने किया, अभी भी होते हैं 2.25 घंटा 2.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट, मतलब ये इसको फुल लेंथ प्ले माना जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइमिंग माना जाता है, क्योंकि अभी टाइम कम हो रहा है तो अभी 1.5 घंटे के भी नाटक होते हैं, 1.5 से 2.5 घंटे ज्यादातर नाटक होते हैं, उसमें कुछ लोग इंटरवल रखते हैं कुछ नहीं रखते हैं,
0: तो उसमें फुल म्यूजिक वगैरह सब रहता है,
1: एवरीथिंग सब होता है, पूरा सेटअप लेके चलना पड़ता है। कुछ चीजें जैसे किसी ने हमें मान लीजिए कि पटना में इनवाइट किया तो बेसिक जो सेटअप है स्टेज का
0: जी
1: वो, और मैं आपको बता दूं कि कोई बात चले यशपाल शर्मा वाला प्ले आपके मानव रचना में भी हुआ है।
0: अच्छा।
1: मुझे अभी याद आया, जस्ट अभी याद आया।
0: अच्छा।
1: और यशपाल शर्मा ने ही किया है आपके स्टूडेंट्स के सामने
0: जी,
1: मुझे ये इस बात को हो गए कम से कम 8 साल हो गए होंगे।
0: अच्छा।
1: मिस्टर भल्ला ने इनवाइट किया था
0: जी जी,
1: तो एक आपका अंदर ऑडिटोरियम है उसमें शो किया था, बहुत सक्सेसफुल शो हुआ था, बहुत अच्छा शो हुआ था।
0: वाओ, ये तो बात आपसे अभी
1: मुझे भी अब भूल गया था।
0: हाँ।
1: अभी याद आया मुझे कि हाँ हमने किया है उसको, बॉम्बे से टीम आई थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ करने का
0: जी। तो साथियों अब वक्त हो चला है हमारे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को जारी रखेंगे रामजी बाली सर के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए क्रिएटिव मंच ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थिएटर जगती के जाने माने मिस्टर रामजी बाली जी। तो सर, बहुत ही मजा आ रहा है आज आपके साथ हमारे शो में, और डेफिनेटली जो लिसनर्स आज ये शो सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत चीजें थिएटर से रिलेटेड समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से क्या क्या होता है पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने। तो अभी तक हमने बात की आपके टीचिंग स्टूडेंट्स और आपके प्लेस के बारे में, लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर मतलब जो चीज़ लाना चाहूँगी, फिल्म एंड स्क्रीन वर्क जो आप करा है, जैसे थिएटर से फिल्म और वेब सीरीज़ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? आपने काफ़ी वेब सीरीज़ भी की हैं, थिएटर तो हमें पता ही है उसमें तो आपकी है ही महारत हासिल, तो अपनी वेब सीरीज़ के बारे में बताइए और उसके बाद में आपकी मूवीज़ के बारे में पूछूँगी।
1: मैंने दिल्ली क्राइम एक वेब सीरीज़, बहुत चर्चित वेब सीरीज रही, उसमें मुझे काम करने का अवसर मिला। उसमें जो बहुत बड़े एक्टर हैं राजेश तैलंग, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं
0: जी।
1: और देखा जाए तो मैंने तिग्मांशु धूलिया जी के साथ सिनेमा में काफ़ी मुझे अवसर मिला उनके साथ काम करने का। मेरी पहली फिल्म उनके साथ पान सिंह तोमर थी
0: जी।
1: और पान सिंह करने के बाद उनके साथ मेरा एक अलग बाउंडिंग बनी। तो उसके बाद मैंने उनके साथ साबी और गैंगस्टर में भी एक छोटा सा रोल किया है, और एक यारा फिल्म उन्होंने बनाई थी तिग्मांशु सर ने, उसमें भी मुझे अभिनय करने का मौका मिला। और सिर्फ अभिनय नहीं, मेरे को जब भी वो सिनेमा कुछ बनाते थे तो अक्सर मुझे डायलॉग में भी बुला लेते थे कि तुम थोड़ा सा एक्ट्रेस को हेल्प कर दो
0: जी।
1: तो बड़ा वो प्यार रखते हैं, स्नेह रखते हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं कि तिग्मांशु धूलिया बहुत बड़ा नाम
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: अगर वो मुझे
0: और अगर वो
1: कह रहे हैं कि तुम जो एक्टर्स का डायलॉग चेक कर लो तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसा मैं उनके साथ काफी काम किया है, त्रिशु भाई के साथ। हम उनको प्यासे सब जो एनएसजी के लोग हैं त्रिशु भाई बुलाते हैं उनको, और उनके साथ काम करने का मौका मिला। और खोसला का घोसला बहुत शुरुआती फिल्म थी जब मैं जस्ट एनएसजी से पास आउट किया था, वो काफी आती है इसलिए लोग उसको ज्यादा जानते हैं। उसमें मैं एक बड़े रोल के लिए कास्ट हुआ था पहले, लेकिन फिर उस वक्त मैं बहुत यंग दिखता था, तो मुझे डायरेक्टर ने बोला दिवाकर ने कि आई एम वेरी सॉरी, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज फाइनल। उसमें एक बड़ा रोल कर रहा था मैं, लेकिन उन्होंने बोला कि राम जी मुझे बहुत, प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आप छोटे लग रहे हो, लेकिन आप एक रोल है जरूर करो। वो एक छोटा सा आईपीएस का रोल, फिर मेरे को दिवाकर ने बोला कि आप करो, तो फिल्म बहुत आती है।
0: हाँ जी।
1: हाँ, तो उसमें किया काम। फिर एक फिल्म है रागदेश, रागदेश में भी मैंने एक्टर्स को भी ट्रेन किया था उसमें, और एक रोल भी किया, और रागदेश की भी स्क्रीनिंग आपके यहाँ हुई थी मुझे अच्छे से याद है। हाँ, उसमें तिग्मांशु धूलिया की फिल्म, क्योंकि वो INA पे थी फिल्म, मतलब आज़ाद हिंद फौज के ऊपर, तो उस एक केस है, कोर्ट केस है, उसके ऊपर वो फिल्म थी, तो उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। और बाकी मुझे अपनी फिल्म भी एक छोटी सी बनाई मैंने, जो एक हरियाणा में रह के ही बनाई, हरियाणवी फिल्म बनाई अज्जो नाम से।
0: अच्छा।
1: वो एक बच्ची और दादी,
0: वो शायद आपने अभी थोड़े टाइम पहले ही,
1: नहीं अब उसको हो गया 5-1 साल हो गया।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और वो अभी स्टेज ऐप पे है वो फिल्म
0: जी।
1: और वो फरीदाबाद के ही मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रोड्यूस की थी, मिस्टर प्रदीप मोहंती
0: जी।
1: वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे पहला मौका दिया, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने कोई इंडिपेंडेंटली फिल्म नहीं बनाई थी
0: जी।
1: काम जरूर किया था, लेकिन कोई पहली बार जब आप पे ट्रस्ट करता है वो बहुत बड़ी बात होती है,
0: बड़ी बात।
1: और उन्होंने मौका दिया फिल्म की, उसमें डॉली आलूवालिया मेन रोल में थी, और उसमें यशपाल शर्मा ने भी एक कैमियो किया था, और स्वानंद किरकिरे ने गाना गाया है उसका टाइटल, अंतरा मित्रा ने गाना गाया है, और ठीक अपने एनएसजी के काफ़ी लोगों ने मदद की उसमें मुझे। और इसके अलावा थिएटर में भी मैंने कुछ सेलिब्रिटी को लेके एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक प्ले राजपाल यादव भाई को लेके किया था।
0: अच्छा।
1: चलो इश्क लड़ाएं के नाम से, और उसके बाद मैंने हिमानी मैम के साथ, हिमानी शिपुर जी के लेके भी एक प्ले किया डायरेक्ट, उसमें हम दोनों ने मिलके एक्टिंग भी की, और यशपाल भाई वाला प्ले तो हमारा खूब चला जिसका मैंने जिक्र किया है कि आपके यहाँ भी हुआ है। और इस तरह लगे हैं, जो भी काम आता है कर लेते हैं, चाहे थिएटर का हो चाहे सिनेमा का हो, और बेसिक यह है कि रंगमंच से आर्ट से जुड़े रहना है, यही प्रयास रहता है। और अभी एनएसटी में पढ़ा रहा हूँ तो रही हैं।
0: जी जी, नहीं इतना ही नहीं है, बहुत बहुत कुछ आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर जैसे आपने नेम लिया अभी तिग्मांशु धूलिया जी का, और हमने देखा पंकज त्रिपाठी जी के साथ भी, और शायद नवाज सर के साथ भी, तो आप का मतलब कैसा रहता है जब इतने बड़े लोगों से मिलना होता है, उनके साथ वर्क करना होता है, क्या वो भी उतने डाउन टू अर्थ लोग
1: हैं? नहीं, ये सब लोग अपने दोस्त लोग हैं, सीनियर हैं, कुछ लोग मेरे सीनियर बड़े भाई जैसे हैं। नवाज भाई, जब नवाज भाई एनएसजी में थे तब हम श्रीराम सेंटर में थे, और बाद में मुझे भी एनएसजी आने का मौका मिला, वो सब सीनियर हमारे सीनियर हैं, और छोटे भाई की तरह ही बिहेव रहता है, उनका प्यार मिलता है। और पंकज बहुत डाउन टू अर्थ है, हमारा मेरा जूनियर है बट वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा एक्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग एक फैमिली के लोग हैं। मतलब
0: जैसे आपने यशपाल जी की बात की और राजपाल यादव,
1: ये सब लोग सब सीनियर हैं हमारे, एक कम्युनिटी, एक हम सब एलुमनाई हैं एनएसजी के, तो ऐसा कुछ मतलब,
0: तो वही उसी प्यार से मिलना होता होगा, उसी प्यार से सब रहते होंगे। नहीं बहुत अच्छी बात लगती है कि एक सेलिब्रिटीज का भी अगर इतना डाउन टू अर्थ हो भी, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो सर अब मैं बात करूंगी आपकी जो भी रीसेंट जो फिल्म आई है केरला स्टोरीज में, हमने आपको देखा है केरला स्टोरी 2 में, वो कैसे आपको वो रोल मिला और क्या एक्सपीरियंस था उसका?
1: वो रोल मुझे

0: ऐसे मिला शायद उन लोगों ने, एक बहुत बड़ा नाम है कास्टिंग में, मुकेश छाबड़ा
1: जी,
0: बहुत बड़े नाम है उनका। उनके ऑफिस से कॉल आया रात को मुझे कि आप अपना सिर्फ इंट्रो भेज दो
1: जी।
0: तो कोई ऑडिशन जैसा नहीं हुआ मेरा, शायद मुकेश मुझे बहुत पुराना जानता है, इवन कई फिल्में मुकेश ने ही मुझे कास्ट किया, पान सिंह हो या दिल्ली क्राइम हो, और भी कई काम मुकेश को ध्यान रहता है क्योंकि मैं तो फरीदाबाद में हूँ, मतलब दिल्ली में काम कर रहा हूँ, तो मैं दिल्ली मुंबई में तो स्ट्रगल कर नहीं रहा। तो मुकेश को अचानक लगा होगा कि मैं शायद उसमें फिट हो सकता हूँ, तो मुकेश ने अपने ऑफिस में बोला, तो उनके असिस्टेंट्स ने वो मंगवाया, तो वो मेरे को रोल जो मिला विदाउट ऑडिशन मिला, और शुरू में रिवील नहीं किया गया कि हम इस पे फिल्म ये सब्जेक्ट है।
1: ओके।
0: हाँ, कि जब सेट पे गए जब तब हमें स्क्रिप्ट वगैरह मिली, तो धीरे धीरे आइडिया लगा कि अच्छा ये इस सब्जेक्ट पे है। और वो चैलेंजिंग था क्योंकि इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं कि रोज न्यूज़ में सुनते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। इस तरह की फिल्में बनाना, विपुल अमृत लाल शाह ने फिल्म प्रोड्यूस की, ये भी बहुत डेयरिंग है क्योंकि मुंबई का सीनेरियो बहुत डिफरेंट है, बहुत डोमिनेशन जिन लोगों का है इंडस्ट्री में वो अलग विचार के हैं, और जिन्होंने ये फिल्म बनाई वो अलग विचार के हैं, तो बहुत जल्दी आपको
1: क्रिटिसाइज भी करते हैं,
0: क्रिटिसाइज से कोई दिक्कत नहीं, लेबलिंग हो जाती है, फिर आपको काम मिलने में भी प्रॉब्लम होता है।
1: अच्छा,
0: तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा ये है, थोड़ा मुझे लगता है। तो लेकिन काम करने में बहुत मजा आया क्योंकि जो कामाख्या नारायण इसके डायरेक्टर हैं वो बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो नेशनल अवार्ड विनर है ऑलरेडी, और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और बहुत और इशू बहुत सेंसिटिव है, इसमें थोड़ा सा बदलने से कुछ और कहानी हो जाएगी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: थोड़ा सा स्ट्रेस कहीं और दे दिया आपने, थोड़ा सा कुछ कर दिया, उन्होंने जितने बैलेंस तरीके से तीनों लड़कियों की स्टोरी रखी है, आपको लगता नहीं कि किसकी स्टोरी को ज्यादा एम्फसाइज किया, किसको दबाया, ऐसा नहीं, सबको इक्वल स्पेस दिया है, इक्वल कैरेक्टर्स को इतना मौका दिया है, अदरवाइज बहुत कम मौका मिलता
1: जी,
0: है क्योंकि उन्होंने कंटेंट पे ध्यान दिया, नहीं तो हम तो उस तरह से कोई बहुत स्टार तो हम लोग है नहीं है, हम लोग तो छोटे मोटे एक्टर हैं और उसी में उन्होंने फिर भी मौका दिया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला।
1: नहीं, हमने आपका रोल देखा, बहुत ही एकदम मतलब सिंपल सोबर जो एक्टिंग आपकी थी उसमें, नेहा जो लड़की के फादर का रोल आपने किया, बहुत अच्छी मूवी भी इवन बहुत अच्छी है, मुझे तो लगता है सभी को ये देखनी चाहिए जरूर, इवन गर्ल्स को तो बहुत देखनी जरूरी है,
0: बिल्कुल देखनी चाहिए।
1: हाँ जी। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हम राम जी वाली सर के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे शो में थिएटर के जाने माने मिस्टर रामजी बाली जी। तो सर, बहुत अच्छी बातें अभी आपने हमें बताई आपकी वेब सीरीज की, मूवीज की, आपके थिएटर पार्ट की। सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने भी NSD से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद आप अब मूवीज भी कर रहे हैं काफी, वेब सीरीज भी, और अभी NSD में आप प्रोफेसर भी हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को NSD में एडमिशन लेना हो, बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं भी पता होता कि एक्टिंग में किस तरीके से अपना करियर बनाए, तो क्या इसके स्टेप्स हैं, थोड़ा आप हमें बताइए।
1: देखिए, आपकी जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज हमारे टाइम में तो एक ही कोर्स था जो 3 इयर्स वाला कोर्स है, और उसके लिए उस वक्त 10 नाटक करने होते थे और टोटल ऑल ओवर इंडिया से 20 सीट होती थी
0: जी।
1: अभी एक तो वो 10 नाटक अब 6 नाटक हो गए हैं
0: जी,
1: वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है वहाँ। दूसरा, अभी 20 सीट के अलावा 32 सीट्स हो गई हैं।
0: अच्छा।
1: तो सीट्स भी बड़ी हैं और ये 3 ईयर का फुल टाइम कोर्स है, और उसको करने के लिए आप पहले अपने शहर में जो भी थिएटर हो रहा है उनके साथ जुड़िए, क्योंकि 6 नाटक करने के लिए अगर कायदे से करोगे तो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं।
0: ओके।
1: है ना, रोज नाटक कोई भी छोटे शहरों में होता नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। आपको बहुत जल्दी करना है तो दिल्ली में कई ग्रुप्स हैं जो नाटक रेगुलर करते हैं, आप दिल्ली आके ज्वाइन कीजिए उन ग्रुप्स को। थोड़ी सी जो भी उनका फीस स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा बहुत फीस लेते हैं, वो करवाते हैं, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और हमारे स्कूल ने किया है कि अभी हमारे जो सेंटर्स हैं, 4 सेंटर्स हैं, वहाँ 1 साल का कोर्स है, हमारे समय में ये नहीं था, और उसके लिए 4 नाटक चाहिए और रिलैक्सेशन है, और 20-20 सीट्स सारे सेंटर्स में हैं, तो 80 सीट्स और बढ़ गई
0: जी।
1: अगर आप उस नज़रिए से देखें तो, और वो बनारस, जैसे हम बात कर रहे थे, बनारस में 1 सेंटर है, 1 सेंटर हमारा बेंगलुरु में है
0: जी,
1: 1 सेंटर हमारा सिक्किम में है, और 1 सेंटर हमारा त्रिपुरा में है। तो ये 4 सेंटर पे भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर वो आपके क्षेत्र के आसपास हैं। और तीसरी चीज़, हमारे अब शॉर्ट टर्म कोर्स भी हमने शुरू किए हैं।
0: अच्छा।
1: जो पेड कोर्सेज हैं
0: जी,
1: कि अगर आपको 3 मंथ का कोर्स करना है तो वो आप साइट पे चेक कर सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, शायद 50-60,000 कुछ उसका फी है, और वो हम टाइम टू टाइम अनाउंस करते रहते हैं 3 मंथ के कोर्स।
0: बेसिकली ये डिप्लोमा कोर्स हो जाएंगे या
1: ये 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स?
0: ओके,
1: है
0: ओके।
1: ये आप अपने के किसी को है ही कि मैं कर लूं,
0: करना ही करना,
1: एज का भी फैक्टर नहीं है।
0: अच्छा।
1: किसी को लगा के, अरे मैंने जवानी में सोचा था मैं नहीं कर पाया, चलो मैं 3 महीने का एक्टिंग कोर्स NSD का कर लेता हूँ, है ना, उस तरह के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है। तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारी साइट पे वो सब है। और एक 1 ईयर कोर्स अभी हमारा बॉम्बे में चल रहा है, उसमें वो भी पेड कोर्स है।
0: अच्छा।
1: तो काफी अभी स्कोप है, और सारी जानकारी NSD की जो वेबसाइट है उस पे सारी उपलब्ध है, और सारा प्रोसेस भी उपलब्ध है उसमें।
0: बिल्कुल। और सर एक चीज और, जैसे किसी ने कोई भी कोर्स नहीं किया है और तो भी क्या उसको एक्टिंग करने का कहीं पर मौका मिल सकता है, एड एजेंसीज में या कहीं मूवी में कोई साइड रोल, तो किस तरीके से उसे अपना, उसके लिए क्या पोर्टफोलियो रेडी करना चाहिए, क्या कराना चाहिए?
1: मैडम, 90% जो लोग हैं वो नॉन ट्रेन्ड एक्टर काम कर रहे हैं, ट्रेंड एक्टर को काम नहीं मिल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: है ना, बॉम्बे में आप जाके देखिए, वहाँ पे कास्टिंग एजेंसियां हैं, आप उनसे मिलिए, बॉम्बे में

0: हाँ जी,
1: आपका लुक उसको चाहिए, आपका लुक अगर उसकी रिक्वायरमेंट में फिट है तो उसको कुछ नहीं चाहिए।
0: और अगर जैसे कोई यंग आर्टिस्ट जब रिजेक्शन फेस करता है, बहुत करते ही होंगे, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
1: मैं तो रिजेक्शन को उसकी पूंजी मानता हूँ
0: जी।
1: जब तक कोई एक्टर या कोई भी आर्टिस्ट ह्यूमिलेट नहीं हुआ, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ह्यूमिलेशन तो हमारी पूंजी है
0: जी।
1: तो बिना ह्यूमिलेशन कौन सा ऐसा काम है जो बिना ह्यूमिलेट हुए आप आगे बढ़ जाओगे? होगा ही होगा।
0: मैं थोड़ा यंग जनरेशन की बात, वो दिल पे लगा लेते हैं। बिल्कुल,
1: इस पे ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है ना, लुक सबसे पहले है। मैंने अभी आपको बताया,
0: हाँ जी।
1: आप फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको रिजेक्ट करने से पहले मुझे आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आप ये फाइल चला के दिखाइए, व्हाटएवर जो भी उसका। एक्टर को तो देखते ही नहीं, आप नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसकी जो रिक्वायरमेंट उसमें फिट नहीं हो। आप लाख अच्छे एक्टर हो, तो ये मन से नहीं लगाना चाहिए किसी भी यंग एक्टर को, क्योंकि ये फील्ड ही लुक का है। पहले लुक है, अगर आप थोड़े बहुत उसके लुक में हो तो उस जैसे वो पांच छह लोग छांट लेगा
0: जी।
1: फिर वो उनको टास्क देगा, अच्छा ये डायलॉग बोल के दिखाइए, ऑडिशन लेगा, फिर जो उसको सूट करेगा उसको कास्ट करेगा। इस तरह अगर हम नाराज होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, वो दुख होगा भी, लेकिन उसको कोई चारा नहीं है, ये उसका प्रोसेस का, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस है। आपको उससे बचना,
0: मतलब ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए,
1: ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। ऑडिशन दो, भूल जाओ। अगर आपका होगा, आपको फोन करके ढूंढ लेगा, पाताल से भी ढूंढ निकालेगा
0: जी।
1: आपने ऑडिशन दिया, आप अगले दिन बंबई छोड़ के होनोलुलु चले गए, मान लीजिए वो आपको होनोलुलु से बुला लेगा,
0: हाँ जी,
1: कि सर आप सिलेक्ट हो गए, आ जाइए, और आप उसके दरवाजे पे खड़े रहिए ऑडिशन देके, वो आपको बेइज्जती करेगा फिर, भाई साहब नहीं हुआ, आप जाइए घर, क्या करें।
0: तो सर आपकी ये बात हमें तो बहुत मोटिवेट कर रही है, लेकिन आप किस चीज से मोटिवेट होते हैं अपनी लाइफ में?
1: अपनी लाइफ में मुझे तो लगता है आर्ट ही हमें मोटिवेट करता है, और दूसरों का अच्छा काम मोटिवेट करता है कि काश ये मैंने किया होता। वो जिस दिन खत्म हो जाएगा कि मैंने तो सब कर लिया, अब मैंने पा लिया है सत्य,
0: हाँ जी,
1: तो खत्म हो जाओगे। वो मोटिवेशन होता है जब आप किसी दूसरे का काम देखते हो और आपको लगता है काश ये मैंने किया होता
0: जी,
1: वही मोटिवेट करता है।
0: बहुत अच्छी बात है आपने बताई है हमें। और सर अब लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे। सबसे पहले थिएटर या सिनेमा?
1: थिएटर।
0: डायरेक्टर या एक्टर?
1: एक्टर।
0: स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइजेशन?
1: ये डिपेंड करता है कि कहाँ हो रहा है, क्या
0: जी,
1: हो रहा है।
0: जी जी। एनएसडी के दिन या आज का सफर?
1: एनएसडी के दिन।
0: एक वर्ड में थिएटर को अगर डिफाइन करना हो?
1: सत्य है।
0: और एक वर्ड में अगर सक्सेस के लिए कुछ बोलना हो?
1: मन की शांति।
0: वाओ, बहुत ही सुंदर आपने जवाब दिया हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने जो लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं, इसमें हर जनरेशन के लोग सुन रहे होंगे, यंग पीढ़ी भी हमारी सुन रही है, मिडिल एज भी, और तो उनके लिए आप क्या अपने तरफ से एक संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप थिएटर से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो पहले थिएटर देखना शुरू कीजिए, थिएटर को प्रमोट कीजिए, है ना, पहले उसकी एस्थेटिक को समझिए, और लिटरेचर पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, किसी भी लैंग्वेज का पढ़िए, वो आपको बहुत आनंद देगा। मैं बता रहा हूँ, किसी भी वेब सीरीज को देखने से ज़्यादा आनंद देगा। और लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको थिएटर और अच्छे से समझ आएगा
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आशा करते हैं आपके आगे के प्रोजेक्ट्स में भी आपको बहुत सफलता मिले, और फिर से हम आपको ऐसे ही बुलाएं। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज एनएसडी के प्रोफेसर मिस्टर रामजी बाली जी, जिन्होंने हमें बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें समझाई एनएसडी थिएटर और फिल्म जगत के बारे में। तो अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे इसी शो क्रिएटिव मंच में, और मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। हमारा शो हर बार बहुत स्पेशल होता है क्योंकि हर बार बहुत ही खास एक पर्सनालिटी हमारे साथ यहां पर मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ हैं पूजा मैम। पूजा गर्ग मैम इंदौर से हैं और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें सरप्राइजिंग हैं, आपके लिए भी होने वाली हैं, आई एम डैम श्योर। आप जब ये शो खत्म कर चुके होगे, सुन चुके होगे, सो यू विल हैव दैट मोटिवेशन टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू। सो जस्ट कीप लिसनिंग टू दिस शो एंड लेट्स स्टार्ट द शो बाय वेलकमिंग पूजा मैम। हाई मैम, वेलकम टू अवर शो।
2: थैंक यू सो मच।
1: प्लीज़ मैम, मैं आपके शब्दों में जानना चाहूँगा, आप बताइए आप क्या करते हैं, क्या आपका डोमेन है, सब कुछ।
2: जी, मैं इंडिया टीम की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ कयाकिंग कैनो गेम्स से, और इस साल का राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे पर्सन विद डिसेबिलिटी का रोल मॉडल का अवार्ड मिला है, और मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। इंदौर से नाथुला तक मैंने फोर व्हीलर बाइक के थ्रू नाथुला में तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित करा है।
1: जी जी, बहुत सुंदर। मैं सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अगर आप बता सकें कि क्या हुआ था आपके साथ लाइफ में, कैसे लाइफ जो है वहाँ से टर्न हुई, और उसके बाद फिर कैसे आपको ये लगा कि नहीं यार, आई हैव टू लिव लाइफ एज अ चैम्पियन।
2: मुझे लगता है सबसे पहले मैंने वो बताया जो मैंने अचीव करा, पर शायद वो सफ़र अब बताऊंगी जिसके थ्रू गुजर के मैंने ये अचीव करा। 2010 में जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, और सेम डे जिस दिन मेरी जॉइनिंग थी उस दिन मैं सीढ़ियों से गिर गई और मेरा स्पाइनल का उसी दिन सेम डे ऑपरेशन हुआ। मुझे लगा शायद लाइफ ना वहीं स्टॉप हो गई थी, और वो कहते हैं ना कि किस बात की सज़ा मिली है, बस ये सोचती रही, कई सालों तक बैठ पे रही। मेरे 13 मेजर सर्जरीज हुई हैं, 7 सालों तक मैं बैठ पे रही। फिर लगा कि नहीं, लाइफ में जो हो गया उसे लेकर बैठना नहीं है, मुझे एक अपने लिए यू टर्न लेना है। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो चुकी थी, जॉब लग चुकी थी, पर वो पूरा सेशन पीछे रह गया था, लाइफ कुछ और चाहती थी। तो मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव हुई और मैंने शूटिंग ज्वाइन करी, मैं नेशनल शूटर हूँ। उसके बाद मुझे लगा मेरा, मैंने कई मेडल्स जीते हैं शूटिंग में, मुझे लगा मेरा अल्टीमेट गोल है अब अपने जीवन का कि मुझे देशभक्ति के लिए कार्य करना है, और वो कैसे हो पाएगा, वो मेडल जीत के ही हो पाएगा। तो बस उसी को मद्देनज़र मैंने कयाकिंग कैनो गेम ज्वाइन करा, और मैंने इंडिया को 3 बार इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करा है, और मैं एशियन चैम्पियनशिप की मेडलिस्ट हूँ। और ये सब इतना इजी नहीं था, आज मैं पूरी तरह से व्हीलचेयर यूज़र हूँ, कैंसर फाइटर हूँ। 2024 में मेरे साथ फिर से मुझे लाइफ ने एक अपॉर्चुनिटी दी। मुझे लगता है जब जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी बन के ही आती है। तो जब मुझे पता पड़ा कि मुझे बोन कैंसर है, तो मैंने इस चीज़ को भी ग्रैब करा और अपना बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करी। मैंने इंदौर से नाथुला तक फोर व्हीलर बाइक के थ्रू 4500 किलोमीटर की यात्रा करी, जो 4400 फीट की ऊंचाई पे गई, और इस नाथुला में जाकर मैंने तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित करा जिसका मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है जब भी आपकी लाइफ में परिस्थिति खराब आए, तब शायद ईश्वर और वो स्थिति और परिस्थिति आपको एक मौका देती है कि आप कैसे उसमें बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए। हर चीज़ को रोककर या उस चीज को कोसने से कुछ नहीं होगा, शायद बोलते ना कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना होगा। तो हम जब तक अपनी स्थितियों से लड़कर कहीं बेस्ट करने का नहीं, और हमेशा याद रखिए कि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो बेस्ट प्लेयर होता है। तो बिल्कुल जो भी स्थिति हो या जो भी आपके साथ बीत रहा है या आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, तो एक सेकंड के लिए ये सोचिए कि शायद ये वो मौका है जिसमें आप अपने आप को बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस देकर प्रूव कर पाएंगे कि हु आई एम।
1: बहुत इंस्पायरिंग एंड बहुत सुंदर मैम, और बहुत सुंदर शब्दों के साथ आपने ये बात हमें बताई है। आगे मेरे और कुछ प्रश्न हैं, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद अपने शो में हम आगे बात करेंगे। पूजा मैम हमारे साथ हैं एंड आई एम डैम श्योर कि मोटिवेशन तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन मोटिवेशन से भी बड़ी जो चीज़ है वो है जिंदगी जीने का एक एटीट्यूड, एक नजरिया, वो मुझे लगता है अगर आपके पास होगा तो शायद आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। विल टॉक अबाउट इट, बट फिलहाल वक्त एक म्यूजिकल हॉल्ट का। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, शो इज वॉइस ऑफ यू।

0: वेलकम बैक, हमारे जैसा अगर शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ, और शो बहुत स्पेशल है हमारा। यहाँ पर हमारे साथ हैं पूजा गर्ग मैम। पूजा मैम से हमने अभी तक बात करी है, मैम ने बताया कि किस तरीके से जिस दिन उनकी जॉइनिंग थी उसी दिन उनकी लाइफ जो है पूरी चेंज हुई। स्टेयर्स से वो स्लिप हुए, स्पाइनल सर्जरीज हुई, और उसके बाद लेकिन वहाँ पर गिव अप नहीं किया उन्होंने, अपनी लाइफ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया। उसमें देखा कि वट कैन आई डू विद इन दीज सर्कमस्टांसेज, एंड आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट थिंग जो मुझे लगता है कि आज आपके लिए सबसे बड़ा टेकअवे हो सकता है कि आपकी लाइफ जो भी आपको परिस्थिति दे रही है आप उसमें से क्या बेस्ट बना सकते हो। आई थिंक दैट्स वॉट मैटर्स। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जब ये हुआ, जब आप बिल्कुल बेड रिडन हो गए, जब डॉक्टर्स ने जाहिर सी बात आपको बोला होगा यू वॉन्ट बी एबल टू वॉक अगेन, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आए होंगे, परिवार की तरफ से भी बहुत सारी सिंपथी आई होगी, वहां से वो स्पार्क कैसे इग्नाइट हुआ? मैं उस एक मूमेंट की बात करना चाहता हूँ या उस एक फेज की बात करना चाहता हूँ कि कैसे आपको लगा कि यार मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा एज इट इज।
1: जी, मुझे लगता है कि शायद ये स्थिति मेरी लाइफ में नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसा था कि जो कुछ हुआ है उसमें, अब मैं घर में सबसे बड़ी बहन थी, मेरी दो छोटी बहन थी, अगर मैं टूट जाती तो शायद वो मुझसे पहले बिखर जाती, तो उनको देखते हुए मुझे अपने आप को हमेशा मजबूती से खड़ा करना था। और मैं बताऊँ, मेरी मदर टीचर हैं, तो एक टीचर हमेशा ही एक टीचर होती है, वो हर पल अपने बच्चों को या जहाँ भी उन्हें बच्चे मिलते हैं शिक्षा देती हैं। मेरी मदर ने यही सिखाया कि तुम्हें इस स्थिति से लड़ना है, तुम्हें अपने दिमाग से, दिल से लड़ना है, तो शायद तुम आधी जंग जीत जाओगी। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करा है कि तुम्हें इस कमरे से, जब तुम चल नहीं सकती हो, तुम बैठ नहीं सकती हो, तो तुम उड़ पाओगी, तुम्हें अपने में इतनी रफ्तार लाना है कि तुम्हें चलना या बैठना ना पड़े, तुम्हें उड़ना की आदत डालनी होगी, तुम्हें अपनी रफ्तार को बढ़ानी होगी। जो समय एक बोलते ना, एक समय जो आपने खराब कर दिया ऑपरेशंस में या बैड रिटर्न होके आपने जो खराब कर दिया, उन सब को आपको यूटिलाइज करना है। अब लाइफ में कुछ ऐसा कर जाना है जो खुद के लिए, तो हर व्यक्ति खुद के लिए करता है, जो खुद के लिए तो करोगे ही करोगे, पर दूसरों के लिए मिसाल बनना है। तो बिल्कुल यही हुआ लाइफ में भी कि मैंने खुद को तो मोटिवेट करा ही, साथ में मुझे लगता है कि मेरे जैसे कई दिव्यांग जिन्हें लगता है कि शायद लाइफ ने उनके साथ गलत करा है या एक थॉट जाता है, शायद अगर हम इसी चीज को लेकर बैठे रहेंगे तो अपना पॉजिटिव साइड नहीं देख पाएंगे, हमें उस पॉजिटिव साइड पे फोकस करेंगे तभी हम उस अंधेरे से निकल पाएंगे। तो जस्ट मैंने भी यही करा और आज जो कुछ भी हूँ उस पॉजिटिव साइड के कारण ही हूँ। वो पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको अगर मैं बताऊँ, अगर आप एटीट्यूड को पेपर पे लिखेंगे और ए को जैसे 1 लिखेंगे और टी को 18 लिखेंगे, इस तरह से जब नंबरिंग देंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एटीट्यूड हमेशा 100 होता है। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, वो हमेशा 89% और 98% होता है। लेकिन पॉजिटिव और रीस्टार्ट लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, रीस्टार्ट 101% होता है। जब भी आप लाइफ में आपको रीस्टार्ट मिले ना, मतलब आप हमेशा अपने 100% से ज़्यादा ही परफॉर्म करके बताएंगे, ये सोच के रखना चाहिए।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। काफी ऐसे लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूं और शायद इस टाइम आपकी आवाज भी सुन पा रहे हैं, जिनके साथ अगर कुछ ऐसा होता है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या कोई और इशू उनकी लाइफ में होता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, दे एक्सेप्ट इट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आसपास के लोग भी गलत करते हैं उनके साथ, उनको सिंपैथी दे करके। द पॉइंट इज नॉट अबाउट द सिंपैथी, द पॉइंट इज अबाउट द एम्पैथी, वो एक मेजर चीज है। व्हाट यू वांट टू से टू देम जिनको आप ये देख रहे हो इस टाइम पर कि वो उस फेज से गुजर रहे हैं किसी से, एंड दे हैव एक्सेप्टेड देयर फेट कि मेरी जिंदगी तो यही है, अब तो मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ और मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा कुछ, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? हाउ टू इग्नाइट दैट स्पार्क?
1: जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन्हें भी लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, तो बस ये सोचिए कि आपको एक मटका दिया गया है, छोटा सा जार है, उसमें सभी लोगों की, आपके आसपास जितने भी रिलेट लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स डाली गई है, और आपको रैंडमली एक चिट पिक करना है, और वो चिट में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपकी स्वैप हो जाएगी। आप उसी टाइम सोचेंगे कि मेरी जो प्रॉब्लम है शायद वो इतनी बड़ी नहीं है जितना मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो बिल्कुल वही है कि जब जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो किस फेज से गुजर के आज सक्सेस हुए हैं, और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने लड़ाई से निकलकर आगे बढ़ते हैं तभी जाके अचीवमेंट्स काउंट होती है। आज जब राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे बेस्ट दिव्यांगजन अवार्ड मिला तो वो मेरा एक अचीवमेंट पार्ट था। तो मुझे लगता है कि जब जब आप अपने लिए बेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। आज मैं एक पंखों की उड़ान के नाम से एनजीओ चलाती हूँ और और उसमें मैं बच्चों को गुड टच बैड टच, ऑनलाइन बुलिंग और साइबर क्राइम के लिए एजुकेट कर रही हूँ। और आज दिव्यांगजनों के लिए, आज मैं खुद भी एक दिव्यांग हूँ, मुझे लगता है जिंदगी में मैंने जो पाया है वो हमें किसी को देना है। शायद ये जब देने का भाव आप में आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिक आप एक ग्रेटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में जब जब आता है, तो आप अपने आप में देखेंगे आप एक शांति की तरफ, एक बोलते ना एक वो फेस में आते हैं कि जो है बस मुझे वो दुनिया को देना है, जो लोगों की तकलीफ है उसे सुनना है, समझना है, सामने वाले को समझाना है कि नहीं तुम इस चीज़ को भी रिकवर कर जाएंगे। तो आप ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए अपने आप में और देखिए सब चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक तो समझ आ गया कि ज़िंदगी जीने का नज़रिया कैसा होना चाहिए और कैसा हो सकता है इन एनी गिवन सिचुएशन, इन एनी गिवन सर्कमस्टेंस। यू जस्ट हैव टू फाइंड अ वे कि आप क्या कर सकते हो उसमें। दैट इज़ अ होल पॉइंट। वक्त एक और छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। फील गुड, फील लाइफ।

0: जीवन यात्रा के बारे में तो बात कर ली है ना, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कैकिंग पार्ट, प्लीज उसके बारे में बताइए, व्हाई कैकिंग?
1: जी, मुझे लगता है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरा अल्टीमेट गोल था मेडल जीतना. आप बोलते हैं ना, पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं. आपका अल्टीमेट गोल आपको लाइफ में फिक्स करना होगा कि आई वॉन्ट दिस. उसके लिए जो आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं वो करिए. तो यही था कि मैं शूटिंग करती थी, पर शूटिंग काफ़ी कॉस्टली गेम था और मेरी अकेली मदर है तो वो नहीं हो पा रहा था. और मुझे था कि मुझे इंडिया टीम की इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, इंडिया को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना है, अपनी जर्सी पे इंडिया लिखवाना है. तो उसके लिए मैंने मेहनत करी और मैंने कयाकिंग कैनो के बारे में सुना और मैं इस चीज़ को मैंने फॉलो करा और मैं इंडिया को 3 बार इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करा है, उज्बेकिस्तान, जापान और थाईलैंड. थाईलैंड में एशियन चैंपियनशिप में मैं मेडलिस्ट हूँ, 2 ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीते हैं. तो आपको अपना लक्ष्य तय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे क्या चाहिए और वो कैसे चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है. उसकी 1000 प्रोसेस हो सकती है, 1000 तरीके से आप अपने वे से उसको कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य जब आपका फिक्स होता है तो शायद आप डगमगाएंगे नहीं. तो सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य तय करिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे चाहिए, वो सेकंड पार्ट है. और जो सेकंड पार्ट है उसके बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, लेकिन

0: अल्टीमेट गोल फिक्स करना बहुत जरूरी है।
1: आपके लाइफ में जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद जो आपका जीवन परिवर्तन हुआ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपका नजरिया बहुत बदला होगा जीवन को लेकर के। मैं रेडियो पर अमूमन शोज करता हूँ, हर रोज़ का हमारा एक काम है, और मैं डेली ऐसे जब रिसर्च करने बैठता हूँ तो मेरे समक्ष ऐसे बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, ऐसी खबरें आती हैं कि किसी ने यहाँ अपनी जान दे दी, किसी ने वहाँ अपनी जान दे दी, किसी के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे इसने उस लिए अपनी जान दे दी, किसी के ऊपर कुछ पैसे का कर्जा था उसने उसके लिए जान दे दी, किसी का अपनी बीवी के साथ झगड़ा हो गया उसने उसके लिए जान दे दी। ये जब मैं देखता हूँ तो मुझे सच में एक डर लगता है, खौफ अंदर से खाता है कि क्यों हम इतना जल्दी गिव अप करने लग जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जब आपके साथ वो हुआ, आपके जीवन में जो नजरिया बदला आपका, वो क्या था, क्या आपने नया पाया अपनी जिंदगी में कि दिस इज दैट साइड ऑफ माय लाइफ जो शायद मुझे, अगर मैं नॉर्मल जैसे मेरी पहली जिस रफ्तार से लाइफ चल रही थी उससे जीती रहती शायद मुझे कभी मिलता भी ना। ये
0: मुझे लगता है कि आज अगर ये हादसा ना हुआ होता तो मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती और शायद आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं ले रहे होते, लेकिन वो हादसे ने आज मुझे स्पेशल बनाया है। उस हादसे से मैंने अपने आप को जो दिया है उसने मुझे स्पेशल बनाया है। तो हमेशा जो हुआ है उसे एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि आप क्या हो। आज जो आप कह रहे हैं लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें एक होड़ में जीना है, उन्हें इससे आगे निकलना है, उन्हें उससे आगे निकलना है, वो एक जो होड़ है ना वो कहीं ना कहीं उन्हें दुख दे रही है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं नहीं हो रहा है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप एक दिन के लिए वो आर्मी वाले से अपनी लाइफ स्वैप करके देखिए जो इतनी बीहड़ जगह पर या इतनी ठंड में अपने आप की ड्यूटी कर रहा है, तो आज आप तो उससे बहुत बेटर कंडीशन में हैं। मैं तो कहती हूँ ज़्यादा कुछ नहीं तो आप तो सिर्फ वो जो रेलवे ट्रैक पे रेल को रास्ता दिखाते हैं, बस एक दिन के लिए उनके साथ जाकर खड़े रहिए तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी डिफ़िकल्टीज से हमारे को सेव कर रहे हैं। जब जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे ना जो समाज के लिए, समाज को कुछ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप या तो एक हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आइए कि वहाँ जो परेशानियाँ से जूझ रहे लोग वो हर पल एक ज़िंदगी के लिए भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, और जब आपके पास सब कुछ है तो आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं, क्या ये सही है?
1: शुक्रिया मैम हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। मेरे सवाल यहाँ पर ख़त्म होते हैं। कोई वैसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आपके जहन में हो, कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई विचार, तो प्लीज़ लोगों तक पहुँचा सकती हैं आप?
0: जी, मैं एक चीज़ मानती हूँ, मेरा एक कोट है खुद का कि बड़ी ढीठ है मेरी चाहतों की चिड़ैया, वो धरा नहीं गगन मांगती है, कहाँ मिली है किसी को सफलता राह चलते, वो तो परिश्रम और लगन मांगती है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए तो देखिए कैसे सफलता आपके साथ नहीं आती है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड मैं दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने बीड़ा उठाया, एक संकल्प के तौर पर उसको लिया और हमारे देश को आपने रिप्रेजेंट किया। शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा, राष्ट्रपति जी ने आपको जिस तरीके से सम्मानित किया उसके लिए शुभकामनाएं आपको, और थैंक यू सो मच। इस टाइम भी आप यहाँ पर आए हैं मानव रचना के प्रांगण में, और यहाँ पर हरित अविस्तारक आप जो है इसके लिए काम कर रहे हैं, इस दिशा में एनवायरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए भी आप NGO चला रहे हैं, इट मीन्स अ लॉट टू अस, थैंक यू सो मच मैम।
0: थैंक यू सो
1: मच। ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, वक्त है अपने शो यहाँ पर कंक्लूड करने का। आई जस्ट होप आपने पूजा मैम की जो बातें सुनी होंगी आपका जिंदगी को लेकर थोड़ा तो स्पार्क इग्नाइट हुआ होगा। अब देखिए, इतनी ही यात्रा होती है किसी भी एक इंसान की, रोल मॉडल की, मोटिवेशनल स्पीकर की, कि वो आपके अंदर वो स्पार्क इग्नाइट कर सकते हैं, उसको फ्लेम कैसे बनाना है और उसको ज्वालामुखी कैसे बनाना है, ये आपकी अपनी यात्रा है, इसको जरूर तय करिए। बट हाँ, गिविंग अप इज नॉट द सॉल्यूशन, इट वाज नेवर अ सॉल्यूशन, इट विल नेवर एवर बी अ सॉल्यूशन, सो डोंट एवर गिव अप, जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट हाउ कैन वी डू थिंग्स डिफरेंटली, दैट्स द ओनली वे व्हाट मैटर्स। नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट RJ Sagar, साइनिंग ऑफ।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। देखिए किसान भाइयों, हर कोई चाहता है कि उसकी फसल बेहतर से बेहतर हो और उससे उसको लाभ भी बेहतर से बेहतर मिले। लेकिन किसान भाइयों, बेहतरीन फसल पैदावार के लिए खेत की जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जांच जरूर करनी चाहिए। मिट्टी की जांच करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ता है। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही है। किसान फसल की बेहतरीन उपज प्राप्त कर सके इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया जाता है। इस योजना के मुताबिक किसान भाई अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करा लेते हैं। मिट्टी की जब जांच हो जाती है, उस जांच के मुताबिक आप कोई भी फसल बोते हैं तो आपको उपज अच्छी मिल जाती है और उसके दाम भी आपको बेहतर मिल जाते हैं, आपको लाभ हो जाता है। लेकिन सवाल है कि जाँच कराने के बाद रिपोर्ट के आधार पर खेती कैसे करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: किसान भाइयों, बात कर रहा था मैं आपसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, यानी सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, जो कि एक योजना है सरकार ने किसान भाइयों के लिए चलाई है। इससे क्या होता है, आपके खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच की जाती है। जांच कराने के बाद रिपोर्ट के आधार पर खेती की जाती है, जिससे किसान भाइयों आपकी जो लागत है वो कम आती है, साथ ही उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। किसान भाइयों, आपके खेतों की मिट्टी की जांच करने के लिए प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, जहां वैज्ञानिक मिट्टी की जांच के बाद उसमें मौजूद गुण या दोष की सूची तैयार करते हैं। इस सूची में मिट्टी से जुड़ी जानकारी और सटीक सलाह होती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत खेती करने पर किसानों को बेहतरीन फसल पैदावार हासिल होती है, साथ ही मिट्टी का भी संतुलन स्थिर बना रहता है। तो कहने का मतलब है किसान भाइयों, आप इस कार्ड के माध्यम से, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से, अपने खेत की मिट्टी की जांच करा के बेहतर से बेहतर लाभ हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि भाई, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने का तरीका क्या है? तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के तरीके के बारे में। सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार कराने के लिए किसान भाइयों, आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट यानी soilhealth.dac.gov.in पर जाना होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और सुन लीजिए, एक आधिकारिक वेबसाइट है जिस पे आपको जाना होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उस पे जा सकते हैं, मोबाइल पे भी जा सकते हैं। एक बार नाम और सुन लीजिए, soilhealth.dac.gov.in, यानी कि इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। उसके बाद होम पेज पर मांगी गई जानकारी को भरकर लॉगिन करना होगा। जो भी आपसे जानकारी मांगी जाए उसको आप भर दें। अब पेज खुलने पर राज्य का चयन करें, जिस राज्य में भी हैं आप, चाहे आप हरियाणा में हैं, यूपी में हैं, जिस प्रांत में आप रहते हैं उस प्रांत को आप सेलेक्ट कर दें। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको पंजीकृत न्यू यूज़र के विकल्प का चयन करना पड़ेगा। इस तरह से आप सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के तरीके के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएंगे। लेकिन कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताऊँगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, आपको बता रहा था कि किस तरह से सॉयल हेल्थ कार्ड को बनाया जा सकता है। ये वो कार्ड है जो आपकी मिट्टी की जांच करवाने में सहायक साबित होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जाइए जिसका नाम है soilhealth.dac.gov.in। यहाँ पर जाकर के आपको पेज खोलना है। पेज खोलने के बाद जो भी राज्य में आप रहते हैं उस राज्य को सेलेक्ट करना है। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको पंजीकृत न्यू यूज़र के विकल्प का चयन करना पड़ेगा। किसान भाई, आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी डिटेल्स सही सही भरें। इसके उपरांत सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। किसी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े तो किसान भाई हेल्पलाइन नंबर 011-2430-5591 और 011-2430-5948 पर संपर्क साध सकते हैं। नंबर एक बार और सुन लीजिए, 011-2430-5591। दूसरा नंबर है 011-2430-5948। इन दोनों नंबर पर आप किसी पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्प डेस्क soil@gov.in पर भी ईमेल भी किया जा सकता है। अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्न।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में, उसकी योजना के बारे में, और किस तरह से ये बनाया जाता है, कहां कहां संपर्क किया जा सकता है, इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के फायदे क्या क्या हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस योजना के मुताबिक कोई भी भारतीय किसान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, शर्त यही है कि वो हमारे देश भारत का रहने वाला हो, यहाँ का नागरिक हो। भारतीय किसान अपने खेत की मिट्टी की आसानी से जांच करवा सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से, और भी बहुत सारी जानकारियां इसी कार्ड के माध्यम से ली जा सकती हैं कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों का अभाव है, ऐसे कौन से तत्व हैं जो कि हमारी मिट्टी में होना चाहिए जिससे कि हमारी फसल बेहतर से बेहतर हो सके। तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। इसी कार्ड से संबंधित कुछ और पूरी बातें हैं आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
2: किसान भाइयों, आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में, उसके फायदे के बारे में, और इस योजना से आप कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो सारी बातें बताई हैं, और आपके खेत की जो मिट्टी है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पोषक बनाया जा सकता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन साथ ही कितना जल उपयोग करना है और किस फसल की खेती करने से आपको अधिक फायदा मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखिए, जब आपका कार्ड बन जाए, कार्ड बनने के बाद आप सभी किसान भाइयों को उत्पादक क्षमता, मिट्टी में नमी का स्तर, मिट्टी की सेहत क्वालिटी के साथ साथ मिट्टी की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को सुधारने के तरीकों की भी जानकारी आपको मिल सकती है इस कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से। तो इस कार्ड से आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, अपनी फसलों को बेहतर से बेहतर बनाइए। इसी बात के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं, और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM, और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: अरे कुट

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरे थोता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चीलों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की, संत्रास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की? इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी, ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देखकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गौंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गौंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं, कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: से दिल में समा, आ जा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
1: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
2: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
3: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 करते हैं हम कुछ खास बातें, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आती हूं कुछ ट्रेंड से जुड़ी हुई बातें। साथ ही करते हैं हम किसी स्पेशल डे पर भी बात, और उसी के साथ किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर भी हम बात करते हैं, बड़े ही डीपली उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आज भी एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही खास है, जी हाँ, हम सबसे जुड़ा हुआ है, और मुझे पता है हम सबकी लाइफ में वो एक पल ज़रूर कभी ना कभी आया होगा। आज का ये प्रोग्राम सुनकर ना आप ज़रूर, मुझे पता है, अपने बचपन को या अपने कुछ बीते दिनों को ना याद करने वाले हैं, क्योंकि आज ये जो एपिसोड है ना, ये जो प्रोग्राम है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, ये एक कहीं तो हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ वाला एक किस्सा है, क्योंकि ये जो एक इनिशिएटिव है, जो ये कैंपेन है जिसकी आज मैं बात करने वाली हूँ, ये है एक नेशनल मूवमेंट, जी हाँ, नेशनल रीडिंग मिशन 2026। इस एपिसोड का थीम है किताबों से मुलाकात, ज्ञान की सौगात। दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब एक फास्ट डिजिटल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। रील्स हो, शॉर्ट्स हो, नोटिफिकेशन हो या फिर सोशल मीडिया अपडेट्स, इन सब के बीच में हम इंफॉर्मेशन तो बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी डीप थिंकिंग है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसी गैप को फिल करने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है, इस मिशन की पहल करी गई है, जिसको सिंपल सा ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है कि रीडिंग को एक हैबिट नहीं बल्कि एक कल्चर और मूवमेंट बनाना है। इस मूवमेंट का एक कोर मैसेज है, रीड इंस्पायर एंड एम्पावर। एक और पावरफुल बिलीव भी है इसी के साथ जुड़ा हुआ, एवरी वॉइस कैन इंस्पायर अ रीडर, एवरी रीडर कैन इंस्पायर अ नेशन। इस मिशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके साथ आए हैं, जिन्होंने ये पहल को शुरू किया है। सबसे पहले कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया, जो एजुकेशन को मीडिया और टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेसिबल बनाता है। साथ ही कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन, जो ग्रास रूट लेवल पर कम्युनिटीज को जोड़ता है। साथ ही PN पेनिकर फाउंडेशन, जिन्होंने इंडिया में लाइब्रेरी और रीडिंग मूवमेंट को एक पब्लिक रेवोल्यूशन बनाया था। और हम, यानी कि आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM, जो इस मैसेज को हर लिसनर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये सब मिलकर एक ही विजन को आगे बढ़ा रहे हैं कि रीडिंग सिर्फ स्कूल्स या फिर सिलेबस तक ही लिमिटेड ना रहे, बल्कि हर घर तक पहुंचे, हर इंसान तक पहुंचे, और हर जनरेशन इसका पार्ट बन जाए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और जब आज हमने समझ ही लिया है कि नेशनल रीडिंग मिशन 2026 क्या है,

में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन इस पहल को आगे लेकर चल रहा है, तो चलिए थोड़ा डीप इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं कि आखिर रीडिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में। दोस्तों, रीडिंग सिर्फ एक हॉबी या फिर कहीं तो टाइम पास कोई एक्टिविटी नहीं है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो डायरेक्टली हमारे माइंड को, हमारी पर्सनैलिटी को और हमारी थिंकिंग को शेप करती है। जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ वर्ड्स नहीं देखते हैं, बल्कि हम एक दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हर बुक हमें नए पर्सपेक्टिव से मिलवाती है, किसी नए आइडिया से इंट्रोड्यूस करवाती है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो इसका होता है रीडिंग का, वो है थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करता है। जी हाँ, रीडिंग हमें सिखाता है कि हम किसी भी सिचुएशन को सिर्फ एक एंगल से नहीं, बल्कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। ये स्किल लाइफ में हर डिसीजन में काम भी आती है। दूसरा बेनिफिट होता है ब्रेन स्टिमुलेशन और मेंटल ग्रोथ। जब हम रेगुलर रीडिंग करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है और नए कनेक्शंस भी बनाता है। इससे लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है और मेमोरी भी इससे स्ट्रांग होती है। तीसरा बेनिफिट है नॉलेज और अवेयरनेस इंक्रीज होना। जी हाँ, बुक्स हमें ऐसे एक्सपीरियंस और फैक्ट देती है जो हम पर्सनली हर जगह से नहीं सीख सकते। इससे हमें दुनिया को बेटर समझने में हेल्प करता है। और चौथा बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई यूज करता है, यानी कि कम्युनिकेशन। हम सब बात करते हैं तो इसलिए रीडिंग से हमारी वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन नेचुरली इम्प्रूव होते हैं, जिससे हम अपनी बात को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाते हैं। और एक और बात जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिट देती है वो है मेंटल पीस और स्ट्रेस रिडक्शन। एक अच्छी बुक हमें डेली टेंशन से दूर ले जाती है। कुछ टाइम के लिए हम एक अलग वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ हमारा माइंड रिलैक्स होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रीडिंग हमारी पर्सनैलिटी को साइलेंटली बिल्ड भी करती है। ये हमें ज्यादा थॉटफुल, पेशेंट और एम्पैथिक बनाती है। सोचिए, अगर हर इंसान अपनी लाइफ में डेली सिर्फ 15 से 20 मिनट रीडिंग को दे, तो कितनी स्ट्रांग और अवेयर सोसाइटी बन सकती है। तो दोस्तों, रीडिंग एक स्मॉल हैबिट लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप है, लाइफ चेंजिंग तक। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और अब तक हमने समझा कि रीडिंग हमारी लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आज हम रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक हमारा कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है किताबों से मुलाकात, ज्ञान की सौगात, नेशनल रीडिंग कैंपेन। ये हम चला रहे हैं रेडियो पर और साथ ही ये 20 जून से 20 जुलाई तक इस कैंपेन को हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोग रीडिंग के बारे में जाने, रीडिंग से इंस्पायर हो और साथ ही खुद भी रीडिंग करना शुरू करें। अब तक हमने समझा कि रीडिंग हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक और रियलिटी को देखते हैं और आज की जो डिस्ट्रैक्शन फील्ड है वो है डिजिटल दुनिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां पर हर मिनट में कुछ ना कुछ नया आता है, जैसे कि नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, अपडेट मैसेजेस, और ये सब इतनी फास्ट स्पीड में होता है कि हम बिना कुछ सोचे स्क्रॉल करते रहते हैं। बस ये प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये कंटेंट अवेलेबल है। जी हाँ, प्रॉब्लम ये है कि हमारा फोकस कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहा है और यहीं पर रीडिंग एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट बन जाती है। रीडिंग हमें एक ऐसी स्पेस देती है जहां पर कोई इंटरप्शन नहीं होता, ना कोई नोटिफिकेशन होता है, ना ही कोई फास्ट स्क्रॉलिंग होती है। सिर्फ एक स्टडी फ्लो होता है जिसमें हम धीरे धीरे सोचते हैं, समझते हैं और कनेक्ट करते हैं स्टोरी के साथ। और जब हम एक बुक पढ़ते हैं तो हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो फोकस करें, और ये फोकस ही आज के टाइम की सबसे वैल्यूएबल स्किल मानी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रीडिंग हमारी अटेंशन स्पेन को भी इम्प्रूव करता है। आजकल हमें शॉर्ट कंटेंट की इतनी आदत हो गई है कि लॉन्ग कंसंट्रेशन डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन रीडिंग इस स्किल को नेचुरली रीबिल्ड करती है। और सिर्फ फोकस ही नहीं, रीडिंग हमें पेशेंस भी सिखाती है। हर पेज को समझना, हर आइडिया को प्रोसेस करना, ये सब धीरे धीरे होने वाली ग्रोथ है हमारे अंदर, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होती है। एक और हिडन बेनिफिट है कि क्रिएटिविटी हमारी बूस्ट हो जाती है। जी हाँ, जब हम वर्ड्स से अपने माइंड में इमेजेस को क्रिएट करते हैं तो हमारा इमेजिनेशन एक्टिवली वर्क करता है। ये क्रिएटिविटी राइटिंग, स्पीकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। सो दोस्तों, एक लाइन में समझे तो डिस्ट्रैक्शन फास्ट है पर शेलो है, रीडिंग स्लो है पर डीप है, और आज के टाइम में जो चीज डीप होती है वही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो रीडिंग सिर्फ एक हैबिट ही नहीं है बल्कि ये एक प्रोटेक्शन है अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शन और एक टूल है कि फोकस और क्लियरिटी आपके सामने बनी रहे। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक खास कैंपेन की, जी हाँ, जिसका नाम है रीडिंग। रीडिंग की आज हम बात कर रहे हैं, रीडिंग क्यों ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, क्या क्या उसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अब तक हमने समझा कि रीडिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, और ये कैसे डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में हमें फोकस और क्लियरिटी देती है। अब चलिए बात करते हैं एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ की, रीडिंग को अपनी डेली लाइफ का पार्ट कैसे बनाएं। बहुत से लोग ये चीज़ पूछते हैं, बहुत दिनों से ये कैंपेन चल भी रहा है, तो लोग जो पूछते हैं अगर हम रीडिंग नहीं करते हैं, हमारा मन नहीं लगता है उसमें, तो हम कैसे उसके अंदर अपना ध्यान लगाएं, इसको कैसे अपने डेली लाइफ का पार्ट बनाएं। तो ये बस उन्हीं के लिए ये खास सेगमेंट है। तो दोस्तों, सच ये है कि कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बनती है, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, इससे कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और छोटे छोटे स्टेप्स भी। सबसे सिंपल और इफेक्टिव स्टेप है, रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़िए। जी हाँ, सिर्फ 15 से 20 मिनट की रीडिंग। ये टाइम आप मॉर्निंग में ले सकते हैं या फिर नाइट में या फिर सोने से पहले। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कब पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रोज पढ़ते हैं। एक और हेल्पफुल टिप है कि अपने एनवायरमेंट को रीडिंग फ्रेंडली बनाइए। अपने पास एक बुक हमेशा विजिबल रखिए, मोबाइल को थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखिए, क्योंकि जो चीज़ आपको दिखती है वही आपकी हैबिट बनने लगती है। एक और पावरफुल आइडिया है मेरे पास, और वो ये है कि फैमिली रीडिंग टाइम। जी हाँ, सोचिए जब घर में एक टाइम ऐसा हो जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी बुक्स या फिर आर्टिकल पढ़ रहे हों, तो बिना डिस्ट्रैक्शंस के वो भी, तो ये ना सिर्फ हैबिट को बिल्ड करता है बल्कि ये बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और हम दूसरों को देखकर भी फिर वो काम करने लगते हैं ना। और दोस्तों, रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाने का एक और तरीका है, चॉइस फ्रीडम। जी हाँ, आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज करने की फ्रीडम है, स्टोरी, बायोग्राफी, इंस्पिरेशनल बुक या फिर आर्टिकल या फिर नॉलेज कॉन्टेंट। जब इंटरेस्ट होता है तो हैबिट नेचुरली डेवलप हो जाता है।

0: आती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछती हूँ कि आपने लास्ट टाइम कौन सी बुक या फिर कौन सा आर्टिकल पढ़ा था जो आपको रियली इम्पैक्टफुल लगा और आपको लगा कि इसने कुछ तो छोड़ा है मेरे अंदर। सोचिए, अगर पॉसिबल हो तो थॉट को किसी और के साथ शेयर भी कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा। नंबर हमारा बहुत ही आसान है 8010781078 पर, क्योंकि रीडिंग सिर्फ पर्सनल जर्नी नहीं होती है, ये एक शेयर्ड इंस्पिरेशन भी बन सकती है, एक सिंपल रिकमेंडेशन किसी और की रीडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रीडिंग को स्टार्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, उसको कंटिन्यू करना इम्पॉर्टेंट है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
1: गलियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली और हर हफ्ते लेकर आ जाती हूं संडे शाम 4 से 5 आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, जहां पर हम करते हैं बहुत सारी बातें, साथ ही आपके लिए लेकर आ जाती हूं बेहद ही खूबसूरत से गाने भी। और आज जो एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूं वो है रीडिंग। जी हां, आज हम रीडिंग की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। हम एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे लोगों से जुड़े, उनसे जाना कि वो रीडिंग करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या उनको पसंद है, क्या क्या चेंजेस आए उनकी लाइफ में, बहुत सारी चीजें जानी। तो बस इसी के लिए ये खास प्रोग्राम, ये खास सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आया है रीडिंग की इंपॉर्टेंस को। और अब तक हमने समझा कि रीडिंग को वो डेली हैबिट कैसे बनाया जा सकता है, अब चलिए एक और इंपॉर्टेंट लेयर को समझने की कोशिश करते हैं और वो है रीडिंग हमारी पर्सनैलिटी को कैसे चेंज कर सकती है। दोस्तों, रीडिंग का इम्पैक्ट सिर्फ नॉलेज तक ही लिमिटेड नहीं होता है, यह हमारे अंदर की थिंकिंग पैटर्न, बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्टाइल को शेप करता है। सबसे पहला चेंज जो आता है हमारे अंदर वो है वोकैबुलरी और लैंग्वेज स्किल में। जी हाँ, जब हम रेगुलरली पढ़ते हैं तो नए वर्ड्स नेचुरली हमारे एक्सप्रेशन का पार्ट बन जाते हैं। इससे हम अपनी बात को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाते हैं। दूसरा मेजर इम्पैक्ट होता है थिंकिंग स्टाइल पर। जी हाँ, रीडिंग हमें सिखाती है कि हर सिचुएशन को एक ही एंगल से नहीं देखना चाहिए। हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमें ज़्यादा बैलेंस्ड और मैच्योर थिंकर भी बना देता है। तीसरा चेंज जो हमारे अंदर आता है वो है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में। बुक्स पढ़ते वक्त जब हम सीन को विजुलाइज करते हैं, कैरेक्टर को फील करते हैं और अपने माइंड में एक वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, ये इमेजिनेशन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन में भी हेल्प करती है आपकी। चौथा बेनिफिट है फोकस और डिसिप्लिन का डेवलपमेंट। रीडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके पेशेंस मांगती है और जब हम रेगुलरली पढ़ते हैं तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी भी नेचुरली इम्प्रूव होने लगती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ, स्टोरीज और रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमें एम्पथी सिखाते हैं। हम दूसरों की फीलिंग्स और सिचुएशन को बेटर समझने लगते हैं, जो रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो रीडिंग हमें एक बेटर वर्जन ऑफ ओवर सेल्फ बनाती है, ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा काम और ज़्यादा थॉटफुल। सोचिए, एक छोटी सी हैबिट, रोज थोड़ा सा पढ़ना, धीरे धीरे हमारी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, रीडिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती है बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेशन भी देती है आपको। तो अगर आप चेंज होना चाहते हैं ना, तो रीडिंग करना शुरू करिए आज से और अभी से। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और दोस्तों, आज हम जब रीडिंग की बात कर रहे हैं और अब तक हमने जाना कि रीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है और पर्सनैलिटी उससे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें करी। और अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अब एक्शन लेना है। दोस्तों, किसी भी आइडिया की रियल वैल्यू तब होती है जब हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं, और रीडिंग के केस में भी यही सच है। इसलिए मैं आप सभी के लिए एक सिंपल सा रीडिंग चैलेंज रखना चाहती हूँ, जो इजी है, प्रैक्टिकल है और लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। पहला स्टेप, रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट रीडिंग करिए। कोई भी बुक, आर्टिकल या फिर इंस्पिरेशनल कंटेंट, बस कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। दूसरा स्टेप है, हर वीक अपने किसी फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर के साथ पढ़ना शुरू करिए। एक आइडिया, एक थॉट या फिर एक बुक रिकमेंडेशन शेयर करिए, खुद पढ़िए, दूसरों को भी शेयर करिए। तीसरा स्टेप है, हर मंथ एक नई बुक को स्टार्ट कीजिए, चाहे वो फिक्शन हो, बायोग्राफी हो या फिर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्यों ना हो। दोस्तों, ये छोटे छोटे से स्टेप्स आपकी थिंकिंग को धीरे धीरे एक्सपेंड कर देंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, रीडिंग को प्रेशर मत बनाइए, इसको एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाइए। जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो वो नेचुरली आपकी हैबिट बन जाती है। आज के टाइम में जब हम स्क्रीन से घिरे होते हैं तो रीडिंग एक ऐसा पर्सनल स्पेस बन जाता है, जहां पर हम अपने थॉट्स को समझते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और अपने आप को बेटर बना सकते हैं। सोचिए, अगर एक साथ हजारों लोग इस स्मॉल चैलेंज को फॉलो करते हैं तो कितना स्ट्रॉन्ग रीडिंग कल्चर क्रिएट हो सकता है। और दोस्तों, याद रखिए, चेंज एक दिन में नहीं आता है, लेकिन एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ का डायरेक्शन जरूर चेंज कर सकता है। तो इसलिए रीडिंग करिए, बस स्टेप्स आपको पता है वही है। तो बस आज से स्टार्ट करिए और अभी से पढ़ना शुरू करिए। आप देखिए, आपकी लाइफ में ना थोड़े दिनों में आपको कितना चेंज लगेगा। वो कहते ना 21 डेज चैलेंज, आप खुद को दीजिए 21 डेज का चैलेंज और आप देखिए कि आपको कितना फर्क महसूस होता है। और अभी वक्त हो गया, चलिए एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और अब हम आ चुके हैं स्पेशल एपिसोड के फाइनल सेगमेंट में। जी हां, जहां हम सिर्फ शो का एंड नहीं करते हैं बल्कि एक थॉटफुल मैसेज छोड़कर जाते हैं, एक थॉट छोड़कर जाते हैं ताकि आप उसे सोचें, उसके बारे में शायद आप काम करें उसके ऊपर और आपकी सोच को वो गाइड जरूर करेगा। दोस्तों, आज हमने एक सिंपल सी चीज पर इतनी गहरी बात करी है, वो है रीडिंग। लेकिन जब हम इसे ध्यान से समझते हैं तो ये सिर्फ एक हैबिट ही नहीं लगती है, ये एक लाइफस्टाइल भी बन जाती है। रीडिंग हमें नॉलेज देती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमें क्लियरिटी देती है, क्लियरिटी अपने थॉट्स की, अपने डिसीजंस की और अपने विजन की। आज की फास्ट वर्ल्ड में सब कुछ इंस्टेंट है, इंफॉर्मेशन भी, एंटरटेनमेंट भी, लेकिन जो चीज़ इंस्टेंटली नहीं मिलती है वो है डेप्थ, और रीडिंग वही डेप्थ को प्रोवाइड करती है। इसलिए आज का सिंपल सा टेक अवे यही है, रीडिंग को ऑप्शन मत समझिए, उसे एसेंशियल बनाइए। अगर आप दिन के सिर्फ 15 से 20 मिनट भी रीडिंग को दे देते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी थिंकिंग, कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी में डिफरेंस फील करने लगेंगे। एक किताब सिर्फ पेजेस का कलेक्शन नहीं होती है, वो एक्सपीरियंस का कलेक्शन होती है। हर पेज आपको कुछ नया सिखाता है, कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है। रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं, बल्कि न्यूज़पेपर हो सकता है, ई मैगजीन हो सकती है, ई रीडिंग कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना जरूरी है। और दोस्तों, याद रखिएगा, एक रीडर कभी सिर्फ रीडर नहीं कहलाता, वो ऑब्जर्वर भी बन जाता है, थिंकर भी बन जाता है और फिर एक बेटर डिसीजन मेकर भी बन जाता है। इसीलिए पूरे एपिसोड का कोर मैसेज यही है, पढ़े, प्रेरित करें, सशक्त बने। और एक और लाइन जो मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि एक किताब खोलना सिर्फ पेज पलटना नहीं होता, बल्कि अपनी सोच को नई डायरेक्शन भी देना होता है। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ट्रेंडिंग तड़का। और वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नए ट्रेंडिंग तड़का के एपिसोड में। लेकिन ये जर्नी यहीं पर खत्म नहीं होती है, ये तो अब स्टार्ट होती है आपके नेक्स्ट बुक के साथ, आपके नेक्स्ट पेज के साथ, आपके नेक्स्ट थॉट के साथ। तो दोस्तों, कीप रीडिंग, कीप थिंकिंग, कीप ग्रोइंग। वक्त हो गया है मेरा आप सभी से इजाजत लेने का। मिलूंगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: इस

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे हम लेकर आते हैं आपके लिए खास तौर पर से फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं फरीदाबाद पुलिस के एक ऐसे अधिकारी से जो विभिन्न विभागों की देखरेख कर रहे हैं, शहर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब होती है जब आप और हम मिलकर इसमें पुलिस का साथ देते हैं। हम कमियां तो बहुत निकाल लेते हैं लेकिन कई बार अपनी कोशिशों से पीछे हट जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि पुलिस वाले हमसे प्यार से बात नहीं करते, पर क्या आपने देखा है कि वो 12-14 घंटे किस तरीकों से सड़कों पर खड़े रहकर बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में आपकी सेवा के लिए तत्पर भी रहते हैं। चाहे एक्सीडेंट हो या फिर किसी तरीके का कोई झगड़े का मामला, हर जगह पुलिस पहुंचती है और कोशिश करती है कि चीजों को वहीं पर सॉर्ट किया जाए। किसी की डेथ भी हो जाती है तो बॉडी को हाथ लगाने के लिए कोई रिश्तेदार नहीं आता, अक्सर पुलिस ही आती है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, पुलिस वाले हमेशा आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ परेशानियां होती हैं उनसे तो आप तो इधर उधर मुंह बनाकर चले जाते हैं, पर वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं। खास तौर पर से मैं ट्रैफिक की बात करूं, क्योंकि ट्रैफिक तो हम सब अपने सामने 2400 घंटे देखते हैं। हम सुबह ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कहीं के लिए भी निकलें, हमें ट्रैफिक दिखता ही दिखता है। और उन ट्रैफिक की जिम्मेदारी भी निभाती है ट्रैफिक पुलिस। कैसे? ट्रैफिक किस तरीके से मैनेज होगा, ट्रैफिक जाम लगेगा, चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म हो या फिर बारिश हो रही हो, ट्रैफिक पुलिस आपको हमेशा सड़कों पर दिख जाएगी। बारिश में भी घुटनों घुटनों पानी भरा हो और आप अगर ट्रैफिक में फंस गए हो या बारिश में फंस गए हो, तो पुलिस वाला ही आपका हाथ पकड़ के आपको वहां से निकाल कर लाता है। जी हाँ, लेकिन इस बढ़ते हुए एक्सीडेंट और ट्रैफिक पे जो मैनेज हो रही है आजकल, या फिर हम कहें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा वायलेट करने लगे हैं लोग, इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कदम उठा रही है, खासतौर पर से फरीदाबाद पुलिस, इस पर आज हम चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद जयवीर सिंह जी, जो कि इंस्पेक्टर हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। जयवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी। तो जयवीर जी, आपने हाल ही में ट्रैफिक की जिम्मेदारी जो है वो फरीदाबाद पुलिस के साथ निभानी शुरू की है, उठाई है।
1: जी मैम।
0: तो मैं आपसे बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगी।
1: जी मैम।
0: मैं सवाल वो पूछूंगी जो एक आम इंसान से जुड़े हुए हैं।
1: जी।
0: हम फरीदाबाद की बात करते हैं और कुछ साल पहले फरीदाबाद शहर में लोगों को सीट बेल्ट लगाने में भी दिक्कत होती थी।
1: जी मैम।
0: यहाँ पर अक्सर वो लोग देखे जाते थे जो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच के सीट बेल्ट लगाते थे।
1: जी मैम।
0: उससे पहले सीट बेल्ट नहीं लगाते थे।
1: जी मैम।
0: अगर बाइक या स्कूटी पे जा रहे हैं तो भी हेलमेट दिल्ली बॉर्डर के पास ही लगाया जाता था।
1: यस मैम।
0: लेकिन अब ये ऐसा शहर बन गया है जहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या फिर जेवर एयरपोर्ट को जाने वाली सड़कें एक्सप्रेसवेज बन गए हैं।
1: जी मैम।
0: जहाँ पर लगातार हाईवे पर एक के बाद एक 7 फ्लाईओवर्स बन गए हैं, जहां पर सूरजकुंड रोड इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि आप गुड़गांव जाएं या फिर दिल्ली जाएं, आपको ट्रैफिक तेज रफ्तार से चलता हुआ मिलेगा।
1: जी मैम।
0: तो ऐसी परिस्थिति में जयवीर जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि कौन सी ऐसी सबसे कॉमन मिस्टेक है या गलती है जो हम जैसे नॉर्मल नागरिक करते हैं और ट्रैफिक को खराब कर देते हैं या फिर एक्सीडेंट्स को बढ़ा देते हैं?
1: जी मैम। ड्राइविंग करता है तो आदमी का आजकल स्ट्रेस में बहुत रहता है या फोन पे बिजी रहता है।
0: जी।
1: वो अपने फोन पे बिजी होने के कारण सीट बेल्ट भी लगानी ध्यान नहीं रहती उनको। पहली गलती ये करता है।
0: जी।
1: और फिर वो सीट बेल्ट भी लगाता है, फिर ध्यान फोन पे, जैसे फोन पे चला जाता है, वहाँ पर से फोन आ गया या दोस्त आ गया, जैसे ऑफिस जा रहा है वहाँ से आ गया, तो ये चीज, इसके लिए हम उसको रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग का चलान करते हैं।
0: जी जी। यानी दो तीन चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं करते
1: हैं। और जैसे सीट बेल्ट नहीं लगा रहा था उसका चलान करते हैं हम, और स्पीड में है तो उसका चलान करते हैं। और हमें ये लगता है भाई नशे में लगता है तो उसको चेक करके उसको अगर उसका नशे का संबंधित है वो चलान भी करते हैं हम।
0: जी जी। जयवीर जी, नशे की आपने बात करी है तो हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वहाँ पर जो ठेके खुले हुए हैं, जिनको भाषा में, सिंपल भाषा में कहते हैं या फिर अंग्रेजी में आप वाइन शॉप्स भी कह सकते हैं, दूर से जगमगाती हुई दिख जाती हैं, ऐसा लगता है कोई 5-स्टार होटल खुला हुआ है, और वहां पर धड़ल्ले से आपको गाड़ियां दिख जाएंगी खड़ी।
1: जी मैम।
0: क्या जयवीर जी आपको लगता है कि ड्रंक ड्राइविंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है शहर में अपराध और ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स बढ़ने का?
1: जी मैम।
0: तो पुलिस इसको रोकने के लिए क्या करे?
1: पुलिस जैसे मैम ये रोड पे आते हैं तो हम जैसे नाका लगाते हैं।
0: जी जी।
1: जैसे जिला पुलिस के द्वारा, जैसे फरीदाबाद पुलिस के द्वारा सप्ताह में एक दिन या दो दिन जैसी भी आवश्यकता है, तो जैसे CIA है, जिला पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, मिलके हम जैसे पूरी नाइट को भी 10-11 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक नाका लगाते हैं,
0: जब मेन टाइम होता है लोगों के पी के जाने का।
1: उस टाइम हम उनको अच्छी तरह चेक करते हैं, जो भी ड्रिंक करे मिलता है तो हम उसका उनका भारी से भारी चालान करते हैं।
0: कितना चालान होता है सर इसमें? क्या गाड़ी इंपाउंड करने का भी कुछ सिस्टम है या सिर्फ चालान करके?
1: चालान ही का सिस्टम है,
0: चालान का ही सिस्टम। सो लोग डरते हैं इससे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि एक बार चालान 10,000-15,000 दे दिया, उसके बाद फिर से वही चीज चल रही है।
1: वैसे ये डरते नहीं मैम, आजकल फिर एक ये हो गया मैम, जैसे चालान कर देते हैं, ऑनलाइन चालान होते हैं, तो ये बात देखते हैं कोर्ट लगेगी।
0: हाँ
1: तो कोर्ट में जैसे माफ हो जाता है,
0: ये कोर्ट में माफ हो जाता है, चलिए ठीक है आप आधा दे दीजिए।
1: हाँ आधा दे दीजिए
0: जी।
1: हाँ इसलिए फिर भाई आजकल क्या है, जैसे माँ बाप की कमाई यूज करते हो ना कि अपनी उसमें दुख महसूस होता है, तो ये माँ बाप जैसे बाप दादा है उनकी कमाई के लिए थोड़ा तो ही नहीं देते अपनी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अपराध भी बढ़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ने इतनी सारी सुविधाएं दे दी हैं, माता पिता ने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी हैं, पैसे काफी दे दिए हैं, फोन अच्छे हैं उनके पास, तो उनको ये अफसोस नहीं होता कि हमारी जेब से 10-15,000 रुपए चला।
1: ये मायने नहीं रखते
0: जी, ये मायने नहीं,
1: उनके लिए मायने नहीं रखते
0: जी जी।
1: उनके जो जैसे कई बार पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स सॉरी फील करते हैं, बच्चे सॉरी फील नहीं करते, उनको कहते हैं आप चालान करिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पेरेंट्स को दुख होता है, बच्चों को दुख नहीं होता। सो बहुत सारी बातें दोस्तों सुरक्षा संवाद में चलती रहेंगे, हमारे साथ जयवीर सिंह जी मौजूद हैं और जयवीर सिंह जी से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं फरीदाबाद के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बारे में। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010780।

0: वेलकम बैक जी, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। कार्यक्रम सुरक्षा संवाद एक ऐसा प्रोग्राम सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर। और इस सीरीज में बहुत सारी बातें हम करते हैं पुलिस अधिकारियों से मिलकर, कभी ट्रैफिक के बारे में, कभी महिला सुरक्षा के बारे में, कभी साइबर फ्रॉड के बारे में, तो कभी किसी और मुद्दे के बारे में। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करें वो है ट्रैफिक यानी रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है और ट्रैफिक इंचार्ज एनआईटी फरीदाबाद श्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। बहुत सारी बातें इनके साथ जारी हैं, आइए जानते हैं और भी कुछ खास पहलू। तो जयवीर जी, जब हम बच्चों और पेरेंट्स की बात करें तो यहाँ पर मैं अंडर एज ड्राइविंग की बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल्स हैं, महंगी महंगी फीस है और इन स्कूलों के बाहर हमने देखा है कि अक्सर बच्चे, स्कूल वाले प्रशासन मना करता है कि बच्चे स्कूटी या बाइक ना लाएं, लेकिन अब बच्चे स्कूटी बाइक से ज्यादा 18 साल से कम की उम्र में गाड़ियां भी ले आते हैं, खासतौर पर से एग्जाम वाले दिन कि आज तो 3 घंटे में बाहर निकलेंगे और उसके बाद घूमने जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए जयवीर जी क्या किया जा रहा है?
1: ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा था, इनको मैम अपना इनका जैसे लाइसेंस नहीं है तो इन पर फाइन करते हैं। माँ बाप को जो पेरेंट्स को हो उनको भी बुला गए, कभी कभी समझाते भी हैं और चलान भी करते हैं, जो उसके बाद भी बावजूद नहीं जैसे बार बार चलान जाते हैं तो गाड़ी को भी इम्पाउंड कर लेते हैं और माँ बाप के पेरेंट्स के ऊपर भी मतलब कानूनी कार्रवाई की जाती है,
0: FIR वगैरह दर्ज हो जाती है।
1: FIR माँ बाप का, इसमें दोष माँ बाप का ज्यादा माना जाता है, ना कि बच्चा 18 साल से नीचे बच्चा नाबालिग रहता है, मतलब उसकी बजाय पेरेंट्स पर ज्यादा कार्रवाई होती है।
0: आपने गाड़ी दी क्यों बच्चे?
1: हाँ, बच्चे को क्यों, उसमें गलती पेरेंट्स की रहती है। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को थोड़ा समझाए गाइड
0: जी,
1: तब जान कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए।
0: जी जी, तो इन बच्चों को सर आपने देखा है कि इन बच्चों को डर लगता है पुलिस से या नहीं लगता?
1: नहीं है, आजकल क्या हमें जो पहले पिटाई वाला था ना
0: जी,
1: या
0: वो
1: स्कूल
0: तो
1: का ला ले या पुलिस का ला ले, वो तो रहा नहीं, तो नियम अनुसार जो है कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं
0: जी,
1: कार्रवाई में वो इतना डरते नहीं।
0: हाँ, मतलब उनको लगता है कि चलो पेरेंट्स पे ये चीज हो रही है, हम तो बचे हुए।
1: हाँ, पेरेंट्स से ही परेशान होते हैं वो
0: वैसे।
1: हाँ,
0: तो देखिए दोस्तों, बहुत ही एक विडंबना है आज के टाइम में, आयरनी है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और अगर बच्चे पे कोई, बच्चे की गलती से वो फंसते भी हैं तो पेरेंट्स ही फंसते हैं। और इसमें भी बच्चे को कई बार अफसोस नहीं होता है, उसे ये ग्लानी नहीं होती है, उसे ये तकलीफ नहीं होती कि उसके पेरेंट्स ही इस चीज़ में फंस रहे हैं, वो नहीं फंस रहा है। सो ये जिम्मेदारी जो है ये बच्चे की भी बनती है, सिर्फ पेरेंट्स की या स्कूल की नहीं बनती है कि आप गाड़ी ना दें। बच्चे को इस तरीके से समझाएं और मुझे लगता है थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस इस मामले में ज़रूरी है, थोड़ी सी तो देखिए कठोरता चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक आप स्ट्रिक्टनेस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कई केसेस में नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। तो जयवीर जी, अब हम बात करते हैं थोड़ा शहर को और ज़्यादा बेहतर बनाने की। हेलमेट और सीट बेल्ट
1: जी मैम
0: पहनना कितना ज़रूरी है एक आम इंसान के लिए, क्योंकि हमने कई बार समझाया, घर वालों ने भी कई बार समझाया पर लोग समझते नहीं
1: हैं। ये बहुत ज़रूरी है मैम, हेलमेट पहनना, जैसे भाई टू व्हीलर पर चलता है भाई उसका टायर भी फिसल जाता है या कोई और कोई ओवरटेक कर देते हैं उसको, मतलब चोट लगनी ही लगनी है उसको मैम, तो हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे हमारा सिर बच जाता है तो जान बच जाती है, अगर जो हेलमेट नहीं है तो उसमें जान भी जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है।
0: जयवीर जी, छोटे बच्चे आगे खड़े होते हैं स्कूटर के या बाइक के आगे बैठे होते हैं और जब एक्सीडेंट होता है तो उनके लिए कोई हेलमेट नहीं होता है और उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो क्या इसका सोल्यूशन है, आपको क्या लगता है, एक पुलिस अधिकारी हैं आप और ट्रैफिक इंचार्ज हैं, क्या सोल्यूशन है इसका?
1: जी मैम, बच्चे को भी पीछे बैठा जैसे उस पर अलाउड ही 2 आदमी अलाउड है, ये अनऑथराइज है भाई, जैसे 3-3, 4-4 जैसे 3 राइडिंग का हम चलान करते हैं।
0: अच्छा, मतलब चलान कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और बीच में दो बच्चे बैठे हैं।
1: हाँ, 3 राइडिंग का चलान होता है।
0: ओके।
1: हाँ, अगर तो 3 बैठे हैं तो 3 राइडिंग का चलान होता है।
0: पर फिर वो कैसे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ये भी आप सोच के कई बार छोड़ भी देते होंगे।
1: हाँ, वैसे उसमें थोड़ा
0: समझा के। तो इसमें क्या बच्चों के भी हेलमेट मिलते हैं मार्केट में?
1: बिल्कुल मिलते हैं,
0: मिलते हैं बच्चों के हेलमेट। देखिए मैं नहीं जानती हूँ ये चीज़ के बच्चों के हेलमेट मिलते हैं, लेकिन अगर आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो उनका हेलमेट जरूर ले लें।
1: 14-15 साल का बच्चा है उसका तो हेलमेट मिल जाता है
0: जी।
1: हाँ,
0: तो वो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए पेरेंट्स को। और जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं तो सब अपनी नानी दादी के घर जाते हैं, स्कूटी पे बैठ के जा रहे हैं या बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके जा रहे हैं, तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। इसकी जगह अगर आप बस पे, ट्रेन पे, मेट्रो पे चले जाएं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा, बहुत बहुत सेफ है, ना गर्मी लगेगी और ना ही कोई एक्सीडेंट होने का खतरा होगा।
1: आजकल तो ये जैसे भाई ऐप आ रहे हैं, ओला है, उबर है, टैक्सी वगैरह भी हो जाते हैं, जो ज्यादा स्ट्रेंथ है ना
0: जी,
1: दो से ज्यादा स्ट्रेंथ है तो अपनी वो फोर व्हीलर व्हीकल को ज्यादा,
0: बिल्कुल मुझे लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है कि आप एक बाइक पे पांच जने बैठ के जा रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है।
1: हाँ, ये बहुत खतरनाक है
0: जी। जयबी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, इतनी तेज स्पीड होती है कि आप उनको देख के डर जाते हैं, आपके साथ से निकलते हैं, और स्कूटी वाले लोग जो हैं, टू व्हीलर वाले, वो घबरा जाते हैं और बहुत बार वो गिर भी जाते हैं इस चक्कर में कि कोई गाड़ी वाला इतनी तेज निकला है। और ओवर स्पीडिंग का कंसेप्ट लोग समझते नहीं है, मुझे थोड़ा सा समझाएंगे कि ओवर स्पीडिंग जो है, जैसे 50 लिखा है, 60 लिखा है, 70 लिखा है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करें तो इंटरसेप्टर कैसे पकड़ता है?
1: वो जैसे हम ये मोबाइल ये वाकी टाकी सेट होते हैं मैम
0: जी,
1: उसी टाइम हम कॉल कर देते हैं भाई, जो भी जैसे भाई यहाँ से अंकीर चौक है या बाटा चौक है, जहाँ भी जाओ कंट्रोल में मैसेज कर देते हैं भाई इसी नंबर की गाड़ी है, बाइक है, तो इसको अपना पकड़ लो, इसको इम्पाउंड कर लो। तो जैसे सभी जो नाके हैं, जड्डो हैं, एरिया सभी सक्रिय हो जाता है, उस पर जहाँ भी जिधर कभी आते हैं वहीं वो कंट्रोल कर देते हैं
0: जी। जी, ये जो इंटरसेप्टर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये इनका काम ओवर स्पीडिंग पकड़ना होता है।
1: ओवर स्पीडिंग है, जैसे जाम लग रहा है मैम, वहाँ पे भी जैसे भाई एक मुलाजिम की ड्यूटी है या दो की है, वो उनसे काम नहीं चलता, व्हीकल से तरफ जाता है तो वो गाड़ी से जल्दी पहुंच जाते हैं, जो भी नजदीक है ना उसको हम मैसेज कर देते हैं, फोन भी कर देते हैं और वायरलेस साइट पे भी मैसेज दे देते हैं।
0: तो इंटरसेप्टर जो है वैसे ओवर स्पीडिंग पकड़ने के लिए उसमें कैमराज वगैरह लगे होते हैं।
1: हाँ, उसमें जैसे अगर जो उसका कंट्रोल में आता है ठीक है, नहीं तो उससे वीटी भी कर देते हैं भाई, अगला जो अगला ट्रैफिक पॉइंट है वो जैसे हम बैरियर लगाते हैं, बैरियर लगा देते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो ये गाड़ी जो है इसे पकड़ना है।
1: हाँ, इसे पकड़ना है
0: तो ये नजर में रखने के लिए।
1: हाँ, कंट्रोल से वीटी हो जाती है सभी के पास भाई, इस नंबर की गाड़ी है तो ये राउंड अप करनी है
0: जी। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप वीआईपी मूवमेंट में भी काफी इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ के भी निकल जाते हैं आज के टाइम में
1: जी मैम,
0: सिर्फ बचने के लिए
1: जी मैम,
0: वो आगे जाके पकड़े जाते हैं तो उनके साथ सुलूक क्या होता है?
1: सुलूक तो मैम जो अपना नियम अनुसार कार्रवाई है वही होती है
0: जी।
1: हाँ, उसके एफआईआर होती है और जो चलान है ज्यादा से ज्यादा होता है उसका
0: जी जी।
1: हाँ, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है पूरी,
0: मतलब एफआईआर वगैरह होगी, फिर उसके बाद जो है वो केस चलेगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। ठीक है, ये बात तो होगी जी ओवर स्पीडिंग की, लेकिन आगे बात करते हैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों को
1: जी मैम,
0: सर क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: स्कूल और कॉलेज के बच्चों को मैम, जैसे भाई अपना टू व्हीलर पर चला है तो हेलमेट लगा के चलना चाहिए, अगर तो 18 साल से ऊपर है तो अपना लाइसेंस बनवाओ, डीएल बनवाओ, उसके बाद ही व्हीकल चलाना चाहिए रोड पे
0: जी जी जी।
1: और अपना जैसे फोर व्हीलर पर है तो सीट बेल्ट लगाओ और आउट स्पीड में नहीं चलाओ,
0: जो स्पीड है
1: हाँ हाँ, रॉन्ग साइड में मत चलाओ।
0: तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं 8010781078 पर पूछ सकते हैं। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, बता तो उस वक्त मैं कहां था, बता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: तो दोस्तों बातें चल रही हैं बहुत सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बारे में, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले अधिकारी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जयबीर सिंह जी जो कि ट्रैफिक इंचार्ज हैं और NIT एरिया की पूरी देखरेख करते हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में आइए जानते हैं कुछ और ट्रैफिक नियमों से जुड़ी हुई बातें और कैसे एक आम इंसान को थोड़ा सा कंट्रोल करना है बढ़ते हुए ट्रैफिक को भी और उसके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है। सर अब मैं चालान की बात पूछना चाहूंगी आपसे। 2025-26 में बहुत चालान कटे हैं, बहुत ज्यादा। तो कुछ आंकड़ा मुझे देंगे, फरीदाबाद में कितने चालान कटे हैं पिछले 3-4 महीनों में?
1: हाँ जी मैम, ये मैम जैसे टोटल ऑफेंस चालान है ये जनवरी महीने में 57,866 है।
0: 57,000 चालान, ये सिर्फ फरीदाबाद का आंकड़ा?
1: हाँ ये ऑफेंस इन चालान है, जो टोटल चालान है वे 52,690 है मैम
0: जी।
1: और ये फरवरी महीने के जो टोटल ऑफेंस इन चालान है ये 45,200 है।
0: अच्छा
1: हाँ, और जो टोटल चालान है ये 40,807 है।
0: मतलब आपने एक महीने में 57,000 के आसपास, जनवरी की बात मैं करूं जिसमें न्यू ईयर भी आता है और सिक्योरिटी भी बहुत होती है 26 जनवरी को लेके,
1: जी मैम,
0: उस दौरान आपने 57,000 चालान जो है वो करे,
1: जी मैम।
0: तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है सिर्फ फरीदाबाद के।
1: हाँ, फरीदाबाद ही है।
0: तो आप दोस्तों सुन रहे हैं कि 57,000 चालान अगर एक शहर में और आपके अपने शहर में एक महीने में चालान हो रहे हैं तो कितने लोग ट्रैफिक के रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं तब जाके ये चालान होते हैं।
1: टोटल तो मैम ये 32,99,400 है मैम
0: कैश जो कलेक्ट किया आपने।
1: हाँ, जो टोटल कैश है मैम
0: जी,
1: जो इतने रुपए के
0: जी, यानी टोटल अगर मैं इसको पैसे में कैलकुलेट करूं तो 32 लाख के आसपास पैसा जो है वो चालान जो है वो किए गए, मतलब
1: 32,99,000
0: यानी आप 33 लाख के आसपास मान लें
1: जी मैम
0: कि इतना पैसा का चालान जो है, इतने रुपए का चालान जो है वो किया गया है
1: जी मैम।
0: अब मैं आपसे जयबीर जी एक और चीज पूछना चाहूंगी, चालान को लेकर लोगों में इस टाइम इतना डर नहीं है
1: जी मैम।
0: डर इसलिए भी नहीं है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वो कोर्ट में जाते हैं और वहां पर थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, इसलिए उनको लगता है कि 4-5 चालान हो गए, 6 चालान हो गए, जब गाड़ी बेचेंगे तब उसको माफ करवा लें। ये ज्यादातर लड़कों के दिमाग में, मैं कहूँ यंग लड़कों के दिमाग में ये चीज रहती है
1: जी मैम।
0: सो इसको कैसे रोका जाए या चालान की प्रक्रिया क्या है आज की तारीख में? अगर सपोज मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैंने रेड लाइट तोड़ दी और मुझे किसी पुलिस वाले ने रोका और चालान बनाया
1: जी मैम,
0: तो पहली बात तो चालान रेड लाइट जंपिंग का है कितना? 5,000 है।
1: हाँ, 5,000
0: मैम। 5,000 चालान है। अब 5,000 चालान को मैं वहाँ कैसे पे करूँ? अगर मेरे पास 5,000 नहीं है तो मैं कैसे पे कर सकती हूँ?
1: वो मैम अब तो जैसे या तो चालान ब्रांच है हमारी, जैसे अपना DCP ऑफिस है ना सेक्टर 12 में जो लघु सचिवालय है उसमें चालान ब्रांच है
0: जी,
1: वहाँ जाके भर सकते हैं आप।
0: अच्छा, वहाँ जाकर मैं चालान भर सकती
1: जी मैम।
0: ओके।
1: और अब ये जैसे QR है ये कम काम कर रहा है हमारी जो मशीन है ना वहाँ भी जमा करा सकते, जो हम मौके पर जो चालान करते हैं इंटरनेट कम चलने की वजह से कई बार काम कम करता है, उसकी बजाय चालान ब्रांच में जो ट्रैफिक पुलिस है सेक्टर 12 लघु सचिवालय में वहाँ पर जाके जमा कर सकते हैं
0: जी जी।
1: और जो मौके पर भी जमा कराना चाहो तो मौके पर भी हो जाता है, कई बार इंटरनेट की वजह से सर्वर
0: रुक जाता, हाँ, सर्वर
1: रुक जाता है जी। और बाकी जैसे कोर्ट की में जाना चाहता है तो कोर्ट में भी, और जैसे कोर्ट लगती स्पेशल
0: जी जी
1: 2-3 महीने में
0: तो उसका नोटिस आता है उस व्यक्ति के पास कि आपके चालान बचे हैं वो बकाया
1: नहीं, वो जैसे एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं अखबार में भी निकाल देते हैं भाई इस तारीख की
0: अदालत लग रही है तो आप वहाँ पहुँचे।
1: हाँ, अपना जो चालान भरना चाहो तो भर सकता है अपना वहाँ जज साहब के सम्मुख पेश हो गए, जो भी उसकी वे गलती है जो भी वो सॉरी फील करता है तो उसमें कुछ उसके उनके माफ कर देते हैं
0: जी जी जी। यानी अगर आपके चालान ऑलरेडी कट चुके हैं, आपको फाइन जो है वो लगाया गया है और आपने अभी तक वो फाइन नहीं भरा है, तो आप अगर ऑनलाइन नहीं भर पाए हैं किसी वजह से तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अखबार में ऐड देखते रहिए। अगर कोई ऐसी ट्रैफिक की अदालत का जहां पर चालान जो है वो आपको सबमिट कराने हैं, फाइन जमा करना है, इसका कोई ऐड आपको दिखता है लोकल अखबार में तो आप ज़रूर उसका लाभ उठाएं और वहां पर जाकर अपने चालान भरें। शायद यही वजह है जयबीर जी के लोगों में डर थोड़ा कम हो गया है कि चालान का अमाउंट जो है वो 5,000 से 2,500 हो जाएगा।
1: जी जी मैम
0: जी, ये दिक्कत है। तो लोगों में बेसिकली मुझे लगता है कि डर कम हो गया है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ना होने की वजह से भी हल्के में ले लेते हैं
1: जी मैम
0: ट्रैफिक रूल्स को
1: जी मैम।
0: पर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने एरिया को, क्योंकि आप एनआईटी के ट्रैफिक इंचार्ज है और एनआईटी में वो सारी सड़कें आती हैं जहां पर दिन भर ट्रैफिक होता है, नीलम फ्लाईओवर भी एनआईटी में

0: आता है, बाटा फ्लाईओवर भी एनआईटी में आता है, ओल्ड गांडर पास भी एनआईटी में आता है, और ऐसी परिस्थिति में
1: जी मैम
0: कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, क्या प्लान है आपका?
1: इस समय हम ज्यादा से ज्यादा अपने मुलाजिम लगा के और गाड़ी को रोक रोक के, जैसे बत्ती पे है तो वो रोक रोक के चलाते हैं, जो ट्रैफिक है वो दाएं बाएं से नहीं घुसे, नियम अनुसार ही चलाए
0: जी। और जयवीर जी, अगर कोई व्यक्ति अपने सामने कोई अपराध होते हुए देख रहा है, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करें, जैसे मैं आज आपको आज का अपना किस्सा बताना चाहती हूँ। मैं सुबह ऑफिस आ रही थी सूरज कुंड रोड से
1: जी,
0: और अचानक से अनखीर वाले गोल चक्कर पे आगे एक ऑटो वाला अचानक से आ गया, तो सबकी गाड़ियां रुक गई
1: जी मैम,
0: लेकिन मेरे पीछे बिल्कुल एक वैगन आर थी
1: जी मैम,
0: और उस वैगन आर वाले ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया कि मुझे निकलना है, रास्ता दो
1: जी मैम,
0: और बजाता ही जा रहा है, नॉन स्टॉप हॉर्न बजाता जा रहा है, आसपास वाले सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसको आगे निकलने का रास्ता मिला
1: जी मैम,
0: वो आगे गया और उसने पीछे वाले सबको देख के जोर जोर से शीशे के अंदर से ही अपनी गालियां देना शुरू कर दिया
1: जी मैम,
0: बदतमीजी करी
1: जी मैम।
0: अब गाड़ी का नंबर भी बहुत सारे लोगों ने नोट किया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि ऐसी परिस्थिति में अब क्या करें, क्योंकि वो बहुत तेज आगे निकला और बहुत सारे लोगों रैश ड्राइव करता हुआ ओवर स्पीडिंग में आगे निकल गया। अब ऐसे में अगर मेरे जैसी कोई महिला है और वो फंसना नहीं चाहती किसी चक्कर में कि भाई उसको कल को कोई परेशान करे या कोई पुलिस स्टेशन में बुलाए, तो वो क्या करे?
1: जी मैम, उसकी वीडियो बना के, और जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है,
0: पर सर जैसे मैं भी गाड़ी चला रही हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकती उस टाइम, तो क्या करना चाहिए? अब गाड़ी का नंबर मुझे याद,
1: नंबर नोट करके उसकी डिटेल लिख जाती है
0: जी,
1: हमारे पास भी निकल आएगी।
0: अच्छा,
1: हाँ, मशीन हमारे पास, उसका जो भी उसका नाम है, एड्रेस है, वो सभी निकल आएगा, और उसके अपने बयान दिए जाएंगे, जैसे जो अपना DCP की साहब की जीमेल आईडी है उस पर डाल सकते हो आप
0: जी जी,
1: फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस,
0: मतलब उसमें अपनी कंप्लेंट।
1: हाँ हाँ, मतलब उस पर फिर उसको गाड़ी का राउंड अप करेंगे, उस पर जो जुर्माना है, कानूनी कार्रवाई है, वो की जाएगी नियम अनुसार
0: जी। यानी मतलब अगर मामला सुबह का भी है तो दोपहर में भी कंप्लेंट कर सकते हैं जी। और इसके अलावा कोई फोन नंबर जो आप देना चाहें जिसपे कॉल करके हम ये सारी जो सिचुएशन है बता सकते हैं?
1: हाँ हाँ मैम, ये हमारा जैसे PS ट्रैफिक पुलिस फरीदाबाद का नंबर है 01292225999
0: जी। तो दोस्तों, अगर आप फरीदाबाद शहर में हैं और आप किसी तरीके का ऐसा ट्रैफिक वॉयलेट होते हुए देख रहे हैं, तो आपको पुलिस स्टेशन ट्रैफिक में कॉल करना है 01292225999। सिंपल सा नंबर है, 3 बार 2 फिर 5 और 3 बार 9, बहुत सिंपल सा नंबर है। इस नंबर को आप अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं
1: जी।
0: जब भी आपको दिखे ऐसी परिस्थिति कि कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, राह चलते रोड रेज कर रहा है, या फिर आपकी गाड़ी को टक्कर मार गया है, या फिर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट आप देख रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार फिर बता देती हूँ, 01292225999। तो बातों का सिलसिला जारी है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नंबर है बहुत आसान, 8010781078।

తీల గ్రామ బంతి బాజి తని తని నిద నిద పప్ప మమగ మధ గమ మగరి సార్

0: Dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum tana dere na dim tana na dirda tanum dirda tanum.
1: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूँ दीक्षा, आपके साथ बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी है. प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, और ट्रैफिक को ठीक रखने के लिए, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्या चालान करना ही सही है, कभी कभी स्ट्रिक्टनेस जरूरी होती है. मुझे भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हम आप सड़कों पर जाते हुए देखते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, जो रॉन्ग साइड जाते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर स्पीडिंग कर जाते हैं, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे गलियां, चाहे हाईवे, कहीं पर भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे. और जब इनका चालान काटा जाता है तो फिर ये इधर उधर फोन मिलाना शुरू कर देते हैं. आपके भी नोन को इस कैटेगरी में आते हैं तो हमें जरूर बताइएगा 8010781078 पर. या फिर आप अगर कभी ऐसे सिचुएशन होते हुए देखें तो 112 पे कॉल भी कर सकते हैं, खुद भी एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं. अगर आपको कोई शख्स ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ता हुआ मिलता है तो बस आपको ये बातचीत, ये जानकारी या फिर कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया, फरीदाबाद पुलिस ट्विटर यानी एक्स और इंस्टाग्राम पर डालनी है, या फिर आप 112 पे कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी नंबर आपको असाइन किया जाएगा, जो भी पुलिस अधिकारी आप तक पहुंचेंगे, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. फिलहाल बात चल रही है बहुत सारी ट्रैफिक से जुड़ी हुई. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री जयवीर सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद. जयवीर जी, ट्रैफिक की बात तो हमने कर ली है और बहुत सारी बातें आपने कर ली हैं. हाल ही में डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था कि एक्सप्रेस वे पर अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, बीच में एक बहुत बड़े वकील थे जिनकी डेथ हो गई रॉन्ग साइड गाड़ी आने की वजह से, और अक्सर एक्सीडेंट एक्सप्रेस वे पर होते रहते हैं. तो ऐसे में एक्सप्रेस वे के एक्सीडेंट्स रोकने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि रॉन्ग साइड कोई आएगा तो गाड़ी इंपाउंड कर ली जाएगी.
2: बिल्कुल मैम.
1: तो क्या ऐसा होगा या हो रहा है?
2: हाँ, हो रहा मैम. जैसे वहाँ पर हमारी ड्यूटी रहती है, गाड़ी रहती है इंटरसेप्टर वगैरह, जो रॉन्ग साइड मिलता है उसका चालान करते हैं. अगर जो किसी कारण एक्सीडेंट भी हो जाता है तो तुरंत क्रेन को बुला के अपना साइड में करवा के, जो लोकल पुलिस से बुला के ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करते जिसका
1: जिसकी वजह से.
2: हाँ, जिसकी वजह से.
1: तो रॉन्ग साइड गाड़ियों को क्या आप इंपाउंड कर रहे हैं अभी, क्योंकि रॉन्ग साइड बहुत कॉमन है हमारे देश में.
2: हाँ हाँ, ये जो भी रॉन्ग साइड गाड़ी चलती है, हमारे DCP साहब के आदेश के अनुसार उन गाड़ियों को हम राउंड अप कर रहे हैं.
1: जी बिल्कुल. तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, फरीदाबाद पुलिस भी अब स्ट्रिक्ट हो गई है रॉन्ग साइड को लेकर. तो अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, खासतौर पर से एक्सप्रेस वे से, जो कि सबसे खतरनाक होता है अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर गाड़ियां 100, 80, 110 की स्पीड में चलती हैं.
2: जी मैम.
1: वहां से अगर रॉन्ग साइड आप जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी को चालान तो देना ही पड़ेगा, जो कि काफी हैवी चालान है, पेनल्टी काफी हैवी है. इसके साथ साथ फरीदाबाद पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त भी कर सकती है, यानी इंपाउंड भी कर सकती है. और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई है तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी पर FIR, आप पर FIR दर्ज कर सकती है. ये हाल ही में अभियान चलाया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा, जिसमें 22 और 23 मई के सिर्फ दो दिन में 1170 FIR हो चुकी हैं रॉन्ग साइड वालों की. बाकी चीजों की हम बात नहीं करें, हम सिर्फ रॉन्ग साइड की बात करें, क्योंकि रॉन्ग साइड एक ऐसा रूल ब्रेक है जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस 110 गुना बढ़ जाते हैं.
2: जी मैम.
1: आप सीधे सीधे अपनी रोड पे चल रहे हैं, आप अपनी धुन में आराम से चल रहे हैं, सामने से अगर कोई रॉन्ग साइड आ रहा है तो एक्सीडेंट होना लाजमी है. तो इसीलिए रॉन्ग साइड को बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो पुलिस लेके चल रही है, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस हो या कोई और पुलिस हो. इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ये गलती करी तो फिर आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. इसलिए क्यों ऐसी गलती करें जिससे जो है आपको ही नुकसान हो. तो क्या कहना चाहेंगे जयवीर जी, अब चलते चलते लोगों से कुछ जानकारी देना
2: चाहिए? उनको स्पेशल अभियान चला जाता है, समझाया भी जाता है भाई रॉन्ग साइड में कितना, मतलब खुद को भी कैजुअल्टी है और आगे से आने वाला हाथों अपना टारगेट धर के चलता है.
1: जी.
2: और वो एकदम व्हीकल दिखता है, समझ जाता है.
1: जी बिल्कुल.
2: और
1: बिल्कुल.
2: स्पीड में गाड़ी रहती है, उस कारण बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है उसको भी और खुद को भी, और आसपास है तो उसको दूसरे व्हीकल आगे पीछे उनको भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है
1: जी। तो मैं बस जयबीर जी आपसे अब ये चाहूंगी चलते चलते आप हमें थोड़े चालान का अमाउंट बता दें।
2: जी मैम,
1: कुछ चालान ऐसे होते हैं जैसे सीट बेल्ट ना पहनना, कितना उसका चालान है, या फिर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे लोग निकल लेते हैं।
2: इनके ज्यादातर 5,000 के चालान है मैम
1: जी।
2: जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो 5,000 रुपए चालान है इसके
1: जी।
2: सेक्शन 318 लगती है
1: जी। अंडर एज ड्राइविंग का कितना चालान है?
2: इनका भी 5,000 रुपए चालान है।
1: 5,000 रुपए चालान, और इसमें पेरेंट्स को भी जो है उन पर कार्रवाई होगी।
2: हाँ, कार्रवाई होगी
1: जी जी। साथ ही ओवरलोडिंग वाली गाड़ियां हमने बहुत देखी है, रोकी भी जाती है सड़कों पर, ऐसा नहीं है
2: जी मैम।
1: लेकिन ओवरलोडिंग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि साथ में चलता हुआ ट्रक है, गाड़ी है, उस पे से पत्थर गिर गए
2: जी मैम,
1: तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं
2: जी मैम। ये मैम सेंक्शन 113(3), 194(1) के तहत कार्रवाई होती है, उनके FIR भी होती है और उनका भारी चालान किया जाता है
1: जी जी। यानी इसमें FIR का सीधा,
2: FIR का इसका सीधा FIR का वो।
1: इसके अलावा सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत कॉमन है गाड़ी चलाते हुए, इसका कितना चालान है?
2: इसमें मैम 10,000 का चालान है और 184 सेंक्शन के तहत कार्रवाई की जाती है
1: जी। यानी 10,000 का चालान है सिर्फ फोन का इस्तेमाल करने
2: जी मैम
1: जी। अगर आप अपना फोन का इस्तेमाल करें गाड़ी चलाते हुए, जो कि बहुत कॉमन है, तो 10,000 रुपए का चालान आप पर हो सकता है। इसके साथ साथ ड्रंक एंड ड्राइविंग की बात आपने करी थी, बहुत बड़ा अभियान जो है वो फरीदाबाद पुलिस द्वारा चलाया भी जाता है, अक्सर सैटरडे संडे नाइट को बहुत लोगों को देखा गया है कि वो पकड़े भी जाते हैं
2: जी मैम।
1: सो ऐसे में कितना चालान होता है?
2: इसमें मैम 185 सेक्शन 185(88) के तहत FIR भी होती है,
1: सीधा FIR।
2: हाँ, उसमें कोर्ट उनका कोर्ट में पेशी, हाँ, कोर्ट में पेशी होती है और वहीं उनका भरा जाता है, अमाउंट भरा जाता है
1: जी। एक समस्या और है जयवीर जी, जो मुझे लगता है पूरे देश में गलत पार्किंग करना, इतनी गलत पार्किंग हो रही है मोहल्लों में, गलियों में, मार्केट में, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? कितना
2: इसमें 500 से 1500 तक अमाउंट का चालान का है?
1: यानी आपने अगर गलत गाड़ी पार्क,
2: जैसे हम देख भाई कहाँ पे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करती है ना, 500 से 1500 तक चलान रहता है
1: जी जी,
2: और ट्रैफिक में बाधा पहुंचाते हैं
1: जी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि कहीं भी पार्किंग कर रहे हैं, एक तो अगर मार्केट एरिया में जा रहे हैं तो बिल्कुल भीड़भाड़ वाले एरिया में गाड़ी ना लेके जाएं, दूर खड़ी करें
2: जी मैं।
1: और अगर आप किसी वजह से लेके भी जा रहे हैं, सो आप ऐसी जगह पर पार्क करें जहां पर रास्ता ना रुके, क्योंकि अगर ट्रैफिक लगा, रास्ता रुका, तो आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, फंसी जाएगी। इसके साथ साथ जयवीर जी, एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है सीट बेल्ट का ना लगाना
2: जी मैम।
1: तो फरीदाबाद में इसका कितना चालान है?
2: इसका मैम 1,000 रुपए चालान है, जो सीट बेल्ट लगाता है ना
1: जी जी,
2: 1,000 रुपए चालान है इसका
1: जी, 1,000 रुपए चालान है। और एक समस्या और बहुत बड़ी है जो यंगस्टर्स के साथ देखी गई है, गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ मजाक करना
2: जी मैम।
1: गाड़ी का नंबर अगर 8055 है तो उसको ऐसे फॉन्ट में लिखवाएंगे कि वो बॉस दिखता है
2: जी मैम,
1: और गाड़ी के नंबर ऐसे डिजाइन से बनाए जाएंगे, यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वो नहीं लगवाते,
2: नहीं लगाते मैम।
1: तो इसका कितना चालान है और क्या कार्रवाई होती
2: है? इसका 500 से 1500 रुपए तक चालान है,
1: सिर्फ 500 से 1500 रुपए चालान है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो अपराध होते हैं वो गलत नंबर की, जो नंबर प्लेट एक्सचेंज कर ली जाती है, बदल दी जाती है, इसकी वजह से भी होते हैं, और बाद में ये चीज जो है वो खुल के आती है। सो
2: इनको जैसे अभियान भी चलाते हैं, चेक भी करते हैं कि जैसे RC के साथ भी मिलान करते हैं, जैसे मशीन में हम नंबर डालते हैं तो उसको पता भी लग जाता है भाई इस बंदे की है और दूसरे का नाम है ये
1: जी जी, क्योंकि गाड़ी के शीशे पे जो नंबर लिखा हुआ है वो अलग होता है और गाड़ी की नंबर प्लेट पे नंबर है वो अलग होता है, तो ऐसे में नकली नंबर जी जी
2: जी मैम।
1: तो बहुत सारे चालान और उनके अमाउंट हमने आपको बता दिए हैं, उम्मीद है आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ अपने शहर को और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सेफ बनाएंगे। जयवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए
2: जी मैम,
1: और आपने जानकारी दी, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू मैम जी मैम, वेलकम।
1: तो दोस्तों बहुत सी बातें हमने आपके साथ की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब ट्रैफिक पुलिस की बात आती है ना तो ये दो तरफा बातें होती हैं, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी गुस्सा जो है या फिर स्ट्रिक्टनेस जो है वो ही चीज़ों को कंट्रोल कर पाती है। ये बात आज की नहीं है, ये बात बरसों पुरानी भी है, क्योंकि जब भगवान राम को समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो उन्होंने कहा था, बिने नमानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भयभीन हुई न प्रीत। समझे आप, यानी भय के बिना प्रीत भी नहीं हो सकती है, कई चीजें आसानी से ठीक नहीं हो सकती हैं। तो चालान और स्ट्रिक्टनेस अगर ट्रैफिक पुलिस आपके लिए कर रही है तो उसको समझिए, उसकी जरूरत को समझिए, सिर्फ क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक पुलिस का साथ नहीं देंगे तो फिर आप जिंदगियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हमारे देश में लगभग 2.25 लाख लोग हर साल अपनी जान ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में गंवाते हैं और 4 से 5 लाख घायल हो जाते हैं, और घायल भी ऐसे जो कई बार ठीक भी नहीं हो पाते। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक पुलिस

आपकी सेफ्टी के लिए है, उनके रूल्स को फॉलो करिए। ट्रैफिक रूल्स आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते ही आपको इन सब रूल्स को समझना है और इन्हें फॉलो करना है। बस अपना ख्याल रखिए। सुरक्षा संवाद में आज बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात एक नए अधिकारी के साथ, आपकी सुरक्षा को लेकर करेंगे बातचीत और वार्तालाप। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आप सुन रहे हैं खास कार्यक्रम, और मानवता की राह में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो एक्चुअल ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे होते हैं, ऐसी इन संस्थाओं से, ऐसे इंडिविजुअल से जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। ऐसे ही खास शख्सियत फिलहाल मेरे स्टूडियो में बैठी है, यानी राकेश सेठी जी। प्रोफेशन से ये बैंकर रही हैं, लेकिन इन्होंने विश्व प्रकाश मिशन का गठन किया। क्यों किया, कब किया, कैसे किया, ये सारी बातें तो जरूर हम इनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: राकेश जी, आप चेयरपर्सन हैं और साथ के साथ मैनेजिंग ट्रस्टी हैं विश्व प्रकाश मिशन के। मुझे बताइए, विश्व प्रकाश मिशन, इसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ?
2: विश्व प्रकाश मिशन अपने आप में एक आइडिया है कि एक लोग ये सोचते हैं कि रिटायर्ड लाइफ, शायद रिटायर ही हो गए उसके बाद में, पर मेरे लिए ये सेकंड इनिंग्स की बिगनिंग रही है। जून 2016 में आई हैव रिटायर्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम यूनियन बैंक
1: जी।
2: तो ये पहले से तय था कि रिटायरमेंट के बाद में समाज सेवा का ही काम करना है।
1: अरे वाह।
2: तो ये निश्चय मन में लेके 30 जून 2016 को रिटायर हुए और 25 जुलाई 2016 को ये हमने ट्रस्ट रजिस्टर भी करवा लिया था।
1: क्या बात है।
2: विश्व प्रकाश मिशन में मेरे साथ में मेरे माता पिता का आशीर्वाद भी है। विश्वामित्र मेरे फादर का नाम है, विश्वमोहिनी मेरी मदर का नाम है,
1: क्या बात।
2: और ओम प्रकाश जी मेरे फादर इन लॉ का नाम है। तो दोनों परिवारों से आशीर्वाद इसी में समाहित है। तो विश्व प्रकाश मिशन एक तो ये वजह है इसके नाम की, और दूसरा विश्व में अगर प्रकाश फैलाना है तो एजुकेशन कैन बी द बेस्ट वे। तो ये दोनों विचारों को मिलाते हुए इस संस्था की स्थापना हमने जुलाई 2016 में की।
1: जुलाई 2016 में शुरुआत हुई विश्व प्रकाश मिशन की। और क्या आपको पता है कि एक ऐसी संस्था है जो एजुकेशन की फील्ड में बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नाम का स्कूल तो हमने कहीं देखा नहीं है, लेकिन ये किस तरीके से एजुकेशन में काम कर रहे हैं, और ये जो विश्व में प्रकाश फैलाना है, दरअसल किन के लिए प्रकाश फैलाना है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैं करने वाली हूँ राकेश सेठी जी के साथ। लेकिन उससे पहले आई एम श्योर कि आप इंतजार करें एक प्यारे से गाने का। सो खूबसूरत सा गाना आपके लिए, जुड़े रहिएगा रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं राकेश सेठी जी के साथ, जो कि चेयरपर्सन है और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं विश्व प्रकाश मिशन के। विश्व प्रकाश मिशन किस प्रकार का काम कर रही है, चलिए जानते हैं राकेश जी से।
1: जी, हमने शुरुआत फरीदाबाद से ही की। शुरू में आइडिया ये था कि जो बच्चे गरीब परिवार से हैं पर पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं
0: जी,
1: उनको कॉलेज स्टडीज के लिए हम हेल्प करेंगे
0: जी।
1: तो कहाँ से वो बच्चे मिलेंगे, तो ये पहला अपना प्रश्न अपने आप में यही था। तो उस प्रोसेस में मैंने कम से कम तो 60-70 स्कूल पर्सनली विजिट किया है, प्रिंसिपल से मिला हूँ
0: जी,
1: उनसे अपने मिशन के बारे में बताया और बच्चों की जानकारी ली
0: जी।
1: तो वहाँ से हम बच्चों की लिस्ट लेके, जिन बच्चों ने 80-85% या उससे ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं 12th में, और उन बच्चों की अगर उन्होंने फीस वगैरह माफ़ किया तो थोड़ा तो उनको आइडिया होता है कि ये गरीब परिवार से हैं। पर उसके बाद की प्रोसेस फिर हमारी वेरिफिकेशन भी रहती है, घर का विजिट भी रहता है। कोविड तक तो मैं खुद पर्सनली घर पे भी जाता रहा हूँ, कोविड के बाद में अब हमने अपना ऑफिस भी एस्टेब्लिश किया है 21C में
0: जी।
1: तो वहाँ पर माता पिता को बच्चे के साथ में बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटेंट इंटरव्यू की ये रहती है कि अगर कोई रियल में गरीब परिवार से है तो उसकी हेल्प होनी चाहिए, और अगर भगवान ने किसी को समर्थ दिया है तो उसको गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो उसका एक वेरिफिकेशन भी हो जाता है, साथ में हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान तुम्हें और दे, पर जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूरत पहुंचे। तो मेरा मेन इंटेंट है जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, दे वांट टू सेटल इन ए प्रोफेशनल कोर्स, तो वो उन बच्चों की फ़ीस का बर्डन भी थोड़ा ज़्यादा है। अब माता पिता की इनकम ही अगर 2 लाख या 1 लाख उसके बीच में है तो आर्थिक स्थिति में तो थोड़ा कष्ट है। तो आज की डेट में ये मुश्किल स्थिति है, उस स्थिति में समाज का क्या रोल, बस वो रोल हम अपना निभाते हैं। 2 बच्चों से शुरू किया था, आज की डेट में 812 बच्चे जिनकी हम हेल्प कर पाए हैं
0: जी।
1: तो 10 साल में ये अपने आप में एक पेड़ की तरह फैल रहा है
0: जी।
1: उम्मीद है और ये हमारा टारगेट भी है कि 2031 तक 2000 बच्चों को तो कम से कम हम इस भावना के साथ में हेल्प करेंगे। उसमें से 500 बच्चे इंजीनियर और 500 बच्चे डॉक्टर, ये मिनिमम तो तय है। आगे भगवान की इच्छा रहेगी तो और भी आगे और जरूर करेंगे।
0: क्या बात है, तो ये बड़ी अच्छी पहल है कि आपने ये सोचा कि भाई हम जाएं और हम बच्चों की मदद करें। अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया वेरिफिकेशन, लेकिन सेकंड स्टेप क्या, किस तरीके से आप उनकी मदद करते हैं, और अगर ये फाइनेंशियल मदद है तो क्या वो जो फीस है वो सीधे कॉलेज को दी जाती है या पेरेंट्स को दी जाती है, कितने समय तक आप दे पाते हैं, 4 साल का आजकल प्रोफेशनल कोर्स होता है, सो उसकी एक भारी भरकम फीस होती है हर सेमेस्टर की, कैसे मैनेज कर पाते हैं, बहुत सारे सवाल है राकेश जी। बस एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा शख्स याद आ रहा है जिसने कभी जिंदगी में आपसे मदद मांगी हो कि मेरे बच्चे की फीस देनी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सो आपके पास अब एक जगह है जहां जाकर आप उस इंसान को बता सकते हैं, या कोई भी ऐसा बच्चा आपको ऐसा लगता है जो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, फीस देने के पैसे नहीं है, तो विश्व प्रकाश मिशन उनके साथ है। छुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मनोरंजना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं राकेश सेठी जी के साथ, जो कि चेयरमैन हैं विश्व प्रकाश मिशन और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं विश्व प्रकाश मिशन के। 25 जुलाई 2016 को इस विश्व प्रकाश मिशन का गठन हुआ था। आज तक करीबन 800 से ज्यादा बच्चों को आप ये आर्थिक सहायता दे चुके हैं। अब राकेश जी, मैं इन डिटेल जानना चाहूंगी कैसे स्टेप्स लेते हैं। वेरिफिकेशन के बारे में आपने जरूर बताया और वो बड़ा जरूरी है। आजकल हुडविंकिंग बहुत ज्यादा होती है, आजकल धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है। सो ऐसे में एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो उस बच्चे को किस प्रकार की आर्थिक मदद मिलती है, कितने समय तक मिलती है और ये आप कैसे देते हैं?
1: जी, पहले तो हमने शुरुआत फरीदाबाद से ही की थी
0: जी,
1: पर फिर ये लग रहा था कि अगर विश्व में प्रकाश फैलाना है, इस भारत में तो प्रकाश फैले, तो उसके लिए देन वी स्प्रेड आवर विंग्स। तो हमने शुरुआत 12th के बच्चों से करी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते थे या YMCA यूनिवर्सिटी जाते थे। YMCA यूनिवर्सिटी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, इनके साथ में हम 2018 से जुड़े हुए हैं। हर साल 10 बच्चे बीटेक के उनको हम ओवर ऐड करते हैं, तो 111 बच्चे ऑलरेडी बीटेक से इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं YMCA से वहाँ के हैं। टोटल 242 बच्चे बीटेक कर रहे हैं, 220 बच्चे MBBS कर रहे हैं, 65 बच्चे CA कर रहे हैं, फिर बाकी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में फिजियोथेरेपी के भी हैं, BSc नर्सिंग के भी हैं, नॉर्मल जो कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में BCom BCA वो बच्चे भी हैं। क्योंकि हर एक बच्चा शायद डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, वो भी पढ़े, पर मेन फोकस हमारा ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर या CA ऐसे कोर्सेज पर ज़्यादा है। ये बच्चे पढ़ के आगे समाज में अच्छी हेल्प कर पाएँ, पर उसके लिए जो आपने पहला मुझे स्टेप पूछा कि बच्चों की आप हेल्प कैसे करते हैं
0: जी।
1: एक बार प्रोसेस आइडेंटिफाई हो जाती है, मैं उसमें भी बड़ी सिंप्लिसिटी रखता हूँ। पहले हम सिर्फ बेसिक डिटेल्स लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगवाते, तो उससे हमें इतना तो समझ में आ जाता है परिवार की स्थिति क्या। अगर ठीक लग रहा है फॉर्म, तभी हम उनको फॉर्म्स भेजते हैं, भाई अपना आधार कार्ड भी दीजिए, मार्कशीट दीजिए, बैंक की स्टेटमेंट दीजिए, तो उसके बाद में, ताकि ना पेरेंट्स को भी इतने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने की जरूरत नहीं अनटिल देयर इज ए सिग्नल। और एक बार हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब ये फरीदाबाद तक तो बात ठीक थी, अब जो बच्चे बिहार से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, ऐसे बच्चों के लिए फिर हम प्रोसेस तो वही रहती है, पर पेरेंट्स को फिर उनको हम वीडियो कॉल से बात करते हैं, उनके घर की स्थिति देख लेते हैं वीडियो पर ही, पेरेंट्स से जानकारी ले लेते हैं। एक बार बच्चा सिलेक्ट हो गया तो उसको एटलीस्ट जितना लंबा उसका कोर्स है, बीटेक 4 साल का हुआ, MBBS 5.5 साल का है, तो बच्चे को जो भी हम स्कॉलरशिप का अमाउंट अप्रूव करते हैं वो पूरी ड्यूरेशन तक उस बच्चे को मिलेगा। ये कहना आसान है कि उसको पूरी ड्यूरेशन तक मिलेगा, तो बच्चे की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए
0: जी।
1: तो दैट वी फिक्स कि अगर आप बीटेक में हो तो 75% से ऊपर आपके हर सेमेस्टर में मार्क्स आने जरूरी है
0: जी।
1: MBBS में है तो 65% से ऊपर मार्क्स आने जरूरी है। CA का तो सिंपल काम है, फाउंडेशन क्लियर किया, इंटर क्लियर किया एंड देन यू बिकम CA। मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि हम जैसे बता रहे हैं आपको 242 बच्चे बीटेक के हैं, उसमें से 111 बच्चे ऑलरेडी इंजीनियर्स बन चुके हैं।
0: वाओ,
1: तो दे आर ऑलरेडी सेटल्ड इन टू द जॉब। और खुशी की बात यह भी है, जो मैं बच्ची का नाम भी ले सकता हूँ, उसका नाम है लतिका
0: जी,
1: एंड शी इज वर्किंग नाउ इन सिस्को। 44 लाख रुपए पर ईयर, दैट इज द पैकेज।
0: वाओ,
1: तो हमने तो भगवान की दया से उस बच्चे को हाथ उस टाइम लगाया जब उसको हेल्प की जरूरत थी
0: जी।
1: तो 30,000 पर सेमेस्टर दिया होगा तो 2,10,000
0: जी।
1: तो वो बच्चा देखिए 44 लाख, उसके पेरेंट्स की इनकम मतलब 3.5 लाख बच्चे की इनकम है पर मंथ
0: जी,
1: और वो पेरेंट्स की इनकम 3 लाख पूरे साल की भी नहीं है। तो भाग्य तो उसका है, मेहनत भी उसकी है
0: वाकई,
1: पर हम लोग जब जरूरत थी उस टाइम में समाज की तरफ से विश्व प्रकाश मिशन ने अपना हाथ बढ़ाया, तो दैट इज व्हाट द ग्रेट फीलिंग वी फील अबाउट। उतना हमने सहयोग जरूर किया जब जरूरत थी। ये 812 बच्चों में से इंसिडेंटली 170 बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर नहीं है, या तो उनकी डेथ हो चुकी है या डाइवोर्स केस है, उस केस में बच्चे को हेल्प की और जरूरत रहती है। तो हम नॉर्मली बीटेक और MBBS बच्चों को ऑफकोर्स फाइनेंशियल पोजीशन तो देखते ही हैं, पर 50,000 से 60,000 रुपये पर ईयर हेल्प करते हैं
0: जी।
1: तो एक बच्चा बाय द टाइम ही आर शी हैज कंप्लीटेड द कोर्स 2 लाख से 2.5 लाख या 3 लाख रुपए तक की बच्चे को हेल्प हो जाती है
0: जी।
1: समाज में देखिए चेंज लाना है तो कुछ तो ये हो सकता है कि 10-15 हज़ार हेल्प कर दी, तो मुझे नंबर्स नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है तो उसकी पूरी फीस में से जो हम सहयोग कर पा रहे हैं वो पूरा 4 साल या जो कोर्स की ड्यूरेशन है उसमें मिलेगा। ये भगवान की दया है, अभी तक किसी को हमने इस वजह से मना नहीं किया।
0: जी बड़ी अच्छी बात है। और इमेजिन करके देखिए ना कि वंस आपको ये पता लग जाता है कि भाई आपकी कितनी फीस है, उस फीस में से कितना क्वांटम है जो आपको विश्व प्रकाश मिशन से मिलेगा, सो उसके बाद आप एटलीस्ट इस चीज से निश्चिंत हो सकते हैं ना कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अच्छे मार्क्स लेकर आए और इस बारे में फिक्र ना करें कि मम्मी पापा ये पैसा कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद कम इनकम होने के कारण परिवार की, या फिर मौका तो उन्हें मिला है, मेरिटोरियस भी वो हैं, उनके पास इस चीज़ की कला भी है, लेकिन परेशानी ये है कि सपोर्ट करने के लिए लोग सही समय पर नहीं आते। देखिए जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है, पर जब सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, जब मेहनत करनी होती है, तब आपको बहुत कम हाथ मिलते हैं जो आपको ऊपर खींचते हैं। कुछ ऐसा ही खूबसूरत सा काम कर रही है विश्व प्रकाश मिशन। सो किस तरीके से ये लोगों का चयन करते हैं, कैसे ये लोगों तक पहुंचते हैं और कोई इनके साथ कैसे जुड़ सकता है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं पूछने वाली हूं, क्योंकि मुझे पता है यही सवाल आपके भी दिमाग में आ रहे हैं। छुटे रहिएगा रेडियो मानव भ्रष्ट 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं राकेश सेठी जी के साथ। राकेश सेठी जी जो कि चेयरमैन है विश्व प्रकाश मिशन और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं विश्व प्रकाश मिशन के, आज ये बता रहे हैं कि दरअसल ये जो विश्व प्रकाश मिशन है ये काम किस तरीके से करती है और कैसे बच्चों के जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश कर रही है। देखिए भाई, बहुत सी बार आपको ना लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सी बार आप लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि भाई पैसा ना होने के कारण ये बच्चा पढ़ ही नहीं पाए, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। इनफैक्ट टीवी पर या फिर अलग अलग मीडियम्स पर आप ऐसी कहानियां सुनते हैं, पर जब हम ये कहानियां सुनते हैं हम ये सिर्फ एक ही ख्याल हमारे दिल में आता है, काश कोई इनकी मदद कर देता। इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, इतने सारे लोग हैं, बट क्या सही इंसान सही जगह पहुंच नहीं पाया? ये काम कर रही है विश्व प्रकाश मिशन। सो विश्व प्रकाश मिशन का ये मिशन तो बहुत अच्छा है, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत होती होगी, तो ये फंड्स कैसे प्रोक्योर कर पाते हैं आप?
1: हाँ, मैं यही सोच रहा था, आपने ये प्रश्न पूछा नहीं अभी तक। कुछ बहुत सख्त नियम रखे हैं डोनेशंस के लिए भी, कैश में हम डोनेशन नहीं लेते हैं
0: जी।
1: मैं खुद सीए बनना चाहता था, पर उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति में शायद संभव नहीं था
0: जी।
1: तो वो भी एक मन में विचार तो था कि अगर खुद आप नहीं कर पाए हैं तो दूसरे बच्चों को एटलीस्ट ये इस वजह से पढ़ाई आगे नहीं कर पाए, वो ऐसे वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो दैट वाज वन ऑफ द जो एक होता है ना बैकग्राउंड में, माइंड में आपके सारा टाइम प्ले करता रहता है, नहीं ये काम आपको करना है और ये आपकी वजह है, तो कितना आप उसको प्रूव करेंगे। आप खुद से कम्पीट करते हैं ना, तो 2000 बच्चे भी मुझे लगता है कम लग रहे हैं, तो हो सकता है और भी आगे बढ़ें। फंड्स के लिए मैं 3 लाख रुपए तो अपना हर साल का खुद का डालता हूँ, पिछले 10 साल से रेगुलर एक नियम है। साथ में परिवार के और हमारे साथ में अजय गुप्ता जी और उनके परिवार के लोग, वो भी ट्रस्टीज हैं, तो दोनों परिवार से मिलके 20 या 25 लाख तक प्रतिवर्ष ये तो राशि रहती है। साथ में आपसे एक बात और भी शेयर करना चाहूँगा, बच्चों को हम खाली इंजीनियर डॉक्टर सीए या ग्रेजुएट्स नहीं बनाना चाहते हैं, हम उनको अच्छा नागरिक भी बनाना चाहते हैं। तो उसकी तरफ में 2 स्टेप रहते हैं, बेसिकली 4 स्टेप्स हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए, जिनका हम इंटरव्यू करने के बाद में सिलेक्शन के टाइम में उनसे रिपीट भी करवाते हैं। पहला तो ये कि आप पढ़ाई में 75% से ऊपर मार्क्स तो बीटेक कर रहे हैं या दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं, एमबीबीएस है तो 65% या उससे ऊपर आपको हर साल मार्क्स लेके आने, क्योंकि बच्चे को हम हेल्प इसलिए कर रहे हैं कि बच्चा आगे पढ़ाई में और अच्छा करे, तो वो इंसेंटिव उसको वैल्यू करना ज़रूरी है, इसके लिए अच्छा पढ़े। दूसरा ये है कि उसकी तो हेल्प होगी तो मुझे और समाज से क्या, फिर वो स्वार्थ की तरफ चला जाता है, भाई मेरा हो गया स्कॉलरशिप तो मुझे औरों को सोचना है या नहीं। हमारी ये रिक्वेस्ट रहती है हर एक बच्चे को, आप जहाँ भी कॉलेज में जा रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल बन रहा है वहाँ, उनमें से भी बच्चों को आइडेंटिफाई करो
0: जी।
1: उनमें से कोई बच्चा आपको लगता है जो ज़रूरतमंद है तो वो बच्चे को आप रेफर करो, तो आप समाज के बारे में सोच रहे हैं वाइल यू आर ए स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट होते हुए आपको हम बोले नहीं आप दूसरे फीस आप जमा करवाएं, पॉसिबल नहीं है, पर ये काम तो आप कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप है उस तरफ में कि आपको साथ में समाज की सहायता करना भी आना है। तीसरा काम, जब जॉब में लग जाओ माता पिता की अच्छे से हेल्प करो, अल्टीमेटली दे आर योर आत्मा, आपके लिए वही हैं, भगवान वही हैं, तो उनको कष्ट में रख के या आप सिर्फ अपनी तरफ देखते रहेंगे कि नहीं अब तो मैं कमा रहा हूँ तो मैं गाड़ी ले लूँ, मोबाइल फ़ोन ले लूँ, अच्छा है वो चीज़ें ज़रूरी हैं लेंगे, पर प्रायोरिटी में पहले पेरेंट्स का पूरा ध्यान रखें, साथ में वो भी करें, ये तीसरा काम। अब चौथा काम, जिस भगवान ने आपको ठीक समय पर हेल्प दी उसको आप धन्यवाद कैसे कहेंगे? मंदिर में जाके नमस्ते कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वो एक सिर्फ भावना है, वो आप भगवान को प्रदर्शित कर रहे हैं, पर उससे अच्छी भावना ये है ना जो भगवान के और लोग हैं जो नीडी हैं, क्या आप उनकी हेल्प कर पाएंगे? तो हम ये टारगेट ज़रूर बच्चे को बोलते हैं, बेटा आज हेल्प चाहिए लो, और कल को जब आपको भगवान ने समर्थ बनाया तो कम से कम एक बच्चे को पढ़ाओ। तो वो एक, अब ये आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा कि पैसा आता कहाँ से है, तो 24-25 में हमारे बच्चों ने ही 12 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया,
0: क्या बात है,
1: और 25-26 में वो राशि बढ़ के 21 लाख रुपए हो गई। अब इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैं नाम भी बता सकता हूँ, शशांक हमारा पहला बच्चा है जिसको हमने हेल्प करी थी, इंसिडेंटली उसके मदर और फादर दोनों नहीं है, कार एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई थी
0: जी।
1: उसको जब हेल्प चाहिए थी हेल्प हुई, मेरे ख्याल से उसको लास्ट सेमेस्टर में हेल्प चाहिए थी, तो हमने अराउंड 54,000 हेल्प किया। वो बच्चा आज तक 3,18,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर चुका है।
0: क्या बात है।
1: तो अब ये जिसके मन में भावना है ना कि मेरी हेल्प तो हुई पर मुझे ये समझ में है कि समाज में और भी नीडी लोग हैं, वो बच्चे फिर अपने आप से आगे बढ़ के आते हैं। ये शशांक तो एक एग्जाम्पल है, 4 बच्चे मारुति में सर्विस कर रहे हैं, 7 बच्चे सैमसंग में हैं, 4 बच्चियां अमेजन कंपनी में हैं, फिर अलग अलग कंपनीज में जो भी आईटी रिलेटेड हैं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी एक ऑफिसर लगे हुए हैं। ये सब बच्चे 5 लाख से लेके 44 लाख रुपए, दैट्स द एवरेज अर्निंग ऑफ देम। हम उनको यही एक समझाने का प्रयास रहता है, 10% इनकम का समाज के लिए रखो, 25% पेरेंट्स के लिए रखो, 50% खुद खर्च करो और 15% अपने लिए भी बचाओ।
0: Yes.
1: तो ये अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो समाज भी आपकी प्रायोरिटी में है, नहीं तो बाकी सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में कंट्रीब्यूट करेंगे फिर शायद वो नंबर आएगा नहीं।
0: वाओ, मतलब आप देखिए ना कि कितना अच्छी चेन है ये, कि इनफैक्ट सलमान खान की एक जो फिल्म नहीं

वो कहते थे भाई मुझे थैंक यू मत बोलो, बस इस बेसिस पर किसी की मदद कर दो। तो आई थिंक ये वही चेन है और ये बड़ी अच्छी चेन है, क्योंकि इससे ना सिर्फ जब आप किसी की मदद लेते हैं तो आप इंडेप्टेड तो रहते ही हैं, लेकिन साथ के साथ जहाँ आपने किसी और की मदद की आपका वो डेट भी क्लियर हो गया, क्योंकि आपने समाज के लिए वही किया जो किसी ने आपके लिए किया था। और इससे नेकी भी फैलेगी, न सिर्फ आने वाली पीढ़ी को ये समझ में आएगा कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के अलग अलग वर्ग होते हैं हम सब जानते हैं, बट हमेशा ये हैव्स और हैव नॉट्स का जो गैप है कभी फिल नहीं हो पाता, और इस गैप के फिल ना हो पाने के कारण बहुत सारे ऐसे कहना चाहिए मेधावी बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। सो उन्हें ये मौका भी मिल रहा है और ये मौका दे रहा है विश्व प्रकाश मिशन। बहुत ही खूबसूरत सा मिशन है जिसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं राकेश सेठी जी के साथ, जो कि चेयरपर्सन है विश्व प्रकाश मिशन और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। राकेश जी, अब मुझे ये बताइए कि जब आप किसी को ये पैसे देते हैं, तो क्या ये पैसे उनके कैंपस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दिए जाते हैं या उस परिवार को दिए जाते हैं?
1: जी, हर एक कॉलेज में ये संभव नहीं हो पाता है कि हम, क्योंकि हमारा एक ये एक नियम और भी है, 100% तो हर एक बच्चे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी, समाज की भी जिम्मेवारी
0: जी।
1: तो इनवेरियबली जैसे हमने 50,000 बताया MBBS या BTech बच्चों के लिए, 75-80% वो रेंज रहती है जनरली बच्चों की फीस को हम सपोर्ट कर पाए, पर कैप उस पर यही है 50-60,000 तक पर ईयर एक बच्चों को करें, तो बाकी भी समाज में बहुत बच्चे हैं जिनकी हेल्प होनी है
0: जी।
1: तो उसमें जहाँ पर संभव है कि कॉलेज को हम डायरेक्ट कर पाएं, तो वहाँ हम कॉलेज को डायरेक्ट भेजते हैं। DAV कॉलेज करनाल, फरीदाबाद और यमुनानगर, ये तीन कॉलेजेस के साथ में भी हमारा एक तरह से कंटिन्यूटी है, वहाँ पे भी बच्चों को वहाँ हम डायरेक्ट भेज पाते हैं। YMCA में भी हम डायरेक्ट भेज पाते हैं, पर जो बच्चे IITs NITs में पढ़ रहे हैं
0: वहाँ पर
1: ये फिर कोई IIT खड़गपुर से 20 बच्चे हैं, IIT दिल्ली से 6 बच्चे, IIT कानपुर से 8 बच्चे, NITs कुरुक्षेत्र से, बाकी जगह से भी, तो उनके लिए भी वो प्रोसीजरली इट बिकम्स डिफिकल्ट कि भाई वहाँ पैसा गया कैसे करें, तो हम बच्चे को अकाउंट में पैसा भेजते हैं। बच्चे सभी समझदार हैं, पेरेंट्स भी इतनी जिम्मेवारी समझते हैं, वो अपनी फीस जमा कराते हैं, फीस रिसीट हमारे पास में आती है
0: जी।
1: तो देयर इज अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ दैट। और बच्चे के लिए ये भी कंपलसरी है कि ही आर शी विल बी सेंडिंग द रिजल्ट एवरी सेमेस्टर, तो वो अगर 75% से थोड़ा नीचे आता है तो हम फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं, ये सेमेस्टर कर रहे हैं पर अगले सेमेस्टर से आपको इम्प्रूव करना है। पर अगर आप नहीं वैल्यू कर रहे हैं और मार्क्स आपके आ रहे हैं 60% आर बिलो दैट, तो हमें दुख तो होता है, पर वो ऐसे बच्चों को हम फिर सपोर्ट नहीं करते हैं। पर उस बच्चे को चांस रहता है, आप वापस आओ 75% से ऊपर, वी आर नॉट पेनलाइजिंग यू, पर अगर वैल्यू नहीं करोगे तो वैल्यू करना जरूरी है।
0: Yes.
1: और कंटिन्यूटी भी करते हैं बच्चा अगर वापस आ जाता है।
0: क्या बात है। सो देखिए, कुछ छोटे छोटे कहना चाहिए क्लॉज जरूर होने चाहिए जब आप किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन उन क्लॉज को सिर्फ एक मोटिवेशन के रूप में रखा जाता है। ये बड़ी अच्छी सी पहल है विश्व प्रकाश मिशन की। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रेष्टा 107.8 FM। मैं हूं आरजी भावना और रेडियो मानव रेष्टा 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं राकेश सेठी जी के साथ, जो कि चेयरमैन हैं और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं विश्व प्रकाश मिशन के। राकेश जी, बहुत सारे लोग आपको रेडियो मानव रचना के जरिए सुन रहे हैं, सो जब ये पूरी विश्व प्रकाश मिशन की कहानी सुन रहे हैं, उन्हें कई बार लग रहा होगा कि चलिए हम भी इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। सो कोई आपकी इस पहल के साथ कैसे जुड़ सकता है, वॉलंटियर कर सकता है, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर वो आपके साथ जुड़कर काम कर सकता है, तो कैसे किया जा सकता है?
1: जो ऐसी भावना रखता है, पहले तो उसका स्वागत है
0: जी,
1: क्योंकि समाज में काम अकेले से होना तो पॉसिबल नहीं है
0: जी।
1: वी कैन लीड बट एट द सेम टाइम यू रिक्वायर हेल्प आल्सो। जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मैंने पहले भी आपसे जानकारी दी कि कैश में हम डोनेशन नहीं लेते हैं
0: जी।
1: UPI लिंक हम शेयर कर सकते हैं, आप डोनेशन भेजिए, साथ में आपका पैन नंबर है या आधार नंबर है, वो साथ में हम जरूर लेते हैं, ताकि हमें ये आइडिया रहे कि पैसा भेजा किसने
0: जी।
1: तो खाली पैसा लेना उद्देश्य नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम ए प्रॉपर सोर्स, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। और साथ में डोनेशन की रिसीट हर एक डोनर को भेजी जाती है। आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहता है, तो जैसे आजकल BTech के बच्चों की प्रोसेस चल रही है
0: जी,
1: और फिर कुछ दिनों बाद में MBBS का रिजल्ट आएगा, तो उन बच्चों की प्रोसेस चलेगी। उस टाइम में हम बच्चों को पेरेंट्स का इंटरव्यू वगैरह जो करना होता है, उसमें अगर आप एक या दो दिन समय हमारे साथ में लग के पेरेंट्स को क्या प्रोसेस है, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इन दैट, आपका स्वागत है। पर वो आपको पहले प्रश्न क्या पूछने वाले हैं, आपकी भावना वो गरीब परिवार के साथ में जुड़ी हुई होनी चाहिए। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मतलब मैं भी अगर करता हूँ तो इट्स नॉट इन ए ऑफेंसिव टोन
0: जी,
1: इट हैज़ टू बी वेरी पोलाइट हम्बल के भाई हम हेल्प तो कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं सर्टनली वी विल आस्क, तो दैट कैन बी अनदर वे ऑफ डूइंग इट। मैं एक साथ में आपसे और शेयर करना चाहूँगा, ये जो अभी तक की प्रोसेस है उसमें हम बच्चों को, बच्चे ने जैसे JEE मेन क्लियर कर लिया, एडवांस क्लियर कर लिया, या नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, एंड दे हैव स्कोर्ड रियली गुड, हम ये भी बताना चाहूँगा, मेरे पास में मेरिट बेस ही हम रखते हैं, क्योंकि जो अगर साधन लिमिटेड है तो यू हैव टू गिव इट टू द बेस्ट।
0: यस,
1: तो JEE मेन्स का जिनका रैंक 50,000 तक है, पहले 50,000 रैंक के बच्चे उनको ही हेल्प करते हैं। MBBS में 720 का एग्ज़ाम होता है, 520-600 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों को हेल्प करते हैं। वजह उसकी यह है कि अगर जिसने मान लीजिए 300 मार्क्स लिए, उसको हेल्प की ज़रूरत है, आई फुली एग्री, पर जिसने 550 मार्क्स लिए उसको छोड़ के 300 वाले की हेल्प करेंगे, तो फिर वो जो मिशन है ना कि जहाँ पर ठीक जगह पर पहुँचे, वो भी ज़रूरी है। पर उस स्टेप को हमने और पॉजिटिवली इम्प्रूव करने के लिए अजय जी के साथ में, अभी तक तो यह है कि बच्चा कोचिंग लेके या अपने रैंक लेके हमारे पास में आ रहा है। अब कुछ बच्चे क्या, परिवार फरीदाबाद के आसपास के कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे ना जो कोचिंग भी नहीं ले पा रहे,
0: वाकई
1: हाँ, तो वो उन बच्चों के लिए अब इस साल से हम उनको कोचिंग के, हो सकता है 5,000 से नीचे की हम फीस रखें, बड़ा नॉमिनल सा अमाउंट, उनको वो कोचिंग हम प्रोवाइड करेंगे JEE मेंस के लिए भी और MBBS के लिए भी। बच्चे आए अपना 4 घंटे या 6 घंटे का जो भी सेशन होगा, उसमें प्रॉपरली क्वालिफाइड टीचर्स, दोज हु आर वेरी कॉम्पिटेंट, दे विल बी गाइडिंग यू, दे विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर द एग्जाम्स। आप अच्छे से अपना नीट और JEE मेंस क्लियर कीजिए, और आप अगर, आप, मेरी पूरा विश्वास है ये बच्चों में से भी काफी बच्चे फिर वो रैंक लेके आएंगे।
0: yes.
1: तो उनको खाली कोचिंग नहीं, आगे 4 साल या 5 साल वो हेल्प भी साथ में मिलेगी। तो ये आश्वासन तो हम दे सकते हैं, पर बच्चे को परफॉर्म तो करना जरूरी है।
0: okay.
1: और जो बच्चे अभी हमने 10 तारीख तक हम बच्चों को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में हम टेस्ट भी लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा जिसको कोचिंग चाहिए उसमें भी, वेदर दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर बिकमिंग ए इंजीनियर और डॉक्टर, वो जो मार्क्स के बेस पे हमारा क्राइटेरिया आता है वो बच्चों को फिर 50, हमने उसका नाम भी रखा है VPM सुपर 50।
0: वाओ,
1: तो 50 बच्चे इंटेंट है हर साल, अगर हम कोचिंग देके उनको भी आगे बढ़ा पाए तो आगे की तो हेल्प मिलेगी, पर जो शुरू में कोचिंग भी नहीं ले पा रहा है वो बाधा भी दूर करने का प्रयास है हमारी तरफ से।
0: भाई बड़ी सारी ऐसी सीरीज आप देखते हैं ना आजकल, वेब सीरीज होती हैं जिसमें आप ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये मौके नहीं मिल पाते हैं। सो अब कोचिंग से ही मदद कर रहा है विश्व प्रकाश मिशन। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि भाई विश्व प्रकाश मिशन के साथ आप जुड़ सकते हैं, सो डेफिनेटली जुड़िए। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं या वॉलंटियर भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हमें सुन रहे हैं जिन्हें पता होगा कि ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कोचिंग लेनी है लेकिन कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, जिन्हें एडमिशन लेना है लेकिन एडमिशन के लिए उनके परिवार के पास पैसा नहीं है। सो अगर आपको ऐसा कोई भी बच्चा मिलता है तो उन्हें सीधे विश्व प्रकाश मिशन से कनेक्ट करिए। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे थे राकेश सेठी जी के साथ, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं विश्व प्रकाश मिशन के। ढेर सारी बातें इनसे जानने की कोशिश की कि विश्व प्रकाश मिशन किस तरीके से काम करता है और मेरिटोरियस बच्चों को आगे बढ़ाने में कैसे मदद करता है। तहे दिल से धन्यवाद राकेश जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे सभी को?
1: भावना जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमें स्टूडियो में बुलाया। इंटेंट पब्लिसिटी की नहीं है, इंटेंट ये है कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे
0: जी,
1: कि उनके लिए एक संस्था फरीदाबाद में ही है जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। बच्चों को आगे बढ़ाइए, उनका भविष्य अच्छा बने, और साथ में एक जो मन में कसक रहती है, परिवार का एक बच्चा अगर अच्छे से पढ़ गया ना, वो पूरे परिवार को पॉवर्टी के डीएनए से बाहर लेके आएगा। और वो हम देख रहे हैं, ये जो 11 बच्चे इंजीनियर बन के जो सेटल हुए हैं, 5 बच्चे एमबीबीएस करके डॉक्टर बन चुके हैं, नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजी। 65 बच्चे सीए की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें से भी 5 बच्चे ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के दे आर सेटल्ड इनटू द जॉब। और जो बीबीए बीसीए वाला या बाकी कोर्सेज कर रहे हैं, 250 के आसपास बच्चे होंगे, उनमें से भी 150 बच्चे ऑलरेडी दे आर थ्रू विद देयर कोर्सेज। हाँ ठीक है, उनकी सैलरीज हो सकता है थोड़ी कम होंगी, पर दिल से भावना उनकी भी बहुत बढ़िया। एक बच्ची है कृष्णा, 15,000 रुपये अर्न करती है, 1500 रुपये महीने का कंट्रीब्यूशन भी भेजती है।
0: क्या बात,
1: वो जो हम बोलते हैं ना 10% समाज के लिए रखो, वो बच्चे के दिल में ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पर लिमिटेड रिसोर्सेज में समाज की भी प्रायोरिटी है। ये भावना समाज में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आपने मुझे पूछा कि लास्ट में आप और क्या संदेश देना चाहेंगे, इस साल से मैंने एक प्रयास और शुरू किया है और मुझे विश्वास है वो भी काम अच्छे से करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। आज की डेट में जो समाज की स्थिति है ना, तो उसमें ये भी है, इंजीनियर बन रहा हूँ फिर दहेज में तो कुछ गाड़ी भी होनी चाहिए,
0: वाकई
1: डॉक्टर बन रहा हूँ तो ये भी होना चाहिए। तो वो उससे आप इंजीनियर बन के अच्छा इंसान बन रहे हैं या कोई और डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो बच्चों से या बच्चों के पेरेंट्स से मैं ये बात कमिट भी करवाता हूँ कि आप, अगर आपका लड़का है तो आप तो पक्का कमिट कीजिए कि आप दहेज नहीं लेंगे
0: जी।
1: आप अच्छा डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और आपके पास में पढ़े लिखी जॉब करने वाली बच्ची आ रही है, तो आपके लिए तो वो पूरी ज़िंदगी आपके लिए साथ में रहेगी ना, तो फिर दहेज क्यों? तो वो बच्चों को एक मैसेज जा रहा है, 5% 10% में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, 25-30-40% बच्चे मुझे विश्वास है मानेंगे इस बात को। जो लड़कियां भी हैं उनको भी जरूर समझाते हैं, बेटा जो अगर कोई दहेज मांग रहा है तो उसको पूछ लो क्या चाहिए दहेज में। अगर उसको कार चाहिए मान लीजिए, तो उसको बोलो भाई कार से शादी कर लो, मैं अभी फ्री नहीं हूँ।
0: वाकई
1: हाँ, तो आप अगर अर्न कर रहे हैं तो अपनी रेपुटेशन पर, अपनी अस्मिता पर आप खड़े रहिए, और समाज चेंज होगा पर उसको करने के लिए शुरुआत अपने से करना जरूरी है। पेरेंट्स की मजबूरियां होती होंगी, पर अगर आप पूरा स्टैंड ले रहे हैं तो मैं पूरी तरह से इस बात पे विश्वास करता हूँ। कोई भी बात कहते हैं समाज में, अगर कमिटमेंट के साथ कह रहे हैं तो इट रीचेस।
0: यस,
1: तो वो रीच करने के लिए ये भी एक स्टेप साथ में शुरू किया है, कोचिंग भी करेंगे, पढ़ाई भी करवाएंगे, पर साथ में समाज को अच्छा भी बनाएंगे, तो ये मिशन का एक टारगेट है।
0: कितनी खूबसूरत सी पहल है। सो एक तरफ बच्चों की मदद की जा रही है, दूसरी तरफ उनके लिए एक अच्छा भविष्य क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में वो अच्छे बेटर ह्यूमन बीइंग्स बने ये भी इंश्योर किया जा रहा है। सो विश्व प्रकाश मिशन वाकई चल रहा है मानवता की राह पर। वंस अगेन थैंक यू सो मच राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ इंटरेक्ट।
1: सो काइंड ऑफ यू, थैंक्स फॉर वेलकमिंग।
0: वक्त है आपसे इजाजत लेने का, और आपसे इजाजत लेते हुए मैं वादा कर देती हूँ, वादा यही कि अगले हफ्ते होगी मेरी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत और कहीं मत जाइए। फील गुड, फील लाइट।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिखकर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का 2 कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आती थी और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। 2 बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के

भली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का यह अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है, तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता। लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिलाता। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता। पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो

0: लगता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी न सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर, मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था, और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था, हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था, निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है। दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर, वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: રેડિયો મને વૈષ્ણવ મને 7.8 FM પર ઢેર સારી મસ્તી ખૂબ સારા ફન ક્યોંકિ યે હૈ ફરીદાબાદ કા રેડિયો નંબર 1
1: स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सक्सेस मंत्रा, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम उन हस्तियों की कहानियाँ लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी लगन से और अपने टैलेंट के दम पर सफलता की एक अलग मिसाल एक कामयाबी को हासिल किया है। हर एपिसोड में हम किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए अनुभव और उनकी सीख को आप तक पहुंचाते हैं जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जी हाँ, ये प्रोग्राम स्पेशली मैं इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आप भी अपनी लाइफ में मोटिवेट होते रहें और आप भी अपनी लाइफ में कुछ करने का सोचें, क्योंकि हर इंसान कुछ बड़ा कर सकता है, बस आपको ना लगन रखनी है उस चीज की जो भी आपको हासिल करना है अपनी लाइफ में। और आज भी लेकर आ गई हूँ सक्सेस मंत्रा, एक स्टार, एक बॉलीवुड के सुरों की मलिका की कहानी। जी हाँ, एक ऐसी आवाज जिसे सुनते ही लाखों दिलों की यादें ताजा हो जाती है, यानी कि कौन है वो जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए मैं बता देती हूँ, आज हम बात करने वाले हैं अलका याग्निक जी के बारे में। जी हाँ, अलका याग्निक, ये नाम हम सब ने सुना है क्योंकि गाने हम सब सुनते हैं, हम सबको पता है कि ये कौन है। 90s और 2000 के दौर में शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें अलका याग्निक की मधुर आवाज ना गूंजी हो, चाहे रोमांटिक गाने हो, इमोशनल मेलोडीज हो या फिर डांस के नंबर्स क्यों ना हो। अलका जी ने हर तरह के गानों को अपनी आवाज से खास बना दिया। उनकी आवाज ने ना सिर्फ गाने गाए हैं बल्कि पूरी एक जनरेशन की यादों को सजाया है। 20th मार्च 1966 को कोलकाता में जन्मी अलका याग्निक का म्यूजिक से रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। उनकी माँ सुभा याग्निक एक क्लासिकल सिंगर थी और घर का माहौल पूरी तरह संगीत से भरा हुआ था। इसी वजह से अलका जी को बहुत छोटी उम्र से ही म्यूजिक की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे तब अलका जी सुर और ताल की दुनिया में अपना भविष्य तैयार कर रही थी। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि अलका याग्निक ने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। उनकी प्रतिभा बचपन से ही नजर आने लगी थी और धीरे धीरे उनका नाम कोलकाता के म्यूजिक सर्कल में पहचाना जाने लगा। लेकिन उनके सपने और भी ज्यादा बड़े थे, उन्हें अपनी आवाज को पूरे देश तक पहुंचाना था और इसी सपने ने उन्हें एक दिन मुंबई लाकर खड़ा कर दिया। आज अलका याग्निक का नाम भारत की सबसे सफल प्लेबैक सिंगर में से एक माना जाता है। उन्होंने हजारों गाने गाए, कई रिकॉर्ड्स भी बनाए और अनेक अवार्ड्स अपने नाम भी किए हैं। लेकिन हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी भी होती है और अलका याग्निक की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। तो दोस्तों, आज का ये पूरा जो सफर है, हम जानेंगे एक छोटी सी लड़की से लेकर बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर बनने तक की। हाँ, मैं बात कर रही हूँ अलका याग्निक जी, अलका याग्निक की इंस्पायरिंग जर्नी के साथ आज हम चलने वाले हैं। तो इसलिए मुझे पता है आप इनकी कहानी सुनते ही, आप इनका नाम सुनते ही यहाँ पर रुक जाएंगे और जुड़ जाएंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, क्योंकि अभी वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद करने वाले हैं हम बहुत सारी बातें। तो सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए लेजेंडरी लोगों की बातें। जी हाँ, ऐसे लोगों की बातें जिन्होंने अपनी लाइफ में ना कामयाबी को हासिल किया है। जी हाँ, कामयाबी सिर्फ इसलिए नहीं आती लोगों के पास क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है। जी नहीं, बहुत से लोग ऐसे दुनिया में है जिन्होंने अपने पास कुछ ना होते हुए भी कामयाबी को हासिल किया है, सक्सेस को अचीव किया है, साथ ही दूसरों के लिए भी काम किया है। और इस जर्नी में जिससे आज हम मोटिवेट हो रहे हैं, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, वो है बॉलीवुड की लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक की इंस्पायरिंग जर्नी की। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे कोलकाता में जन्मी अलका याग्निक का म्यूजिक से रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। अब बात करते हैं उस सफर की जिसने उन्हें सपनों के शहर मुंबई तक पहुंचाया। अलका याग्निक के घर में संगीत का माहौल बचपन से ही था। उनकी माँ सुभा याग्निक एक क्लासिकल सिंगर थी और उन्होंने ही अलका जी को सुरों की पहली तालीम दी। बहुत छोटी सी उम्र से ही अलका जी ने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। सिर्फ 4 साल की उम्र में वो भजन गाने लगी थी और उनकी मधुर आवाज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने भी लगी थी। उनकी प्रतिभा इतनी खास थी कि बचपन में ही उन्हें ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता में गाने का एक मौका मिला। ये किसी भी यंग सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अलका जी और उनकी माँ जानती थी कि अगर प्लेबैक सिंगिंग में नाम बनाना है तो मुंबई जाना बहुत जरूरी है। जब अलका जी लगभग 10 साल की थी तब उनकी माँ उन्हें लेकर मुंबई आ गई। सपने बड़े थे लेकिन रास्ता आसान नहीं था। मुंबई में कंपटीशन बहुत ज्यादा था और हर दिन नए सिंगर्स अपनी पहचान बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। इसी दौरान अलका जी की मुलाकात शोमैन राज कपूर से हुई। राज कपूर उनकी आवाज से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अलका जी को मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलवाया। ये मुलाकात उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुआ। जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनकी आवाज में टैलेंट को देखा लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अलका जी अभी बहुत यंग है। उन्होंने सलाह दी कि थोड़ा समय और ट्रेनिंग के बाद उनकी आवाज प्लेबैक सिंगिंग के लिए और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अलका जी ने इस सलाह को समझा और अपनी मेहनत को जारी रखा। धीरे धीरे उन्हें छोटे छोटे मौके मिलने लगे। हर रिकॉर्डिंग, हर प्रैक्टिस और हर नए अनुभव उनके लिए सपने की और ज्यादा उनके करीब लेकर जा रहा था। उन्होंने कभी जल्दी सफलता पाने की कोशिश नहीं की बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। और फिर आया वो पल जिसने अलका याग्निक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या थी वो बात जानेंगे पर अगले सेगमेंट पे। अभी वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको मोटिवेट करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, आप भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सक्सेस मंत्रा एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हासिल करा। और आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है सुरों की मलिका यानी कि अलका याग्निक की जिंदगी की और उनकी सफलता के सफर की। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे अलका याग्निक ने बचपन से ही म्यूजिक की ट्रेनिंग ली, मुंबई आई और फिर प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए लगातार मेहनत करती रही। अब बात करते हैं उस मौके की जिसने उनकी जिंदगी को एक नई पहचान दी। जी हाँ, 1980 के दशक में अलका याग्निक को कुछ फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला और धीरे धीरे इंडस्ट्री में लोग उनकी आवाज को पहचानने भी लगे। लेकिन कलाकार की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जो उसके करियर को पूरी तरीके से बदल देता है। अलका जी के लिए भी ये पल आया था। साल था 1988 जब वो पल आया उनकी लाइफ में। इस साल रिलीज हुई फिल्म तेजाब जिसमें माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया गाना 1 2 3 पूरे देश में छा गया। इस गाने को अपनी आवाज दी थी अलका याग्निक जी ने। जी हाँ, गाना इतना पॉपुलर हुआ कि हर गली हर मोहल्ले और हर फंक्शन में लोग इस गाने को सुनने लगे। और आज भी जब बॉलीवुड के आइकॉनिक डांस नंबर में से गाने की बात होती है तो 1 2 3 का जो गाना है वो नाम सबसे पहले लिया जाता है। इस गाने ने ना सिर्फ माधुरी दीक्षित को ही नहीं बल्कि अलका याग्निक को भी सुपरस्टार बना दिया। उनकी आवाज में जो एनर्जी स्वीटनेस और एक्सप्रेशन था उसने लोगों का दिल जीत लिया। इस गाने के लिए अलका याग्निक को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ये उनकी मेहनत और टैलेंट का सबसे बड़ा सम्मान था। 1 2 3 सॉन्ग की सफलता के बाद अलका याग्निक बॉलीवुड की सबसे डिमांड में रहने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर में से एक शामिल हो गई। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स उनकी आवाज को अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाना चाहते थे। धीरे धीरे वो माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करिश्मा कपूर, काजल और कई बड़ी हीरोइंस की स्क्रीन वॉइस भी बन गई। सबसे खास बात तो ये थी कि अलका जी ने कभी अपनी सफलता को सर पर नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने हर नए गाने को उतनी ही मेहनत और लगन से गाया जितनी अपनी शुरुआती दिनों में वो मेहनत करते हुए गा रही थी। शायद इसी वजह से उनकी आवाज हर जनरेशन के लोगों के दिल तक पहुंच सकी। दोस्तों, एक गाने ने अलका याग्निक को स्टार जरूर बना दिया लेकिन उनका असली गोल्डन एरा अभी शुरू हुआ था। आके इसके बारे में भी जानेंगे लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ ऐसी खास बातें, कुछ ऐसी खास जर्नी जिसे सुनकर आप भी मोटिवेट होते हैं और अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आना, अपने आप को मोटिवेट करना कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, हर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और आज जिसकी हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, सक्सेस मंत्रा के इस प्रोग्राम में, वो है बॉलीवुड की मेलोडी क्वीन अलका याग्निक की कहानी। उनकी जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। पिछले सेगमेंट पे हमने सुना कि कैसे एक दो तीन जो सॉन्ग ने उनकी एक नई पहचान बना दी और बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं उनके करियर के उस दौर की जिसे आज भी उनका गोल्डन एरा पीरियड कहा जाता है। जी हाँ, 1990s और 2000 के समय अलका याग्निक के लिए बेहद खास रहा। इस दौरान उन्होंने एक के बाद एक ऐसे गाने गाए जो आज भी लोगों की प्लेलिस्ट और यादों का हिस्सा है। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी जो रोमांटिक सॉन्ग्स को और भी ज्यादा खास बना देती थी। इस दौर में अलका याग्निक ने कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम, अभिजीत और हरिहरन जैसे मशहूर सिंगर्स के साथ यादगार गाने गाए हैं। उनकी और उदित नारायण की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे सफल म्यूजिकल जोड़ियों में से एक माना जाता था। दोनों की आवाज का जो मेल सुनने वालों को बहुत ज्यादा पसंद था, चाहे वो रोमांटिक मेलोडीज हो या फिर इमोशनल सॉन्ग्स हो या फिर मस्ती से भरे कोई डांस ट्रैक हो, अलका जी की हर तरह के गाने में आवाज एक अलग पहचान छोड़ती थी। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए हैं। जी हाँ, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उन्होंने इतने सारे लैंग्वेजेस में भी गाने गाए हैं। ये उनके टैलेंट का प्रूफ था कि वो सिर्फ एक ही भाषा पे नहीं रुकी बल्कि उन्होंने अलग अलग भाषाओं में कितने सारे गाने गाए। एक और खास बात थी उनकी आवाज की क्लियरिटी। जी हाँ, जब भी हम किसी फिल्म में हीरोइन की इमोशंस को गाने के जरिए दिखाना होता था, म्यूजिक के डायरेक्टर्स की सबसे पहली पसंद अक्सर अलका याग्निक ही होती थी और इसी वजह से उनकी आवाज माधुरी दीक्षित, काजोल, करिश्मा कपूर, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और कई और अन्य ऐसे कलाकार पर बहुत खूबसूरती से सूट करती थी। सालों तक उन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपनी एक मजबूत छाप छोड़ी है। हजारों गानों के जरिए उन्होंने हर उम्र के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उनके गाने सिर्फ हिट ही नहीं होते बल्कि लोगों की जिंदगी की यादों का हिस्सा बन जाते थे। दोस्तों, जब टैलेंट और मेहनत साथ चलते हैं तो सफलता खुद रास्ता बना लेती है। अलका याग्निक की कहानी भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं होस्ती हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर में से एक अलका याग्निक की। पिछले सेगमेंट में हमने उनके गोल्डन एरा और उनके सुपरहिट गानों के बारे में जाना। अब बात करते हैं उन सम्मानों की और उन उपलब्धियों की जिन्होंने उनके सफर को और भी ज्यादा खास बना दिया। अलका याग्निक ने अपने करियर में सिर्फ लोगों का प्यार ही नहीं जीता बल्कि कई बड़े अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। जी हाँ, उन्होंने 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया जो किसी भी सिंगर के लिए बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने रिकॉर्ड 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते जो उनकी लगातार सफलता और बेहतरीन गायकी का प्रमाण है। लेकिन बात करते हैं साल 2026 की। जी हाँ, साल 2026 में उनकी जिंदगी में एक और बहुत खास खुशी लेकर आया, वो था भारत सरकार ने उन्हें देश के 3rd सबसे बड़े सिविलियन ऑनर में से पद्म भूषण से सम्मानित किया। यह अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी या फिर सर्टिफिकेट नहीं है बल्कि उनके दशकों के योगदान, मेहनत और भारतीय संगीत को दिए गए अमूल्य योगदान की पहचान है। पद्म भूषण मिलने के बाद अलका याग्निक ने अपनी खुशी और कर्तव्य व्यक्त किए हैं। अलका याग्निक ने अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सम्मान उनके लिए बहुत इमोशनल और यादगार पल है। यह अवार्ड उन सभी लोगों के नाम भी है जिन्होंने उनके सफर में उनका साथ दिया, चाहे वो उनका परिवार हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो या फिर को सिंगर्स हो या उनके करोड़ों फैंस क्यों ना हो। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो अलका याग्निक ने बिजनेसमैन नीरज कपूर से शादी की। उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम शेरसा कपूर है। अपने बिजी करियर के बावजूद अलका जी ने हमेशा परिवार को भी उतनी अहमियत दी है जितनी अपने प्रोफेशन को दी है। शायद इसी संतुलन ने उन्हें जमीन से जुड़ा और विनम्र इंसान बनाए रखा। उन्होंने कई रियलिटी शो में जज के रूप में भी काम किया है, नए सिंगर्स को गाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी सलाह और अनुभव ने युवा कलाकारों को अपने सपनों की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दी है। दोस्तों, अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स किसी भी कलाकार की सफलता को दर्शाते हैं लेकिन असली सम्मान लोगों के दिलों में जगह बनाना होता है और अलका याग्निक जी ने भी ये जगह अपने मधुर आवाज से सादगी से हासिल की है। लेकिन हर सफर में कुछ चुनौतियां भी आती हैं। अगले सेगमेंट में उन चुनौतियों की भी बात करेंगे जो उनकी लाइफ में आई, पर अभी लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। और आज लेकर आ गई हूं मैं जिनकी जर्नी, जिनकी इंस्पायरिंग जर्नी, उनका नाम है अलका याग्निक जी। जी हाँ, आज हम अलका याग्निक जी की जर्नी के साथ चल रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी आवाज से लाखों दिलों को छुआ, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने उनके अवार्ड, पद्म भूषण सम्मान और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जाना, लेकिन अब बात करते हैं उनके जीवन के एक ऐसे फेस की जो उनके लिए भी चैलेंजिंग रहा और उनके फैंस के लिए भी उतना इमोशनल रहा। जी हाँ, साल 2024 के आसपास अलका याग्निक जी ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू एक पर्सनल हेल्थ अपडेट शेयर किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें एक रेयर कंडीशन डायग्नोस हुआ है जिसका नाम है सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें सुनने की क्षमता असर पड़ता है। ये खबर उनके फैंस के लिए बहुत शॉक जैसी थी क्योंकि जिसे हम मेलोडी क्वीन के नाम से जानते हैं, उनकी आवाज और संगीत ही उनकी पहचान है। इस सिचुएशन में उन्होंने अपने काम को थोड़ा सा स्लो कर दिया और डॉक्टर्स की गाइडेंस पर ज्यादा फॉलो किया, लेकिन इस पूरे दौरान उनकी सबसे बड़ी ताकत रही उनकी पॉजिटिव सोच और उनकी हिम्मत। उन्होंने कभी अपने काम को कमजोर नहीं माना बल्कि इस फेस को भी एक नए तरीके से ही हैंडल किया। अलका जी ने अपने मैसेज में ये भी कहा कि लाउड म्यूजिक, हेडफोन्स और हाई वॉल्यूम एक्सपोजर को लेकर लोगों को अवेयरनेस रखनी चाहिए क्योंकि हियरिंग हेल्थ को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उनका ये मैसेज सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री और आम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लेसन बन गया है। इस दौर में भी उनके फैंस ने उन्हें बहुत सपोर्ट दिया। सोशल मीडिया पर उनके लिए प्रेयर्स और गुड विशेस का सिलसिला चल पड़ा। ये सब दिखाता है कि सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में एक इमोशनल कनेक्शन भी बन गया है उनके लिए। 2026 में जब उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तब ये मूवमेंट और भी ज्यादा इमोशनल बन गया क्योंकि एक तरफ उनकी लाइफ का चैलेंजिंग फेस था और दूसरी तरफ देश का इतना बड़ा सम्मान उनके नाम था। ये कॉम्बिनेशन उनकी जर्नी को और भी ज्यादा इंस्पायरिंग बना देता है। दोस्तों, लाइफ में मुश्किलें किसी को भी रोक नहीं पाती अगर इंसान के पास हिम्मत और पॉजिटिविटी हो। अलका याग्निक जी ने भी ये साबित किया है कि असली स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ सक्सेस में नहीं बल्कि डिफिकल्ट टाइम को कैसे हैंडल किया जाता है उसमें होती है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपके साथ और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं अलका याग्निक जी की। आज हमने बात करी अलका याग्निक जी की पूरी जर्नी के बारे में, उनकी सार को समझा उनकी लाइफ के, और उनके लाइफ में मिलने वाले असली सक्सेस लेसन को भी जाना। तो चलिए अब आज के हैं हम अपने आखिरी सेगमेंट में, उसमें जानते हैं उनके लाइफ लेसन्स को। अलका जी की कहानी सिर्फ एक सिंगर बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक सपने को पूरा करने के लिए लगन है, पेशेंस है और कंटिन्यूस हार्ड वर्क की मिसाल भी है। कोलकाता की एक छोटी सी लड़की जिसे बचपन से म्यूजिक का शौक था, उसने मुंबई जाकर बॉलीवुड के टफेस्ट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और फिर डिकेड्स तक अपनी आवाज से सबको जोड़ कर रखा। उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि टैलेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अलका जी ने कभी भी सक्सेस के बाद अपनी प्रैक्टिस या फिर डेडिकेशन को कम नहीं होने दिया। हर गाने को उन्होंने उतनी सीरियसनेस के साथ गाया जितनी कि वो पहले दिनों में गाया करती थी। उनकी लाइफ का एक और बड़ा लेसन है, वो है पेशेंस। उन्हें तुरंत सक्सेस नहीं मिली, उन्होंने ट्रेनिंग करी, वेट करा और स्ट्रगल का वक्त भी देखा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और जब उनका ब्रेक थ्रू आया तो वो सिर्फ एक हिट तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक पूरा गोल्डन एरा बन गया। अलका जी ने हमें ये भी दिखाया है कि सक्सेस के साथ ग्राउंडेड रहना कितना जरूरी है। इतनी बड़ी

फेम के बाद भी उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमैनिटी उन्हें और भी ज्यादा रिस्पेक्ट दिलाती है। वो सिर्फ एक स्टार ही नहीं बनी बल्कि एक ऐसी पर्सनैलिटी बनी जिससे लोग सिर्फ सुनते ही नहीं है बल्कि दिल में एडमायर भी करते हैं। आज जब हम उनकी जर्नी को देखते हैं तो ये समझ आता है कि चैलेंजेस जिंदगी का हिस्सा है। हियरिंग लॉस जैसे कंडीशन के बाद भी उनका पॉजिटिव एटीट्यूड ये बताता है कि असली स्ट्रेंथ अंदर होती है, आवाज में नहीं। और शायद इसी वजह से उनकी स्टोरी और भी ज्यादा इंस्पायरिंग बन गई। दोस्तों, अलका याग्निक जी का सफर हमें एक सिंपल सा सक्सेस मंत्रा भी देता है कि अपने सपने बड़े रखिए, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करिए और कभी भी अपनी जर्नी को रुकने मत दीजिए, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। अलका याग्निक जी की आवाज और उनकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। इसी के साथ आज के सक्सेस मंत्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, लेकर आऊंगी अगला एपिसोड एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: योर सिटी योर रेडियो, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम।
1: वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आप लोग इस टाइम जुड़े हुए रेडियो मनोरंजना 107.8 के साथ, फील गुड फील लाइव। ये शो हमारा हर बार की तरह मैं बोलूंगा बहुत स्पेशल होने वाला है। रीजन बीइंग, यहाँ पर आप एजुकेट होते हैं, आपको पता लगता है एग्जैक्टली हम जो बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहे हैं, कौन सी वो कंपनीज हैं, क्या क्या कर रही हैं कंपनीज, अलग अलग डोमेन, अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो हम शुरुआत करते हैं अपने फॉर्मेट को ऐसे कि हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, देन वी गोना टॉक अबाउट द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर्स, हाउ इट स्टार्टेड, USP और जो इनसाइट्स हमारे पास अवेलेबल है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको बताएंगे, इट विल हेल्प यू अलॉट। तो फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, मैं इतने कहूँगा कि मैं आ चुका हूँ, आप लोग जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजना 107.8 के साथ, फील गुड फील लाइव।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योरटेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन $100 और ये 2027 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, 150 बिलियन $150 तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है, ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं, पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ भी करते हैं, एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं, ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रोमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज़ जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफ़ी तारीफ होती है। So, UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज़ हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज़ हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज़ को पुश कर रही हैं, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीज़ों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूँ सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहाँ पर अगर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गाँव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज़ बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज़्यादा है, और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफ़ी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीज़न डेफिनेटली बताऊँगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफ़ी कुछ बदला हमारी ज़िंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लैंडिंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर ये हो रहा था आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, हर चीज़ को आप एक डाउटफुल नज़र से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफ़ी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात। हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहाँ पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योर टैग। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन एश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट

आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे। तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइंजी, आईडीफाई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग एआई एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं, लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं, वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं, इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे, कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे, पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। उसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशन। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI एंड ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफी एडवांस हो गए हैं जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव जो है वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव है, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताई है फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

0: Dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere na dim tanana dir tanum tanana dere
1: na dim tanana dir tanum. मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ, फील गुड फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी है और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पर आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। Tier 2 and Tier 3 जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक का फेमिलियर है आप फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं, उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

मैं हूं आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्ना 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोज कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड देन उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।

बिना किसी देरी के शो को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट टुडेज कंपनी. सो द नेम ऑफ दिस कंपनी इज फ्रियो, FREO. इमेजिन करिए आप एक ऐसे बैंक को जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, जहां पर लंबी लाइन नहीं लगती, जहां पर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क नहीं होता, सिंपली आपके स्मार्टफोन में रहता है, जब आप चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं. वेल एग्जैक्टली दैट इज द कंपनी, दैट इज द आइडिया बिहाइंड फ्रियो. फ्रियो एक इंडियन फिनटेक कंपनी है जो अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब करती है, वी आर क्रेडिट लेड नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म. यहां पर आपको डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ऑफर की जाती है. ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन. डिजिटल सेविंग्स का आपको सॉल्यूशन यहां पर मिलता है, पर्सनल क्रेडिट लाइन यहां पर आपको मिलता है, क्रेडिट कार्ड्स आपको मिलते हैं, क्रेडिट स्कोर ट्रैकिंग आपको मिलता है, क्रेडिट ऑन यूपीआई भी आपको मिलता है, एंड इसके अलावा और इनके प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मनी लैंड करने में हेल्प करते हैं. सो यहां पर एक जो मिशन ये लेकर के चल रहे हैं वो ये है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ईजी बनाना, फास्ट बनाना, ज्यादा एक्सेसिबल बनाना, और इंडिया का जो डिजिटल पॉपुलेशन जिसमें ग्रोथ हो रही है उसमें अपना योगदान देना. Now, how exactly it started? So the story of Frio actually started with another fintech product called MoneyTap. देखिए 2015-16 में इंडिया ने बहुत रैपिड एक ग्रोथ देखी, रैपिडली हम लोग चेंज हुए क्योंकि स्मार्टफोन अफोर्डेबल हो गए थे, इंटरनेट हमारे फोन में आ चुका था, डिजिटल

0: पेमेंट जो है वो ग्रो कर रही थी, बट देर वॉज अ गैप कि पर्सनल लोन अभी भी स्लो था, स्ट्रेसफुल था. तो बहुत सारे जो एग्जैक्टली यंग प्रोफेशनल थे उस टाइम पे, उन्हें ट्रेडिशनल मेथड समझ नहीं आते थे कि बैंक जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अप्रूवल का वेट करो, उसके बाद लोन अमाउंट जो है वो फिक्स करो. तो यहाँ पर फाउंडर्स को समझ में आया कि अगर किसी ने 2 लाख रुपए का लोन लेना है, ठीक है, एंड उसके लिए उसको इतना पेपर वर्क नहीं करना है, उसके पास इतना टाइम नहीं है. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी को 20,000 रुपए का लोन लेना है, ठीक है, तो मानकर चलो यार कितना अमाउंट है, बट उसके लिए 1 लाख रुपए क्यों ले वो, क्यों कोई मिनिमम लिमिट हो, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, ठीक है. उसके बाद फिर इन्होंने क्रेडिट लाइन के लिए एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, मनी अवेलेबल थी व्हेनेवर नीडेड, ठीक है, जहां पर कस्टमर्स उसको यूज कर सकते थे जब भी उन्हें जरूरत थी. उस प्लेटफॉर्म का नाम था मनी टैप. इसको बनाने के बाद डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म इसको बना दिया, टीम ने अपने विजन को एक्सपेंड किया. दे रियलाइज कि पीपल डोंट जस्ट नीड लोन्स, दे नीड एन एंटायर डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जहां पर 2021 में मनी टैप को इन्होंने इवॉल्व करके फ्रियो बना दिया. सो बेसिकली फ्रियो स्टार्ट हुई तो नहीं बोलूंगा, बट ट्रांसफॉर्म हुई थी मनी टैप इंटू फ्रियो इन 2021. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट, दैट इज द स्टोरी बिहाइंड इट. नाउ लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव.
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए. डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा. क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है. ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं.

धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पष्टीकरण तवारिश। यहाँ हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात, यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, चाहिए।

वेलकम बैक, हमारे सागर शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। एंड आई एम जस्ट होपिंग आपको मजा आ रहा है। यहाँ तक जितनी केस स्टडी आपको बताई है, जितनी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया है, कंपनी के बारे में आपको बताया है, आपको समझ भी आई है और आपको अच्छा भी लग रहा है। बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। पहला नाम कुणाल वर्मा। कुणाल वर्मा इज द को फाउंडर एंड CEO ऑफ फ्रियो। बिफोर बिल्डिंग फ्रियो उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस था टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट बिल्डिंग में, कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेस में। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या जो कॉम्प्लिकेटेड कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके लोगों को दे सकते हैं ताकि उनके लिए यूज करना आसान हो। हिज बिगेस्ट बिलीफ इज टेक्नोलॉजी शुड नॉट जस्ट डिजिटाइज बैंकिंग, इट शुड रीडिजाइन द एक्सपीरियंस। एंड एग्जैक्टली वही ये कंपनी कर रही है। दूसरा नाम आता है अनुज कैकर। अनुज कैकर जो हैं वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एलुमनाई हैं। इनके करियर की अगर बात करें, बिफोर एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने बिजनेस में, मार्केटिंग में, स्केलिंग करने में, कस्टमर प्रोडक्ट्स को उसमें अपना जो है एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया है। ISB में भी इनको रिकॉग्नाइज किया गया था एज एन ISB यंग लीडर फॉर लीडरशिप कंट्रीब्यूशन। मतलब कॉलेज टाइम से ही लीडरशिप क्वालिटी थी और इनके कॉलेज ने ही उसको आइडेंटिफाई किया, इनको रिकॉग्नाइज किया, इनको रिवॉर्ड भी मिला था उसको लेकर के। सो इनका फोकस फ्रियो में रहा है कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस ग्रोथ एंड मेकिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट सिंपलर। तीसरा नाम आता है बाला पार्थसारथी। बाला जो हैं वो एकदम आप कह सकते हैं टेक की दुनिया से आते हैं, स्टार्टअप एक्सपीरियंस से आते हैं। सो बिफोर फ्रियो ही वॉज ऑलरेडी डूइंग रियली वेल, ही वॉज ऑलरेडी नोन इन इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्सपर्टीज जो इनकी थी प्रोडक्ट डिवेलपमेंट में, टेक प्लेटफॉर्म्स में, डिजिटल बिजनेसेस को स्केल कैसे करना है। तो अब यहां पर ये तीन लोग मिले तब जाकर के कंपनी स्टार्ट हुई। सो कुणाल लेकर के आए प्रोडक्ट एंड बिजनेस विजन, अनुज लेकर के आए कंज्यूमर स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ, एंड बाला लेकर के आए टेक एक्सपर्टीज। तो तीन अलग अलग डोमेन्स के लोग आकर के मिलते हैं एक जगह पर सेम विजन के साथ, तब जाकर के कहीं कोई कंपनी ऐसा कुछ कर पाती है। बिकॉज यू कांट डू एवरीथिंग एट वंस, सो यू नीड अ प्रॉपर टीम, यू नीड पीपल जो आपकी तरह सोचते हो, आपकी तरह देखते हो। That's how it started. Okay, got music, break us. After that, show ko aage badhayenge. Stay tuned, feel good, feel live.

Once again, welcome back. अगर कोई feedback है तो 8010781078 पर जरूर बताइएगा. Now let's take the show ahead. So what exactly was the problem that Freeo was trying to solve at that time? तो मैंने बताया कि founders को यहाँ पर एक major gap नजर में आया कि traditional banking बहुत complicated थी. अभी भी बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगी सेम प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड है वो बहुत. और जो यंग इंडियंस हैं उनके पास भैया अब फोन आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, स्पीड की आदत लग चुकी है, तो उन्हें चाहिए स्पीड एंड कन्वीनियंस. दूसरा है क्रेडिट एक्सेस जो है बहुत लिमिटेड था. बहुत सारे ऐसे भी वर्किंग इंडियंस थे जिनके पास एक्सेस ही नहीं था, फ्लेक्सिबल लोन्स का ऑप्शन ही नहीं था मार्केट में. 2 लाख रुपए लो, 1 लाख रुपए लो, अगर किसी को 20,000 रुपए या 15,000 की जरूरत है, सॉरी कोई ऑप्शन नहीं है. एंड तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत स्कैटर्ड थे. ठीक है, एक ऐप आपको बैंकिंग बता रही है, दूसरी ऐप आपको लोन के बारे में बात कर रही है, तीसरी ऐप

एक्सपीरियंस एंड फास्टर अप्रूवल्स, ताकि किसी को वेट ना करना पड़े, वेट नहीं करना पड़ेगा, स्मूथ हो जाएगा सर, तो बाय डिफॉल्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। साथ साथ ये रिस्क भी यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं अपने टेक की मदद से, कि सामने वाला इंसान जिसको हम लोन दे रहे हैं कि क्या उसको रीपे कर पाएगा या नहीं। हालांकि ट्रेडिशनली ये जो चीज़ थी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसमें बहुत सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, ऑफलाइन लोग जाते थे घरों में, जाके वेरीफाई करते थे, तब जाकर के लोन्स कहीं अप्रूव हुआ करते थे। बट यहाँ पर इस कंपनी ने इस एक प्रॉब्लम को भी फिक्स किया। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए हैं। लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। एंड वी गोना टॉक अबाउट यूएसपीज़। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव

फील गुड फील लाइव। मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्न 107.8 के साथ। फ्रियो हमारी आज की कंपनी है, उसकी यूएसपीज की बात करेंगे। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, पहला है क्रेडिट फर्स्ट नियो बैंक अप्रोच। बहुत सारी जो फिनटेक एप्लीकेशन से कंपनीज आपको नजर आती हैं, वो पेमेंट से स्टार्ट होती हैं, बट इस कंपनी ने क्रेडिट से अपना स्टार्ट किया। इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो किसी को, मनी का एक्सेस दे रहे हो आप लोगों को। ये बहुत कुछ डिफरेंशिएट करता है, कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताता है। दूसरा आता है फ्लेक्सिबल क्रेडिट। सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग कस्टमर्स इनटू ट्रेडिशनल लोन्स, तो यहाँ पर इन्होंने कस्टमर को एक्सेस दिया, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट जो आपको चाहिए वो आप ले लीजिए, और जब आप पे कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपनी यूजेज के हिसाब से, आप उसको पे कर दीजिएगा। देन डिजिटल एक्सपीरियंस, यहाँ पर गोल था बैंकिंग शुड फील लाइक यूजिंग अ मॉडर्न ऐप, नॉट डीलिंग विद पेपर वर्क एंड यू नो गोइंग थ्रू दोज क्यूज एंड लाइंस एंड फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स दे आर जस्ट वेटिंग। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर दे दिए, सेविंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट इकोसिस्टम, तो सब कुछ एक जगह पर मिल गया। तो ये मैंने पहले ही बोला था कि यंगस्टर्स को चाहिए स्पीड एंड कन्वीनियंस, दोनों चीजें इन्होंने मिला करके दे दी। और याद रखिएगा कस्टमर्स अब उस जमाने में जी रहे हैं जहां पर अब क्विक कॉमर्स आ चुका है, 10 मिनट 15 मिनट में आपके घर पे सब कुछ पहुंच रहा है, और लोग उसको मतलब बैक टू बैक यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो मंगवा रहे हैं। ये दिखाता है हमारे एटीट्यूड को, अगर उसकी आदत लग गई है। फॉर एग्जांपल अगर वो ग्रॉसरी के लिए वेट नहीं कर रहा है, वो 10 मिनट में आ रही है, बाकी चीज़ों के लिए वेट नहीं कर रहा है, वो 10 मिनट में आ रही है, तो वो लोन के लिए एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन वेट नहीं करना चाहेगा, करना पड़ेगा अगर ऑप्शन नहीं है तो। बट अगर कोई इंसान आता है और आगे बोलता है कि आपको 2 दिन में लोन अप्रूव हो जाएगा, तो वो उसकी तरफ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि स्पीड की आदत हमें लग चुकी है। कस्टमर शिफ्ट हो रहा है, कस्टमर चेंज हो रहा है, हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी एज वेल, कि हम बहुत इवॉल्व हो रहे हैं अच्छे से, बहुत डिजिटल वर्ल्ड में हमने जो कदम रखा है बहुत तेजी से हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है किसी स्टार्टअप के लिए। सो या दैट इज, फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द की ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ फ्रियो। पहला है राइजिंग ऑफ यू नो इंटरनेट, राइज ऑफ डिजिटल इंडिया। करोड़ों लोग हैं भैया जो UPI के साथ कंफर्टेबल हो गए, स्मार्टफोन्स के साथ कंफर्टेबल हो गए, डिजिटल KYC होने लगी। तो सिंपल सा फिनोमिना है ऑलरेडी, जहाँ पर लोग हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग हैं, जहाँ पर करोड़ों लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको वहाँ पर जाकर के अपनी दुकान लगानी है और ऐसी दुकान लगानी है जिनकी उसको ज़रूरत है, कस्टमर बेस को। सिंपल। सेकंड आता है यंग वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया के पास करोड़ों लोग हैं जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको फ्लेक्सिबल टूल्स चाहिए, स्पीड चाहिए, एक्सेसिबिलिटी चाहिए। ये कंपनी को समझ में आ गया एंड दे स्टार्टेड इट। तीसरा आता है ऑल्टरनेटिव क्रेडिट मॉडल्स। जो ट्रेडिशनल क्रेडिट इवेल्युएशन होता था, वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स को रिजेक्ट कर दिया जाता था, बट टेक की मदद से फिनटेक कंपनीज यूजर्स को डिफरेंटली समझते हैं, किसी एक ब्रैकेट में नहीं डालते हैं। एंड उसके बाद उनका पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, मतलब बड़े बड़े बैंक्स के साथ पार्टनरशिप है जिनकी मदद से ये क्रेडिट दे पाते हैं। सो दीज आर द की ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ रियो, राइज ऑफ डिजिटल इंडिया, यंग वर्किंग पॉपुलेशन, ऑल्टरनेटिव क्रेडिट मॉडल्स एंड पार्टनरशिप्स। सही टाइम पर सही चीज इन्होंने स्टार्ट कर दी। सो कभी बैंकिंग का मतलब होता था भैया एक बिल्डिंग, एक काउंटर, एक लंबी सी लाइन, लेकिन नए भारत में बैंकिंग का एक्सपीरियंस बन रहा है। लोगों को एक्सपीरियंस बेस्ड बैंकिंग पसंद है अब। और फ्रियो की कहानी में बताती है कि स्टार्टअप सिर्फ नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, वो पुरानी प्रॉब्लम्स को नए नजरिए से देखते हैं। तीन फाउंडर्स ने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर दुनिया डिजिटल हो रही है तो बैंकिंग अभी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है बॉस? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, फ्रियो। अब आज की केस स्टडी आपको कैसी लगी मुझे बताइए 8017810078 पर। फिलहाल वक्त है शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का, फिर मुलाकात होगी। उम्मीद कर रहा हूँ केस स्टडी पसंद आई होगी। कोई फीडबैक है तो 8017810078 ये हमारा नंबर है, बताइए। नाउ दिस इज द टाइम टू साइन ऑफ। नाउ योर दोस्त एंड होस्ट आर जयसागर साइनिंग ऑफ।
1: हिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: शंकर कहाँ है?
1: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
0: पुल? वहाँ अकेले क्या कर रहा है?
2: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
3: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
4: रेडियो मानव रचना।

0: 7.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ और टाइम हो गया है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जिसे सपोर्ट किया है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और हर हफ्ते की तरह आज भी हम बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ के बारे में, लेकिन हेल्थ किस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूं। ऑफिस की पार्टी हो या फिर घर का कोई फंक्शन, सबसे ज्यादा अगर चर्चा होती है ना तो ये इस चीज की होती है कि भाई खाने पीने का तो ठीक है लेकिन अलग से क्या अरेंजमेंट है। जी हाँ, अलग से अरेंजमेंट, जो आपने शादियों में कभी देखा होगा कि गाड़ी की डिक्की खोलकर भी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो कई बार डीजे पर भी ग्लास लेकर डांस कर रहे होते हैं, कई बार ऑफिस में जब आफ्टर ऑफिस पार्टी होती है तो वहां पर भी कुछ जाम चल ही रहे होते हैं। बट ऐसे ये जो सारी आदतें हैं, क्या ये सिर्फ महज आदतें कहलाई जाती हैं या फिर ये अब लत बन चुकी है, यानी एडिक्शन बन चुकी है, और इस एडिक्शन से कैसे बचना होता है? क्या ये कभी कभी सोशल गैदरिंग्स में थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेना एक नॉर्मल चीज है, या फिर ये धीरे धीरे बड़ा एडिक्शन बन के आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या इसका इफेक्ट सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर होता है या फिर मेंटल हेल्थ पर भी कहीं ना कहीं इसका कुछ असर होता है? ऐसे कुछ सवाल, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि शर्मा, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर सुरभि, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: सो डॉक्टर सुरभि, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये एडिक्शन बेसिकली क्या होता है, और खासतौर पर से अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर हमने सुना है लोगों को बोलते हुए कि ये आदत नहीं है, मैं तो कभी कभी ले लेता हूँ।
1: सो ये लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, एडिक्शन है या ओकेजनल यूज़ है। ओकेजनल यूज़ मतलब सच में ओकेजनल, कभी वंस इन अ वाइल, महीने दो महीने में एक बार थोड़ा सा अमाउंट, जो कि फंक्शनिंग में कोई इफेक्ट नहीं करता, नेक्स्ट डे को बर्बाद नहीं करता।
0: यानी अगर आप रात को पी रहे हैं तो इतना लें कि आप अपने होश में रहें, लड़खड़ाएं नहीं, अपने घर वालों के साथ या आसपास लोगों के साथ कुछ ऐसी बहकी बहकी बातें ना करें जिससे कि उन्हें बहुत अजीब सा फील ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अगर रात को ड्रिंक कर रहे हैं और अगले दिन आप नॉर्मल हैं, आपका बिहेवियर एकदम ठीक है और आप समय पर उठकर अपने सारे काम सही तरीके से कर रहे हैं, तो ये एडिक्शन नहीं है। लेकिन डॉक्टर सुरभि, सोशल ड्रिंकिंग और एडिक्शन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस माने हम? क्योंकि एडिक्शन जो होता है वो जनरली लोग ये कहते हैं डेली जो लोग कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, लेकिन सोशल गैदरिंग्स में, अगर सोशल गैदरिंग ज़्यादा हो रही हैं, हफ्ते में दो हो रही हैं, और फिर उसमें अगर कुछ लिया जा रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है, तो क्या वो एडिक्शन में आ जाता है?
1: सो एडिक्शन कहने के लिए प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले टॉलरेंस डेवलप हो जाना, जो पहले नशा एक पैग में हो जाता था, अब उसको अटेन करने के लिए दो या तीन पैग या ज़्यादा लेने पड़ना। उसके बाद आता है विड्रॉल, कभी कभी लेते हैं तो उनको विड्रॉल नहीं आता। विड्रॉल क्या होता है कि जब बॉडी से अल्कोहल नेक्स्ट डे ख़त्म हुई है, तब हाथों में कंपन होना, वॉमिटिंग जैसा मन करना, सर दर्द होना, तबीयत बिगड़ी हुई लगना, ये सब विड्रॉल्स के लक्षण होते हैं। ये माइल्ड विड्रॉल्स हैं, सीवियर विड्रॉल्स में कई बार तो लोगों को सीजर भी आ जाता है।
0: अच्छा, मतलब अगर आपने रात को ड्रिंक किया और अगले दिन आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब विड्रॉल हो रहा है, और वो आपकी बॉडी समझ नहीं पा रही है, और या आपके साथ वो सब कुछ अजीब अजीब इसलिए हो रहा है कि आपने कल रात को ज्यादा ले ली थी, इस वजह से। तो ये बहुत कॉमन सी चीजें होती हैं जो हमने अक्सर देखा है कि लोगों को रात को ड्रिंक करने के बाद सुबह उसके कुछ इफेक्ट्स रह जाते हैं। सो वो ये इफेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिजिकल हेल्थ तो खराब करती है अल्कोहल, मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन कैसे ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज मेंटल हेल्थ के बारे में भी, और हमारे साथ डॉक्टर सुरभि शर्मा हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। अगर आपके कुछ सवाल हों तो जरूर पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज़ वेल, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत सी बातें चल रही हैं आप ही की हेल्थ के बारे में, और हेल्थ में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन के बारे में बात करनी ज़रूरी है, जहाँ पर एल्कोहल एडिक्शन एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया भर में है। क्योंकि एल्कोहल एक ऐसा पेय पदार्थ है जो आपकी बॉडी आपके दिमाग दोनों को ख़राब करने में पूरी ताकत रखता है, अगर सही तरीके से ना लिया जाए या फिर सही मात्रा में ना लिया जाए। बहुत ज़्यादा एडिक्शन होने पर हमने अक्सर लोगों को देखा है कि घर के घर पूरे तबाह हो जाते हैं, लोग गलत कदम उठा लेते हैं, बहुत सारे लोग नशे में आकर कभी कुछ ऐसा कर लेते हैं जिनसे उनकी जान को खतरा हो जाता है, चाहे वो ड्राइविंग हो या फिर सुसाइड, ऐसे बहुत से मामले हमने देखे भी हैं। लेकिन ये एडिक्शन आखिर एडिक्शन बनता है तो किस समय पर हमें ये समझना चाहिए कि एडिक्शन बन रहा है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये जानना जरूरी है। डॉक्टर सुरभि शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं SSB हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर सुरभि, अर्ली साइंस की बात मैं जानना चाहती हूँ। अब एक व्यक्ति ने अपनी 18-19 साल की उम्र में पीना शुरू किया एल्कोहल कंजम्पशन, और शुरुआत में उसने बियर पी, उसके बाद धीरे धीरे विस्की की तरफ आया, जो कि थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाई जाती है। अब जब ये चीज़ें आप शुरू कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आजकल तो वैसे भी स्टेटस सिंबल कहलाया जाता है कि आपने ड्रिंक की है तो आप उस एक पर्टिकुलर लेवल के लोग हैं, आप एक पार्टी में, या कई लोग कहते हैं कि बिजनेस के लिए करना ज़रूरी है या सर्कल के लिए करना ज़रूरी है, कई लोग कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत है इसलिए पीना ज़रूरी है। सो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शुरुआत के दौर में जब आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार पीते हैं, तो धीरे धीरे इसके एडिक्शन के साइंस क्या होते हैं, क्या हफ्ते 15 दिन एक महीने में एक बार पीने से ये एडिक्शन की तरफ बढ़ सकता है?
1: बिल्कुल बढ़ सकता है। लोग हफ्ते या महीने में एक बार पीना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी बढ़ता जाता है, महीने से एक हफ्ता, हफ्ते में फिर 2 बार 3 बार 4 बार, ये ऐसे बढ़ता जाता है। प्लस द अमाउंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, 1 पैक से 2 पैक, 2 पैक से 1 पाइंट, 1 पाइंट से 1 बॉटल, वो कब बदल जाता है पता भी नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि मेरा कैपेसिटी बढ़ गया है, बट वो एक्चुअली टॉलरेंस डेवलप हो रहा होता है। टॉलरेंस मतलब जो नशा या जो इफेक्ट माइंड को 1 पैक 30 ml 60 ml में आता था, अब वो 180 ml में भी नहीं आता है, एंड पीपल कीप क्रेविंग फॉर दैट। वो उस स्टार्टिंग वाले इफेक्ट को अटेन करना चाहते हैं, दैट लीड्स टू टॉलरेंस। उसके बाद अगले दिन या अल्कोहल बॉडी से निकलते ही विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, लाइक हेडेक, ट्रेमर, नौशिया, वॉमिटिंग, सीजर आ जाना, या फिर कई बार सीवियर चीज़ में बहुत ज़्यादा अजीब बातें सुनाई देने लगना, कुछ कुछ दिखाई देने लगना, ऐसा महसूस होना कि मैं पागल हो रहा हूँ। एंड एक्चुअली पीपल कीप हाइडिंग इट, दे डोंट टेल इट, बिकॉज दे फील कि अरे अब लोग मुझे कुछ कहेंगे। बहुत जगह लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने काम, अपना अकेडमिक्स को छोड़ के एल्कोहल की एक प्रायोरिटी बना लेते हैं कि बाकी काम इंतज़ार कर सकता है लेकिन अल्कोहल लेना ज़रूरी है। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं, ऐसा बिहेवियर पैटर्न आ रहा है, तो फिर ये डिपेंडेंस के साइंस हैं।
0: बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, वो जनरली कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ख़ासतौर पर से यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये वाइन लेना शाम के वक्त या डिनर के साथ बहुत कॉमन है, विच इज़ क्वाइट कॉमन इन यूरोप। और उसको देखकर इंडिया में भी ये कल्चर धीरे धीरे शुरू हो गया, और अब जो वाइन का कंजम्पशन है वो बहुत एलीट क्लास में रहने के साथ साथ मिडिल क्लास में भी पहुंच रहा है, लोग लेते हैं वाइन। तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये वाइन भी क्या इसी कैटेगरी में आती है, ये भी एडिक्शन की कैटेगरी में आ जाती है?
1: चाहे वाइन हो, चाहे बियर हो, चाहे विस्की हो, रम हो, वॉडका हो, ये सब सेम कैटेगरीज हैं। द अमाउंट, द परसेंट ऑफ एल्कोहल कंटेंट में वेरी, बट ये सब एल्कोहल हैं।
0: और अगर आप डेली इसको ले रहे हैं या फिर कभी कभी भी ले रहे हैं, तो ये एडिक्शन की तरफ बढ़ सकता है। डेली तो एडिक्शन होता ही है, लेकिन कभी कभी भी ले रहे हैं तो इसका जो एक कहते हैं ना कि एक चार्म होता है, या फिर इसका जो एक क्रेज़ होता है, वो धीरे धीरे आपको एडिक्शन की तरफ ले आता है। क्योंकि जो चीज़ आपको हाई देती है वो आपको अच्छी लगती है, और आप उसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होते हैं और उसकी आदत बन जाती है। अब ये आदत कैसे छुड़वानी है ये भी जानना ज़रूरी है, और इसका मेंटली क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ख़ासतौर पर से यंग जनरेशन पे, ये हम जानना चाहेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। यंग जनरेशन की बात करें, बच्चे बहुत लेते हैं आजकल।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातें चल रही हैं अल्कोहल एडिक्शन के बारे में, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं सभी के साथ जुड़ा होता है। या तो आपके घर में कोई एडिक्ट होगा या फिर आपने किसी को देखा होगा, और बहुत सारे केसेस में तो बहुत सारी दवाइयां भी लोग लेते हैं। बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र यानी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खुले हुए हैं हमारे देश में और पूरी दुनिया में भी, लेकिन ये एक एडिक्शन ऐसा है जो बहुत जानलेवा साबित हो रहा है। इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी खास मेहमान है डॉक्टर सुरभि शर्मा, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर सुरभि, यंगस्टर्स के बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश जो है वो युवाओं का देश कहलाया जाता है, लेकिन युवा जो है वो अब थोड़े बदल गए हैं, जेन जी कहलाए जा रहे हैं। तो जनरेशन जी के बारे में अगर हम बात करते तो यहाँ पर एल्कोहल लेना बहुत कॉमन होता जा रहा है। बच्चे जो हैं, आप व्लॉग्स देखें या फिर आप रील्स देखें, आप वीडियोस देखें या वेब सीरीज देखें, इट्स क्वाइट कॉमन कि बच्चे जो हैं वो 17-18 साल की एज में ही ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत वही बियर से होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है और बाकी चीज़ों की तरफ भी चली जाती है। तो बच्चे यंगस्टर्स इतना अल्कोहल कंजम्पशन क्यों करें, सिर्फ फैशन स्टेटमेंट या कुछ और?
1: बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैशन स्टेटमेंट यस, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस हाँ, कॉलेज में आते ही दे थिंक कि हमारा पेरेंटल रिस्ट्रिक्शन कम हो गया एंड दे वांट टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, दैट बिकम्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। वो फ्री फील करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम अल्कोहल लेंगे तो हम कूल साबित होंगे या हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कई बच्चों को होता है कि नॉर्मल स्टेट में अपनी बात एक्सप्रेस करने में बहुत हेजिटेशन होती है, बट अल्कोहल पीने के बाद वो सोचते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब मैं बेझिझक कुछ भी कह सकता हूँ, कर सकता हूँ, दे फील गुड अबाउट इट। दैट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि वो बार बार अल्कोहल यूज़ करते हैं। बाकी कुछ लोग नहीं भी करना चाहते थे, उनके अपने फ्रेंड्स होते हैं, वो सब कर रहे होते हैं, और अगर वो पर्टिकुलर बच्चा ना करे तो उनको लेफ्ट आउट फील होता है, तो टू फील बिलोंग टू द ग्रुप पीपल कंज्यूम अल्कोहल।
0: एब्सोल्युटली, और ये बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, स्पेशली मीडिया में या बिजनेस जब आप करते हैं कि नहीं नहीं हमें कॉन्वर्सेशंस के लिए चाहिए होता है, हमें बैठकर बात करनी है, डील्स करनी है और उसके लिए चाहिए होता है। मीडिया में अक्सर लोग कहते हैं कि इट्स क्वाइट कॉमन, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो ये हमने बहुत लोगों को देखा है। अब बहाना कोई भी हो पर आदत तो गलत है, और इस आदत के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्या अल्कोहल के एडिक्शन को और बढ़ा सकता है?
1: ये दोनों तरफ चलता है, डिप्रेशन एंग्जाइटी अल्कोहल की तरफ आकर्षित करता है हाँ। लेकिन अगर ये सब ना भी हो, अल्कोहल खुद ब खुद नॉर्मली स्टार्ट किया हो, अल्कोहल पीने के कारण भी एंग्जाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस हो जाता है एंड बढ़ जाता है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो शुरुआत करी थी उन्होंने कि उनकी एंग्जाइटी उनकी घबराहट कम हो जाती है अल्कोहल पीने से, बट उसके बाद ऐसा हुआ कि अल्कोहल पिए बिना उनका दिन ही नहीं कटता, इतनी ज़्यादा घबराहट बढ़ चुकी होती है उनकी। तो वो ट्रीटमेंट शुरू किया था उन्हें अल्कोहल लेने से और फिर वो अल्कोहल के आदी ही हो गए। तो ये बोथ वेज चलता है,
0: मतलब आप अगर डिप्रेशन में है तो अल्कोहल लेंगे और अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो और डिप्रेशन में चले जाएंगे।
1: राइट,
0: ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ अल्कोहल से दूरी बनाइए। आपको अट्रैक्ट ज़रूर करेगी, क्योंकि कुछ बुरी चीज़ों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। डॉक्टर, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मेडिकेशन पर होते हैं और उसके साथ साथ वो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, ये कितना खतरनाक हो सकता है?
1: बहुत ही खतरनाक हो सकता है कुछ केसेस में। आइडियली अल्कोहल एंड मेडिसिंस को साथ में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है बिटवीन अल्कोहल एंड मेडिसिन, चाहे वो कोई बुखार की दवाई हो या फिर कोई एंटीबायोटिक, तो मिक्स तो नहीं करना चाहिए।
0: मिक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बॉडी में एक अलग ही रिएक्शन होता है जो जानलेवा साबित हो सकता है। और भी बहुत से सवाल हैं जो अल्कोहल के एडिक्शन के बारे में है, कि आखिर इसको छुड़वाने के लिए क्या कुछ थेरेपीज़ या फिर क्या काउंसलिंग सेशंस होते हैं, ये जानेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके इस पॉडकास्ट को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। बस डाउनलोड कीजिए रेडियो मानव रचना ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको डॉक्टर सुरभि के साथ हुई ये सारी बातचीत मिल जाएगी। वक्त है अभी एक छोटे से

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा के साथ प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। अल्कोहल एडिक्शन से जुड़ी हुई जानकारी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये स्टैट्यूटरी वार्निंग सबने देखी है लेकिन फिर भी शराब एक ऐसा पेय पदार्थ है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाने वाला बन जाता है। कभी कभी ज्यादा, कभी कभी थोड़ा सा कम रह जाता है। यानी जितना आप अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए दूध कंज्यूम कर रहे हैं उसके लगभग आसपास ही कहीं ना कहीं अल्कोहल का भी कंजम्पशन हो रहा है। मौका चाहे गम का हो या खुशी का हो इंसान कहीं ना कहीं इससे जुड़ ही जाता है। यानी पीने का सिर्फ बहाना चाहिए लेकिन ये बहाना आपकी हेल्थ को कितना खराब कर रहा है इसके बारे में शायद आपने इत्मीनान से नहीं सोचा होगा। अगर सोचा है तो फिर सोच कर अनदेखा करने वाली ये आदत बहुत खतरनाक हो सकती है। हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सुरभि शर्मा जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्कोहल

0: एडिक्शन वाकई एडिक्शन है या फिर एक डिजीज बन चुका है? डॉक्टर सुरभि क्या कहना चाहेंगे, अल्कोहल ये सिर्फ एडिक्शन है या फिर वाकई एक बीमारी बन चुकी है, क्योंकि इससे बहुत से घर तबाह होते देखे हैं हमने।
1: जिस मोमेंट पे एडिक्शन बन गया है ये बीमारी ही है, एडिक्शन इज इक्वल टू बीमारी, और ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि विल पावर से छूट जाएगी, मेरे को आदत नहीं है, मैं तो जब चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ, बट ये मिथ है। इलाज लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट के बिना खुद से छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर रहा है, ब्रेन डैमेज, लिवर, किडनी डैमेज, मांसपेशियों का डैमेज, न्यूरॉन्स का डैमेज, उसके अलावा मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन साइकोटिक सिम्टम्स, नींद की दिक्कत, ये सब अल्कोहल करता है। अब किसके पास जाएं? अल्कोहल छुड़ाने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। अल्कोहल के कारण अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो गई है कि लिवर खराब हो गया है या किडनी का दिक्कत आ गई है, तो फिर फिजिशियन के पास जाना है, रिस्पेक्टिव डॉक्टर के पास जाना है। बट इवेंचुअली लिवर, किडनी, मांसपेशियों का ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी अगर आप अल्कोहल नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर ये विशेष साइकिल बन जाएगा। अल्कोहल छोड़ने पे ही फुल ट्रीटमेंट होता है,
0: यानी छोड़ना ही पड़ेगा। अब मैं इसमें आपसे जानना चाहती हूँ कि थेरेपीज क्या होती हैं, एज अ साइकियाट्रिस्ट आप क्या सजेस्ट करती हैं, पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा क्या होता है, और अगर कोई एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है उसको ठीक होने में कितना समय लगेगा, यानी विड्रॉल सिम्टम्स जो होंगे वो क्या होंगे और कितना समय ले जाता है ये सब कुछ?
1: सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप तो एक्सेप्टेंस होता है। जब इंसान ये मानने लग जाए कि हाँ अल्कोहल पीना, दारू पीना एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मुझे ठीक करना है, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टू रिकवरी। उसके बाद बहुत सारी थेरेपीज, बोथ दवाई एंड काउंसलिंग होते हैं, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, या फिर बहुत सारी दवाइयाँ जो अल्कोहल का क्रेविंग कम करने के लिए या विड्रॉल्स को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, लंबा मतलब फ्यू मंथ्स और अ ईयर, बट दैट डिपेंड्स इंसान पर कि वो कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस सीवियरिटी ऑफ इलनेस से जूझ रहा है, उन सब चीज़ों पर ड्यूरेशन डिपेंड करता है।
0: यानी एक ट्रीटमेंट जो है वो 6 महीने तक आसपास या फिर सालों तक चल सकता है। इसमें डॉक्टर सुरभि मैं आपसे जानना चाहती हूँ फैमिली का कितना बड़ा रोल होता है। कई बार पेशेंट खुद छोड़ना चाहता है पर फैमिली शायद उसकी तरफ कह सकते हैं इमोशनली इतना अटैच नहीं होता कि उसे लगता है कि किसके लिए छोड़ूं, लेकिन दूसरी तरफ कई बार ये होता है कि फैमिली चाहती है कि वो ना ड्रिंक करे और वो ड्रिंक कर रहा होता है। सो फैमिली का रोल क्या आता है इसमें?
1: एक्चुअली फैमिली का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बोथ वेज, नशा बढ़ाने में भी या नशा छुड़ाने में भी। कई बार होता है इनेबलिंग बिहेवियर कि वो इंसान का अल्कोहल यूज़ को मिनिमाइज करते जाते हैं, अरे दारू नहीं पिएगा तो बीमार पड़ जाएगा, ये ले पैसे ले ले तो दारू पी ले ठीक हो जाएगा, या नहीं नहीं मैम ये तो सिर्फ नींद की दिक्कत के लिए ही दारू पीता है, इसको बीमारी नहीं है, ऐसे मिनिमाइज करे जाते हैं। या फिर बहुत सारे फैमिलीज क्रिटिकल कॉमेंट्स कि इसके बस के तो कुछ नहीं है, ये तो जानबूझ के करता है या इसकी आदत ही बिगड़ी हुई है, ऐसे क्रिटिकल कमेंट्स करते हैं, बोथ आर हार्मफुल फॉर द पेशेंट। एक वार्म सपोर्टिव एनवायरनमेंट फैमिली की तरफ से बहुत ज़रूरी होता है अल्कोहल छुड़ाने के लिए।
0: अब अल्कोहल के बारे में तो डॉक्टर बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्या अल्कोहल कंजम्पशन फिजिकली तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, मेंटली इसके क्या सिम्टम्स हम देखते हैं लोगों में कि मेंटल इफेक्ट क्या हुआ है? वो कहीं एक होता है ना कि एक व्यक्ति का बिहेवियर तुरंत चेंज हो जाता है, कई लोग जो हैं वो कुछ सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, तो बेसिक क्या सिम्टम्स होते हैं कि आपको अब साइकेट्रिस्ट के पास जाना है?
1: डिप्रेशन एंड एंजाइटी तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, उसके अलावा अगर अल्कोहल थोड़ा सा भी कंज्यूम करने के बाद लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, मे बी अब्यूजिव और एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, दैट इज़ वन साइन कि अल्कोहल सूट नहीं कर रहा है, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। या अल्कोहल छोड़ने पर अगर घबराहट होना, बेचैनी होना, विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, दौरे आने लग गए हैं, सीजर्स, या फिर पहचानना बंद कर देना लोगों को, बहुत कन्फ्यूज फील होना, जो कि हम डिलीरियम बोलते हैं, डिलीरियम सोडियम ट्रेमन्स, ऐसे वाले सिम्टम्स हैं तो बहुत ज़रूरी है भर्ती होकर इलाज कराना. इसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम्स, स्लीप प्रॉब्लम्स एंड साइकोटिक सिम्टम्स. साइकोटिक सिम्टम्स मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं वो सस्पिशियस होने लगते हैं ओवर द टाइम, मे बी अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, अपने स्पाउस के टुवर्ड्स, फैमिली या रिलेटिव्स के, मे बी पीपल वांट टू हार्म मी, और किसी भी टाइप का सस्पिशन हो सकता है. अगर ऐसे वाले लक्षण हैं तो अल्कोहल तो बंद करना ही है, साथ में इस बीमारी का भी इलाज लेना है.
0: क्या रिकवरी पॉसिबल है?
1: तो ज़्यादातर केसेस में रिकवरी हो जाता है. द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन द पेशेंट का बीमारी, उसका सीवियरिटी और उसका कितना सपोर्ट सिस्टम है. बट हाँ, लोग इससे बाहर आ जा सकते हैं, इसके बिना अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी पाते हैं.
0: कोई ऐसा एक सिम्टम जिसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, फैमिली को भी और पेशेंट को खुद भी?
1: अगर किसी को अल्कोहल छोड़ने पर सीजर्स या दौरा आ जाता है, या फिर डिलीरियम, पहचानना ना लोगों को, जगह को, टाइम के लिए कन्फ्यूजन होना, अजीब चीज़ें नज़र आना या सुनाई देना, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते. इसके लिए भर्ती होकर इलाज लेना बहुत ज़रूरी, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है. उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो गई है, वेट लॉस, भूख ना लगना, नींद बिल्कुल ना आना, अगर ऐसे वाले लक्षण हैं तो भी ये डेफिनेट साइन है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है. बहुत ज़्यादा क्रेविंग कि अल्कोहल के बिना दो दिन भी ना रह पाना, अपना काम छोड़ के भी अल्कोहल को पहले पीना, अगर ऐसा हो रहा है तो भी ये साइन है कि अब ट्रीटमेंट का समय आ गया है.
0: जी बिल्कुल, यानी ट्रीटमेंट का समय आ गया है. और अगर आपको भी ऐसा कोई व्यक्ति नज़र आ रहा है तो उसकी काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्कोहल यानी शराब वाकई जानलेवा भी है और आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रही है. और फिज़िकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फिलहाल बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं. डॉक्टर सुरभि, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आई और अल्कोहल कंजम्पशन और एडिक्शन के बारे में आपने बात करी. क्योंकि ये कहने के लिए एक आदत है, लेकिन ये आदत कब लत बन जाती है, कब एडिक्शन बन जाता है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. और फिज़िकली आपके बॉडी के ऑर्गन्स को तो ये डिस्ट्रॉय करता ही है. अगर बॉडी के ऑर्गन्स तक इसका दुष्प्रभाव नहीं पहुंचाए तो मेंटली आपको ये काफ़ी परेशान कर सकता है. आपका बिहेवियर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, आपके रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं. इसलिए क्यों ना ऐसी चीज़ से दूरी बनाई जाए जिसका आपके शरीर को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है. फिलहाल बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं. प्रोग्राम ऑल इज़ वेल में आज बस इतना ही. फिर से होगी मुलाकात कुछ नई और खास इन्फॉर्मेशन के साथ अगले हफ्ते हमारे एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ. तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल. फील गुड, फील लाइफ. दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ.

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय रंगमंच और अभिनय जगत की एक बेहद सम्मानित हस्ती, जिनका नाम है रामजी बाली। रामजी बाली सर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से अभिनय में डिप्लोमा प्राप्त किया और आज वहीं एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने अपने थिएटर ग्रुप थिएटर वाला के माध्यम से अनेक नाटकों का निर्देशन किया है, कई चर्चित नाटक भी लिखे हैं और भारतीय शास्त्रीय रंगमंच को एक नई पहचान देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको वर्ष 2011 में संगीत नाटक एकेडमी द्वारा यंग प्लेराइट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रेनाउंड थिएटर डायरेक्टर, playwright and teacher, he is also a talented actor who has appeared in films, web series and television projects such as Delhi Crime, Commando, Sahib Biwi aur Gangster 3 and recently The Kerala Story 2, where he portrayed the role of Neha's father. थिएटर के प्रति इनकी लगन, स्टूडेंट्स को दिया गया इनका मार्गदर्शन और कला के प्रति इनका समर्पण इनके एक कंप्लीट थिएटर पर्सनालिटी को बनाता है। आज हम इनके सफर, इनके अनुभवों और थिएटर से लेकर सिनेमा तक की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, प्लीज ज्वाइन मी इन गिविंग अ वेरी वार्म वेलकम टू एक्टर, प्लेराइट, डायरेक्टर, थिएटर मेंटर एंड एनएसडी प्रोफेसर श्री रामजी बाली जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
5: शुक्रिया बहुत बहुत।
4: तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई?
5: मेरे सफर की शुरुआत जहाँ तक मैं समझता हूँ रामलीला से हुई है। जब हम छोटे थे बचपन में, हमारे आसपास काफी रामलीलाएं होती थी
4: जी।
5: तो बहुत छोटे थे तो देखने जाते थे, थोड़े से बड़े हुए थोड़ी सी समझ डेवलप हुई तो फिर उसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं समझता हूँ कि मेरे रंगमंच की शुरुआत वहीं से हुई
4: जी। मतलब आपका बचपन से ही रुझान एक्टिंग की तरफ ही था?
5: एक्टिंग की तरफ रुझान था बचपन से ही, और सिनेमा देखते थे तो उससे ही प्रभावित थे, क्योंकि यहाँ का कोई फोक थिएटर तो हमने देखा नहीं था, तो और फोक थिएटर के नाम पे हमारे आसपास अगर कुछ हो रहा था तो वो रामलीला थी
4: जी। जी जी। तो कुछ ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था कि कोई मतलब एक्टिंग में हो या कोई ऐसी चीज में हो जिसके प्रति आपका थोड़ा और इंटरेस्ट आया और आपको लगा कि नहीं मुझे तो इसी में ही जाना है, या ये खुद एक मन से आया, एक बच्चे का ये था भाव?
5: मुझे लगता है कि ये बच्चे के मन का भाव ही था
4: जी,
5: जो आगे आया। और मेरे फैमिली में कोई ऐसे किसी की ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी कि किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से कोई जुड़ा हुआ हो, और मैं बहुत सिनेमा से बहुत मैं कहूँ प्रभावित था, बहुत इंस्पायर था। तो उन दिनों ये राजेश खन्ना और इन लोगों की फिल्में, ये आराधना और ये टीवी पे आती थी और या चित्रहार आते थे, तो उसी से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे लगा
4: जी। तो सर, जैसे एनएसडी तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा, और क्या ये आपका कुछ बचपन का ही सपना था कि आपने एनएसडी जाना है, या धीरे धीरे बड़े होते गए तो पता चला इन सब चीजों के बारे में?
5: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को कुछ ऐसा मालूम नहीं था कि एक्टिंग की भी कोई ट्रेनिंग होती है। बचपन में तो रामलीला करते रहे और एक्टिंग का मन में, जैसे जैसे रामलीला की बड़ी बड़े लोगों के साथ काम किया तो लगा कि इसमें बहुत मजा सा आता है, कुछ ये अलग चीज है
4: जी।
5: अच्छा, मैं गा नहीं सकता था, मुझे डांस नहीं आता था, तो लगता ये मैं कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस का अंदर कहीं रहा होगा। और मैं स्कूल में बहुत एक्टिव था, स्कूल्स में छोटी छोटी स्किट्स होती थी
4: जी।
5: तो एक दो दोस्त थे उनके साथ मिलकर हम करते थे, तो वो कहीं रहा। और बाद में आते आते जब हम 10th 12th तक पहुंचे तो किसी एक दोस्त ने, जो मेरे थोड़े बड़े थे, सीनियर थे, कॉलेज और दिल्ली जाते थे पढ़ने, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें एक्टिंग का शौक है तो फिर तो ट्रेनिंग लो। और उन्होंने फिल्मी कलियां और इस तरह की, जब हम कॉमिक्स किराए पे लेते थे वो जमाना था,

0: वक्त वो फिल्मी कलियां में कुछ एक्टर्स के इंटरव्यूज आते थे कि कोई एफटीआई से पास आउट है
1: जी,
0: कोई एनएसडी से पास आउट है, फिर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता चला, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं एनएसडी करूंगा, क्योंकि कुछ सोर्स ही नहीं था, कुछ कनेक्शन ही नहीं था, ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था। हाँ, लेकिन उनको पढ़ते थे तो अच्छा लगता था, अच्छा इसकी भी लोग ट्रेनिंग करके जाते हैं
1: जी।
0: तो धीरे धीरे रास्ते खुलते चले गए, तो ऐसा हो गया पॉसिबल।
1: वो एक लाइन पकड़ ली फिर आपने?
0: हाँ, वो पकड़ी गई। वो ऐसे कि मेरे एक दोस्त थे, पता चला कि एनएसडी तो हम सोच ही नहीं पाते कि इतने नसीरुद्दीन शाह,
1: बिल्कुल
0: इनके नाम
1: बहुत
0: सुनते
1: बड़े
0: थे।
1: बड़े एक्टर,
0: हाँ, राज बब्बर, ये लोग निकले हैं, तो हम कहाँ सोचते थे कि फरीदाबाद के, तब इतना कनेक्टिविटी भी नहीं थी दिल्ली से कि कहाँ कौन जाएगा एक्टिंग कोर्स करेगा। बड़ी मुश्किल से एक दिन मेरे को किसी ने उसका एड्रेस ला के दिया एनएसडी का, मेरे एक दोस्त ने
1: जी।
0: तो मैं 12th में था, तो मैं जैसे तैसे दिल्ली पहुंचा और वहां जाके पता चला कि यहाँ तो ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन मिलता है।
1: अच्छा।
0: तो मैं बड़ा उदास हुआ और नाराज भी हुआ कि अरे ग्रेजुएशन करेंगे तो इतनी एज हो जाएगी, फिर हीरो कब बनेंगे, तो मतलब जो भाव होता है एक छोटे,
1: मतलब वो 3 साल ग्रेजुएशन में निकल जाएंगे,
0: फिर वो हाँ करेंगे, अच्छा फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
1: और तब तक मूड बदल जाए, ये
0: मूड बदल जाए, या घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी हमारी की मतलब की हम कहीं भी जब आँख खुलेगी तभी कोई कोर्स कर लेंगे टाइप, सर्वाइवल वाली जिंदगी थी कि कैसे सर्वाइवल चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात थी
1: जी। तो अब जैसे आप एनएसजी में एक प्रोफेसर हैं, तो आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आप टीचर और आर्टिस्ट इन दोनों रोल्स को किस तरीके से बैलेंस करते हैं?
0: मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अब, क्योंकि मुझे एनएसजी पास किए ही 20-25 साल हो गए हैं, और मैं 2001 में एनएसजी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया एक्टिंग का, और ऐसा संयोग रहा कि 2001 से निकलने के बाद से मुझे अपना थिएटर ग्रुप, थिएटर वर्कशॉप ऑल ओवर इंडिया में हम करते रहे घूम घूम के, तो वो एक तरह की टीचिंग ही होती है
1: जी।
0: जब हम किसी वर्कशॉप को कंडक्ट करते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, उनके साथ थिएटर की बेसिक्स को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एक प्रोडक्शन तैयार करते हैं, तो वो टीचिंग का ऐसा अनकॉन्शियसली कहना चाहिए कि वो आ गई, नेचर में आ गई
1: जी।
0: और फिर मुझे बाद में अभी 2018 से लेके मैं 5 साल में को बनारस का डायरेक्टर बनने का भी मौका मिला एनएसडी का, तो वहाँ फिर वो सब एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब देखना था और एकेडमिक्स भी देखना था, तो वो टीचिंग वो फिर अनोइंगली आ गई, तो ऐसा कुछ मुझे अलग से नहीं करना पड़ता। और एनएसडी की टीचिंग बहुत डिफरेंट है, एनएसडी की वो स्टीरियोटाइप टीचिंग नहीं है
1: जी,
0: इसीलिए वो एक यूनिक इंस्टीट्यूट है। वहाँ हम 2+2=4 नहीं पढ़ाते,
1: अच्छा
0: वहाँ 2+2=5 भी हो जाता है और 3 अच्छा, भी हो जाता है।
1: तो जैसे आपने बोला टीचिंग स्टाइल बहुत डिफरेंस है, क्या डिफरेंट होता है?
0: डिफरेंट ये कि वो हमारा जो कोर्स है वो मशहूरी इसलिए क्योंकि वो परफॉर्मिंग आर्ट का है और वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फील्ड है, तो ज्यादातर हमारा 80% तो प्रैक्टिस होती है
1: जी,
0: और हम सब लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, है ना, 20% थ्योरी है, बाकी जो है सब परफॉर्मेंस करना है, करके सीखना है, क्या गलती हो रही है, अलग अलग एक्टिंग के मेथड्स हैं, है ना, अलग अलग फोक फॉर्म्स हैं
1: जी,
0: तो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हैं जो अलग अलग रीजन से आती हैं, तो वो तो करने से होगा
1: जी,
0: वो कोई ब्लैकबोर्ड पे लिखने से वाली हमारे वहाँ की टीचिंग का फलसफा वहाँ है ही नहीं
1: जी। तो जैसे आपने बताया बनारस में भी आपको डायरेक्टर रहने का मौका मिला 5 साल का, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका?
0: वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, बिकॉज वहाँ कुछ नहीं था शुरू में जब हम गए
1: जी।
0: और दूसरी बात मैं यहाँ अंडरलाइन करना चाहूंगा कि वो नाट्यशास्त्र पे बेस्ड एक्टिंग इंस्टीट्यूट है,
1: अच्छा
0: एनएसडी का है, लेकिन हम पूरी जो हमारा शिक्षा पद्धति है वो पूरी हमारी एंशियंट, जो 4,000-5,000 साल पुराना जो हमारे पास एक मेथड है
1: जी,
0: उस पे बेस्ड वो ट्रेनिंग प्रोसेस को लेके तैयार करना था। तो इत्तेफाकन मैंने वहाँ जाने से पहले कई संस्कृत प्लेस किए थे और ईश्वर की कृपा से मेरा वहाँ एज ए डायरेक्टर सिलेक्शन हो गया, तो मुझे एक बहुत आज़ादी मिली उस सेंटर को डेवलप करने में
1: जी।
0: और बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ मिलकर काम करने में कि कैसे उसको शेपअप कैसे करें, क्योंकि नाट्यशास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है, नाट्यशास्त्र ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम सब समझ गए हैं, और उस पर अभी भी उसकी बहुत लेयर्स हैं
1: जी।
0: तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव था और उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी, मैं उसको अपना एक अच्छा गोल्डन टाइम मानता हूँ, 5 साल जो मैंने वहाँ निदेशक के तौर पर काम किया।
1: तो फिर जब आप वहां से यहाँ आए दिल्ली दोबारा, तो कुछ मिस नहीं किया वहां का आपने?
0: ऑब्वियसली जब आप एक नया सेंटर या नई चीज बनाते हैं, वो एक आपके बेबी की तरह होता है, जब वो जीरो से शुरू करते हैं। आज वहाँ कई अच्छी चीजें हैं, एक स्टूडियो बनाया, मतलब एक शेपअप हुआ। उसके बाद हमारे अंदर एक थिएटर वालों को आदत रहती है कि एक वर्कशॉप खत्म अब आगे बढ़ना है
1: जी।
0: तो हम अब फंसते नहीं है, इसलिए उतना ज्यादा मिस नहीं होता। हाँ, वो शहर भी गजब है,
1: शहर जैसे बहुत अच्छा है ना, बनारस बिल्कुल।
0: और बाबा विश्वनाथ वहाँ बैठे हैं, तो वो तो हमेशा लगता ही है, लेकिन हमेशा थिएटर कहता है कि आगे बढ़ो
1: जी।
0: और फिर मेरी फैमिली भी इधर थी, और यहाँ भी एक ईश्वर की कृपा हुई कि मुझे यहाँ एक जॉब था, मैंने अप्लाई किया, हो गया
1: जी।
0: तो वापस बैक टू पवेलियन अपने शहर आ गए
1: जी। तो राम जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे थिएटर की बातें जान के। सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है हमारे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से राम जी सर के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थिएटर के बहुत ही जाने माने मिस्टर राम जी बाली जी। तो सर, अभी जैसे आपने बताया NSD के बारे में हमें, थिएटर के बारे में, अब थोड़ा थिएटर रिलेटेड ही मैं आपसे और चीजें पूछना चाहूंगी कि थिएटर ने आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया है?
1: थिएटर ने जिंदगी का सबक ये सिखाया है कि हमेशा मध्यम मार्ग पे चलो, एक्सट्रीम किसी भी विषय पे नहीं होना है, चाहे लाइफ में है, चाहे आर्ट में है, किसी भी चीज को लेके। हमेशा थिएटर आपको, आपकी जो एजेस होते हैं ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको सुकर्व करता है, ताकि आपको, क्योंकि लिटरेचर है उसमें, उसका सबसे बेस। तो मैं तो मानता हूँ कि किसी, मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि एक 4 पेज की कहानी पढ़ के आप किसी के जीवन की पूरी हिस्ट्री समझ जाते हो, उसका इमोशन समझ जाते हो, ये कितना सस्ता सौदा है। नहीं तो हम अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे तब हमें एक सबक मिलेगा।
0: बिल्कुल,
1: हम किसी की जीवन जिंदगी के 4 पन्ने पढ़ते हैं 10-15 मिनट में, और हमें कितना सबक
0: समझ भी आ।
1: तो थिएटर में तो लिटरेचर तो उसका बेस है, तो लिटरेचर हमें, हमारी समझ को विस्तृत करता है, काम डाउन करता है, और काफी कुछ सिखाया थिएटर ने
0: जी। और जैसे सर, आज के डिजिटल युग में थिएटर की रेलेवेंस को आप कैसे देखते हैं?
1: मुझे लगता है कि थिएटर की रेलेवेंस इससे और बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि आप देख लीजिए, थिएटर कोई आज का नहीं है। थिएटर शायद जिस वक्त इंसान ने खाना खा लिया होगा, उसी वक्त उसको कुछ करने की सूझी होगी। जिस वक्त रोटी का सवाल खत्म हो गया होगा, वहीं से थिएटर शुरू हो गया होगा। चाहे कम्युनिटी में, एक ट्राइबल एरिया में, चाहे भाषा नहीं रही होगी, लेकिन जब उन्होंने शिकार मार के खाया होगा, फैमिली के साथ रात को बैठे होंगे आग जला के, तो शायद दिन की क्या घटना हुई होगी, शायद किसी ने एक्ट करके दिखाया होगा, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, वहीं से थिएटर शुरू हुआ
0: जी।
1: जो इतना पुराना, जिसकी जड़ें हैं। और आप देख लीजिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी के लेवल पे देख लीजिए, सिनेमा तो अभी का है, 500 साल भी नहीं हुआ अभी।
0: अच्छा,
1: अभी देख लीजिए, ये तो हजारों साल, अनंत, मतलब जैसे बोलते हैं ना, सनातन है
0: जी।
1: रंगमंच सनातन है, जहां मनुष्य है, यहां 2 लोग, एक कर रहा है, एक देख रहा है, रंगमंच हो रहा है
0: जी,
1: है ना। और आप देख लीजिए, उसकी टेक्नोलॉजी बदलती चली गई
0: जी।
1: मीडिया की, पहले बड़े बड़े वो रिकॉर्ड आते थे, आज हम कैसे गाना सुन रहे हैं
0: जी।
1: फिर वीडियो कैसेट्स आते थे,
0: फिर सीडीज आ गई,
1: वो आई, फ्लॉपी आई, फिर क्या क्या आया, आज वो लिंक में ही है फिल्म, है ना। ये सब का बहुत छोटा स्पैम है, 10 साल में, 5 साल में चेंज हो जाता है
0: जी।
1: लेकिन रंगमंच एक जीवित व्यक्ति करता है और एक जीवित व्यक्ति उसके सामने बैठ के देखता है, दोनों सांस ले रहे होते हैं उस वक्त। तो इसकी ये जो ग्रेटनेस है, वो कोई मीडियम नहीं ले सकता
0: जी।
1: तो जब तक इसका ये जीवंतता वाली बात है, कोई भी मीडिया, कोई भी AI इसको वो नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट,
0: हाँ जी,
1: छपाई खाने में तो आप जो भी हमारी कुर्ती है, शर्ट पहना है, हजारों बन रहे हैं, जैसे ही उस पर कोई कारीगर अपने हाथ से आपका नाम लिख देता है, कस्टमाइज हो जाता है,
0: बिल्कुल,
1: उसकी वैल्यू
0: और उसका दाम भी बढ़ जाता है,
1: उसकी ब्रांडिंग अलग है। तो जस्ट लाइक दैट, रंगमंच, जितना ये टेक्नोलॉजी आएगी, रंगमंच की महत्ता उतनी ज्यादा बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने समझाई है, यहाँ पे क्लियर की है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे प्ले होता है और ये नुक्कड़ नाटक, इनमें क्या फर्क रहता है?
1: नुक्कड़ नाटक भी एक नाटक है,
0: हाँ जी,
1: लेकिन वो नुक्कड़ पे होता है, इसलिए नुक्कड़ नाटक है। उसकी कुछ सीमाएं हैं, और सीमाओं के साथ साथ उसकी कुछ स्वतंत्रता भी है, और उसकी कुछ पाबंदियां हैं, क्योंकि वहां पे आपका बुलाया हुआ दर्शक नहीं है उस तरह का। नहीं तो आप एक ऑडिटोरियम बुक करते हैं, आप इनवाइट करते हैं, या एड निकालते हैं, लोग आते हैं, स्वतः आते हैं, मन से आते हैं, मन बना के आते हैं कि मैं नाटक देखने आज मंडी हाउस जाऊंगा या जाऊंगी, गाड़ी चला के जाते हैं, बस पकड़ के आते हैं, या फरीदाबाद में भी किसी, हम जब सभागार में करते थे, आप प्लान करते हो कि आज शाम को मुझे नाटक देखने जाना है। नुक्कड़ नाटक में वैसा नहीं है, नुक्कड़ नाटक आप सड़क पे जा रहे हो, चाट पकौड़ी खा रहे हो, अचानक कोई डम डम डम बजने लगता है, तो क्या हो रहा है, शोर होता है, वो यहीं कॉर्नर में साइड पे 4 लड़के या लड़कियां कुछ डफली बजा के कुछ एक जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं
0: जी।
1: तो उनका क्या, वो उसी वक्त वो स्पेस क्रिएट करते हैं, उसी वक्त वो मंच क्रिएट करते हैं, वहां मंच नहीं होता है, उसी वक्त वो दर्शक को रोकने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त वो कोई एक इश्यू लेते हैं। उनका क्या है, उस रंगमंच में जो बेसिक हम फर्क है, वो इश्यू बेस्ड रंगमंच है, और उसमें स्लोगन है
0: जी।
1: उसमें आर्ट भी है, लेकिन आर्ट की मात्रा थोड़ी कम है उसमें, मैसेजिंग ज्यादा है बजाय इमोशन के
0: जी।
1: मेरा मतलब ये नहीं कि जो वो कर रहे हैं वो इमोशनल सीन नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन मोर और लेस अगर हम बात करें तो वो एक तरह का नारा है, वो कुछ बात कहना चाहते हैं ग्रुप, वो आता है 10 मिनट में, हो हल्ला करता है, अपना कोरियोग्राफी करता है, अपने डायलॉग बोलता है, चला जाता है, वही फिर मार्केट फिर चालू हो जाती है वैसे की वैसे। लेकिन ये जो फील्ड जो प्रोसीनियम रंगमंच की हम बात करें, उसमें आर्ट है, एस्थेटिक है, म्यूजिक कहाँ थोड़ा कम आएगा, कहाँ ज्यादा आएगा, यहाँ एक पर्दा लहराना चाहिए, यहाँ से लाइट थोड़ी सी ऐसी आएगी, तो ये एक कलेक्टिव वर्क है आर्ट का, आर्ट फॉर्म का एक गुलदस्ता है कहना चाहिए, जिसमें लिटरेचर भी है, मंच भी है, मेकअप भी है, कॉस्ट्यूम भी है, लाइटिंग भी है, लाइव म्यूजिक भी है, डायलॉग भी है, इमोशन भी है, है ना, एक एनवायरनमेंट है। ये बेसिक फर्क है मुझे जहाँ तक मेरी समझ।
0: नहीं नहीं बिल्कुल सही आपने बताया। तो नुक्कड़ नाटक हमने जैसे अभी कुछ सालों पहले मतलब देखने शुरू किए हैं, इससे पहले तो या होते थे या आप ज्यादा लोगों के बीच में?
1: नहीं ऐसा नहीं है, नाट्य शास्त्र में भी वीथी नाटक की बात होती है। वीथी अच्छा। वीथी का मतलब गली होता है।
0: अच्छा।
1: तो वीथी नाट्य की बात है, तो इट मींस कि तब भी होते होंगे। उसका प्रारूप क्या रहता होगा ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि हमारे नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन है, लेकिन जब नाट्य शास्त्र की ही प्रैक्टिस बीच में मुगल काल और ये सब मतलब जो बहुत पहले खत्म हो गया, अब ये दोबारा रिवाइव हो रहा है इंडियन क्लासिकल थिएटर, तो हम नहीं कह सकते कि पहले कितना हुआ, लेकिन हाँ ये इधर आज का जो नुक्कड़ नाटक है उसकी अगर हम बात करें तो वो ये इमरजेंसी वगैरह के बाद जब सरकार बदली, जब चीज़ें आईं, तो ये लेफ्टिस्ट लोगों ने ज़्यादा इसको अपनाया, प्रमोट किया, और इसका इतिहास है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है।
0: जी तो सर थिएटर और फिल्म में एक्टिंग करने का सबसे बड़ा अंतर क्या है? जैसे आपने बहुत सी फिल्में भी की हैं हमने देखा, और अभी रिसेंटली केरला स्टोरीज 2 में आपका बहुत अच्छा रोल है उसमें, सो क्या अंतर रहता है दोनों चीज़ों में?
1: देखिए मुझे कई लोग इसमें बहुत बड़े बड़े थ्योरीज गढ़ते हैं, बताते हैं, मुझे आज तक कुछ अंतर नहीं लगा। मुझे लगता है एक्टिंग एक्टिंग है
0: जी।
1: रंग अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, ये मंच पे भी एक सीन हो सकता है कि एक आप इंटरव्यू कर रही हैं मेरा, है ना, आप सवाल पूछ रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, इसी को अगर कैमरा लगा दें जैसे पॉडकास्ट है फॉर एग्जाम्पल, क्या फर्क आ जाएगा बताइए? आप कोई अजीब से एक्सप्रेशन बना के थोड़ी बात करेंगे, आप ऐसे ही बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर हाँ, उसमें क्योंकि लेंस चेंज हो जाता है तो उसका एक्सप्रेशन और वो बहुत बड़े पर्दे पर दिखता है। अभी आपका जितना जितना जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही दिखेगा, और दूर से देखेंगे तो छोटा दिखेगा, मंच पे जो आगे बैठा होगा उसका क्षेत्र बड़ा दिखेगा, लेकिन सिनेमा में क्या सबको एक साथ दिखता है? वो लेंस की करामात है, वो एक टेक्निकलिटी है, उससे एक्टर का कोई लेना देना नहीं है। एक्टर को हाँ ये ध्यान रखना है कि अब आपका क्लोज लगा है तो मुझे ज्यादा, मैं हाथ हिला हिला के बात कर रहा हूँ तो वो फ्रेम में है ही नहीं, वो इतनी सी बात है, वो डायरेक्टर बोल देगा भाई हम आपका ना अभी आईज का ले रहे हैं
0: जी,
1: तो आप बस ये वाले डायलॉग आपका एक रिएक्शन ले रहे हैं, तो आप मंच पे भी आप वही रिएक्शन देते हैं लेकिन उसमें शायद आपका हाथ भी चलता है। तो मुझे छोटी सी टेक्निक हल्का सा फर्क है, मुझे ऐसा कोई ड्रास्टिक फर्क नहीं लगता,
0: वो भी सिर्फ कैमरे को फेस करने वाली
1: चीज और है कि जो सिनेमा का एक्टर है वो रंगमंच नहीं कर सकता, उसको दिक्कत आएगी।
0: अच्छा।
1: कर सकता मतलब कर लेगा कोई भी, लेकिन वो उतना शायद अच्छा अभिनेता साबित ना हो मंच पे, लेकिन जो मंच का अभिनेता है जब वो सिनेमा करता है तो बहुत बेहतर अभिनेता साबित होता है।
0: अच्छा ऐसा क्यों कि सिनेमा वाला नहीं कर पाएगा?
1: नहीं उसको दिक्कत आएगी, मैं नहीं कह रहा कर नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है ना वो कॉन्टिन्यूटी में इमोशन को कैरी नहीं कर रहा है, हम 2 घंटे का प्ले कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं।
0: हाँ वो सीन में कट करके
1: कट हो रहा है उसका बार बार, उसके सामने एक्टर नहीं है, उसके सामने कैमरा है
0: जी,
1: उसको एक्टर की आदत ही नहीं है, कम आदत है, समझ लो हमारे पास तो एक्टर ही एक्टर है, हम मंच पे जब घुसे तो सामने

0: दाएं एक्टर बाएं एक्टर, हमारा कैमरा तो दर्शक है,
1: बिल्कुल लाइव ऑडियंस जो देख रही है,
0: नहीं हमें वहीं से देख रहा है ना, तो इसमें क्या है कि अभी यहाँ भी कैमरा लगा देंगे, आपके कान के पास लगा देंगे, आपके कंधे के पीछे लगा देंगे,
1: हाँ जी,
0: तो वहां पे दर्शक मूव कर रहे हैं एक तरह से 360 डिग्री में
1: जी,
0: और रंगमंच पे एक्टर मूव कर रहा है, तो उसको कट्स की आदत है, इमोशन के कट्स की आदत है, हम एक फ्लो में करते हैं, तो हमें उसकी गहराई, उसकी डेप्थ, उसका इमोशन का जो क्या कहते हैं, उसका जो नमक आना चाहिए, वो उसके थोड़ा सा एहसास ज्यादा है
1: जी।
0: मुझे ऐसा लगता है, और ये साबित हुआ है, ये हॉलीवुड तक के एक्टर्स में साबित हुआ है।
1: अच्छा,
0: जितने हॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं सब थिएटर करते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, हमारे यहाँ के कम करते हैं, लेकिन वहाँ के तो करते ही, वो एक सीजन फिक्स करते हैं, हम 3 महीने नहीं करेंगे सिनेमा, 3 महीने हम जाएंगे अपने ग्रुप में थिएटर करेंगे, 20-50 शो करेंगे, वापस सिनेमा में आएंगे।
1: ये बहुत ही अच्छा एक फर्क आपने समझाया अभी, तो आपने जैसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेस भी दिए हैं खुद से, मतलब डायरेक्ट भी किए हैं, तो आपके दिल के सबसे करीब कौन सा प्ले है आपका, उसके बारे में बताइए।
0: इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो मैंने प्ले डायरेक्ट किए हैं उनमें अगर हम बात करें तो मेरे बहुत करीब है अभिज्ञान शकुंतल कालिदास का, मुझे बनारस में रहते हुए संस्कृत नाटक करने का मौका मिला, और मैंने कालिदास के तीनों नाटक किए, कई बार किए हैं अब तो मैं जब भी अभिज्ञान करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने अगर मैं लिखे हुए प्लेस की बात करूँ तो मैंने लगभग अब तक 9-10 प्ले लिखे हैं, और उसमें मेरा सबसे प्रिय प्ले एक है, एक रोमांटिक कॉमेडी है मैंने लिखी है, कोई बात चले।
1: अच्छा।
0: उसको मैंने 2010 में लिखा था, तो उसके कई शोज हम कर चुके, उसमें यशपाल शर्मा भी जो हमारे हरियाणा के बहुत बड़े एक्टर हैं सिनेमा में, गंगा जल में जो मेन विलेन थे
1: जी,
0: वो भी उसमें एक्ट कर चुके हैं प्ले में, और वो प्ले करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत फन है उसमें।
1: तो जैसे आपने प्ले की बात बताई, तो ये आपका कैसे रहता है कि आपको अलग अलग शहर में आप जाके करते हैं, इसका क्या चीज रहती है?
0: जब कोई प्रोडक्शन तैयार होता है तो अगर हम दिल्ली में जैसे ओपन किया तो जो थिएटर वर्ल्ड के लोग हैं उनको पता रहता है कि अच्छा एक नया प्ले आया है, वो थिएटर फेस्टिवल होते हैं कई शहरों में, लोग करते हैं तो इन्वाइट करते हैं, गवर्नमेंट्स के भी अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स होती हैं उनके वो लोग भी फेस्टिवल्स करते हैं, तो जो थिएटर वर्ल्ड का जो एक अलग संसार है वो जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं कि किसका क्या प्रोडक्शन चल रहा है, फिर उसको इनवाइट करते हैं।
1: और प्ले का ड्यूरेशन क्या रहता है, मतलब कुछ घंटों का या कुछ दिनों का भी रहता है?
0: नहीं, दिनों का नहीं रहता है, क्या रहता है कि यूजुअली पहले 2.5-2.5 घंटे के 3-3 घंटे के प्लेस होते थे जब हमने किया, अभी भी होते हैं 2.25 घंटा 2.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट, मतलब ये इसको फुल लेंथ प्ले माना जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइमिंग माना जाता है, क्योंकि अभी टाइम कम हो रहा है, तो अभी 1.5 घंटे के भी नाटक होते हैं, 1.5 से 2.5 घंटे ज्यादातर नाटक होते हैं, उसमें कुछ लोग इंटरवल रखते हैं कुछ नहीं रखते हैं,
1: तो उसमें फुल म्यूजिक वगैरह सब रहता है,
0: सब होता है, पूरा सेटअप लेके चलना पड़ता है, कुछ चीजें जैसे किसी ने हमें मान लीजिए कि पटना में इनवाइट किया, तो बेसिक जो सेटअप है स्टेज का
1: जी।
0: वो और मैं आपको बता दूं कि कोई बात चले, यशपाल शर्मा वाला प्ले आपके मानव रचना में भी हुआ है।
1: अच्छा।
0: मुझे अभी याद आया, जस्ट अभी याद आया।
1: अच्छा।
0: और यशपाल शर्मा ने ही किया है आपके स्टूडेंट्स के सामने
1: जी।
0: मुझे ये इस बात को हो गए कम से कम 8 साल हो गए होंगे।
1: अच्छा।
0: मिस्टर भल्ला ने इनवाइट किया था
1: जी जी,
0: तो एक आपका अंदर ऑडिटोरियम है उसमें शो किया था, बहुत सक्सेसफुल शो हुआ था, बहुत अच्छा शो हुआ था।
1: वाओ, ये तो बात आपसे अभी
0: मुझे भी अब भूल गया था।
1: हाँ।
0: अभी याद आया मुझे कि हाँ हमने किया है उसको, बॉम्बे से टीम आई थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ करने का
1: जी। तो साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हम अपनी वार्तालाप को जारी रखेंगे राम जी बाली सर के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए क्रिएटिव मंच ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं थिएटर जगती के जाने माने मिस्टर रामजी बाली जी। तो सर, बहुत ही मजा आ रहा है आज आपके साथ हमारे शो में, और डेफिनेटली जो लिसनर्स आज ये शो सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत चीजें थिएटर से रिलेटेड समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से क्या क्या होता है पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने। तो अभी तक हमने बात की आपके टीचिंग स्टूडेंट्स और आपके प्लेस के बारे में, लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर मतलब जो चीज़ लाना चाहूँगी, फिल्म एंड स्क्रीन वर्क जो आप करा है, जैसे थिएटर से फिल्म और वेब सीरीज तक का सफ़र आपका कैसा रहा? आपने काफ़ी वेब सीरीज भी की हैं, थिएटर तो हमें पता ही है उसमें तो आपकी है ही महारत हासिल, तो अपनी वेब सीरीज के बारे में बताइए और उसके बाद में आपकी मूवीज के बारे में पूछूंगी।
1: मैंने डेली क्राइम एक वेब सीरीज, बहुत चर्चित वेब सीरीज रही, उसमें मुझे काम करने का अवसर मिला। उसमें जो बहुत बड़े एक्टर हैं राजेश तैलंग, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं
0: जी।
1: और देखा जाए तो मैंने तिग्मांशु धूलिया जी के साथ सिनेमा में काफ़ी मुझे अवसर मिला उनके साथ काम करने का। मेरी पहली फिल्म उनके साथ पान सिंह तोमर थी
0: जी।
1: और पान सिंह करने के बाद उनके साथ मेरा एक अलग बाउंडिंग बनी। तो उसके बाद मैंने उनके साथ साबी और गैंगस्टर में भी एक छोटा सा रोल किया है, और एक यारा फिल्म उन्होंने बनाई थी तिग्मांशु सर ने, उसमें भी मुझे अभिनय करने का मौका मिला। और सिर्फ अभिनय नहीं, मेरे को जब भी वो सिनेमा कुछ बनाते थे तो अक्सर मुझे डायलॉग में भी बुला लेते थे कि तुम थोड़ा सा एक्ट्रेस को हेल्प कर दो
0: जी।
1: तो बड़ा वो प्यार रखते हैं, स्नेह रखते हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं कि तिग्मांशु धूलिया बहुत बड़ा नाम है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। अगर वो मुझे
0: और अगर वो
1: कह रहे हैं कि तुम जो एक्टर्स का डायलॉग चेक कर लो तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसा मैं उनके साथ काफी काम किया है, ऋषु भाई के साथ। हम उनको प्यासे सब जो एनएसजी के लोग हैं ऋषु भाई बुलाते हैं उनको, और उनके साथ काम करने का मौका मिला। और खोसला का घोसला बहुत शुरुआती फिल्म थी जब मैं जस्ट एनएसजी से पास आउट किया था, वो काफी आती है इसलिए लोग उसको ज्यादा जानते हैं। उसमें मैं एक बड़े रोल के लिए कास्ट हुआ था पहले, लेकिन फिर उस वक्त मैं बहुत यंग दिखता था, तो मुझे डायरेक्टर ने बोला दिवाकर ने कि आई एम वेरी सॉरी, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज फाइनल। उसमें एक बड़ा रोल कर रहा था मैं, लेकिन उन्होंने बोला कि राम जी मुझे बहुत, प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आप छोटे लग रहे हो, लेकिन आप एक रोल है जरूर करो। वो एक छोटा सा आईपीएस का रोल, फिर मेरे को दिवाकर ने बोला कि आप करो। तो फिल्म बहुत आती है,
0: हाँ जी
1: हाँ, तो उसमें किया काम। फिर एक फिल्म है रागदेश, रागदेश में भी मैंने एक्टर्स को भी ट्रेन किया था उसमें, और एक रोल भी किया। और रागदेश की भी स्क्रीनिंग आपके यहाँ हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। हाँ, उसमें तिग्मांशु धूलिया की फिल्म, क्योंकि वो INA पे थी फिल्म, मतलब आज़ाद हिंद फौज के ऊपर, तो उस एक केस है, कोर्ट केस है, उसके ऊपर वो फिल्म थी, तो उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। और बाकी मुझे अपनी फिल्म भी एक छोटी सी बनाई मैंने, जो एक हरियाणा में रह के ही बनाई, हरियाणवी फिल्म बनाई अज्जो नाम से।
0: अच्छा।
1: वो एक बच्ची और दादी,
0: वो शायद आपने अभी थोड़े टाइम पहले ही,
1: नहीं अब उसको हो गया 5-1 साल हो गया।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और वो अभी स्टेज ऐप पे है वो फिल्म
0: जी।
1: और वो फरीदाबाद के ही मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रोड्यूस की थी, मिस्टर प्रदीप मोहंती
0: जी।
1: वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे पहला मौका दिया, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने कोई इंडिपेंडेंटली फिल्म नहीं बनाई थी
0: जी।
1: काम जरूर किया था, लेकिन कोई पहली बार जब आप पे ट्रस्ट करता है वो बड़ी बात होती है,
0: बड़ी बात।
1: और उन्होंने मौका दिया फिल्म की, उसमें डॉली अलवालिया मेन रोल में थी, और उसमें यशपाल शर्मा ने भी एक कैमियो किया था, और स्वानंद किरकिरे ने गाना गाया है उसका।
0: अच्छा।
1: टाइटल अंतरा मित्रा ने गाना गाया है, और ठीक अपने एनएसजी के काफ़ी लोगों ने मदद की उसमें मुझे। और इसके अलावा थिएटर में भी मैंने कुछ सेलिब्रिटी को लेके एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक प्ले राजपाल यादव भाई को लेके किया था।
0: अच्छा।
1: चलो इश्क लड़ाएं के नाम से, उसके बाद मैंने हिमानी मैम के साथ, हिमानी शिपुर जी के लेके भी एक प्ले किया डायरेक्ट, उसमें हम दोनों ने मिलके एक्टिंग भी की। और यशपाल भाई वाला प्ले तो हमारा खूब चला, जिसका मैंने जिक्र किया है कि आपके यहाँ भी हुआ है। और इस तरह लगे हैं, जो भी काम आता है कर लेते हैं, चाहे थिएटर का हो चाहे सिनेमा का हो। और बेसिक यह है कि रंगमंच से, आर्ट से जुड़े रहना है, यही प्रयास रहता है। और अभी एनएसटी में पढ़ा रहा हूँ तो रही हैं।
0: जी जी, नहीं इतना ही नहीं है, बहुत बहुत कुछ आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, जैसे आपने नेम लिया अभी तिग्मांशु धूलिया जी का, और हमने देखा पंकज त्रिपाठी जी के साथ भी, और शायद नवाज सर के साथ भी, तो आपका मतलब कैसा रहता है जब इतने बड़े लोगों से मिलना होता है, उनके साथ वर्क करना होता है, क्या वो भी उतने डाउन टू अर्थ लोग
1: हैं? नहीं, ये सब लोग अपने दोस्त लोग हैं, सीनियर हैं, कुछ लोग मेरे सीनियर बड़े भाई जैसे हैं। नवाज भाई, जब नवाज भाई एनएसजी में थे तब हम श्रीराम सेंटर में थे, और बाद में मुझे भी एनएसजी आने का मौका मिला, वो सब सीनियर हमारे सीनियर हैं, और छोटे भाई कितना ही बिहेव रहता है उनका प्यार मिलता है। और पंकज बहुत डाउन टू अर्थ है, हमारा मेरा जूनियर है बट वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा एक्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग एक फैमिली के लोग हैं। मतलब
0: जैसे आपने यशपाल जी की बात की और राजपाल यादव,
1: ये सब लोग सब सीनियर हैं हमारे, एक कम्युनिटी, एक हम तो एलुमनाई हैं एनएसजी के, तो ऐसा कुछ मतलब,
0: तो वही उसी प्यार से मिलना होता होगा, उसी प्यार से सब रहते होंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात लगती है कि एक सेलिब्रिटीज का भी अगर इतना डाउन टू अर्थ हो, भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो सर, अब मैं बात करूंगी आपकी जो अभी रिसेंट जो फिल्म आई है केरला स्टोरीज में, हमने आपको देखा है केरला स्टोरी 2 में, वो कैसे आपको वो रोल मिला और क्या एक्सपीरियंस था उसका?
1: वो रोल मुझे ऐसे मिला, शायद उन लोगों ने, एक बहुत बड़ा नाम है कास्टिंग में, मुकेश छाबड़ा
0: जी,
1: बहुत बड़े नाम है उनका, उनके ऑफिस से कॉल आया रात को मुझे कि आप अपना सिर्फ इंट्रो भेज दो
0: जी।
1: तो कोई ऑडिशन जैसा नहीं हुआ मेरा, शायद मुकेश मुझे बहुत पुराना जानता है, इवन कई फिल्में मुकेश ने ही मुझे कास्ट किया, पान सिंह हो या दिल्ली क्राइम हो, और भी कई काम मुकेश को ध्यान रहता है, क्योंकि मैं तो फरीदाबाद में हूँ, मतलब दिल्ली में काम कर रहा हूँ, तो मैं दिल्ली मुंबई में तो स्ट्रगल कर नहीं रहा, तो मुकेश को अचानक लगा होगा कि मैं शायद उसमें फिट हो सकता हूँ, तो मुकेश ने अपने ऑफिस में बोला, तो उनके असिस्टेंट्स ने वो मंगवाया, तो वो मेरे को रोल जो मिला विदाउट ऑडिशन मिला, और शुरू में रिवील नहीं किया गया कि हम इस पे फिल्म ये सब्जेक्ट है।
0: ओके,
1: हाँ, कि जब सेट पे गए जब तब हमें स्क्रिप्ट वगैरह मिली, तो धीरे धीरे आइडिया लगा कि अच्छा ये इस सब्जेक्ट पे है, और वो चैलेंजिंग था क्योंकि इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं कि रोज न्यूज़ में सुनते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है। इस तरह की फिल्में बनाना, विपुल अमृत लाल शाह ने फिल्म प्रोड्यूस की, ये भी बहुत डेयरिंग है, क्योंकि मुंबई का सीनेरियो बहुत डिफरेंट है, बहुत डोमिनेशन जिन लोगों का है इंडस्ट्री में वो अलग विचार के हैं, और जिन्होंने ये फिल्म बनाई वो अलग विचार के हैं, तो बहुत जल्दी आपको
0: क्रिटिसाइज भी करते हैं,
1: क्रिटिसाइज से कोई दिक्कत नहीं, लेबलिंग हो जाती है, फिर आपको काम मिलने में भी प्रॉब्लम होता है।
0: अच्छा,
1: तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा ये है, थोड़ा मुझे लगता है, तो लेकिन काम करने में बहुत मजा आया, क्योंकि

0: आपका रोल देखो, बहुत ही एकदम मतलब सिंपल सोबर जो एक्टिंग आपकी थी उसमें, नेहा जो लड़की के फादर का रोल आपने किया, बहुत अच्छी मूवी भी इवन बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है सभी को ये देखनी चाहिए जरूर, इवन गर्ल्स को तो बहुत देखनी जरूरी है ये,
1: बिल्कुल देखनी चाहिए।
0: हाँ जी, सो लिसनर्स, अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हम राम जी बाली सर के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे शो में थिएटर के जाने माने मिस्टर रामजी बाली जी। तो सर, बहुत अच्छी बातें अभी आपने हमें बताई आपकी वेब सीरीज की, मूवीज की, आपके थिएटर पार्ट की। सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने भी NSD से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद आप अब मूवीज भी कर रहे हैं काफी, वेब सीरीज भी, और अभी NSD में आप प्रोफेसर भी हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को NSD में एडमिशन लेना हो, बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं भी पता होता कि एक्टिंग में किस तरीके से अपना करियर बनाए, तो क्या इसके स्टेप्स हैं, थोड़ा आप हमें बताइए।
1: देखिए, आपकी जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, बिकॉज हमारे टाइम में तो एक ही कोर्स था जो 3 इयर्स वाला कोर्स है, और उसके लिए उस वक्त 10 नाटक करने होते थे और टोटल ऑल ओवर इंडिया से 20 सीट होती थी
0: जी।

0: अभी एक तो वो 10 नाटक अब 6 नाटक हो गए हैं
1: जी,
0: वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है वहाँ। दूसरा अभी 20 सीट के अलावा 32 सीट्स हो गई हैं।
1: अच्छा।
0: तो सीट्स भी बड़ी हैं और ये 3 ईयर का फुल टाइम कोर्स है, और उसको करने के लिए आप पहले अपने शहर में जो भी थिएटर हो रहा है उनके साथ जुड़िए, क्योंकि 6 नाटक करने के लिए अगर कायदे से करोगे तो 1.5 से 2 साल लग जाते हैं।
1: ओके।
0: है ना, रोज रोज नाटक कोई भी छोटे शहरों में होता नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। आपको बहुत जल्दी करना है तो दिल्ली में कई ग्रुप्स हैं जो नाटक रेगुलर करते हैं, आप दिल्ली आके ज्वाइन कीजिए उन ग्रुप्स को। थोड़ी सी जो भी उनका फीस स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत फीस लेते हैं, वो करवाते हैं, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और हमारे स्कूल ने किया है कि अभी हमारे जो सेंटर्स हैं, 4 सेंटर्स हैं, वहाँ 1 साल का कोर्स है, हमारे समय में ये नहीं था, और उसके लिए 4 नाटक चाहिए और रिलैक्सेशन है, और 20-20 सीट्स सारे सेंटर्स में हैं, तो 80 सीट्स और बढ़ गई
1: जी।
0: अगर आप उस नज़रिए से देखें तो, और वो बनारस जैसे हम बात कर रहे थे, बनारस में 1 सेंटर है, 1 सेंटर हमारा बेंगलुर में है
1: जी,
0: 1 सेंटर हमारा सिक्किम में है, और 1 सेंटर हमारा त्रिपुरा में है। तो ये 4 सेंटर पे भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर वो आपके क्षेत्र के आसपास हैं। और तीसरी चीज, हमारे अब शॉर्ट टर्म कोर्स भी हमने शुरू किए हैं।
1: अच्छा।
0: जो पेड कोर्सेज हैं
1: जी,
0: कि अगर आपको 3 मंथ का कोर्स करना है तो वो आप साइट पे चेक कर सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, शायद 50-60,000 कुछ उसका फी है, और वो हम टाइम टू टाइम अनाउंस करते रहते हैं 3 मंथ के कोर्स।
1: बेसिकली ये डिप्लोमा कोर्स हो जाएंगे या
0: ये 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स है, ये आप अपने के किसी को है ही कि मैं कर लूं,
1: करना ही करना,
0: एज का भी फैक्टर नहीं है।
1: अच्छा।
0: किसी को लगा के अरे मैंने जवानी में सोचा था मैं नहीं कर पाया, चलो मैं 3 महीने का एक्टिंग कोर्स एनएसडी का कर लेता हूँ, है ना, उस तरह के बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है, तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी साइट पे वो सब है, और एक 1 ईयर कोर्स अभी हमारा बॉम्बे में चल रहा है, उसमें वो भी पेड कोर्स है।
1: अच्छा।
0: तो काफी अभी स्कोप है, और सारी जानकारी एनएसटी की जो वेबसाइट है उस पे सारी उपलब्ध है, और सारा प्रोसेस भी उपलब्ध है उसमें।
1: बिल्कुल। और सर एक चीज और, जैसे किसी ने कोई भी कोर्स नहीं किया है और तो भी क्या उसको एक्टिंग करने का कहीं पर मौका मिल सकता है, एड एजेंसीज में या कहीं मूवी में कोई साइड रोल, तो किस तरीके से उसे अपना, उसके लिए क्या पोर्टफोलियो रेडी करना चाहिए, क्या कराना चाहिए?
0: मैडम 90% जो लोग हैं वो नॉन ट्रेन्ड एक्टर काम कर रहे हैं, ट्रेंड एक्टर को काम नहीं मिल रहा है।
1: बिल्कुल।
0: है ना, बॉम्बे में आप जाके देखिए, वहाँ पे कास्टिंग एजेंसियां हैं, आप उनसे मिलिए। बॉम्बे में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, वो जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनको मालूम है, आरामनगर की एक जगह है अंधेरी में, वो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, बार बार मिलेंगे, फोटो शेयर करेंगे, आपका इंट्रो देंगे, थोड़ा ऑडिशन शूट करेंगे, फिर वो आपको कॉल करते हैं
1: जी।
0: तो वो सब ओपन मार्केट है, सब कुछ नहीं है कि उसके लिए कोई एनएसडी का सर्टिफिकेट ही चाहिए, उल्टा है, बल्कि सर्टिफिकेट वालों को बहुत स्ट्रगल है, और जो नॉन स्ट्रगल वाले एक्टर हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसा कुछ
1: ये तो मुझे लगता है हर चीज में चाहिए।
0: हाँ। ये परफॉर्मिंग आर्ट है ना, इसमें हाँ उसको डिग्री नहीं चाहिए ना, जिसको जो एड बना रहा है
1: हाँ जी।
0: आपका लुक उसको चाहिए, आपका लुक अगर उसकी रिक्वायरमेंट में फिट है तो उसको कुछ नहीं चाहिए।
1: और अगर जैसे कोई यंग आर्टिस्ट जब रिजेक्शन फेस करता है, बहुत करते ही होंगे, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
0: मैं तो रिजेक्शन को उसकी पूंजी मानता हूँ
1: जी।
0: जब तक कोई एक्टर या कोई भी आर्टिस्ट ह्यूमिलेट नहीं हुआ वो आगे नहीं बढ़ सकता। ह्यूमिलेशन तो हमारी पूंजी है
1: जी।
0: तो बिना ह्यूमिलेशन कौन सा ऐसा काम है जो बिना ह्यूमिलेट हुए आप आगे बढ़ जाओगे? होगा ही होगा।
1: मैं थोड़ा यंग जनरेशन की बात, वो दिल पे लगा लेते हैं। बिल्कुल,
0: इस पे ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है ना, लुक सबसे पहले है, मैंने अभी आपको बताया।
1: हाँ जी।
0: आप फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको रिजेक्ट करने से पहले मुझे आपको टेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा आप ये फाइल चला के दिखाइए, व्हाटएवर जो भी उसका। एक्टर को तो देखते ही नहीं आप नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसकी जो रिक्वायरमेंट उसमें फिट नहीं हो, आप लाख अच्छे एक्टर हो, तो ये मन से नहीं लगाना चाहिए किसी भी यंग एक्टर को, क्योंकि ये फील्ड ही लुक का है, पहले लुक है, अगर आप थोड़े बहुत उसके लुक में है तो उस जैसे वो 5-6 लोग छांट लेगा
1: जी।
0: फिर वो उनको टास्क देगा, अच्छा ये डायलॉग बोल के दिखाइए, ऑडिशन लेगा, फिर जो उसको सूट करेगा उसको कास्ट करेगा। इस तरह अगर हम नाराज होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, वो दुख होगा भी, लेकिन उसको कुछ चारा नहीं है, ये उसका प्रोसेस का, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस है, आपको उससे बचना,
1: मतलब ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए,
0: ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। ऑडिशन दो, भूल जाओ, अगर आपका होगा आपको फोन करके ढूंढ लेगा, पाताल से भी ढूंढ निकालेगा
1: जी।
0: आपने ऑडिशन दिया, आप अगले दिन बंबई छोड़ के होनोलुलु चले गए, मान लीजिए वो आपको होनोलुलु से बुला लेगा
1: हाँ जी,
0: कि सर आप सिलेक्ट हो गए आ जाइए, और आप उसके दरवाजे पे खड़े रहिए ऑडिशन देके, वो आपको बेइज्जती करेगा, फिर भाई साहब नहीं हुआ आप जाइए घर, क्या करें।
1: तो सर आपकी ये बात हमें तो बहुत मोटिवेट कर रही है, लेकिन आप किस चीज से मोटिवेट होते हैं अपनी लाइफ में?
0: अपनी लाइफ में मुझे तो लगता है आरटी हमें मोटिवेट करता है और दूसरों का अच्छा काम मोटिवेट करता है कि काश ये मैंने किया होता। वो जिस दिन खत्म हो जाएगा कि मैंने तो सब कर लिया, अब मैंने पा लिया है सत्य,
1: हाँ जी,
0: तो खत्म हो जाओगे। वो मोटिवेशन होता है जब आप किसी दूसरे का काम देखते हो और आपको लगता है काश ये मैंने किया होता
1: जी,
0: वही मोटिवेट करता है।
1: बहुत अच्छी बात है आपने बताई है हमें। और सर अब लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे। सबसे पहले थिएटर या सिनेमा?
0: थिएटर।
1: डायरेक्टर या एक्टर?
0: एक्टर।
1: स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइजेशन?
0: ये डिपेंड करता है कि कहाँ हो रहा है, क्या
1: जी,
0: हो रहा है।
1: जी जी। एनएसडी के दिन या आज का सफर?
0: एनएसडी के दिन।
1: एक वर्ड में थिएटर को अगर डिफाइन करना हो?
0: सत्य है।
1: और एक वर्ड में अगर सक्सेस के लिए कुछ बोलना हो?
0: मन की शांति।
1: वाओ, बहुत ही सुंदर आपने जवाब दिया हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने जो लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं, इसमें हर जनरेशन के लोग सुन रहे होंगे, यंग पीढ़ी भी हमारी सुन रही है, मिडिल एज भी, और तो उनके लिए आप क्या अपने तरफ से एक संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप थिएटर से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो पहले थिएटर देखना शुरू कीजिए, थिएटर को प्रमोट कीजिए, है ना, पहले उसकी एस्थेटिक को समझिए और लिटरेचर पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, किसी भी लैंग्वेज का पढ़िए, वो आपको बहुत आनंद देगा। मैं बता रहा हूँ, किसी भी वेब सीरीज को देखने से ज़्यादा आनंद देगा। और लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको थिएटर और अच्छे से समझ आएगा।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आशा करते हैं आपके आगे के प्रोजेक्ट्स में भी आपको बहुत सफलता मिले और फिर से हम आपको ऐसे ही बुलाएं। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज एनएसडी के प्रोफेसर मिस्टर रामजी बाली जी, जिन्होंने हमें बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें समझाई एनएसडी थिएटर और फिल्म जगत के बारे में। तो अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे इसी शो क्रिएटिव मंच में, और मैं हूं आपकी होस्ट गौरी मल्होत्रा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello, good afternoon, namaskar, sat shri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum dosto. मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। हमारे शो हर बार बहुत स्पेशल होता है क्योंकि हर बार बहुत ही खास एक पर्सनालिटी हमारे साथ यहां पर मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ हैं पूजा मैम। पूजा गर्ग मैम इंदौर से हैं और बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें सरप्राइजिंग हैं, आपके लिए भी होने वाली हैं, आई एम डैम श्योर। आप जब ये शो खत्म कर चुके होंगे, सुन चुके होंगे, सो यू विल हैव दैट मोटिवेशन टू डू व्हाटएवर यू वांट टू। So just keep listening to this show and let's start the show by welcoming Pooja ma'am. Hi ma'am, welcome to our show.
2: Thank you so much.
1: Please ma'am, मैं आपके शब्दों में जानना चाहूँगा, आप बताइए आप क्या करते हैं, क्या आपका डोमेन है, सब कुछ।
2: जी, मैं इंडिया टीम की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ कयाकिंग कैनो गेम्स से, और इस साल का राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे पर्सन विद डिसेबिलिटी का रोल मॉडल का अवार्ड मिला है, और मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। इंदौर से नाथुला तक मैंने फोर व्हीलर बाइक के थ्रू नाथुला में तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित करा है।
1: जी जी, बहुत सुंदर। मैं सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अगर आप बता सकें कि क्या हुआ था आपके साथ लाइफ में, कैसे लाइफ जो है वहाँ से टर्न हुई, और उसके बाद फिर कैसे आपको ये लगा कि नहीं यार आई हैव टू लिव लाइफ एज अ चैम्पियन।
2: मुझे लगता है सबसे पहले मैंने वो बताया जो मैंने अचीव करा, पर शायद वो सफ़र अब बताऊंगी जिसके थ्रू गुजर के मैंने ये अचीव करा। 2010 में जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, और सेम डे जिस दिन मेरी जॉइनिंग थी उस दिन मैं सीढ़ियों से गिर गई और मेरा स्पाइनल का उसी दिन सेम डे ऑपरेशन हुआ। मुझे लगा शायद लाइफ ना वहीं स्टॉप हो गई थी, और वो कहते हैं ना कि किस बात की सज़ा मिली है, बस ये सोचती रही, कई सालों तक बैठ पे रही। मेरे 13 मेजर सर्जरीज हुई हैं, 7 सालों तक मैं बैठ पे रही। फिर लगा कि नहीं, लाइफ में जो हो गया उसे लेकर बैठना नहीं है, मुझे एक अपने लिए यू टर्न लेना है। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो चुकी थी, जॉब लग चुकी थी, पर वो पूरा सेशन पीछे रह गया था, लाइफ कुछ और चाहती थी। तो मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव हुई और मैंने शूटिंग ज्वाइन करी, मैं नेशनल शूटर हूँ। उसके बाद मुझे लगा मेरा, मैंने कई मेडल्स जीते हैं शूटिंग में, मुझे लगा मेरा अल्टीमेट गोल है अब अपने जीवन का कि मुझे देशभक्ति के लिए कार्य करना है, और वो कैसे हो पाएगा, वो मेडल जीत के ही हो पाएगा। तो बस उसी को मद्देनज़र मैंने कयाकिंग कैनो गेम ज्वाइन करा, और मैंने इंडिया को 3 बार इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करा है, और मैं एशियन चैम्पियनशिप की मेडलिस्ट हूँ। और ये सब इतना इजी नहीं था, आज मैं पूरी तरह से व्हीलचेयर यूज़र हूँ, कैंसर फाइटर हूँ। 2024 में मेरे साथ फिर से मुझे लाइफ ने एक अपॉर्चुनिटी दी। मुझे लगता है जब जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी बन के ही आती है। तो जब मुझे पता पड़ा कि मुझे बोन कैंसर है, तो मैंने इस चीज़ को भी ग्रैब करा और अपना बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करी। मैंने इंदौर से नाथुला तक फोर व्हीलर बाइक के थ्रू 4500 किलोमीटर की यात्रा करी, जो 4400 फीट की ऊंचाई पे गई, और इस नाथुला में जाकर मैंने तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित करा जिसका मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है जब भी आपकी लाइफ में परिस्थिति खराब आए, तब शायद ईश्वर और वो स्थिति और परिस्थिति आपको एक मौका देती है कि आप कैसे उसमें बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए। हर चीज़ को रोककर या उस चीज को कोसने से कुछ नहीं होगा, शायद बोलते ना कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना होगा। तो हम जब तक अपनी स्थितियों से लड़कर कहीं बेस्ट करने का नहीं, और हमेशा याद रखिए कि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो बेस्ट प्लेयर होता है। तो बिल्कुल जो भी स्थिति हो या जो भी आपके साथ बीत रहा है या आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, तो एक सेकंड के लिए ये सोचिए कि शायद ये एक वो मौका है जिसमें आप अपने आप को बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस देकर प्रूव कर पाएंगे कि हु आई एम।
1: बहुत इंस्पायरिंग एंड बहुत सुंदर मैम, और बहुत सुंदर शब्दों के साथ आपने ये बात हमें बताई है। आगे मेरे और कुछ प्रश्न हैं, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद अपने शो में हम आगे बात करेंगे। पूजा मैम हमारे साथ हैं एंड आई एम डैम श्योर कि मोटिवेशन तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन मोटिवेशन से भी बड़ी जो चीज़ है वो है जिंदगी जीने का एक एटीट्यूड, एक नज़रिया। वो मुझे लगता है अगर आपके पास होगा तो शायद आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। विल टॉक अबाउट इट, बट फिलहाल वक्त एक म्यूजिकल हॉल्ट का। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, शो इज वॉइस ऑफ यूथ।

0: वेलकम बैक, आवाज दिस आगर शो चल रहा है, वॉइस ऑफ यूथ। और शो बहुत स्पेशल है हमारा, यहाँ पर हमारे साथ हैं पूजा गर्ग मैम। पूजा मैम से हमने अभी तक बात करी है, मैम ने बताया कि किस तरीके से जिस दिन उनकी जॉइनिंग थी उसी दिन उनकी लाइफ जो है पूरी चेंज हुई। स्टेयर्स से वो स्लिप हुए, स्पाइनल सर्जरीज हुई, और उसके बाद लेकिन वहाँ पर गिव अप नहीं किया उन्होंने, अपनी लाइफ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया। उसमें देखा कि वट कैन आई डू विद इन दीज सर्कमस्टांसेज, एंड आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट थिंग जो मुझे लगता है कि आज आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे हो सकता है कि आपकी लाइफ जो भी आपको परिस्थिति दे रही है आप उसमें से क्या बेस्ट बना सकते हो। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि जब ये हुआ, जब आप बिल्कुल बेड रिडन हो गए, जब डॉक्टर्स ने जाहिर सी बात आपको बोला होगा यू वॉन्ट बी एबल टू वॉक अगेन, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आए होंगे, परिवार की तरफ से भी बहुत सारी सिंपथी आई होगी, वहां से वो स्पार्क कैसे इग्नाइट हुआ? मैं उस एक मूवमेंट की बात करना चाहता हूँ या उस एक फेज की बात करना चाहता हूँ कि कैसे आपको लगा कि यार मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा एज इट इज।
1: जी, मुझे लगता है कि शायद ये स्थिति मेरी लाइफ में नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसा था कि जो कुछ हुआ है उसमें अब मैं घर में सबसे बड़ी बहन थी, मेरी दो छोटी बहन थी, अगर मैं टूट जाती तो शायद वो मुझसे पहले बिखर जाती, तो उनको देखते हुए मुझे अपने आप को हमेशा मजबूती से खड़ा करना था। और मैं बताऊँ, मेरी मदर टीचर हैं, तो एक टीचर हमेशा ही एक टीचर होती है, वो हर पल अपने बच्चों को या जहाँ भी उन्हें बच्चे मिलते हैं शिक्षा देती हैं। मेरी मदर ने यही सिखाया कि तुम्हें इस स्थिति से लड़ना है, तुम्हें अपने दिमाग से, दिल से लड़ना है, तो शायद तुम आधी जंग जीत जाओगे। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करा है कि तुम्हें इस कमरे से, जब तुम चल नहीं सकती हो, तुम बैठ नहीं सकती हो, तो तुम उड़ पाओगी, तुम्हें अपने में इतनी रफ्तार लाना है कि तुम्हें चलना या बैठना ना पड़े, तुम्हें उड़ना की आदत डालनी होगी, तुम्हें अपनी रफ्तार को बढ़ानी होगी। जो समय एक बोलते ना, एक समय जो आपने ख़राब कर दिया ऑपरेशंस में या बैड रिटर्न होके आपने जो ख़राब कर दिया, उन सब को आपको यूटिलाइज करना है। अब लाइफ में कुछ ऐसा कर जाना है जो खुद के लिए, तो हर व्यक्ति खुद के लिए करता है, जो खुद के लिए तो करोगे ही करोगे, पर दूसरों के लिए मिसाल बनना है। तो बिल्कुल यही हुआ लाइफ में भी कि मैंने खुद को तो मोटिवेट करा ही, साथ में मुझे लगता है कि मेरे जैसे कई दिव्यांग जिन्हें लगता है कि शायद लाइफ ने उनके साथ गलत करा है या एक थॉट जाता है, शायद अगर हम इसी चीज को लेकर बैठे रहेंगे तो अपना पॉजिटिव साइड नहीं देख पाएंगे, हमें उस पॉजिटिव साइड पे फोकस करेंगे तभी हम उस अंधेरे से निकल पाएंगे। तो जस्ट मैंने भी यही करा और आज जो कुछ भी हूँ उस पॉजिटिव साइड के कारण ही हूँ। वो पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको अगर मैं बताऊँ, अगर आप एटीट्यूड को पेपर पे लिखेंगे और ए को जैसे 1 लिखेंगे और टी को 18 लिखेंगे, इस तरह से जब नंबरिंग देंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एटीट्यूड हमेशा 100 होता है। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, वो हमेशा 89 और 98% होता है। लेकिन पॉजिटिव और री स्टार्ट लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, री स्टार्ट 101% होता है। जब भी आप लाइफ में आपको री स्टार्ट मिले ना, मतलब आप हमेशा अपने 100% से ज़्यादा ही परफॉर्म करके बताएंगे, ये सोच के रखना चाहिए।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। काफी ऐसे लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूं और शायद इस टाइम आपकी आवाज भी सुन पा रहे हैं, जिनके साथ अगर कुछ ऐसा होता है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या कोई और इशू उनकी लाइफ में होता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, दे एक्सेप्ट इट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आसपास के लोग भी गलत करते हैं उनके साथ, उनको सिंपैथी दे करके। द पॉइंट इज नॉट अबाउट द सिंपैथी, द पॉइंट इज अबाउट द एम्पैथी, वो एक मेजर चीज है। व्हाट डू यू वांट टू से टू देम, जिनको आप ये देख रहे हो इस टाइम पर कि वो उस फेस से गुजर रहे हैं किसी से, एंड दे हैव एक्सेप्टेड देयर फेट कि मेरी ज़िंदगी तो यही है, अब तो मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ और मैं नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा कुछ, उनको आप क्या बोलना चाहोगे, हाउ टू इग्नाइट दैट स्पार्क?
1: जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन्हें भी लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, तो बस ये सोचिए कि आपको एक मटका दिया गया है, छोटा सा जार है, उसमें सभी लोगों की, आपके आसपास जितने भी रिलेट लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स डाली गई है, और आपको रैंडमली एक चिट पिक करना है, और वो चिट में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपकी स्वैप हो जाएगी। आप उसी टाइम सोचेंगे कि मेरी जो प्रॉब्लम है शायद वो इतनी बड़ी नहीं है जितना मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो बिल्कुल वही है कि जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो किस फेस से गुजर के आज सक्सेस हुए हैं, और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने लड़ाई से निकलकर आगे बढ़ते हैं तभी जाके अचीवमेंट्स काउंट होती है। आज जब राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे बेस्ट दिव्यांगजन अवार्ड मिला तो वो मेरा एक अचीवमेंट पार्ट था। तो मुझे लगता है कि जब आप अपने लिए बेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। आज मैं एक पंखों की उड़ान के नाम से एनजीओ चलाती हूं और और उसमें मैं बच्चों को गुड टच बैड टच ऑनलाइन बुलिंग और साइबर क्राइम के लिए एजुकेट कर रही हूँ। और आज दिव्यांगजनों के लिए, आज मैं खुद भी एक दिव्यांग हूँ, मुझे लगता है जिंदगी में मैंने जो पाया है वो हमें किसी को देना है। शायद ये जब देने का भाव आप में आ जाता है ना, तो ऑटोमेटिक आप एक ग्रेटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में जब जब आता है, तो आप अपने आप में देखेंगे आप एक शांति की तरफ, एक बोलते ना एक वो फेस में आते हैं कि जो है बस मुझे वो दुनिया को देना है, जो लोगों की तकलीफ है उसे सुनना है, समझना है, सामने वाले को समझाना है कि नहीं तुम इस चीज़ को भी रिकवर कर जाएंगे। तो आप ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए अपने आप में और देखिए सब चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक तो समझ आ गया कि ज़िंदगी जीने का नज़रिया कैसा होना चाहिए और कैसा हो सकता है इन एनी गिवन सिचुएशन, इन एनी गिवन सर्कमस्टेंस। यू जस्ट हैव टू फाइंड अ वे कि आप क्या कर सकते हो उसमें, दैट इज़ अ होल पॉइंट। वक्त एक और छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक वंस अगेन, आई एम आरजे सागर। शो चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ एंड राइट नाउ यू लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। पूजा मैम हमारे साथ हैं और पूजा मैम से अभी तक हमने इनकी लगभग जीवन यात्रा के बारे में तो बात कर ली है। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कैकिंग पार्ट, प्लीज उसके बारे में बताइए, व्हाई कैकिंग?
1: जी, मुझे लगता है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरा अल्टीमेट गोल था मेडल जीतना। आप बोलते हैं ना, पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। आपका अल्टीमेट गोल आपको लाइफ में फिक्स करना होगा कि आई वांट दिस। उसके लिए जो आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं वो करिए। तो यही था कि मैं शूटिंग करती थी, पर शूटिंग काफ़ी कॉस्टली गेम था और मेरी अकेली मदर है तो वो नहीं हो पा रहा था। और मुझे था कि मुझे इंडिया टीम की इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, इंडिया को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना है, अपनी जर्सी पे इंडिया लिखवाना है। तो उसके लिए मैंने मेहनत करी और मैंने कयाकिंग कैनो के बारे में सुना और मैं इस चीज़ को मैंने फॉलो करा और मैं इंडिया को 3 बार इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करा है, उज़्बेकिस्तान, जापान और थाईलैंड में। थाईलैंड में एशियन चैंपियनशिप में मैं मेडलिस्ट हूँ, 2 ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीते हैं। तो आपको अपना लक्ष्य तय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे क्या चाहिए और वो कैसे चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। उसकी 1000 प्रोसेस हो सकती है, 1000 तरीके से आप अपने वे से उसको कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य जब आपका फिक्स होता है तो शायद आप डगमगाएंगे नहीं। तो सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य तय करिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे चाहिए, वो सेकंड पार्ट है। और जो सेकंड पार्ट है उसके बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल फिक्स करना बहुत ज़रूरी है।
0: आपकी लाइफ में जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद जो आपका जीवन परिवर्तन हुआ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपका नज़रिया बहुत बदला होगा जीवन को लेकर के। मैं रेडियो पर अमूमन शोज़ करता हूँ, हर रोज़ का हमारा ही काम है, और मैं डेली ऐसे जब रिसर्च करने बैठता हूँ तो मेरे समक्ष ऐसे बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, ऐसी खबरें आती हैं कि किसी ने यहाँ अपनी जान दे दी, किसी ने वहाँ अपनी जान दे दी, किसी के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे इसने उस लिए अपनी जान दे दी, किसी के ऊपर कुछ पैसे का कर्जा था उसने उसके लिए जान दे दी, किसी का अपनी बीवी के साथ झगड़ा हो गया उसने उसके लिए जान दे दी। ये जब मैं देखता हूँ तो मुझे सच में एक डर लगता है, खौफ अंदर से खाता है कि क्यों हम इतना जल्दी गिव अप करने लग जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जब आपके साथ वो हुआ, आपके जीवन में जो नज़रिया बदला आपका, वो क्या था, क्या आपने नया पाया अपनी ज़िंदगी में कि दिस इज़ दैट साइड ऑफ माई लाइफ जो शायद मुझे, अगर मैं नॉर्मल जैसे मेरी पहली जिस रफ्तार से लाइफ चल रही थी उससे जीती रहती शायद मुझे कभी मिलता भी ना ये।
1: जी, मुझे लगता है कि आज अगर ये हादसा ना हुआ होता तो मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती और शायद आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं ले रहे होते। लेकिन वो हादसे ने आज मुझे स्पेशल बनाया है, उस हादसे से मैंने अपने आप को जो दिया है उसने मुझे स्पेशल बनाया है। तो हमेशा जो हुआ है उसे एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि आप क्या हो। आज जो आप कह रहे हैं, लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें एक होड़ में जीना है, उन्हें इससे आगे निकलना है, उन्हें उससे आगे निकलना है। वो एक जो होड़ है ना, वो कहीं ना कहीं उन्हें दुख दे रही है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं नहीं हो रहा है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप एक दिन के लिए वो आर्मी वाले से अपनी लाइफ स्वैप करके देखिए जो इतनी बीहड़ जगह पर या इतनी ठंड में अपने आप की ड्यूटी कर रहा है। तो आज आप तो उससे बहुत बेटर कंडीशन में हैं। मैं तो कहती हूँ ज़्यादा कुछ नहीं तो आप तो सिर्फ वो जो रेलवे ट्रैक पे रेल को रास्ता दिखाते हैं, बस एक दिन के लिए उनके साथ जाकर खड़े रहिए तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी डिफ़िकल्टीज से हमारे को सेव कर रहे हैं। जब जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे ना जो समाज के लिए, समाज को कुछ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप या तो एक हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आइए कि वहाँ जो परेशानियाँ से जूझ रहे लोग वो हर पल एक ज़िंदगी के लिए भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, और जब आपके पास सब कुछ है तो आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं, क्या ये सही है?
0: शुक्रिया मैम हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। मेरे सवाल यहाँ पर ख़त्म होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आपके जहन में हो, कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई विचार, तो प्लीज़ लोगों तक पहुँचा सकती हैं आप।
1: जी, मैं एक चीज़ मानती हूँ, मेरा एक कोट है खुद का कि बड़ी ढीठ है मेरी चाहतों की चिड़ैया, वो धरा नहीं गगन मांगती है, कहाँ मिली है किसी को सफलता राह चलते, वो तो परिश्रम और लगन मांगती है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए तो देखिए कैसे सफलता आपके साथ नहीं आती है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड मैं दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने बीड़ा उठाया, एक संकल्प के तौर पर उसको लिया और हमारे देश को आपने रिप्रेजेंट किया। शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा, राष्ट्रपति जी ने आपको जिस तरीके से सम्मानित किया उसके लिए शुभकामनाएं आपको, और थैंक यू सो मच। इस टाइम भी आप यहाँ पर आए हैं मानव रचना के प्रांगण में, और यहाँ पर हरित विस्तारक आप जो है इसके लिए काम कर रहे हैं, इस दिशा में एनवायरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए भी आप NGO चला रहे हैं, इट मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच मैम। ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट वक्त है अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का। आई जस्ट होप आपने पूजा मैम की जो बातें सुनी होंगी आपका जिंदगी को लेकर थोड़ा तो स्पार्क इग्नाइट हुआ होगा। अब देखिए, इतनी ही यात्रा होती है किसी भी एक इंसान की, रोल मॉडल की, मोटिवेशनल स्पीकर की, कि वो आपके अंदर वो स्पार्क इग्नाइट कर सकते हैं, उसको फ्लेम कैसे बनाना है और उसको ज्वालामुखी कैसे बनाना है, ये आपकी अपनी यात्रा है, इसको जरूर तय करिए। बट हाँ, गिविंग अप इज नॉट द सॉल्यूशन। It was never a solution. It will never ever be a solution. So don't ever give up. Just try to figure it out. How can we do things differently? That's the only way what matters. Now on this note, this is your dost and host, RJ Sagar, signing off.

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: रूपा।
1: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ, अरे भाई किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। देखिए किसान भाइयों, हर कोई चाहता है कि उसकी फसल बेहतर से बेहतर हो और उससे उसको लाभ भी बेहतर से बेहतर मिले। लेकिन किसान भाइयों, बेहतरीन फसल पैदावार के लिए खेत की जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जांच जरूर करनी चाहिए। मिट्टी की जांच करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ता है। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही है। किसान फसल की बेहतरीन उपज प्राप्त कर सकें, इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया जाता है। इस योजना के मुताबिक किसान भाई अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करा लेते हैं। मिट्टी की जब जांच हो जाती है, उस जांच के मुताबिक आप कोई भी फसल बोते हैं तो आपको उपज अच्छी मिल जाती है और उसके दाम भी आपको बेहतर मिल जाते हैं, आपको लाभ हो जाता है। लेकिन सवाल है कि जाँच कराने के बाद रिपोर्ट के आधार पर खेती कैसे करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, बात कर रहा था मैं आपसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, यानी सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, जो कि एक योजना है सरकार ने किसान भाइयों के लिए चलाई है। इससे क्या होता है, आपके खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच की जाती है। जांच कराने के बाद रिपोर्ट के आधार पर खेती की जाती है, जिससे किसान भाइयों आपकी जो लागत है वो कम आती है, साथ ही उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। किसान भाइयों, आपके खेतों की मिट्टी की जांच करने के लिए प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, जहां वैज्ञानिक मिट्टी की जांच के बाद उसमें मौजूद गुण या दोष की सूची तैयार करते हैं। इस सूची में मिट्टी से जुड़ी जानकारी और सटीक सलाह होती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत खेती करने पर किसानों को बेहतरीन फसल पैदावार हासिल होती है, साथ ही मिट्टी का भी संतुलन स्थिर बना रहता है। तो कहने का मतलब है किसान भाइयों, आप इस कार्ड के माध्यम से, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से, अपने खेत की मिट्टी की जांच करा के बेहतर से बेहतर लाभ हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि भाई, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने का तरीका क्या है? तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के तरीके के बारे में। सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार कराने के लिए किसान भाइयों, आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट यानी soilhealth.dac.gov.in पर जाना होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और सुन लीजिए, एक आधिकारिक वेबसाइट है जिस पे आपको जाना होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उस पे जा सकते हैं, मोबाइल पे भी जा सकते हैं। एक बार नाम और सुन लीजिए, soilhealth.dac.gov.in यानी कि इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। उसके बाद होम पेज पर मांगी गई जानकारी को भरकर लॉगिन करना होगा। जो भी आपसे जानकारी मांगी जाए उसको आप भर दें। अब पेज खुलने पर राज्य का चयन करें, जिस राज्य में भी हैं आप, चाहे आप हरियाणा में हैं, यूपी में हैं, जिस प्रांत में आप रहते हैं उस प्रांत को आप सेलेक्ट कर दें। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको पंजीकृत न्यू यूज़र के विकल्प का चयन करना पड़ेगा। इस तरह से आप सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के तरीके के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाएंगे। लेकिन कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताऊँगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, आपको बता रहा था कि किस तरह से सॉयल हेल्थ कार्ड को बनाया जा सकता है। ये वो कार्ड है जो आपकी मिट्टी की जांच करवाने में सहायक साबित होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जाइए जिसका नाम है soilhealth.dac.gov.in। यहाँ पर जाकर के आपको पेज खोलना है। पेज खोलने के बाद जो भी राज्य में आप रहते हैं उस राज्य को सेलेक्ट करना है। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको पंजीकृत न्यू यूजर के विकल्प का चयन करना पड़ेगा। किसान भाई, आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी डिटेल्स सही सही भरें। इसके उपरांत सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। किसी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े तो किसान भाई हेल्पलाइन नंबर 011-2430-5591 और 011-2430-5948 पर संपर्क साध सकते हैं। नंबर एक बार और सुन लीजिए, 011-2430-5591। दूसरा नंबर है 011-2430-5948। इन दोनों नंबर पर आप किसी पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्प डेस्क soil@gov.in पर भी ईमेल भी किया जा सकता है। अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदा।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में, उसकी योजना के बारे में, और किस तरह से ये बनाया जाता है, कहाँ कहाँ संपर्क किया जा सकता है, इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के फायदे क्या क्या हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस योजना के मुताबिक कोई भी भारतीय किसान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, शर्त यही है कि वो हमारे देश भारत का रहने वाला हो, यहाँ का नागरिक हो। भारतीय किसान अपने खेत की मिट्टी की आसानी से जांच कर

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में, उसके फायदे के बारे में, और इस योजना से आप कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो सारी बातें बताई हैं, और आपके खेत की जो मिट्टी है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पोषक बनाया जा सकता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन साथ ही कितना जल उपयोग करना है और किस फसल की खेती करने से आपको अधिक फायदा मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखिए, जब आपका कार्ड बन जाए, कार्ड बनने के बाद आप सभी किसान भाइयों को उत्पादक क्षमता, मिट्टी में नमी का स्तर, मिट्टी की सेहत क्वालिटी के साथ साथ मिट्टी की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को सुधारने के तरीकों की भी जानकारी आपको मिल सकती है इस कार्ड यानी सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से। तो इस कार्ड से ज्यादा लाभ उठाइए, अपनी फसलों को बेहतर से बेहतर बनाइए। इसी बात के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं, और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM, और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में, और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। अरे

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझकर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की संतरास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देखकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गौंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गौंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं, कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।
1: पल भर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

पलकों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।

0: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानवरच 97.8 एफएम पर। और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 करते हैं हम कुछ खास बातें, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ ट्रेंड से जुड़ी हुई बातें। साथ ही करते हैं हम किसी स्पेशल डे पर भी बात, और उसी के साथ किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर भी हम बात करते हैं, बड़े ही डीपली उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आज भी एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही खास है। जी हाँ, हम सबसे जुड़ा हुआ है, और मुझे पता है हम सबकी लाइफ में वो एक पल ज़रूर कभी ना कभी आया होगा। आज का ये प्रोग्राम सुनकर ना आप ज़रूर, मुझे पता है, अपने बचपन को या अपने कुछ बीते दिनों को ना याद करने वाले हैं, क्योंकि आज ये जो एपिसोड है ना, ये जो प्रोग्राम है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, ये एक कहीं तो हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ वाला एक किस्सा है, क्योंकि ये जो एक इनिशिएटिव है, जो ये कैंपेन है जिसकी आज मैं बात करने वाली हूँ, ये है एक नेशनल मूवमेंट। जी हाँ, नेशनल रीडिंग मिशन 2026। इस एपिसोड का थीम है किताबों से मुलाकात, ज्ञान की सौगात। दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब एक फास्ट डिजिटल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। रील्स हो, शॉर्ट्स हो, नोटिफिकेशन हो, या फिर सोशल मीडिया अपडेट्स, इन सब के बीच में हम इंफॉर्मेशन तो बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी डीप थिंकिंग है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसी गैप को फिल करने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है, इस मिशन की पहल करी गई है, जिसको सिंपल सा ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है कि रीडिंग को एक हैबिट नहीं बल्कि एक कल्चर और मूवमेंट बनाना है। इस मूवमेंट का एक कोर मैसेज है, रीड, इंस्पायर एंड एम्पावर। एक और पावरफुल बिलीव भी है इसी के साथ जुड़ा हुआ, एवरी वॉइस कैन इंस्पायर अ रीडर, एवरी रीडर कैन इंस्पायर अ नेशन। इस मिशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके साथ आए हैं, जिन्होंने ये पहल को शुरू किया है। सबसे पहले कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया, जो एजुकेशन को मीडिया और टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेसिबल बनाता है। साथ ही कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन, जो ग्रास रूट लेवल पर कम्युनिटीज को जोड़ता है। साथ ही पीएन पेनिकर फाउंडेशन, जिन्होंने इंडिया में लाइब्रेरी और रीडिंग मूवमेंट को एक पब्लिक रेवोल्यूशन बनाया था। और हम, यानी कि आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, जो इस मैसेज को हर लिसनर तक पहुंचाने का काम कर रहा है, ये सब मिलकर एक ही विजन को आगे बढ़ा रहे हैं कि रीडिंग सिर्फ स्कूल्स या फिर सिलेबस तक ही लिमिटेड ना रहे, बल्कि हर घर तक पहुंचे, हर इंसान तक पहुंचे, और हर जनरेशन इसका पार्ट बन जाए। रेडियो मानव रचना इस मिशन में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जो बुक्स और लोगों को कनेक्ट करता है, आइडियाज को वॉइस देता है, और अवेयरनेस को एक्शन में बदलता है। तो दोस्तों, आज के सफर हम रीडिंग की दुनिया को समझने के लिए शुरू करने वाले हैं, पर अगले सेगमेंट पर जाने से पहले मैं आपको सुनाऊंगी बहुत ही प्यारा सा गाना, क्योंकि ये ट्रेंडिंग तड़का प्रोग्राम बिना गाने के अधूरा लगता है। जी हाँ, हम बातें तो करते हैं, पर साथ में एंटरटेनमेंट के लिए मैं लेकर आती हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यार से गाने भी। तो अभी वक्त हो गया इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद करने वाले हैं हम बहुत सारी बातें। तब तक के लिए सुनिए बहुत ही प्यार से गाना, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। फील गुड, फील लाइव।
1: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो, जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पे बैठ जाओ, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चले। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है, जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो,
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और जब आज हमने समझ ही लिया है कि नेशनल रीडिंग मिशन 2026 क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन इस पहल को आगे लेकर चल रहा है, तो चलिए थोड़ा डीप इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं कि आखिर रीडिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में। दोस्तों, रीडिंग सिर्फ एक हॉबी या फिर कहें तो टाइम पास कोई एक्टिविटी नहीं है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो डायरेक्टली हमारे माइंड को, हमारी पर्सनैलिटी को और हमारी थिंकिंग को शेप करती है। जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ वर्ड्स नहीं देखते हैं बल्कि हम एक दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हर बुक हमें नए पर्सपेक्टिव से मिलवाती है, किसी नए आइडिया से इंट्रोड्यूस करवाती है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो इसका होता है रीडिंग का, वो है थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करता है। जी हाँ, रीडिंग हमें सिखाता है कि हम किसी भी सिचुएशन को सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। ये स्किल लाइफ में हर डिसीजन में काम भी आती है। दूसरा बेनिफिट होता है ब्रेन स्टिमुलेशन और मेंटल ग्रोथ। जब हम रेगुलर रीडिंग करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है और नए कनेक्शंस भी बनाता है। इससे लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है और मेमोरी भी इससे स्ट्रांग होती है। तीसरा बेनिफिट है नॉलेज और अवेयरनेस इंक्रीज होना। जी हाँ, बुक्स हमें ऐसे एक्सपीरियंस और फैक्ट देती है जो हम पर्सनली हर जगह से नहीं सीख सकते, इससे हमें दुनिया को बेटर समझने में हेल्प करता है। और चौथा बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई यूज करता है, यानी कि कम्युनिकेशन। हम सब बात करते हैं तो इसलिए रीडिंग से हमारी वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन नेचुरली इम्प्रूव होते हैं, जिससे हम अपनी बात को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाते हैं। और एक और बात जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिट देती है वो है मेंटल पीस और स्ट्रेस रिडक्शन। एक अच्छी बुक हमें डेली टेंशन से दूर ले जाती है। कुछ टाइम के लिए हम एक अलग वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ हमारा माइंड रिलैक्स होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रीडिंग हमारी पर्सनैलिटी को साइलेंटली बिल्ड भी करती है। ये हमें ज्यादा थॉटफुल, पेशेंट और एम्पैथिक बनाती है। सोचिए, अगर हर इंसान अपनी लाइफ में डेली सिर्फ 15 से 20 मिनट रीडिंग को दे तो कितनी स्ट्रांग और अवेयर सोसाइटी बन सकती है। तो दोस्तों, रीडिंग एक स्मॉल हैबिट लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप है, लाइफ चेंजिंग तक। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और अब तक हमने समझा कि रीडिंग हमारी लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आज हम रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक हमारा कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है किताबों से मुलाकात, ज्ञान की सौगात, नेशनल रीडिंग कैंपेन। ये हम चला रहे हैं रेडियो पर और साथ ही ये 20 जून से 20 जुलाई तक इस कैंपेन को हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोग रीडिंग के बारे में जाने, रीडिंग से इंस्पायर हो और साथ ही खुद भी रीडिंग करना शुरू करें। अब तक हमने समझा कि रीडिंग हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक और रियलिटी को देखते हैं और आज की जो डिस्ट्रैक्शन फील्ड है वो है डिजिटल दुनिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां पर हर मिनट में कुछ ना कुछ नया आता है, जैसे कि नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, अपडेट मैसेजेस, और ये सब इतनी फास्ट स्पीड में होता है कि हम बिना कुछ सोचे स्क्रॉल करते रहते हैं बस। ये प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये कंटेंट अवेलेबल है। जी हाँ, प्रॉब्लम ये है कि हमारा फोकस कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहा है और यहीं पर रीडिंग एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट बन जाती है। रीडिंग हमें एक ऐसी स्पेस देती है जहां पर कोई इंटरप्शन नहीं होता, ना कोई नोटिफिकेशन होता है, ना ही कोई फास्ट स्क्रॉलिंग होती है। सिर्फ एक स्टडी फ्लो होता है जिसमें हम धीरे धीरे सोचते हैं, समझते हैं और कनेक्ट करते हैं स्टोरी के साथ। और जब हम एक बुक पढ़ते हैं तो हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो फोकस करे, और ये फोकस ही आज के टाइम की सबसे वैल्यूएबल स्किल मानी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रीडिंग हमारी अटेंशन स्पेन को भी इम्प्रूव करता है। आजकल हमें शॉर्ट कंटेंट की इतनी आदत हो गई है कि लॉन्ग कंसंट्रेशन डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन रीडिंग इस स्किल को नेचुरली रीबिल्ड करती है। और सिर्फ फोकस ही नहीं, रीडिंग हमें पेशेंस भी सिखाती है। हर पेज को समझना, हर आइडिया को प्रोसेस करना, ये सब धीरे धीरे होने वाली ग्रोथ है हमारे अंदर, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होती है। एक और हिडन बेनिफिट है कि क्रिएटिविटी हमारी बूस्ट हो जाती है। जी हाँ, जब हम वर्ड्स से अपने माइंड में इमेजेस को क्रिएट करते हैं तो हमारा इमेजिनेशन एक्टिवली वर्क करता है। ये क्रिएटिविटी राइटिंग, स्पीकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। सो दोस्तों, एक लाइन में समझे तो डिस्ट्रैक्शन फास्ट है पर शेलो है, रीडिंग स्लो है पर डीप है, और आज के टाइम में जो चीज डीप होती है वही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो रीडिंग सिर्फ एक हैबिट ही नहीं है बल्कि ये एक प्रोटेक्शन है अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शन और एक टूल है कि फोकस और क्लियरिटी आपके सामने बनी रहे। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हूं मैं लेकर आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक खास कैंपेन की। जी हाँ, जिसका नाम है रीडिंग। रीडिंग की आज हम बात कर रहे हैं। रीडिंग क्यों ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, क्या क्या उसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अब तक हमने समझा कि रीडिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, और ये कैसे डिस्ट्रेक्शन वाली दुनिया में हमें फोकस और क्लियरिटी देती है। अब चलिए बात करते हैं एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ की, रीडिंग को अपनी डेली लाइफ का पार्ट कैसे बनाएं। बहुत से लोग ये चीज़ पूछते हैं, बहुत दिनों से ये कैंपेन चल भी रहा है, तो लोग जो पूछते हैं अगर हम रीडिंग नहीं करते हैं, हमारा मन नहीं लगता है उसमें, तो हम कैसे उसके अंदर अपना ध्यान लगाएं, इसको कैसे अपने डेली लाइफ का पार्ट बनाएं। तो ये बस उन्हीं के लिए ये खास सेगमेंट है। तो दोस्तों, सच ये है कि कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बनती है, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। इससे कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और छोटे छोटे स्टेप्स भी। सबसे सिंपल और इफेक्टिव स्टेप है, रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़िए। जी हाँ, सिर्फ 15 से 20 मिनट की रीडिंग। ये टाइम आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, या फिर नाइट में, या फिर सोने से पहले। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कब पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रोज़ पढ़ते हैं। एक और हेल्पफुल टिप है कि अपने एनवायरमेंट को रीडिंग फ्रेंडली बनाइए। अपने पास एक बुक हमेशा विजिबल रखिए, मोबाइल को थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखिए, क्योंकि जो चीज़ आपको दिखती है वही आपकी हैबिट बनने लगती है। एक और पावरफुल आइडिया है मेरे पास, और वो ये है कि फैमिली रीडिंग टाइम। जी हाँ, सोचिए जब घर में एक टाइम ऐसा हो जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी बुक्स या फिर आर्टिकल पढ़ रहे हों, तो बिना डिस्ट्रेक्शंस के वो भी, तो ये ना सिर्फ हैबिट को बिल्ड करता है बल्कि ये बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और हम दूसरों को देखकर भी फिर वो काम करने लगते हैं ना। और दोस्तों, रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाने का एक और तरीका है, चॉइस फ्रीडम। जी हाँ, आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज करने की फ्रीडम है। स्टोरी, बायोग्राफी, इंस्पिरेशनल बुक, या फिर आर्टिकल, या फिर नॉलेज कंटेंट। जब इंटरेस्ट होता है तो हैबिट नेचुरली डेवलप हो जाती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछती हूँ कि आपने लास्ट टाइम कौन सी बुक या फिर कौन सा आर्टिकल पढ़ा था जो आपको रियली इम्पैक्टफुल लगा, और आपको लगा कि इसने कुछ तो छोड़ा है मेरे अंदर। सोचिए, अगर पॉसिबल हो तो थॉट को किसी और के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मुझे भी ज़रूर बताइएगा। नंबर हमारा बहुत ही आसान है, 8010781078 पर, क्योंकि रीडिंग सिर्फ पर्सनल जर्नी नहीं होती है, ये एक शेयर्ड इंस्पिरेशन भी बन सकती है। एक सिंपल रिकमेंडेशन किसी और की रीडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, रीडिंग को स्टार्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, उसको कंटिन्यू करना इम्पॉर्टेंट है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।
1: दुनियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली और हर हफ्ते लेकर आ जाती हूं संडे शाम 4 से 5 आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, जहां पर हम करते हैं बहुत सारी बातें, साथ ही आपके लिए लेकर आ जाती हूं बेहद ही खूबसूरत से गाने भी। और आज जो एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूं वो है रीडिंग। जी हां, आज हम रीडिंग की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। हम एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे लोगों से जुड़े, उनसे जाना कि वो रीडिंग करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या उनको पसंद है, क्या क्या चेंजेस आए उनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें जानी। तो बस इसी के लिए ये खास प्रोग्राम, ये खास सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आया है रीडिंग की इंपॉर्टेंस को। और अब तक हमने समझा कि रीडिंग को वो डेली हैबिट कैसे बनाया जा सकता है, अब चलिए एक और इंपॉर्टेंट लेयर को समझने की कोशिश करते हैं और वो है रीडिंग हमारी पर्सनैलिटी को कैसे चेंज कर सकती है। दोस्तों, रीडिंग का इम्पैक्ट सिर्फ नॉलेज तक ही लिमिटेड नहीं होता है, यह हमारे अंदर की थिंकिंग पैटर्न, बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्टाइल को शेप करता है। सबसे पहला चेंज जो आता है हमारे अंदर वो है वोकैबुलरी और लैंग्वेज स्किल में। जी हाँ, जब हम रेगुलरली पढ़ते हैं तो नए वर्ड्स नेचुरली हमारे एक्सप्रेशन का पार्ट बन जाते हैं। इससे हम अपनी बात को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाते हैं। दूसरा मेजर इम्पैक्ट होता है थिंकिंग स्टाइल पर। जी हाँ, रीडिंग हमें सिखाती है कि हर सिचुएशन को एक ही एंगल से नहीं देखना चाहिए। हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमें ज़्यादा बैलेंस्ड और मैच्योर थिंकर भी बना देता है। तीसरा चेंज जो हमारे अंदर आता है वो है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में। बुक्स पढ़ते वक्त जब हम सीन को विजुलाइज करते हैं, कैरेक्टर को फील करते हैं और अपने माइंड में एक वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, ये इमेजिनेशन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन में भी हेल्प करती है आपकी। चौथा बेनिफिट है फोकस और डिसिप्लिन का डेवलपमेंट। रीडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके पेशेंस मांगती है और जब हम रेगुलरली पढ़ते हैं तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी भी नेचुरली इम्प्रूव होने लगती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ, स्टोरीज और रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमें एम्पैथी सिखाते हैं। हम दूसरों की फीलिंग्स और सिचुएशन को बेटर समझने लगते हैं, जो रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो रीडिंग हमें एक बेटर वर्जन ऑफ ओवर सेल्फ बनाती है, ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा काम और ज़्यादा थॉटफुल। सोचिए, एक छोटी सी हैबिट, रोज थोड़ा सा पढ़ना, धीरे धीरे हमारी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, रीडिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती है बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेशन भी देती है आपको। तो अगर आप चेंज होना चाहते हैं ना, तो रीडिंग करना शुरू करिए आज से और अभी से। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेप वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं।

करोड़ 3 साल 7 दिन पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1 करोड़ वर्ष 3 साल 7 दिन पुराना। उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है? उसने कहा, कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का? तो उसने कहा, ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तब मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ, क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए? 2500 साल बाद। तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए? अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे? अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता है, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था। अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही। और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे? अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी। यहाँ कोई पहला नहीं और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और ना अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहां संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहां से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है, यहाँ तख्ती लगी चुंडी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंडी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंडी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती।

होना ही असंभव है, क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी, जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं, नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या, अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा, जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या, सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा। ऐसा हुआ कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था, फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न चलती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है, आखिर उनसे न रहा गया, और उन्होंने कहा ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों, इसकी कोई जरूरत नहीं, साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है, आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते। तो अकबर ने कहा तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच ले रहा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा हटोड़ बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके। आदमी का सिर किस काम आता है, अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या, ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी हैं हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं, उल्टे लोग नाराज होते। जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या। तो अकबर ने कहा ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है, दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदे, तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है, जिसका कोई मूल्य नहीं, इसका नाम झुकाना है। सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो, देखो सिर झुका रहे हो, तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा कि सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए, सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की, इसलिए पूर्व में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं, पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वरग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे,
सिर से तो कुछ मिला नहीं, ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर। अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं, सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है। तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से, अब भूल जाओ सिर को। अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं। और अब पूछो कि शिष्य की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं। ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी। अब क्या करूं, व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं, ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण। मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी, अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे। गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं, तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई, तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो। कितनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए, और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता, जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी, उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गया, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है, तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है, तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु सांस। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में,
मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं। जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं। जब तुम अपना माधुर्य लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक की जाते हैं महाभाग। तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग। जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं। जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है। प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी, वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता। वो तो कहता, आओ जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की पग ध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है, मैं आपसे चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है इसे, लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया, ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है, इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है। तने इंद्र धनुष है मगर वायवी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है। चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में। जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विश्व मुझे दंश है हर लहर के। नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रुक, रुके रह जाना। झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे। तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं। मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं,
वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक, तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो, अब बिल्कुल मिट जाना, मिटकर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे। तुम जाओ तो ही परमात्मा। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूं तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत। देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क क्या दिए है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ। लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है, उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो। तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं, अब फर्क समझना। जिसने सच में ही नानक पे श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पे श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पे श्रद्धा आ जाती और नानक पे श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पे श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ, साफ साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही
अगर मैं जानता हूं कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता। मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी। दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उस एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक तो उठ गई, ईसा पे जम गई, मुश्क जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणतः तुम यही सोच रहे होगे, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में ना रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पास। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। इंसानों को कुछ तर्क नहीं दिए लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जचती होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जज गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा, अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ, फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर पर भरोसा आ गया ये सहयोगी बात है,
अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करो बेटा। तो तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर का भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया, इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ बातें पकड़नी होंगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए, कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो, ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद तक पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा? मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उसके अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी, तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी। क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो, फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाए, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा, उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे? तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं। बाइबल पढ़ते रहे होगे, तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है, और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं, फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल, अब तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप का साहित्य पढ़ता हूं, तो कहीं नींद आती। तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो, नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ, क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो, तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां है। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है।
सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात। तो सुकरात ने कहा मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों पूछा पूछने वाले ने? क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जैसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना, असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोलकर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले तीन सूत्र सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवेरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुत्सुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। साख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साख्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साख्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई, वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए।
साथियों और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते, ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का? बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सक्षम है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्प मात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। आसार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं, उनके शब्द शब्द में अर्थ और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तू सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में, और मालिक खींचे चले आए। तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं, ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है, और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उघड़ती हैं। पहली परत, आंखें हाथ नाक कान नौकर है, और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है, और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया। कान ने कह दिया और कान पर भरोसा कर लिया। स्वाद ने कह दिया और स्वाद पर भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है, और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साख्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे।
दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना।

जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जैसा कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है? तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो? कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा दी, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है। हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपद वासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपद वासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए। जब झगड़ा शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े। यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है। और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं, इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला,
क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इजराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हटके,
4: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: एंड देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग,
4: हाँ,
5: अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूसली अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम, तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर clarity आई है कोई, मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, now I only have to empower, reform नहीं करना।

0: वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ. लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए, बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है. और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया है, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दे, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे, हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं, एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
1: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
0: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं तो बहुत ईजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है,
1: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
0: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा. तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
1: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं, और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति क्रिमिनल नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
0: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम, यू नो, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड, बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
1: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
0: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं, और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है, तो वो आपको भी सही perspective में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चली जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं. बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है, या I don't have time for myself. What we don't realize is it's not just for myself. It's for my family also.
1: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं ज़िंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, unaware.

0: बिजनेस में मैं कहाँ तक कितना नुकसान, रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
1: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे, उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
0: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
1: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी, इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही,
0: और ये मेरे लिए जरूरी है,
1: वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए, बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है, उनका, वो भूल चुके, अपना. सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए, बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग, टिल व्हेन,
0: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक,
1: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट्स सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then, मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
0: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. तो सर शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है, बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है, लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो,
1: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का, उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम, फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना. जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो, क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
0: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो,
1: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूं, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया अब मैं इसको कैसे क्षमा करूं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है और अगर मुझे फगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फगिव करना और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस देन आई कैन फॉरगिव। अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
0: मैं ही करूँ,
1: मुझे करना। अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ तो चोट किसको लगी। तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है, मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं। से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाते हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा। तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है एंड इफ आई होल्ड इट विद मी द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली, मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे। नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी और ऐसी जीवन की फिर खोले ठीक का क्या।
0: बिल्कुल, और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है।
1: एब्सोल्युटली, और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होता है वो नेगेटिव। सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है। और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं।
0: जब मैं उस पेन में हूँ।
1: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम हूँ, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी। तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड। विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन, टेकिंग इट कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस। जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
0: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
1: Aapko pata hai mere saath kya hua? And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan, jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte hai na, apna rona rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua? Mere saath kya hua? We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते रहते हैं।
0: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल। अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज, इट इज, यू नो, एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल एक्चुअली गेटिंग इन टू इट और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते, और वो उस विक्टिमाइज, जो खासकर जो ज्यादा ट्रामा से गुजरे होते हैं, वो तो वो कौन सी विल पार है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते?
1: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर। अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन। जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए। तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस, स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट, क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है। लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं, अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
0: वही हो रही होती है,
1: वही डिस्कशन हो रही है, तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए, लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन। और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक,
0: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो, एंड नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड।
1: एब्सोल्युटली, तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार, और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल, क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो, तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप।
0: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर, that, you know, we are able to help somebody.

0: True.
1: Because we don't we would like to help somebody.
0: Right, but we're not really helping.
1: Yes.
0: You know, a help at that time would mean empowerment. Lekin baar baar keh kar ke hai aapke saath aisa hua, bichare aap, ab aapka kya hoga? Ya even ye kehna, koi baat nahi, sab theek ho jayega. Matlab, it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi, sab theek ho jayega, wo theek hai. But by saying that, we are saying ke abhi sab galat hai. You know, to jitna hum normalcy ko create kar sake. सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति.